न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और न अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और फिर फरमा बरदार बन जाते हैं, और जब हमारी बात पूरी होने के वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। और जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुठलाया करते थे, फिर उनको उनकी अकसाम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मुरतब किया जाएगा, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयात को झुठला दिया हालांकि तुमने उनका इल्मी इहाता न किया था, अगर ये नहीं तो तुम और क्या कर रहे थे। और उनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वो कुछ भी न बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई थी और दिन को रोशन किया था। इसमें बहुत निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे।

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: अपने इर्द गिर्द के और करीबी लोगों के हालात और उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा कर लें और देख लें कि उनको मदद की ज़रूरत तो नहीं है। इन ज़रूरियात में बच्चियों की शादी भी अहम मसला है, क्योंकि शादी के अखराजात ना होने के बायस भी बच्चियों के वालदैन इंतज़ार करते रहते हैं और बच्चियों की उम्र बढ़ती जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि मुनासिब वक्त में उनकी शादी का बंदोबस्त हो जाए। हज के बारे में एक अहम हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल की गई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और इस तरह के उसमें ना तो रफ्स हो यानी कोई फहश बात और ना फिस्क हो यानी हुक्म अदूली, तो वो हज से ऐसे वापस आता है जैसे उस दिन जब वो माँ के पेट से निकला था।
1: इस हदीस में ये तालीम दी गई है कि खालिस अल्लाह के लिए हज किया जाए, यानी इसमें कोई दुनियावी गर्ज मसलन शोहरत वगैरह शामिल ना हो। शोहरत या किसी दुनियावी गर्ज से हज करने से इनका पैसा जाया हो जाता है। अगरचे हज का फर्ज तो अदा हो जाता है लेकिन वो सवाब के लिहाज से खसारे में रहते हैं। इस हदीस में दो खास लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक रफस, अरबी में हर किस्म की बेहुदा बात को रफस कहा जाता है। इनमें ऐसी बातें या हरकतें भी शामिल हैं जो खुद तो फहाश ना हो मगर जहन को उस तरफ ले जाए। इसी तरह दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो है फसक। फसक का मतलब हुकुम अदूली है, जो अल्लाह की हर किस्म की नाफरमानी के लिए बोला जाता है। इसके अलावा इसके मायने झगड़ा करने के भी है, यानी हाजी का खुश अखलाक होना भी जरूरी है। इसीलिए हज के दौरान में सिद्क दिल से कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए कि वो दिलों को हर किस्म के बुरे ख्यालात से पाक कर दे।

रियलाइज हो जाती है कि शायद उस तरह से वो आपको सपोर्ट फाइनेंशियली ना कर सके। तो सबसे अच्छा है ना कि आप अपनी इज्जत से सर उठा के खुद के लिए जिस तरह से कमाते आए हैं और किसी आगे हाथ नहीं फैलाया आपने, वैसे अपने रिटायरमेंट को भी प्लान कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि वक्त के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो बढ़ी रही है। आज जो चीज 100 की है वो कल 200 की है और शायद आने वाले वक्त में 500 की भी होगी। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए ऐसा प्लान जरूरी है जो इन्फ्लेशन को आसानी से हैंडल कर सके, यानी महंगाई को भी हैंडल कर सके। वहीं पर जब हम रिटायरमेंट के करीब आ जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में जुड़ जाता है वो हमारा मेडिकल एक्सपेंस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेडिकल कॉस्ट भी बहुत हाई हो चुकी होती है। अगर आपने पहले से सेविंग्स की होंगी तो आप इजिली अपने रिटायरमेंट का खर्चा उठा सकेंगे। वहीं पर प्लानिंग जो है वो रिटायरमेंट की क्यों ज्यादा जरूरी है। हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड ना हो, इज्जत से वक्त काटे। रिटायरमेंट प्लानिंग आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाती है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। वहीं पर बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी मैं कहूंगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो आप रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी हॉबीज इन सारी एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि प्लानिंग जो है वो कब से शुरू करनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्लानिंग कब से स्टार्ट हो। इसका जवाब है जितनी जल्दी हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं उसी वक्त थोड़ी सी सेविंग रिटायरमेंट के लिए शुरू कर दीजिए। मतलब आप जब से आपने शुरू किया और अगर आपकी भाई बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है तो थोड़ा सा ही सही एक अमाउंट अपने रिटायरमेंट के लिए साइड में रखना शुरू कीजिए। अर्ली स्टार्ट का फायदा क्या होता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। अगर आप अर्ली सेविंग करते हैं तो आपके पैसे पर इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है, समझे ना। इस प्रोसेस को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये टाइम के साथ आपके पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो इससे आपका फायदा होता है। नहीं, कम सेविंग से ज्यादा रिजल्ट्स नजर भी आते हैं। अगर आप 25 साल की एज में सेविंग शुरू कर देते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको हर महीने कम अमाउंट सेव करना पड़ेगा। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे बचाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर उस वक्त एक तरह का फोर्स या प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। वहीं जब आप अर्ली प्लानिंग करते हैं तो आप पर फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो कम होता है और आप फ्यूचर के लिए ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। वहीं मैं कहूंगी अर्ली प्लानिंग से आप अपनी लाइफ का डिसीजन बेहतर ले पाते हैं। जैसे अर्ली रिटायरमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, VRS, या फिर करियर चेंज, या फिर कोई और हॉबी या कोई और शौक जो आप परस्यू करना चाहते हैं टुवर्ड्स द एंड, तो ये सारी चीजें आपको करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वहीं अगर कोई बंदा प्लानिंग जो है वो लेट करे तो क्या होता है? अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग डिले कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, जैसे सेविंग कम रह जाएगी, ज्यादा पैसे जमा करना पड़ेगा लेटर स्टेजेस में, जो कि टफ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज एंड सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस और टेंशन, ये इंसान की लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जाहिर है, दवाई खानी शुरू कर देंगे आप। फिर कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये भी याद रखिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक रिसर्च का हवाला भी आपको देना चाहूंगी। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 5 से 10 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं, डिले नहीं करते हैं, तो आप टोटल रिटायरमेंट फंड आपकी लाइफ के लिए, मतलब बची हुई लाइफ के लिए काफी होता है। लेकिन अगर आप सोचिए इससे पहले से आप ठीक ठाक तरीके से प्लानिंग करते चले आए तो ये काफी से ज्यादा होता है ना। तो कितना सुकून भी होता है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। सिंपल टिप्स जो मैं अब आपको देने वाली हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, कोशिश करें कि हर मंथ थोड़ा सा पैसा सेव करना है, एक रिटायरमेंट प्लान या फंड या इस नाम से कुछ भी, और एक अकाउंट में, अपने एकदम सेपरेट अकाउंट में उसे डालते रहें। अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज रिटायरमेंट के लिए रखिए ही रखिए। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइफ में अपने गोल्स जो है उन्हें क्लियर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्लानिंग की रिव्यू करना। हर प्लानिंग का रिव्यू करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। ये आपको फ्यूचर में सिक्योर करेगी, इंडिपेंडेंट बनाएगी और खुश रहने में हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जितनी जल्दी

0: स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए आज ही सोचना शुरू करें। छोटी सी सेविंग भी कल एक बहुत बड़ी राहत बन सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे यानी नाजिया को दीजिए इजाजत। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अलहा अशरफ उज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामने कलाम प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान में आज हमारे जो मुंतखब करदा आयात हैं इनका ताल्लुक हमारे इन हज के मौसम से ही है। यानी जब बात होती है बैतुल्लाह के तामीर की तो ज़रूर ज़रूर इसका ताल्लुक एक न एक तरीके से ज़ाहिर हरम को रिलेट करता है। वैसे इस्लाम की सदाकत की बहुत बड़ी दलील और प्रूफ उसकी हमागीर जाज़िबियत भी है। इस जज्बो कशिश का सबसे बड़ा मरकज बैतुल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलकर कई सौ साल पहले इस वादी गैरज़ ज़रा बे आबो गियाह ज़मीन में अल्लाह का घर बनाया और रब करीम के हुजूर फरियाद की कि फ़जाल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम

सुजूद और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ और इतिकाफ और रुकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखें। तो इस तरह बैतुल्ला की जाहिरी और बातनी पाकिजगी का हुक्म दिया है। इसी तरह दुनिया में बनाई जाने वाली हर मस्जिद इसी हुक्म के तहत आ जाती है और मस्जिद के इर्द गिर्द बसने वालों का फर्ज बनता है इस बात का पूरा ख्याल रखें। समझ कर मसाजिद की शान क़ियाम सलात और रुकू और सुजूद से बरकरार रहती है, उसी से मुसलमानों की माशरती और माशी ज़िंदगी मजबूत होती है। अफसोस कि मुसलमानों ने उसकी रूह को ज़ाय कर दिया है। दिन में 5 बार महल्ला की मसाजिद में नमाजें, जुमतुल मुबारक जामे मसाजिद में नमाज, खुले मैदानों और पार्कों में ईदैन की नमाज और फिर हर साल हज का अजीम शान इज्तिमा, क्या उनकी सबबंदी और इत्तेहाद का बेनज़ीर और बेमिसाल मुजाहरा नहीं है? क्या वो मिल बैठकर अपने तमाम मसाइल हल नहीं कर सकते हैं? तो फिर आज मुसलमान जलील और ख़ार क्यों हो रहे हैं? आइए कुरान की हिदायत पर अमल पैरा हो जाएं। इरशाद खुदावंदी है।

आप लोगों से कह दीजिए, ए मेरे बंदा, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह तो यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर और रहीम है। इसी शायर ने खूब कहा है, काश के बंदे उसकी तरफ रुजू करें। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रहरो मंजिल ही नहीं। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, और ए हमारे रब मबऊस फरमा उनमें एक रसूल उन्हीं में से। यतलू अलैहिम आयातिक, इसका मतलब यह है कि कुरान की आयात, उससे मुराद अनफुस और आफाक की आयात भी है। कुरान हकीम में एक गोल दायरा से दूसरे गोल दायरा तक की इबारत एक आयत कहलाती है। सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक कुल आयात की तादाद 6666 है, और हर आयत उसकी कदर व हिकमत की निशानी है। मौलाना अब्दुल हय फारूकी रहमतुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला काम अपनी उम्मत के साथ तिलावत आयात है, यानी अल्लाह का कलाम पहुंचाना और पढ़ाना, वो आपकी पहली हैसियत मुबल्लिग आज़म की है। इतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। युअल्लिमुहुमुल किताबा, यानी उन्हें किताब की तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तबलीग और पैगाम रसानी पर ख़त्म नहीं हो जाता, आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। कोई आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। युअल्लिमुहुमुल किताब, यहाँ किताब से मुराद अवामुल कुरान है। आपका काम किताब इलाही की तबलीग के बाद उसकी तालीम का भी है। गोया आपकी दूसरी हैसियत मुअल्लिम आज़म की है। और फिर है दानाई की बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा काम हिकमत व दानाई सिखाना, कुरानी हकाम व मसाइल समझाना, दीन के कायदे और आदाब सिखाना, और ज़िंदगी के गुनागों और पेचीदा मसाइल का उसी की रोशनी में बेहतरीन हल बताना है। वो आपकी तीसरी हैसियत मुर्शिद आज़म की है। और एक आखिरी मरहला है, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर दे। तज़किया से मुराद दिल की सफाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा काम अपनी सोहबत और तरबियत से अखलाक की पाकिजगी और नीयतों का इखलास पैदा करना है। इन्हें आपकी चौथी हैसियत मुस्लिह आज़म की है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि हमारे रब हमारी नस्ल से अपनी एक फरमाबरदार उम्मत पैदा कर, उन्हीं में से एक नबी मबऊस फरमा, उसकी चार खसूसियात हों, वो किताब अल्लाह सुनाए, पढ़ाए, समझाए, और उसके ज़रिए से दिलों को पाक करे, यानी वो मुबल्लिग भी हो, हकीम व मुर्शिद भी और मुस्लिह भी। ये तमाम बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी हुई। सामने कलाम इन आयात में सबसे अहम बात इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तामीर के वक्त पुरखलूस दुआ है, जो कि हर मुस्लिम और मोमिन के दिल की आवाज़ है। दुआ का नगमा, दुआ का तरन्नुम, दुआ की फिजा सब के सब सामने मौजूद व हाजिर हैं। गोया इस वक्त जिंदा

हर हाल में अल्लाह ही से मदद चाहो, सबर और नमाज से। बिला शुबा सबर और नमाज भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और बिला शुबा उसी की तरफ पलट कर जाना है। अस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाह। सामने किराम, अकल और शरीयत दोनों या इनमें से किसी एक के तकाजे के मुताबिक अपने आप को रोकना तो ये सबर कहला सकता है। सबर एक आम लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल के तौर से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। चुनांचे किसी मुसीबत पर नफ्स को रोक रखने को सबर कहा जाता है। ये जज़ा फज़ा चीखो पुकार की जिद है, और जंग में नफ्स को रोक रखने को शजाअत कहा जाता है, और उसकी जिद चुभन बुजदिली है। यानी सबर अगर किसी परेशान खुन हादसे को बर्दाश्त करने की सूरत में हो तो उसे रहब सदर कुशादा दिली कहते हैं, जिसकी जिद वज्र यानी तंग दिली है। कुरान हकीम में चंद आयात पर अगर गौर कीजिए तो देखेंगे कि यहाँ सबर भी मुख्तलिफ यानी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया गया। अर्शाद खुदावंदी है, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों के नुकसान नीज मेवों यानी फसलों के खसारे से तुम्हारी आजमाइश करेंगे तो साबरीन को अल्लाह ताला की खुशनुदी की बशारत सुना दीजिए। तो यहाँ जानो माल के नुकसान पर सबर की बात आई है, फिर दुश्मन के मुकाबले में भी सबर की बात आई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। अहले ईमान कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि मुराद हासिल करो। सबने किराम, इसी तरह दावत और तबलीग में सबर की बात आई है। يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور। लक़मान ने कहा, मेरे बेटे नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे काम करने का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करते रहना, और इस सिलसिले में जो मुसीबत तुझ पर वाक़ है उस पर सब्र करना बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। इसी तरह दूसरों को माफ़ कर देना भी सब्र है। وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين। और अगर तुम उनको तकलीफ देना चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची है, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह उन्हें अजर अजीम से नवाजेगा। सबने कराम, तो सब्र कुरान मोती है, इट्स गोल्डन की सुनहरी कलीद है। सब्र के साथ सलात का जिक्र आया है। हाँ जी, सब्र सलात। सलात का लुगवी माना दुआ मांगना, रहमत तलब करना है। सलाह शरीयत में जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वो खास कैफियत कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखाई है हमें। तो अगर नेकी के रास्ते पर चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो इस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। ये दो कुरानी मोती हैं, इन दो चीज़ों से हमें वो ताकत मिलेगी जिससे ये राह आसान हो जाएगी। सामने कराम, सब्र से इस्तानत की ज़रूरत बार बार पड़ती है। यही वो ज़ात राह है जो हर मशक्क़त का मुकाबला करने के लिए नागुज़ीर है। और सबसे ज़्यादा मशक्क़त का काम यह है कि इंसान हक के एहतराम, उसके इसार और हकीकत के एतराफ़ और उसके आगे सर तस्लीम खम करने के लिए सरदारी व पेशवाई के मनसब और उससे वाबस्ता मतलब मफादात व मुनाफे से दस्तबरदार हो जाए। अब नमाज से इस्तानत क्या है? नमाज बंदे और रब के माबैन रब तो मुलाकात का नाम है। ये एक ऐसा रब है जिससे दिल को कुव्वत हासिल होती है और रूह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का एहसास करती है। नमाज से इंसान को राह हक के लिए वो ज़ात राह मिलता है जो दुनिया के तमाम साज़ो सामान से ज़्यादा कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लाहिक होती तो आप नमाज की तरफ लपकते, हालांकि अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक बहुत पुख्ता था और आपकी रूह वही और इल्हाम के जरिए अल्लाह से मरबूत थी। ये सर चश्माए हयात आज भी हर उस मोमिन के दस्तरस में है जिसे राह हक के लिए तोशा दरकार हो, दोपहर की शदीद गर्मी में तैराबी का तालिब हो, हर तरफ से मदद के मजदूर होने पर मदद का तालिब हो, और सामान ने सफ़र के ख़त्म हो जाने के बाद उसे ज़्यादा राह की ज़रूरत हो तो बस नमाज का रुख कर ले। وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ। मसला ये है कि सबर और नमाज ये भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ इख्तियार करने वाले हैं। आजिज़ इख्तियार करने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और बिलाशुबा उसी की तरफ पलट कर जाना है।
سامنے کرام آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام ملا, ہمیں بتایا گیا کہ بھائی صبر و صلات مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہے. صبر کا موتی اختیار کرو, نماز کا موتی, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اقامت, ایسا نماز کو قائم کرنا, یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا, اسی طرح

0: FM 107 टाइम चेक।
1: मैं बहुत ही जोर से चिल्ला के बोलना चाहता हूँ हैप्पी वीकेंड, लेकिन सुबह सुबह जो है जमता नहीं है, पता नहीं लगता कि आउट ऑफ पॉकेट हो गया है मामला, इसलिए आई वोंट डू दैट। मगर आप जो है आप समझ लीजिए, बोल बहुत अंदर से मैं ये कह रहा हूँ, अ वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, क्योंकि क्या है अभी मुझे पता है बहुत अर्ली टू से है, पूरा दिन निकालना है अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन हम जो लोग 6-6 बजे जा रहे हैं हमारा वीकेंड टेक्निकली शुरू हो चुका है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे वाले अटेंडेंस लगा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाए हूँ आपके लिए, मौज आ जाएगी आपको, मौसम बना देंगे, और मौसम भी कुछ अलग ही है आज भी, पता नहीं गर्मी कन्फ्यूज चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है उसे कि छुट्टी पर जाना है कि आना है, बहुत विचित्र किस्म की प्राणी हो रही है। लेकिन आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा 666-22-107 पर, ये व्हाट्सएप का नंबर है। सुबह की शुरुआत तो दुआओं से होनी चाहिए, तो सुबह के अज़कार, उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी 10 मिनट 33 सेकंड के बाद, और मैसेज के इंतज़ार में हुआ, सो स्टे ट्यून्ड।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाए।

ये सुबह के अज़कार FM 107 पर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।

करके छुट्टी ली है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। कुछ मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा ही मेहरबान हो जाती है एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय ने बोला मेरा कल मन नहीं आने का। अरे बिल्कुल, अरे साहब कल मत आइए, क्यों आएंगे आप? अपने नाजुक कदमों को मैं तो कह रहा हूँ फर्श पे मत रखिए। तो ये जो कंपनीज कर रही है कैसे कर लेते हैं आप लोग भाई, काम वाम कराइए, स्पेशली थर्सडे को तो छुट्टी मिलनी नहीं चाहिए। अभी मेरे बहुत सारे दुश्मन पैदा होने वाले हैं मुझे पता है। बट एनीवे, वेरी हैप्पी वीकेंड, थर्सडे की शुरुआत हो चुकी है। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। सबसे पहले तो जब बात शुरू हो ही चुकी है तो बता दूं कि आज का जो किस्सा है, ऑफ कोर्स वीकेंड स्पेशल है आप जानते हैं, तो आज की कहानी इज अ वेरी वियर्ड केस। मतलब मैं इसके बारे में जितनी गहराई में जा रहा था मैं उतनी सोच रहा था कि ये हो क्या रहा था, ये मतलब अजीब और गरीब मामला ही। पहले आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, पर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल समझ के परे हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको मैं आज ही वीकेंड स्पेशल के लिए बचा के रखी है मैंने कहानी, तो आज मैं सुनाऊंगा। बाकी अब ज़रा मुझे लग सा रहा है कि फ़ोन आई खुल गया क्या? हाँ, तो अगर फ़ोन खुल गया है पूरी तरह से तो मैं आपके सवाल नहीं, आपके मैसेज पढ़ देता हूँ। ऑल्सो 26 तारीख को तो आप जानते हैं अराफा का दिन है, तो उस दिन तो ऑफ रहेगा। आज क्या है, आज हो चुकी है कितनी तारीख हो चुकी है, 21 हो गई क्या? तो 21 तारीख आज हो गई। देखो फ्राइडे सैटरडे तो गया है ना, ऑफ होता ही होता है, उसके बाद दो दिन और फिर सीधा आ जाएगी 31, तो हमारे पास टेक्निकली 4 दिन है। तो 4 दिन कहानी सुबह बची है, उसके बाद शाम में मिलेगी आपको कहानी। तो अब ज़रूरी है कि मैं आपको आगाह कर दूं, उसके बाद ये ना हो कि लोग बोलें शाम में आ गए, हमें तो पता ही नहीं था अब शाम में आ रहे। तो 4 दिन की कहानी है आज, और उसके बाद फिर संडे मंडे, देन ट्यूसडे को ऑफ, देन फिर तो ईद ही है, हाँ फिर ईद का स्पेशल शो है, एंड देन सीधा 31 तारीख को लास्ट जो मॉर्निंग वाला शो होगा, फिर 1 जून से हम वापस शाम में चले जाएंगे। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस, वरना लोग बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं है। और बाय द वे बहुत स्पेशल शोज लाइंड अप हैं आपके लिए, जो बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो आएंगे, और काफ़ी कुछ है जो होने वाला है ईद के स्पेशल शोज में भी। तो धीरे धीरे जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता चला जाएगा। बट फिलहाल कुछ मैसेजेस हैं। कमाल साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, और इनके बाद जो है मैसेज आया है अहमद भाई का, वालेकुम अस्सलाम, क्या भाई मेरा भाई अहमद भाई, कैसे मेरे भाई? तुसी ना जाओ भाजी, मैं किधर नहीं जा रहा फैसल भाई, बस शाम में मिलूंगा, बस इतना है। बाकी जुड़े ना अलीना के मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, टुडे इज़ माय लास्ट एग्जाम कतर हिस्ट्री। अलीना थैंक यू सो मच, तुमने बोला बेटे ये लास्ट एग्जाम है स्वीट हार्ट, ऑल द बेस्ट टू यू। कतर हिस्ट्री पर एग्जाम है आज, क्या बात है, ईजी होता होगा, मतलब पता नहीं मुझे तो, मैं तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पक्का वाला बिल्कुल कट हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ हिस्ट्री। आई डोंट नो अबाउट यू अलीना, बट लास्ट एग्जाम है तो अच्छे से मजे करना। देन अहमद भाई ने मैसेज किया है, आप उन 6 बजे ट्यून इन कर लिया, 2 दिन से मिस हो रहा था भाई। मैं अहमद भाई, मैं शिकायत करने वाला था, मैं आपके DM में स्लाइड करके आने वाला था, मैंने कहा भाई क्या बात है कैसे, अच्छा आप खुद ही आ गए। फैजल भाई वालेकुम अस्सलाम, देन अब्दुल सलाम साहब वालेकुम अस्सलाम, देन अबू आकिब साहब वालेकुम अस्सलाम, देन मैसेज क्या है सुभाष भाई ने, गुड मॉर्निंग भाई, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड भाई को, वालेकुम अस्सलाम, और इनके बाद एक वॉइस नोट। अरे ये वॉइस नोट आज तो सुनूंगा भाई, मैं आज आपका वॉइस नोट पक्का मिस नहीं करूंगा। इट्स सिंपल एंड आई लाइक हिस्ट्री टू, क्या बात है, क्या बात है, मुझे ऐसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं जो मेरी तरह होते हैं। तो अलीना थैंक यू सो मच, बच्चे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी बच्चे को ही मैंने कहते हुए सुना आई लाइक हिस्ट्री टू, बिकॉज आई लव हिस्ट्री एज वेल, बहुत कमाल की चीज़ है। सो ऑल द बेस्ट यू अलीना, बहुत बढ़िया जाए एग्जाम, और प्लीज़ सिद्धरा बहन पार्टी बनती है, ठीक है पार्टी, आई नो शी विल स्कोर रियली रियली वेल, तो उसकी पार्टी जब देंगे आप तो एक प्लेट मोमो हमारी तरफ भी आना चाहिए, और मुबारकबाद अभी से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अलीना के टैलेंट पर। ओके, तो अब आज के सवाल की तरफ ज़रा बढ़ लेते हैं। मैं कल एक फॉरेन मूवी देख रहा था, बाहर की मूवी देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री नहीं, शॉर्ट मूवी थी वो, अब मैं चैनल का नाम ही ले नहीं सकता, पर वहाँ पे देख रहा था मैं, तो उस पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर उन्होंने पूरा का पूरा बनाया था सीन। वो ये था कि उसमें एक बंदा होता है, और वो जो है पहले बहुत परेशान होता है कि वो लोगों पर भरोसा ना तो कर पाता है ना कोई इस पर कर पाता है, प्रॉब्लम ही आ रही होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, कौन से लेवल पर बोल रहा है, ठीक है। तो वो कुछ किस्म की वो बीच में बहुत कुछ होता है, एंड देन ही गेट्स द पावर, उसके पास एक पावर आ जाती है कि वो जो है लोगों के झूठ
डिटेक्ट कर सकते।

0: सकता है, मतलब हर किसी के और हर एक झूठ डिटेक्ट कर सकता है। हमारे साथ क्या है, नॉर्मली क्या है कि एक कोई झूठ एक आधा पकड़ ले तो पकड़ लिया, उसमें खुश हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सारे के सारे झूठ पकड़ पाता है शुरुआत में, उसे बहुत मजा आता है, बट देन वो झूठ लगातार पकड़ लेना बिकम्स अ कर्स फॉर हिम। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार इससे बढ़िया तो यही था कि मैं ना पकड़ पाता, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सारे के सारे झूठ आप पकड़ सकते तो आपको क्या लगता है कि ये झूठ पकड़ लेना, ये जो काबिलियत है आपकी या जिस किसी में भी है, ये काबिलियत बहुत अच्छी बात है या फिर ये एक किस्म का कर्ज है? इस पे क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या आप चाहते हैं कि सारे के सारे झूठा पकड़ पाएं, कुछ भी ऐसा ना रह पाए? 666-22107 पर जरूर बताएं, 666-22107 पर। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई एंड ऑल ऑफ कतर, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये अब्दुल समद भाई ने मैसेज किया है, एंड देन एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप शाम में कितने बजे से आएंगे? वो शाम में भाई 5 बजे से शो होगा, उसका रैप भी तैयार कर लिया आपके भाई ने, बढ़िया वाला एकदम, जो आप सुनोगे ना ओए होए होए होए होए, मतलब कमाल ही हो गया इस बारी तो वो तैयार होके चलना शुरू हो जाएगा FM 107 पर भी, बट यू विल लव इट। ऑल्सो सवाल एक बार दोहरा दूं, क्योंकि एक भाई अभी भी ज्वाइन करके पूछ रहे हैं सवाल। सवाल ये है कि क्या सबके सारे के सारे झूठ पकड़ लेना ये किस्म की पावर है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार सारे झूठ भी नहीं पता होने चाहिए, कई मरतबा झूठ ना पता हो तो चलेगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, हैप्पी वीकेंड। वालेकुम अस्सलाम। एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज किया, बहुत अच्छा, मोइन भाई ने मैसेज किया, मोइन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग। और अगर सारे के सारे झूठ समझ में आने लग जाते और सारे के सारे झूठ पकड़ पाता तो कई मरतबा माँ बाप जो तारीफ करते हैं झूठी वो पकड़ी जाती और दिल बहुत टूटता। कई बार होता है कि आपने कुछ भी पहन रखा है लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। खैर, माँ एक अलग कैटेगरी में, अब्बा जो है वो तारीफ करते हैं झूठी झूठी, हाँ हाँ वाह वाह क्या लग रहे हो, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब्बा के अंदर आ रहा होता है अरे बदल ले भाई कपड़े क्या है ये। तो अगर हर एक झूठ आप पकड़ सकते तो क्या ये पावर होती या एक कर्ज होता? एक और मैसेज आया मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा तो पता नहीं, मेरी वाइफ जो है सारे के सारे झूठ पकड़ लेती, मतलब सारे तो नहीं कहूँगा उतने जितने उसके समझ में आते हैं, अगर वो सारे के सारे झूठ पकड़ने लग जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप कैसे हैं? बात तो सही है, इतने क्या इतने आपके झूठे, मतलब इतने सारे क्या, अगर सारे के सारे पकड़ गए तो फिर तो मतलब। अस्सलाम वालेकुम, एक और मैसेज आया है, मेरा नाम नाम क्या आपका, SN खान, पूरा लिख देते ऐसा लग रहा है क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ ये नाम, वो डॉक्टर SN खान। तो SN खान साहब लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम भाई, मैं अमूमन झूठ नहीं पकड़ पाता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे झूठ अगर मैं पकड़ पाता तो बहुत बढ़िया होता, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता। ओके, अभी तक एक ही बंदे ने बोला कि मज़ा आता भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, आयशा हेयर, आई गॉट 19/20 इन हिंदी। क्या बात है, आयशा के नंबर आए हैं भाई, स्वीट हार्ट यू स्कोर्ड रियली रियली वेल, उसने हिंदी में 19 नंबर स्कोर किया है 20 में से। तालियां आयशा के लिए, तालियां तालियां तालियां तालियां, वेरी वेल डन बेटे, वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ इट। आई थिंक एग्जाम्स पूरे हो गए ना आयशा, है ना, अभी भी बचा है क्या कोई? मुझे याद नहीं आ रहा है, आपने मुझे बताया था एग्जाम वो सुपर इजी आपने उस दिन बोला था, पर कितने बचे ये नहीं बताया था, मुझे बताना एग्जाम बचा है क्या। एक मैसेज आया वसीम भाई का, भाई सारे झूठ कोई पकड़ने की कला आ जाए तो आई एम श्योर दुनिया में बंदा अकेला रह जाएगा। ना दोस्त रहेंगे ना कलीग्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शादी तो कोई कर ही नहीं पाएगा। वसीम भाई कह रहे, भाई अगर झूठ पकड़ने की ताकत आ गई तो बात सुनो, बात ऐसी है कोई नहीं बच पाएगा, किसी किस्म का रिश्ता ही नहीं रह जाएगा। सारे के सारे दोस्त गए, कलीग्स तो गायब पहली फुर्सत है, मुझे लग रहा है ऑफिस में तो कोई काम नहीं कर पाएगा, सब के सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर सामने दिख गए तब तो भाई हाथापाई है, और कह रहे हैं कि शादी तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे झूठ अगर पकड़ में आने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। वसीम भाई मुझे लग रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए ये टाइप करते हुए। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं कि भाई मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ अगर वहाँ पे सारे के सारे झूठ एक दूसरे के समझ में आने लग गए तो मुझे लगता है कि टेबल कुर्सी फेंक के मारी जाएगी। अरे रे रे रे रे, ये मुझे पता है ना, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी रिश्ते में झूठ वूट चलते हैं तो वो ऑफिस वाले रिश्ते हैं ना, कलीग से बना के रखना पड़ता है, पूरे दिन उसके बारे में बात करी लेकिन आखिर में और भाई सब बढ़िया। मेरा भी यही सवाल है, मैं दोहरा देता हूँ इनकेस आप इससे थोड़ा सा इधर उधर चले गए। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है कि अगर आप सारे के सारे दुनिया में हर किसी शख्स का हर एक झूठ पकड़ सकते तो आपको क्या लगता है, ये पावर बहुत अच्छी है या इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हैं? वसीम भाई कह रहे हैं भाई इंडिया में तो बुरा हाल हो जाता कह रहे सारे के सारे ये जो सरकारी महकमे में बैठे हैं इनके तो बैंड ही बच जाती। ये तो है वसीम भाई, दिस वुड हैव बीन अ रियली रियली वियर्ड सिनेरियो। पर उनसे ज़्यादा पता है वसीम भाई प्रॉब्लम क्या नहीं होती ऑफिस वालों को, मैं बता रहा हूँ ऑफिस में सबसे ज़्यादा पंगे होते। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकेंड भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: जय भाई कैसे हैं आप
1: मेरे भाई? कैसे हैं आप? ठीक हैं आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर। आप बताइए
1: कहाँ कहाँ से आप टॉपिक्स को टफन टॉपिक्स को उखाड़ के ले आते हैं यार।
0: जो कल मैं बस एक शॉर्ट मूवी देख रहा था तो उसमें मुझे ये दिखाए ऐसे ही कुछ वो बंदा कर रहा था तो मैंने कहा चलो।
1: मैं सुबह सुबह झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा 6:25 पे कि मैंने 6:45 पे बुफे करना है, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे?
0: बात तो सही है लेकिन ये भाई क्या लगता है आपको ये कैसी पावर है? मतलब
1: यार ये पावर देखिए बात तो है कि ये झूठ पहले तो एक एग्जांपल भी है ना कि झूठ के पाँव कहाँ, उसके पाँव नहीं होते। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों की आदत भी होती है और कुछ लोग इसमें बड़ा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब आपको मजा तब आता है कि जब आपको पता है कि ये सामने वाला बंदा इसकी खसलत में है बंदों को इस्तेमाल करना, झूठ बोल के इधर उधर की बात करके, और आप उसका मजा और चस्का लेते हैं कि यार मुझे पता है। क्योंकि बड़ा अच्छा तजर्बा रिसेंटली मेरे साथ हुआ कुछ 1-1.5 माह पहले। और सबसे पहले तो आदमी अपना एतमाद खोता है।
0: नहीं पर मतलब अगर नहीं मैं ये आप समझ रही, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप सबके झूठ पकड़ सकते तो क्या ये एक किस्म का ब्लेसिंग है या कर्स है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
1: यार ये ब्लेसिंग नहीं, ये तो फिर अगर सारे झूठ पकड़ लिए तो मेरे ख्याल से मोहब्बत का तकाजा रहेगा नहीं कोई किसी से, यकीन करें आप, कोई मोहब्बत खत्म सिवाय नफरत के और घूरना और बस जो जो मुंह में आएगा।
0: क्योंकि एक भाई कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा तो ऑफिस में दिक्कत होती, कह रहे हैं मेरे ऑफिस में तो टेबल कुर्सी चल जाती भाई
1: सबके टेबल कुर्सी, मतलब टेबल कुर्सी बचती नहीं ऐसे टूट जाती सारी वो सही कहा उन्होंने।
0: हाँ वही तो वही इसीलिए तो हाँ बोलिए।
1: कुछ बेहतर होता है कि झूठ ना ही पता लगे ताकि वो जो है ना वो पर्दे के पीछे रहे, कुछ झूठ ना ही पता लगे उससे दुख भी होता है इंसान को और पता लगने से खुशी भी होती है दूसरे का पता भी चलता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि झूठ रिस्क को भी खत्म करता है, इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो आपका काम ईमानदारी से हो सकता है उसको इस्तेमाल करें, झूठ से बचें बस।
0: अच्छा ठीक है जेबी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और टेबल कुर्सी बचा के रखें और ज्यादा भी सच ना बोले ऑफिस में
1: भाई टेबल, हम तो टेबल कुर्सी का बड़ा एहतराम करते हैं जाके। अभी मैंने बुफे करना वहां पर
0: उसमें बुफे रखा होगा ना उसमें है ना मेरा खून गोला रहे बस। अच्छा ठीक है,
1: अच्छा एक और कॉम्प्लीमेंट मैं सुबह सुबह दूंगा क्योंकि फिर शायद आपका मैं सुन रहा हूँ डेली की आपके प्रोग्राम जो नशरियात वो शाम को जा रही है, तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट तो भाई के लिए है
0: जी,
1: कि मेरा भाई जहाँ खड़ा होता है फोन कॉल्स और लाइन वहीं लग जाती है।
0: एक बात बताइए आपने प्रोमो सुन लिया क्या
1: मेरे भाई? मैं सुन के मतलब क्या नहीं सुनता, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ।
0: नहीं वो तो प्रोमो चला ही नहीं अभी तक, आप तक पहुंच गया क्या? कैसे ये कैसे हुआ? एक सेकंड।
1: नहीं ये प्रोमो तो मैं अपनी तरफ से आपको कर रहा हूँ यार।
0: अच्छा आपको पता ये प्रोमो की स्टार्टिंग है ये आपने
1: तो फिर यार ये मतलब ये कुछ कंप्लीमेंट मेरे लिए फिर।
0: अरे रे रे रे रे रे साहब कौन से पहाड़ पे बैठते हैं आप कौन से पहाड़ पे बैठते हैं आप? मुझे अच्छा लगा
1: कहीं भी यार दिल से कहते ना दिल से दिल के राह है, तो आप हमारे दिल जाने यार।
0: जज़ाक अल्लाह
1: खुश रहिए हमेशा,
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक
0: यू, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो जेबी भाई ने जो है प्रोमो की स्टार्टिंग बता दी, बाकी प्रोमो तो नहीं सुना, वन नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। सो 666-22107 पर आपको बताना है कि ये जो चीज़ है झूठ पकड़ लेना, देखिए ये अच्छी क्वालिटी है, आप पकड़ लेते हैं जिंदगी में बच के रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये हर किसी का हर एक झूठ पकड़ने लग गए आप तब क्या होगा भाई साहब? टेबल कुर्सियां चलेंगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो पकड़ना चाहता हूँ सबके झूठ पकड़ में आ जाए। अमन भाई यही तो टॉपिक जो मैंने बताया, एक मैसेज आया, सलाम भाई झूठ अगर पकड़े जाए तो ज्यादा हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती, जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। इस तरह जी आपने जिस तरीके से बताया मेरे बैकग्राउंड में ताना ना ना ना ना सब बच गया। एक मैसेज है, आई होप, क्या है, सीजेपी झूठ ना बोले है। एक मैसेज और आया, ये कह रहे हैं कि क्या है? आदतों में, अरे लो व्हाट्सएप बंद हो गया, हाँ, आदतों में मुकदमों का फैसला बहुत जल्दी होने लगेगा क्योंकि गवाह और आरोपी सच बोलने के लिए मजबूर होंगे। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि रोज़मर्रा की बातचीत, सामाजिक मेलजोल और लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए लोगों को कड़वा सच का सामना करने की आदत डालनी होगी। हाँ, अगर ऐसा हो जाता ये तो होगा, कम से कम पता फायदा क्या होगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, ज्यादा ज्ञान देने वाले लोग लाइन में सबसे पीछे खड़े होंगे। सुभाष भाई कह रहे हैं, भाई जिसको भी ये झूठ पकड़ने की पावर मिलनी उसका दिल पत्थर का हो जाएगा, ठीक है, वरना ऐसी पावर ना हो तो ठीक है। सुभाष भाई आप डर क्यों रहे हैं, बताइए कौन सा झूठ पकड़ा गया। एक मैसेज आ रहा है, इवन फिनिश ऑल द एग्जाम्स, आयशा के भी भाई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, अरीना का आज बाकी है, सो ऑल द बेस्ट यू आयशा, नहीं मतलब ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। अहमद भाई ने मैसेज किया, ये सवाल तो सरवर भाई से पूछना चाहिए, मेरी बात सुनो, ये सवाल उनसे पूछ भी लेना है ना, कबीर से कहना कि उनसे कहना कबीर ने आपके सारे झूठ पकड़ लिए, एकदम झूठ का टेटुआ पकड़ लिया ऐसे पकड़ के। एक मैसेज है, प्लीज़ कॉल करिए, ओके मैं कॉल कर लेता हूँ भाजी, कोई गाल नहीं, एक सेकंड, ये मैंने घुमाया, ओके अब जा रही है कॉल सीधा अहमद भाई को। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई कहाँ हैं आप?
2: बस आपकी दुआओं में।
0: बस मेरी दुआओं में रहिए, शो में भी रहिए। कैसे हैं अहमद भाई, क्या कहाँ मसरूफियत थी?
2: नहीं, मसरूफियत नहीं, जो एग्जाम्स बच्चे बता रहे चल रहे हैं तो एग्जाम कराने वालों की थोड़ी मुसीबतें तो हो जाएंगी ना। जब बच्चे ने बताया ना आपको एग्जाम चल रहे हैं,
0: हाँ
2: तो हम लोग एग्जाम जो कराने कंडक्ट कराने वाले लोग होते थे उनके ऊपर थोड़े तो।
0: अच्छा अच्छा, ओह तो आप मास्टर जी हैं, और वो हरियाणवी में कहते हैं ना मास्टर साहब, मास्टर जी कैसे हैं आप? तो आप मतलब बेसिकली एग्जाम टाइम में आपकी ड्यूटी कैसे होती है, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ।
2: एग्जाम टाइम में ड्यूटी ऐसे हो जाती है कि क्या नाम है, काम बढ़ जाते हैं और थोड़ा मैनेजमेंट की भी चीजें हो जाती हैं, सिलेक्शन करनी है, पेपर वगैरह अरेंज करने हैं, करेक्शन करने हैं, सब चीजें हो जाती है, ज्यादा हो जाती है।
0: अच्छा, तो काफी मेहनत काम है। लोग मेरी जिंदगी में धनिया बोते थे, आज मैं बोरा हूँ,
2: गलतियाँ देखता हूँ और बच्चों की कहानियाँ देखता हूँ पेपरों में, कभी कभी इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे टीचर को कभी पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है।
0: और अब तो टीचर वैसे भी अलग किस्म की सोच रखते हैं ना ये, तो इस चक्कर में और ही पकड़े जाते हैं। पर क्या अभी भी बच्चे लिखते हैं कुछ बीच में कहानियाँ ऐसी, बीच में थोड़ी कहानियां
2: लिख देते हैं, कुछ कहानियां अलग अलग, अगर स्पेशली अगर थ्योरी के क्वेश्चन तो भरा रहे तो उनमें कई दफा कुछ बच्चे अपनी तरफ से कुछ भी बनाने की, कोई लॉ बना देंगे, कभी हमने पूछा कुछ लॉ है और वो लॉ बच्चे को नहीं पता होती है तो बच्चा इस नाम इस्तेमाल करके अपनी लॉ बना देता है। क्रिएटिविटी है माशाल्लाह,
0: न्यूटन होगा घर पे, मेरा लॉ चलेगा यहाँ पे। हाँ तो अहमद भाई क्या कहेंगे आज के सवाल पे?
2: वही बात अब वहां तक आ ही गई है कि झूठ पकड़ने की है, अब केंद्र एग्जाम में तो एक झूठ पकड़ा ही जाता है, एग्जाम में बच्चे अगर कुछ अपनी तरफ से ब्लफ करें तो हम पकड़ लेते हैं, तो एक अलग सी अपने आप में एक डिस्कम्फर्टिंग भी होती है, एक एक टाइम में लगता है यार ये अच्छी चीज है, कहते हैं ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, जा रही है, लेकिन एक अपने आप में एक डिस्गस्ट भी है और एक तकलीफ भी चीज होती है यार, बेचारा एक क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह से ऐसा हो रहा है। तो दुनिया में अगर ये क्वालिटी आ जाए किसी के पास, पहली बात अगर ये क्वालिटी आम हो जाए हर किसी के पास है तो दो बातें होंगी,
0: क्या
2: या तो दुनिया जन्नत की तरह हो जाएगी कि कोई झूठ बोलेगा ही नहीं,
0: वरना
2: या दुनिया जहन्नम हो जाएगी, इतनी लड़ाइयां होंगी।
0: हाँ वो तो है, पर ये मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑफिस प्रमाइसिस में ही होगी, फिर घर से ज्यादा
2: ऑफिस प्रमाइसेस में, बिल्कुल वही ऑफिस प्रमाइसेस, या तो 100% ईमानदार होंगे या 100% जंग होंगे, बीचे कोई ऑफिस में बचेगा नहीं,
0: या तो
2: ये चीज होगी सबको सब कुछ पता चल जाए,
0: बॉस के अलावा कोई नहीं बचेगा।

0: बॉस भी बेचारा नहीं बच पाएगा क्योंकि झूठ की सच से तो कोई नहीं बच पाता है।
1: सबसे पहले तो बॉस ही लपेट जाएगा।
0: क्योंकि वो बाकी लोगों से ज्यादा झूठ पकड़ लेता है।
1: पर वही है कि
0: ये क्वालिटी पहुंची थी है।
1: हाँ
0: डिप्लोमेटिक
1: जो बातें कर लेते हैं ना वो लोग फंसेंगे सबसे पहले।
0: वो जो लोग पॉलिटिकली मतलब कम है जो लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं हमेशा।
1: हाँ,
0: नाप तोल के जो लोग गुफ्तगू करते हैं उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइवल आसान हो जाएगा।
1: मुझे बड़ी खुशी
0: है। और जो लोग भाई बस कुछ भी है बोल रहे हैं लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा झूठ जरूरी है।
1: थोड़ा सा वो जो है ना वो
0: स्वाद अनुसार झूठ बोलना जरूरी नहीं है। झूठ जानना नहीं ना जानना जरूरी है। कुछ चीजें आप झूठी तमन्नाओं में जी लें कुछ आप झूठी दिलासा दे के भी जिंदगी गुजार लें तो गुजर जाएगी क्योंकि सारे अगर हम सारे सच पकड़ के चलेंगे तो शायद हम जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। लाइफ बहुत स्पेशली जब हम अपने ऑफिस से बाहर आ जाए खास तौर पर मैं कहूँ की रिलेशनशिप में चले जाए फैमिली में चले जाए तो फैमिली के लिए अगर जोड़ने में मुझे ऐसा लगता है अगर झूठ खत्म हो जाएगा तो फैमिली बहुत तेजी से बिखरेंगी। ऑफिस में तो कुर्सियां चलेंगी लेकिन घर में क्या चलेंगी ये नहीं पता। घर में भी तो चीजें चल रही
1: है। खिड़की के बाहर होंगे आधे लोग ड्यूटी भी कांच डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
0: हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज वगैरह है ना इससे पहले भी आपने टॉपिक लाया कि घर में कोई बड़ा हो जिसकी चलती हो तो ये ताऊ जी है चाचा मामा फूफा ये जितने भी ये सारे रिलेशन तो चल ही नहीं पाएंगे अगर झूठ सारे सबको सबके पता चल जाए। बहुत ही क्लोज और ऑनेस्टी बेस्ड रिलेशन है एक आध वही चलेंगे बाकी सारे के सारे चीजें चित्र पित्तर हो जाएंगे।
1: ये दुनिया से फुप्पो फुप्पो वगैरह इन सबसे पंगा हो जाएगा लोगों का। क्या क्या क्या
0: मैं कह रहा हूँ एक इम्पैक्ट ये होगा कि दुनिया में जॉइंट फैमिली बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
1: हाँ ये तो है ये तो है। ठीक है टीचर साहब तो अभी छुट्टी है आपकी क्या सीन है अभी
0: दोबारा
1: नहीं आपको क्या सीन है अभी छुट्टियां चालू हैं आपकी क्या सीन है मतलब एग्जाम वगैरह तो हो गए तो क्या अभी क्या
0: छुट्टी नहीं है असल में अभी हम लोग की तो अभी छुट्टियां नहीं होती।
1: हाँ
0: चलेंगे
1: अच्छा ठीक
0: है हम लोग को एक आध महीना और रहना होगा। वो करिकुलम डिफरेंट है इंडियन करिकुलम के हिसाब से नहीं है तो इसलिए हिसाब अलग रहता है।
1: ओके ठीक है अहमद भाई ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। अरे हाँ भाई आपके सर पे बहुत कुछ
0: है।
1: अरे भाई ऑल द बेस्ट भाई ऑल द बेस्ट आपको तो आप तो सब कुछ करवा रहे
0: हैं इंशाल्लाह। शाम में चला जाएगा मुझे अफसोस होगा क्योंकि शाम के टाइम में अक्सर मेरा इधर उधर होता हूँ या फैमिली होता है तो उस रेडियो में ट्यून करता नहीं
1: जैसे। चिट्ठी जरूर लिखना पीले कागज पे याद करूंगा तुम्हें अहमद
0: लिखा करूंगा मैं कोई क्या करूंगा कि शाम में भी कभी कभी ट्यूनिंग कर लूं सुबह का टाइम थोड़ा पर्सनल टाइम होता है तो उस वक्त मैं लगा लेता हूं रेडियो सुन लेता हूं
1: कोई दिक्कत नहीं भाई
0: घर में भी हूं
1: कोई मसला नहीं भाई।
0: हां शाम के टाइम मुश्किल होती
1: है कोई दिक्कत नहीं भाई
0: लेकिन फिर भी आपको हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आप फिर जल्दी तो सुबह दोबारा आइए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो तो मौसम है भाई वो बदलता ही रहेगा कोई टेंशन नहीं है।
0: मौसम है तो वक्त के साथ साथ बिल्कुल
1: बेशक
0: हमें
1: भी
0: क्या नाम है शाम की
1: क्लासेस मिल जाए आगे चल के
0: तो कुछ शाम में
1: सुनना
0: था।
1: आमीन आमीन इंशाल्लाह।
0: ठीक
1: है
0: अहमद भाई
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई और आपकी आवाज़ सुनते रहेंगे और
0: इंशाल्लाह और मॉरल्स भी लेते रहेंगे बहुत मॉरल्स
1: दूंगा भर भर के मैं टेंशन
0: मत लो। हर चेहरा और हर कहानी में एक मॉरल जरूर होता है सुनने वाले की निगाह चाहिए
1: बस वो निगाह मैं दूंगा आंख मैं दूंगा निकाल के कोई टेंशन नहीं। ठीक है भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। और अहमद भाई के बाद जो है कुछ मैसेजेस है मेरे पास क्या है गोविंदा की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी याद आ गई है ना वैसी थी वो डॉक्यूमेंट्री वसीफ भाई कह रहे हैं वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती कोर्ट में जज अकेले ही फैसला सुना देता कह रहा सब बैठो घर बैठो मैं फैसला घर से सुना दूंगा कोई टेंशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ जी
2: और कबीर भाई क्या हाल है।
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह
2: भाई बड़े खतरनाक आप हैं यार भाई
1: है ना
2: तो लोगों को बोलना सिखा रहे थे कि कैसे है? जो है बोल के आपको नौकरी मिल सकती है कौन ज्यादा बोल सकता मतलब जो है
1: हाँ।
2: बोलने वाले ज्यादा हैं कि पढ़ने वाले ज्यादा मतलब पढ़ाई करने वाले और आज ने आपने बोलते ही बंद कर दिया। अब सोचिए अगर आप आंख बंद करके इमोशनल करिए इतना खतरनाक सवाल है कि अगर सबका झूठ पकड़ा जाए
1: है ना लोग काम के थर थर कांप रहे हैं गाड़ियों में ये क्या पूछ लिया
2: भाई इतना कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा

0: इतना खतरनाक हो जाएगा क्या?
1: सवाल कर लिया है,
0: कोई
1: बहुत खतरनाक हो जाएगा भाई।
0: बहुत खतरनाक हो जाएगा ना, वही तो कहता हूँ लोगों
1: से। मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा कि जो है मतलब सच हमेशा सच ही बोलता होगा, बहुत कम ऐसे लोग हैं।
0: पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या, वो लोग जो आते हैं ना बोलते हैं जी मैं तो जी सब एकदम, मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है जो लोग ये बहुत ही ज्यादा क्लेम करते हैं ना कि मैं बहुत एकदम मतलब सच्चाती हूँ, मैं तो मतलब सिर्फ सच का साथ देता हूँ, तो उनसे मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज वो सच नहीं बोल रहे।
1: डर लगता है तो, लेकिन बात सही है भाई, आप अकेले डरिए ना, सबको क्यों डरा रहे।
0: ये बढ़िया था, ये बढ़िया था कमाल साहब, फिर अकेले डरो भाई, आप क्यों डरा रहे हो। लेकिन कमाल भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको क्या लगता है, अगर सिचुएशन घर की होती है ऑफिस की, कहाँ ज्यादा खराब होती है अगर ऐसा होता तो?
1: नहीं ऑफिस का तो भाई खाली ऑफिस तो सुना है, देखा हाँ देखा है, कभी यूज नहीं हुआ है।
0: अच्छा बच गए फिर आप, बच गए वहाँ, बच गए। अच्छा
1: लेकिन घर में भी भाई बड़े, जैसे कैसा है कि अभी सास बहू के झगड़े पकड़ लीजिए, छोड़िए छोटी बात, सास जो है हाँ बेटे को ये बोल रही है, बहू ये बोल रही है, उसी में मालूम पड़ता है कि झूठ हो गया, एक दूसरे में जो है मारी मारा और बीच में आदमी पीटा जा रहा है।
0: कमाल भाई ये तजुर्बा तो नहीं बोल रहा है,
1: लेकिन
0: तजुर्बा है क्या?
1: नहीं नहीं तजुर्बा नहीं है भाई, हमारा तो सब अलग अलग सिस्टम है।
0: अच्छा अलग अलग सिस्टम है, ओके ओके ओके ओके, पर सुना है आपने मुझे लग रहा है दोस्त से।
1: हाँ
0: ओके,
1: सुना हुआ है ना भाई, कुछ तजुर्बे भी हुए थे। मतलब कैसा है, झूठ की बात नहीं है, मतलब लगाने वाली बात तो हर जगह होती है ना, मानो भाई यहाँ के वहाँ कोई जाके बोल रहा, वो पता बाद में चलता है, बाद में चलता है तो छोड़ भाई, आदमी वो कर लेता, अगर उसी टाइम पे पता चल जाए तो सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा।
0: सब सामान पैक करके
1: लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई घर के अंदर,
0: सब सामान पैक के घर के मैं तो जा रहा हूँ चांद पे, तुम लोग देख लो क्या करना है तुम लोगों को। नहीं ये बात सच है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है कमाल भाई, आज जो है वीकेंड स्टोरी है, बहुत स्पेशल स्टोरी है, लगेगा सीधी सीधी जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर मजा आएगा आपको, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सीधी सीधी कहानी है, बट इट्स वेरी वेरी नाइस।
1: ठीक है सुनेंगे,
0: ओके मेरे भाई
1: आपके साथ है
0: इंशाल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपके साथ है,
0: सात दो बजे कुछ देर में इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद सलीम अख्तर साहब ने मैसेज किया है, फिर मैसेज आया है इश्तियाक अंसारी साहब का, दफना से कह रहे हैं सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इंसान अकेला हो जाएगा दुनिया में, अभी कोई ना कोई जाके बोला मैं तो सच ही बोलता हूँ, अजी हाँ। रमेश यादव भाई गुड मॉर्निंग, फराज भाई वालेकुम अस्सलाम, हाउ इज़ द टॉपिक बताता हूँ, फैजल भाई कह रहे हैं हाँ वो तो है, फैजल भाई मेंशन नहीं कर सकता मैं, एक मैसेज आया सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स तो होती ही नहीं। ये फसीम भाई क्या करे, सेल्स और मार्केटिंग का तो मामला ही खत्म हो जाता, क्योंकि लोग एक सच और 10 झूठ बनाकर बेचते हैं। ये और कमाल की बात क्या है, सामने वाला जो खरीद रहा है उसको भी पता है कि मुझे बनाया जा रहा है, पर एक अलग समझ आ रहा है उसको, और फिर बाद में बोलेगा अरे वो बना के चला गया यार, बहुत शातिर आदमी था वो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: आप आपकी बात नहीं हो रही थी पर आपके लिए बात बहुत जरूरी है, ये
2: तुम जीने नहीं दोगे हैं।
0: वो कोई ऐसी कोई मूवी है, जीने नहीं दूंगा मूवी का नाम भी था ना, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मुझे बताएं आप तला भाई, और आज जो है ये
2: आप
0: मेरा छोड़िए, नहीं देखिए जज साहब बहस हो जाएगी, इसको रोक लीजिए, अभी बता रहा हूँ मैं, तला बता रहा हूँ पहले
2: जोली।
0: तो तला भाई बताइए जरा कि अगर आपकी लाइफ में स्पेशली अगर आपके पास ये पावर होती सबके झूठ सुन लेने की, समझ लेने की, सारे झूठ पकड़ लेने की, तो आपकी जिंदगी आसान होती या फिर बहुत मुश्किलों में आ जाते आप?
2: नरक हो जाती।
0: आपको मतलब लगता है कि लोग जो है झूठ बोल रहे होते हैं आपसे?
2: ओ लगता है, अबे पता है भाई, लेकिन ये नहीं पता कौन सा वाला जो सच है कौन सा वाला झूठ है, ये नहीं पता, ये पकड़ना।
0: अच्छा इस कंफ्यूजन में खुश हैं आप, ये कंफ्यूजन भी ठीक है, कौन सा दिमाग लगा
2: है? सही है भाई, तू बोल रहा है, तू जाने तेरा बनाने वाला जाने।
0: हाँ
2: बोले बोले
0: जब तक आँच मुझ पे नहीं आ रही है तब तक मैं एकदम सुखी हूँ। मैं समझ गया,
2: वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे लोगों को फायदा
0: पहुँचे। ओए होए होए, ये जो आपने डायलॉग मारा ना, वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे लोगों को क्या पहुँचे, जो भी है
2: फायदा
0: सॉरी टेक टू एक्शन। तो तला भाई
2: अभी तो हमारा डायलॉग मार दिया
0: एंग्री यंग मैन, तो तला भाई क्या सीन रहेगा?
2: ये वाला पावर जो है ना मेरी जान, ये वाला पावर बहुत सोने मिलना चाहिए।
0: बॉस को नहीं
2: मिलना, नौकरी के लाले पड़ जाएंगे।
0: सब
2: खुदा की वो अगले सेकंड बर्दाश्त ना करे, हो गया तू निकल, तू मुल्क से निकल, तू नौकरी से छोड़, तू मुल्क से निकल।
0: पर कम से कम वो जो चमचे हैं वो तो दूर रहेंगे ना, ये भी तो फायदा है
2: यार। चमचों का क्या है यार, चमचों का काम है वो करने दो,
0: अपना काम होने दो। तो तला भाई क्या सीन है, अभी बकरा ईद का जानवर यहीं पे ज़बह हो रहा है या फिर पाकिस्तान में क्या सीन है?
2: भाई यही करेंगे इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो हो गया, अभी जानवर देखने चले गए, हो गया इंतजाम।
2: हाँ कर रहा हूँ मैं बात,
0: कर रहा हूँ मैं बात बकरे से। अच्छा बकरे से बात हो गई आपकी?
2: हाँ कर ही तो रहा हूँ बात।
0: उसको पसंद आया आप?
2: नहीं उसको मैं कहाँ पसंद।
0: तला बाय।
2: ये बात ब्रिटेन है भाई, आप मैं ब्रिटेन।
0: मैं तो आप
2: होता ना अंदर से, आप ना होना बकरा पैदा था, आप वो इंसान।
0: आप ऊंट देखें, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। मुझे अब मुझे आप बख्श दे प्लीज।
2: लेकिन बस वही है डाउटफुल में कि होगी कबूल है नहीं, ये तो
0: एकदम बढ़िया दांत का है, बढ़िया दांत का हो रहा बकरा एकदम कतई। अच्छा अरे नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं,
2: ये सरवर भाई के मैं ना, मेरा नहीं।
0: अब नहीं छोड़ूंगा मैं, अब आज झगड़ा है भाई हमारे ऑफिस में पेड़ के नीचे, बढ़िया एकदम।
2: एंथनी का बयान है,
0: एंथनी का बयान है। सुनिए आरजे एंथनी और आरजे नासिया को आज उनका बम्पर बना के चलाऊंगा मैं। ये आपने जो जो आपने जो एक की दो लगाई है, आज सरोवर भाई को भुगतना पड़ेगा आपकी वजह से।
2: यार मजा आ गया तू भी तो भाई,
0: है ना? ये जो आपने आग लगाई है बहुत दूर तक जाएगी इंशाल्लाह, देखिए आप।
2: आमीन।
0: ठीक है तला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो तला भाई के बाद जो है एक मैसेज आ रहा है। एक दिन हुआ भाई मुझे मेरे बॉस ने पूछ लिया, तुम स्मोक करते हो? मैंने सामने मुंह पर मना कर दिया, नहीं सर मैं नहीं करता। तो फिर वो कहने लगा तुम्हारे जेब से लाइटर निकल के गिरने वाला है। उस दिन गजब बेइज्जती महसूस हुई। सुभाष कह रहे, सुभाष लाइटर गिरा बेटा, क्या जलाते हो इससे पर्दे? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: नदीम भाई कैसे है मेरा भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी। नदीम भाई क्या, अगर आप सबके झूठ पकड़ लेते नदीम भाई कोई फर्क पड़ता आपको?
3: यार देखो मतलब आप कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। अब कुछ सच भी बोल रहा है ना तो हम ऐसे के साला सोच सोच के यार इसने झूठ तो नहीं बोला या कुछ गलत तो नहीं बोला, तो वो अगर पता हो जाता तो फिर तो और पागल ही हो जाते, मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता सोच सोच के। तो यार ये बंदा भी झूठ बोल रहा है।
0: हाँ ये पता नहीं होता ना शुरुआत में कि वैसे जितने ज्यादा लोग होते हैं जिनके ग्रुप होगा ना बहुत बड़ा, उनको तो बहुत मेजर परेशानी होगी सबके सब कुछ ना कुछ बोल।
3: और वो कुछ कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग में भी एक चीज के अंदर अपन तीन चार चीजें सोचते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है, चलो सही भी हो सकता है, लेकिन फिर जब पता हो जाता तो फिर तो।
0: पर आपको नहीं लगता ओवर थिंकिंग वालों को आसानी हो जाती है, कम से कम एक दिल की संतुष्टि हो जाती है कि चलो ठीक है भाई बात ये है।
3: फिर वो ओवर थिंकिंग वाले तो अपना निकाल लेते ना, वो कहीं से फिर दूसरी थिंकिंग में चले जाते हैं।
0: हाँ ये भी है, ये भी है। पर आपके लिए जिंदगी आसान होती है अगर आप सबका झूठ पकड़ लेते या फिर?
3: मेरे को लगता है कि देखिए थोड़ा मैं ये थोड़ी सीरियस वाली बात हो जाएगी तो मैं करता नहीं हूँ।
0: नहीं नहीं बता दो।
3: लेकिन अल्लाह पाक ने अगर झूठों पे पर्दा डाला है लोगों के तो इसी वजह से डाला है कि भाई उससे प्रॉब्लम होगी।
0: हाँ ये देखो ये कितनी प्यारी बात कही आपने, देखो सीरियस बात करो तो ऐसी तुक्की करो, ये है तुक वाली बात। करेक्ट।
3: तो अगर वो हो जाता तो फिर वो अपने को वो बनना पड़ता कि वो पीके का आमिर खान, अरे कौन फिरकी ले रहा है, तो रॉन्ग नंबर है।
0: और बहुत सारे रॉन्ग नंबर लगते हैं, बहुत सारे रॉन्ग नंबर लगते हैं। पर
3: लेकिन ये एक चीज तो हो जाती कि मतलब अगर अभी आपका सवाल ये है ना कि जनरल पब्लिक नहीं है कि आपके पास पावर होती है, अब लोग सब जवाब दे रहे जनरल पब्लिक पे, तो अगर जनरल पब्लिक पे ऐसा होता ना तो ये रिलीजन में बहुत इश्यू आते लोगों के।
0: करेक्ट करेक्ट,
3: बहुत ज्यादा इश्यू आते, मतलब जितने भी जो बिजनेस चल रहे थे सारे खत्म हो जाते थे।
0: सारे के सारे बाबा पहाड़ से तोड़ के नीचे आ रहे हैं, उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। करेक्ट ये, और मुझे लगता है ऑफिस में सबसे ज्यादा पंगेबाजी होती क्योंकि वहाँ पे तो अलग ही सिचुएशन हो जाती
3: है। ऑफिस में तो ऑफिस में ऐसे ही होती है, छूट के बाद तो बहुत ज्यादा हो जाता फिर कुछ ना कुछ।
0: तो वैसे अभी क्या चला नदीम भाई, अभी ईद की तैयारी चली जोरों शोरों से, क्या माहौल है?
3: बस अभी कल गए थे हमारे साढ़ू भाई, गए थे देवनार वहाँ पे इंडिया में।
0: अच्छा,
3: तो मैंने बोला ना देखने भाई, वहाँ तो मार्केट आसमान में है, अभी
0: आसमान में चल रही है, बहुत महंगे होंगे वहाँ तो,
3: बहुत महंगे बहुत महंगे।
0: दे दे दे।
3: और
0: हाँ।
3: जो बकरा है एक टाइम पे मतलब आप समझ लो बजट में आता था, वो डबल प्राइस में आ रहा है अभी।
0: हाँ वो तो रहेगा मेरे भाई।
3: अरे पब्लिक पागल हो गई है भाई,
0: क्या
3: मतलब
0: हो गया?
3: मैं वीडियो देख रहा हूँ, रील देख रहा हूँ भाई, एक बंदा वो रहते हैं ना बकरे जिस पे कुछ लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा इस्लामिक बना लेते हैं, टैटू है ये है वो, भाई 1 करोड़ का बोल रहा है भाई एक बकरा।
0: 1 करोड़ का?
3: हाँ 1 करोड़ का बोल रहा है वो बकरा, पूरा बकायदा रील बनाई है लॉगर ने उसकी।
0: मैं यकीन दिला रहा हूँ कोई ना कोई उसे खरीद लेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ ऐसा भी होगा।
3: ऐसे पागल हो गए, 1 करोड़ का बकरा भाई।
0: नहीं आपको पता नहीं, बहुत सारे लोग जो सुन रहे उन्हें याद होगा, एक टाइम होता था स्पेशली इन इंडिया अखबारों में आता था, किसी ने अगर कोई महंगा खरीदा होता था ना तो उसका पूरा शो ऑफ अखबार में आता था। अभी भी आता
3: है कबीर भाई, अभी भी बंदे और बंदे भी है अभी बकायदा, अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है, अखबार में नहीं आ रहा है।
0: हाँ।
3: लेकिन अभी वो भाई, अभी मैं एक दिन पहले वीडियो देख रहा था, मुंबई में आया है वो, लंदन से आया है, उन्होंने 3 बकरे लिए भाई, एक 213 किलो का, एक 192 केजी का है, और एक 23
0: केजी का है। कितना
3: केजी का? 123 बरबरा छोटा वाला वाइट।
0: अच्छा ओके,
3: तो मतलब घर के पले हुए, लेकिन आप सोचो वो उन लोग ने प्राइस तो नहीं बताया, बट 203 किलो, 192 किलो, और छोटा वाला बकरा 120-122 किलो।
0: भाई साहब
3: वो 3 बकरे उन्होंने लिया।
0: अल्लाह,
3: तो अभी भी है वो वहाँ पे, पालने के शौकीन बहुत है,
0: पर शो ऑफ की शौकीन भी तो है ना हमारे यहाँ, वही तो परेशानी है।
3: वो फिर वो होता है ना कि भाई बिल्डिंग में सबसे ऊंचा बकरा, सबसे महंगा बकरा मेरा होना चाहिए, वो वाला।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है नदीमा, बताइएगा आगे क्या सीन है, और मिलते हैं इंशाल्लाह, इससे पहले पहले मिलते हैं
3: इंशाल्लाह।
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नदीम भाई के बाद अगले कॉल लड़ाई जाएगी। एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: मेरा नाम फैजान भाई, कैसे हैं
4: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब, आज क्या क्या आप करने जा रहे हैं दुनिया में, क्या चीज फतेह करने के लिए पहुंच रहे हैं, किधर जा रहे हैं?
4: जी फतेह तो नहीं करनी को, आज वैसे भी जुमेरात है,
0: आज मन नहीं है, आज मन नहीं है।
4: जी जी जी।
0: अच्छा तो फैजान भाई, अगर आपसे पर्सनली पूछूंगा, आप सबके झूठ पकड़ सकते मेरा भाई, तो क्या रहता मेरे भाई, आसानी रहती?
4: मैं अभी भी झूठ जो है वो पकड़ लेता हूँ लोगों के, लेकिन ना तकलीफ होती है काफी ज्यादा जब आप अपने खूनी रिश्तों को देखते हैं कि आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, और अपने दोस्तों को, अहबाब को, कोलीग्स को, तो आपको ना कहीं ये होता है यार मैं इनके लिए इतना करता हूँ और ये मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं कभी भी किसी का झूठ ना पकड़ूं, क्योंकि इंसान हो खुदा नहीं जो देखता रहे और आपकी जो कोताही है उनको माफ करता है।
0: जब पकड़ लेते हैं झूठ को, तो आप क्या कन्फ्रंट करते हैं, तब पहुंच जाते हैं बताने के लिए, या फिर आप थोड़ा गेम खेलते हैं, देखेंगे और कितना जाता है झूठ लंबा?
4: नहीं बस पता चल जाता है, मैं कह देता हूँ यार आपने झूठ बोला
0: है, और कन्फर्म करने
4: के बाद, और उसके बाद जो है वो फिर यही है कि भाई बंदा जो है वो दिल से उतर जाता है। तो एक शेर आ रहा है ज़हन में।
0: अरे रे प्लीज प्लीज, और भेज दिया करें, लोग कहते हैं फैजान भाई का शेर कहाँ है, फैजान भाई शेर और बिल्ली दोनों लेके चले जाते हैं, फैजान भाई बताइए। इरशाद
4: मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है?
0: हाँ बताइए बताइए।
4: आंखें झूठ, नजारा झूठ, यानी जो है तुम्हारा सारा झूठ, चलो आज फिर से कहो मुझे अपना, बोलो आज दोबारा झूठ।
0: उफ उफ, ट्रिगर कर रहे हैं आप वीकेंड पे, अच्छे खासे ऐसे लोग बैठे हो कि वो कह रहे हैं मैं अच्छा खासा सुकून में था, इस आदमी ने ऐसा शेर सुना दिया है कि वीकेंड भी मुझे संडे लग रहा है। नहीं सही है सही है, पर ये मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि आ गए हैं मेरे पास एक दो मैसेजेस।
4: तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूं, ठीक है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर साहब सब सेट है? बढ़िया सुदीप, तो सर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? हाय और अफसर बहन, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग रियली रियली गुड। आप कैसी हैं बहन? एक मैसेज और आया है ये अलवखरा से, वालेकुम अस्सलाम तौफीक साहब, खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। एंड देन कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर झूठ पकड़ने की पावर आ गई तो रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, लोगों की शादियां एक हफ्ते भी नहीं चलेंगी। पुलिस के पास इतनी पावर हो जाएगी कि अदालत जाने की नौबत ही नहीं आएगी, फैसला ऑन द स्पॉट। और अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो वो भी बंद हो जाएगा, भला तो बिल्कुल ही चला जाएगा। और गुलरेज भाई आगे लिखते हैं, और भाई आपको सुबह सुनने की आदत पड़ गई है, ये जो यूनिक टॉपिक रोज़ लाते हैं ये कौन सुनाएगा? मैं तो फर्स्ट टाइम लिसनर हूँ रेडियो पर, शाम को तो शायद कैच करना मुश्किल होगा मेरा भाई। दैट इज़ अ स्वीट ऑफ यू, मतलब आई नो आपने पहले ही बोला था कि आप मेरी वजह से सुबह आते भी सुनते भी हैं, पर दीजिएगा दूसरों को भी मौका। देर रियली रियली गुड। एंड गुलरेज भाई आपकी मोहब्बत है, आपने इतनी मोहब्बत के साथ इतना लंबा मैसेज भी किया, इतने प्यार से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एंड कभी मौका लगे सुबह शाम तो चलता रहता है FM 107 पे, कोई ऐसी कोई लोड नहीं लेनी है गुलरेज भाई, आते रहेंगे वो तो, कोई टेंशन नहीं है। एक मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह बॉट फॉर कुर्बानी, वालेकुम अस्सलाम। अरे बहुत खूबसूरत बकरा लिया ये तो, तौकीर अहमद भट्ट साहब माशाल्लाह, कतई हैंडसम लग रहा है भाई ये तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। एंड देन कह रहे हैं अहमद भाई, 1 करोड़ का बकरा खरीदने वाला खुद किसी ऊंट से कम नहीं होगा। मैं ऊंट हूँ और मुझे 1 करोड़ का बकरा दे दूँ। फैसल भाई कह रहे हैं क्या है भाई, बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन जिसको झूठ पकड़ने की पावर मिलेगी उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि वो सबके झूठ पकड़ लेगा तो वो अकेला रह जाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि सब उससे दूर रहेंगे। बात में दम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे? मैं बढ़िया भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? इब्राहिम भाई का मैसेज है, इब्राहिम के बाद मैसेज क्या समय मैंने समय भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कुछ उन्होंने कहा भी है, एक सेकंड, क्या लिखा है? कबीर भाई शाम को जाओगे तो फिर आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा, मैं शाम में सो रहा होता हूँ तो ख्वाब देखिएगा कि आप मेरे शो में हैं। आई एम सैड कि इतने सारे लोग जो सुबह जुड़े थे उनको मैं थोड़ा सा लूज़ करने वाला हूँ, बट ये जो हमने बनाया है इंशाल्लाह वापस सुबह आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं वीर जी। अस्सलाम वालेकुम, एक मैसेज आया कबीर भाई, फैज़ान भाई का शेर भेज देना, स्टेटस पे लगाना। ये किसको दिखाना है, किसको दिखाना है ये मुझे बताओ, किसको? मुझे पता है ये जो सिग्नल दिया जाता है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। लो मैं भेज देता हूँ, ये जिसके भी लिए है लगा दो, क्योंकि कई लोग जो है खामखा भी लगाते हैं पर किसी का मकसद भी होता है। इरफान अली भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, फैज़ान भाई पोइट्री शेयर नहीं की, कल वाली तो फैज़ान भाई की मुझे मेरे पास भी नहीं, आज वाली है, चाहिए तो ले लूँ। क्या लिखा है, जब अल्लाह ने उनको हाइड कर रखा हो किसी वजह से, जब मुझे पता चल जाएगा अगला बंदा झूठ बोल रहा है तो दूसरा दूर हो जाता है। इरफान भाई ने मैसेज किया है, बाकायदा प्राइसिंग व्राइसिंग लगा के बकरे की, किसका वीडियो है भाई? बात हो गई। एक मैसेज है सुदीप्त सर का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, झूठ पे हमारा मेंटर की एक याद आ रही है, ही यूज्ड टू से इफ़ यू ब्लफ ब्लफ कंसिस्टेंटली, इसलिए कोई अगर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये पता है एक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आपके तो घर में माशाल्लाह आपकी साहबजादी है ना क्रिमिनल साइकोलॉजी में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली सुदीप्त सर, तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ जर्नलिज्म पढ़ाई गई थी, और उसमें भी यही था, उसमें एग्जैक्टली यही था, जो मेनली जो जो जो कॉन्विक्ट्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं, दे ब्लफ एंड दे ब्लफ कंसिस्टेंटली, और जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे पकड़ के मज़े लेते हैं कि कहाँ तक जाएगा इसका झूठ और क्या बोलेगा ये, एक बार जब फंसेगा तो बहुत गंदा फंसेगा। वैसे टाइमिंग क्या है शाम की? समय भाई शाम की टाइमिंग होगी 5 बजे से 7 बजे के बीच में। क्या आपकी बहन की कॉल नहीं आई अभी तक? मतलब मैं कॉल करूं, मतलब कॉल मैं समझा नहीं, प्लीज़ क्लेरिफाई दिस। एक है गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, और ये मैसेज किया है अमरनाथ जी ने, एंड देन एक तो अरिजीत सिंह आपने गाना सुना कि गम में डाल देते हैं, ऊपर से फैज़ान गम में डाल रहे हैं। अरिजीत सिंह और फैज़ान भाई ये दो लोग बहुत टेंशन दे रहे हैं आशिकों को, बहुत टेंशन दे रखी है इन्होंने। ये आदमी शेर सुना देता है, उधर से अरिजीत का गाना चल जाता है, बताइए अच्छी बात थोड़ी है। एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर झूठ पकड़ने की ताकत होती तो मज़ा आता, मैनेजर और एचआर झूठ बोलते तो पकड़ने मज़ा आ जाएगा, भरे बैठे हैं भाई अपनी, छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं, कामरान भाई, एचआर कैसे हैं आपके? एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो समझ गया अफसर बहन, अब मैं समझा। सॉरी सॉरी, मैं लेट समझा लेकिन अब समझ गया अफसर बहन। ओके नाउ आई गॉट इट। क्या हो गया मुझे? सुबह सुबह बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब मुझे क्लियर हुआ कि आपके कहने का मतलब क्या था। अब मैं हंस सकता हूं। शुक्र है बहन, शुक्र है, शुक्र कहिए। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वरद भाई। कहना अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार। और फैसल भाई ने मैसेज क्या कह रहा है, भाई मैंने आपको शाम को भी सुनूंगा क्योंकि मेरी एक शिफ्ट 4:30 से स्टार्ट होकर 7:30 बजे तक होती है। मेरा भाई फैसल भाई, सलाम भाई को। समीर भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, समीर भाई को सलाम, गुड मॉर्निंग। एंड देन एक मैसेज आया फैसल हेयर, गुड मॉर्निंग फैसल भाई। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कई कल की स्टोरी सेंड करने के लिए शुक्रिया, अभी आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है ये, खाने से पहले और खाने के बाद मुझे सुना करें, बहुत बढ़िया रहता है सेहत के लिए। एक मैसेज है, भाई ने वीडियो भेजा है, कबीर भाई मैं आपके लिए कुछ भेज रहा हूँ, रात इंदौरी साहब को भेजा आपने, अभी सुनता हूँ मैं। और एक और भाई है, सलाम कबीर भाई, गुड मॉर्निंग भाई। आपने अपने व्हाट्सएप पे अजनबी क्यों लगा रखा है मुझे पहले तो ये बताओ, ये व्हाट्सएप पे नाम कम से कम असली लिख लिया करो, ये मेरी गुजारिश है, है? थोड़ा जिंगल विंगल चला लिया जाए। रुको भाई, ये किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा जिंगल। हैप्पी वीकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये चलाना था मैंने, क्या चला दिया, ये रहा, सॉरी मिस्टेक।

0: FM 107. Time check.
1: सात दो और आप सात दो. अस्सलाम वालेकुम. मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पर सात लो. फरत भाई कह रहा अलग राइम कह रहा है सात लो. पता मेरा बहुत मन है मैं आपको जो सामने शाम के प्रोमो के लिए जो रैप तैयार किया है काश मैं आपको अभी सुना सकता. आई सुनाऊंगा एक दो दिन में. बट भाई क्या बनाया बढ़िया वाला एकदम कैंट आपको मौज आ जाएगी मौज. तो सात दो और आप भी मेरे साथ देते रहेंगे जिस तरह दे रहे हैं. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते लेकिन जिनके पैर होते हैं वो कौन सा सच्चे हैं. अरे मेरा भाई बहुत डेंजर था ये तो. ये आपने गीला रुमाल करके जो चट करके आवाज़ आती है ना वो किया है. आपका नाम नहीं पता मुझे पर नाम बता दीजिएगा. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई ये इसका रिप्लाई मैं अलग से देता हूँ. नौमी भाई एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई आजकल के दौर में तो जितना झूठ चलता है तो पावर की ज़रूरत ही नहीं लेकिन अगर ये पावर होती तो सामने वाला है सामने वाला पूछता कि भाई हंस क्यों रहा है हम तो मज़े लेते. आतिफ भाई कह रहे हैं मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई झूठ पर झूठ पकड़ता. आतिफ भाई लेकिन कुछ झूठ बर्दाश्त नहीं हो पाते आपसे. या भाई कह रहे हैं भाई हमसे तो नहीं पकड़ा जाता झूठ और अगर झूठ पकड़ा जाता तो लॉयर और सेल्स वाले अनएम्प्लॉयड हो जाते. सेल्स वालों के पीछे पड़ गए सबके सब. एक मैसेज आया है हाँ बहुत सही पकड़े हैं आप ये फैसल भाई आप भी समझ गए हफ्सा बहन जो आपने लिखा वो फैसल भाई समझ गए. ये अंडरटोन बात हो रही है. फरहत भाई वालेकुम अस्सलाम. फरहत भाई के बाद एक मैसेज किया है ये अमन भाई ने. अमन भाई कैसे हैं पहुंच गए लगता है ऑफिस में और एक भाई ने मैसेज करके डिलीट कर दिया. ये लुका छिपी का खेल मेरे से मत खेला करो. पठान भाई अच्छा कल आपको याद है कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया था और वो स्किन रूटीन की बात कर रहे थे. वो भाई थे भाई बहन नहीं थी. मुझे लगा शायद कोई बहन है जो कोरियन मेकअप डिस्कस कर रही है मुझसे बट मुझे पता लगा वो कोई भाई है. मुझसे पूछ रहा कि भाई चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते

0: कह रहे हैं मैं भी झूठ पकड़ता हूँ बहुत, मैंने लिखा था कॉल मी, अभी ऑफिस आ गया। कॉल मी किधर लिखा था आपने? किधर लिखा था? किधर भाई, कहीं लिखा आपने कॉल मी? अमन भाई भी खाम गए अपनी धुन में। एक मैसेज आया, अगर सब सच्चे हैं तो झूठ कौन बोल रहा है? समीर पता लगाओ, मेरे मुंह क्यों देख रहे हो, पता लगाओ समीर। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, सच में मुझे भी जानना है कि स्किन रूटीन वाले लड़के कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, आई डोंट नो। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी झूठ पकड़े हैं बहुत जिंदगी के साथ। क्या है, एक सेकंड, बहुत सीरियस मैटर हो गया, मैं म्यूज़िक चला रहा हूँ बैकग्राउंड में, क्लब वाला म्यूज़िक बंद करके पढ़ता हूँ, सीरियस मैटर है। हाँ अमन भाई क्या कह रहे हैं, मैंने भी झूठ पकड़े हैं बहुत, लेकिन जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए झूठ बोला उनको मैंने ब्लॉक कर दिया फॉर एवर, लेकिन जो नॉर्मल इनोसेंट झूठ बोलते हैं उनको माफ़ करके आगे निकल जाता हूँ। अच्छा, इतना भी मामला सीरियस नहीं था, इतना मैंने ले लिया। ओके okay. एक मैसेज है, कबीर भाई आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूलूंगा ये मोमेंट। अब्दुल समद, अरे अब्दुल समद भाई मैं भी क्यों भूलूंगा, जस्ट बिकॉज फोटो आपके पास है इसका मतलब थोड़ी भूल गया। हम लोग वर्ल्ड कप के दौरान कतारा में मिले थे तो उन्होंने फोटो शेयर किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। पतला था यार मैं उस टाइम पे। एक मैसेज है भाई, साबुन तो मैं हफ्तों से साबुन से ही खुरच के नहा रहा हूँ, ये कौन से लोग हैं जो मर्द जात को अपग्रेड कर रहे हैं? अनीस भाई जामिया से। अनीस भाई पता नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होती थी कि वो ट्रांसपेरेंट साबुन आता था ना, अरे भाई उससे नहाएंगे बढ़िया करके। पर स्किन रूटीन तक बात आ रही है। जेंजीज, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, जितने भी जेंजीज मुझे सुन रहे हैं, बट प्लीज़ बेटे ये चेहरे पे लीपअप होती मत करो। स्किन रूटीन, लड़कों का स्किन रूटीन भी होता है। मुझे क्यों अपग्रेड होने के लिए मजबूर करो, मैं नहीं होऊंगा। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई,
1: भाई
0: भाई
1: सवाल
0: सुन लिया
1: मैंने, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी रूटीन।
0: हाँ भाई बताइए यार, विमलेश भाई पूछ रहे हैं मुझे स्किन रूटीन क्या है।
1: ये जो अपनी लाइफ की जो रूटीन है वो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, कब उठना है। रोज सोचता हूँ 4:30 बजे उठूंगा, उठता 5:30 से 6 के बीच में ही हूँ, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। और ये स्किन रूटीन देखो, कभी कभी बार अपना मोबाइल में देख के लग जाता कि कर लेना चाहिए, ऐसा लगता है, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। और जो वाइफ की जो ड्रेसिंग टेबल पे जो 2-4 क्रीमें देख के स्पेंड तो समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ लगा,
0: कैसे लगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
1: तो कहीं कहीं मैंने पढ़ा था ना कि कहीं ऐसे रैंडमली, जैसे एक कोरियन वाला कुछ तो चल रहा था, ऐसे रील ऐसे करते हैं, चावल का पानी लगा लो। अब ये नहीं पता था कि कौन से चावल का पानी, हमने खाते हैं चावल में पानी, चावल लगा लेते हैं ज्यादा हो गया देख ले सच्चा मुंह जल गया भाई, कसम से बता रहा हूँ। पता चला छान वान के फ्रिज में रख के करना होता है, हमने बोला यार अपना वाला ही कॉन्सेप्ट सही है कि शैम्पू बहुत बढ़िया क्वालिटी का हमारी वाइफ लाती है, कसम से बता रहा हूँ मेरे लिए भी, ठीक है। शैम्पू लगाते लगाते साबुन बहुत ज्यादा हो जाता है, बाद में बॉडी पूरे पे लगा ले।
0: वो है ना, वो क्या कहते हैं, बस मैक्सिमम आंखों पे खीरा रख लिया सलाद खाते खाते,
1: वो मैं खा जाऊंगा यार। सुनो हमको ये लगता है इस कबीर की, मतलब जो शैम्पू बालों की इतनी अच्छी रक्षा कर सकता है आपकी, स्किन की तो कर ही लेगा, मैं वही लग रहा
0: हूँ। करेक्ट करेक्ट
1: है ना, ये सब सोच ले भाई, मुझे नहीं समझ आता कि गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग साबुन,
0: ये
1: हमसे,
0: हाँ हमसे क्या, हेलो
1: कुछ कह रहे थे तुम?
0: नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ हमसे क्या, कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ क्या कह रहे थे?
1: नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाता भाई।
0: वो मेरे पीछे पड़ गया, बताओ कौन सा कोरियन, मैंने कहा भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, कोरियन ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो अब बताइए क्या कह रहे थे।
1: और मैं कह रहा हूँ अगर लोग कर रहे हैं भाई, मुझे कोई वो नहीं है, सैल्यूट है भाई, आप बहुत महान हो, आपको
0: हम तमगाए
1: मेकअप दिलवाएंगे,
0: तमगाए मेकअप, अरे भाई साहब प्लीज फॉलो करें जो आप कर रहे हैं, मैं डिप्लोमेटिक होकर बोल रहा हूँ, बट सलाम है भाई, टाइम चाहिए भाई इन चीजों के लिए, टाइम चाहिए। हाँ ओके,
1: दूसरा चीज जो झूठ बोल रहा, मैं झूठ पकड़ लेता हूँ, और ये छोटे मोटे झूठ होते हैं ना कि मतलब जैसे मैं भी बोलता यार, हर कोई, तुम भी बोलते हो, रिश्वत बचाने वाले छोटे मोटे, वाइफ ने कहा कि तुम

0: मैंने तुमको बोला था सब्जी लाने के लिए, नहीं नहीं नहीं बोला था, नहीं बोला था ऐसे कुछ। हाँ तो वो भी पकड़ लेती है, मैं भी कई बार छोटी मोटी, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे झूठ होते हैं तो आपकी जिंदगी का मतलब सत्यानाश कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसी कर सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। फिर मैं उनको अपनी जिंदगी से ना डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एंड डिलीट,
1: ये सबसे सबसे बढ़िया।
0: हाँ बिल्कुल। तो आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, बस इतना कहना आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको ये सब कोर्ट पढ़ के मत आइए कि मौका दीजिए, ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब थ्योरी में अच्छा लगता है, कोर्ट में अच्छा लगता है कि उसकी चाणक्य की फोटो लगा के नीचे लिख दिया ऐसे लोगों को ना।
1: कानून की किताबें
0: वो जज है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जज है, क्या क्या फाड़ेगा पता भी नहीं चलेगा।
1: कहानी नहीं
0: कह रहे की मैं माफ कर देता हूँ, आप महान है, आपको मैं फिर वही क्या बोले परमवीर चक्र दिलवाऊंगा मैं आपको अलग से,
1: रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार।
0: बिल्कुल भाई, मुझसे नहीं होता ये, माफ कर दे, नहीं कर सकता भाई।
1: मैं आपके साथ हूँ विलेश भाई, मैं आपके साथ गाड़ी में मौजूद इस टाइम पे, हाई फाइव मेरे भाई, हाई फाइव।
0: आज मेरे दिल की बहुत अच्छी भरात निकली, बहुत अच्छा लगा भाई,
1: वेरी नाइस, फीलिंग लाइट, फीलिंग लाइट। हां बोलो,
0: एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं।
1: हां
0: ये मेरे इस महीने की आखिरी डे शिफ्ट है, तो अब जो है वो अगर तुम इवनिंग शिफ्ट में गए तो मुलाकात होगी।
1: अरे मेरा भाई, ये तो साथ में चेंज हो रही है शिफ्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
0: है ना, तो मिलेंगे इवनिंग शिफ्ट में।
1: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विलेश भाई, बहुत प्यार, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और विमलेश भाई के बाद जल्दी से कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ। गुड मॉर्निंग जानी, स्किन रूटीन वाले लड़के मैसेज मचा सेंटर पर काम, अरे नहीं वो मुझे सच में मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे मेरी बात सुनो। एक मैसेज है, कॉल आ रही है, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। अरे फवाद बच्चे, क्या हाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई आप तो चलने लगे।
2: बिल्कुल ठीक है आप सब। ये भाई साहब किसको मार रहे थे इससे पहले?
1: बहुत सारा था, विमलेश भाई को बता रहा हूँ, और आपके एरिया में रहते हैं, विमलेश भाई को दे दूँ आपका एड्रेस, आ जाएंगे वो 6 फीट के।
2: बिल्कुल दे दे, 100 बिस्मिल्लाह मिलके मारेंगे हम दोनों।
1: तो फवाद भाई, पहला सवाल तो यही है कि अगर आप सबके झूठ पकड़ सकते हैं, सबके सारे के सारे, तो आपकी जिंदगी आसान होती, या आपको लगता है भाई थोड़े पंगे हो जाते, अच्छा नहीं लगता?
2: पंगे
1: खतरनाक पॉज लिया ना 2-3 सेकंड का, उसमें एकदम से मशीन क्रिश्चियन
2: काम में इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो हम कितने चीजों की इंक्वायरी करते है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है हर चीज की, सबको बुला के इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। 100 चोरियां पकड़ी जाती है, लेकिन लोगों की नौकरियां बचाने के लिए हम उनको बस कहते हैं, बस नहीं पता हमें।
1: तो आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहती है, मतलब सबके झूठ अगर आप पकड़ सकते हैं सही रहता, मतलब या
2: मैं रोकते नहीं करना चाहता
1: क्या
2: आपके साथ, जो अच्छा है अच्छा रहे, जो नहीं अच्छा उसको बाहर जाने दे।
1: हाँ तो फिल्टर इस तरह तो फिल्टर लग जाता ना आपके लिए, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है।
2: तो यही है, आजकल जो अच्छा रहता है उसे अच्छा रहना चाहिए, जो आपके साथ अच्छा नहीं है वो नहीं अच्छा। खुशी के टाइम पे सारे सच्चे रहते हैं,
1: बुरा वक्त बड़ा बड़े बड़ी बढ़िया चीज देके जाता है भाई साहब, बहुत सही चीज देके जाता है।
2: अच्छे वक्त सारे नाचेंगे आपके साथ, बड़े वक्त बता लेगा कौन आपके साथ है।
1: वो जो नाच रहा था वो कहाँ गया? रिकॉर्डेड लाइन पर है, मैं भाभी को बताऊं अगर आप बुरा ना माने तो।
2: छुट्टी आ रही है 7-8 दिन
1: की
2: सर, प्लीज खुदा का
1: छुट्टी के बाद
2: इंशाल्लाह।
1: ठीक है ठीक
2: है, बकरा ईद की छुट्टियों में है कि नहीं है?
1: बकरीद पे शो है मेरे भाई शाम को, छुट्टी वाली बात आरजे से नहीं करनी चाहिए, किसी भी आरजे छुट्टी वाली बात कोई नहीं करेगा।
2: फौज
1: भाई
2: आपकी सिफारिश कर रहा हूं
1: मैं, सर मैं दौड़ाता ज्यादा हूँ, ठीक है, मारता कम हूँ, दौड़ाता ज्यादा।

0: कभी ऐसा होता है ना बड़ा मजा आता।
1: बताइए आदमी की ख्वाहिश देखिए, वो मुंह काले देखना चाहता है, अलग अलग ख्वाहिश
0: आती है। कलर चेंज हो जाए, झूठ बोल रहा है।
1: अच्छा, ओहो क्या बात है, आपने मेरे सवाल में एक एक्सटेंशन मार दिया, वाह वाह वाह, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। उससे पता लग रहा है कि छुट्टियां शुरू हो रही हैं।
0: जाके तो हिसाब होना ही है सबका, मेरा आपका सबका, ठीक है, पहले नीचे हिसाब हो तो मजा है।
1: नहीं होगा, होगा सबका, होगा वाद भाई सबका होगा। आप एक हफ्ते की छुट्टियां मना लीजिए, फिर आपका भी हिसाब होगा। ठीक है वाद भाई,
0: अभी बहन को छोड़ के हज के लिए, फ्लाइट के लिए।
1: फवाद भाई की बात, कुछ और मैसेज है, लेकिन उससे पहले मुझे गाना चलाने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, एक सेकेंड रुकिए। मैं कह रहा था हैप्पी वीकेंड, 7:15 मिनट में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड सिंगर जी। ये ढंग से भाई मैसेज कर दो 666-221-07 पर।

0: 7:18 हो लिए। कबीर और कुछ मैसेजेस हैं, पहले मैसेज करके फिर दो कॉल करनी है मुझे, उसके बाद गाने की तरफ बढ़ूंगा फटाफट। तो कुछ मैसेज नीचे से रह गए थे, कह रहे हैं साबुन एंड यूज टी शर्ट इज इनफ, लड़का शादी के लिए भी रेडी हो सकता है। भाई एकदम सही कहा कावलन भाई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चे अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग मेरे भाई। भाई अगर झूठ पकड़ने वाला मैजिक मिलता तो रिश्ते खराब ही हो जाएंगे, बट कभी कभी सच जानना हमेशा अच्छा ही होता है। ये सलाह भाई लिखा है, कब अच्छा लगा आपको रिश्तेदारी में सच बोलना, इसका भी एक सवाल रखूंगा मैं। आपने इंदौरी साहब को सुना? बिल्कुल भाई, मतलब इंदौरी साहब को कौन नहीं सुनेगा। एक मैसेज है, भाई आपने फोटो भेज दो वॉलपेपर लगाना, अपना फोटो भेज दो वॉलपेपर लगाना। मेरा फोटो वॉलपेपर? भाई क्यों अपना फोन खराब कर रहे हो, खूबसूरत अपना अपनी फोटो लगाओ। माशाल्लाह आप हैंडसम आदमी हो यार। एक कॉल आ रही है, उठा लेंगे? अच्छा उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको ही मैं खड़काने वाला था कॉल, आपने बोला तक तो बताइए। सिंपल मैन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी बहना, बताइए आप।
1: हाँ तो आप क्या

0: टॉपिक थे, स्किन केयर पे बात कर
1: रहे हैं। नहीं नहीं, स्किन केयर पे बात नहीं हो रही। ना ना ना, मैं तंग आ गया, मैंने तो भाई को कहा, मैंने कहा
0: स्किन केयर कैसे आया।
1: वो हुआ ये कि बीच में भाई ने कल से मुझे एक मैसेज किया था, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपका मैंने फोटो देखा, मैंने कहा ये पूछूं आपसे कि आपका स्किन रूटीन क्या है। मैंने कहा कोई रूटीन नहीं है। तो बोले कि कोरियन मास्क लगाते हैं। मैंने कहा है ये क्या होता है। तो भाई ने आज फिर से पूछा। अरे मैंने कहा भाई साबुन वाले बंदे से ऐसी मास्क वास्क की बातें मत किया करो। तू चले
0: हकीकत आपने कोरियन मास्क लगाया था ना एनिवर्सरी पे मेकअप।
1: मैंने कौन सा, अरे मैंने कौन सा, अरे हाँ।
0: ये जितने लोग स्किन केयर के नाम पे जो बेसन लगाते हैं ना,
1: बेसन,
0: हाँ हाँ,
1: अच्छा वो भी लगता है।
0: अरे उनसे पूछिए जो चोरी चुपके अंदर से पूकी बने बैठे हैं।
1: पूकी
0: बोलूं मैं, आपने स्किन केयर का टॉपिक छेड़ा ना, जो एक अंदर से वो मर्द में जो फीलिंग आती ना, अरे यार इसकी स्किन कितनी अच्छी, काश मैं भी कुछ लगा के अच्छा बन जाऊं।
1: ऐसा कौन सोच रहा है मार्केट में। नहीं मुझे
0: आप लेने जाते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ये बहुत जल्दी स्किन तो चाहिए चाहिए।
1: ये कौन से लोग हैं सोच रहे
0: हैं। अरे अब भी देखो आपको मैसेज आना शुरू होंगे।
1: क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी लोग हैं क्या भाई। मैं अभी ब्लॉक करूंगा। कौन है ऐसे लोग जो ऐसे लड़कों को ब्लॉक करना पड़ेगा।
0: ब्लॉक करेंगे आप ये बताएं। ये जेन जी का खुमार सब पे जा गया। ये जितने मैं क्या बोलूं कबीर भाई।
1: ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया है। तो कुछ करना पड़ेगा जेन जी, प्लीज बच्चे ऐसे नहीं करो।
0: आपके नाम पे लोग कितने जाके आई वॉन्ट बीट रूट जूस, आई वॉन्ट कैरेट जूस, तो वो भी तो स्किन केयर हो गया भाई।
1: अच्छा तो
0: आप खाओ या लगाओ।
1: मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सालों बाद, इनफैक्ट कतर में आके 2 साल पहले ये सुना कि स्किन हाइड्रेशन के लिए ये ले हो। तो मैंने कहा हमने तो
0: वॉटर
1: शेक थोड़ा सा
0: बढ़ाइए। मुझे एक बात और भी बताएं, ये जितने लोग टिकटॉक यूज करते हो, आधे से ज्यादा लोग कैंडल को देखते हैं नहीं देखते हैं, उसका स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं।
1: अरे नहीं
0: बता दो आप,
1: ये आप सबको कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है ये बताइए।
0: कौन कहते हैं स्किन केयर नहीं करते मर्द।
1: अरे नहीं टीचर आपने आगे ऐसे ऐसे बोल दिया ना।
0: ज्यादा सैलॉन्स जो होते हैं ना उसमें देखो बैठे मसाज करा रहे हैं भाई फेस का, उसको फेशियल चाहिए। क्यों शादियों से पहले जो 2 दिन जाके सैलॉन में बैठते हो पहले से,
1: वो बेचारों की मजबूरी है बहन, वो मजबूरी है।
0: और जब यहाँ से अपनी होम कंट्री वापस जाते हैं तो मेकओवर करके, नहीं भाई मैंने क्या मुझे अच्छा दिखना है। हाँ
1: भाई लड़कों नहीं ऊपर डिफेंड नहीं, वो क्या होता है ना, वो जो हमारे फेवरेट सैलून में जो भाई होते हैं उनसे कहते हैं भाई थोड़ी चंपी कर दो, इससे ज्यादा नहीं करना चाहते। हाँ। कुछ लोग
0: चंपी के साथ साथ उसको बोलोगे फेशियल भी कर दो भाई, कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरी स्किन चमक दे। एक ही प्रोडक्ट बताना, एक प्रोडक्ट में सारी चीजें, क्योंकि वो उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि लड़कियों की तरह स्किन केयर करें।
1: हाँ मैंने तो ऑनेस्टली कभी पूछा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों
0: को एसिड लगाया या मॉइस्चराइजर लगाया या फिर उसके बाद सनब्लॉक लगाया, वो चाहते हैं हमें ऑल इन वन मिले।
1: इसमें एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट, इसमें एप्रिकॉट है, क्यूर मॉइस्चराइजर।
0: और जो आजकल वो चल रहा है कोरियन, लिटरली उससे वर्स्ट स्किन कोई नहीं होता होगा शायद, हकीकत बता रही हूँ मैं।
1: बहुत तितर बितर हो गई पूरी भीड़, तितर बितर हो गई आपकी बात, तितर बितर सब इधर से उधर पब्लिक भाग रही है। अरे बाप रे। अच्छा बहन वैसे बात तो ये नहीं थी, बात ये हो रही थी, लेकिन आपने ये बात छेड़ के बहुत माहौल सेट कर दिया है। मुझे बताइए
0: आप टॉपिक ऐसा लेकर आते हो कि मुझे बोलने पे मजबूर कर देते हैं आप।
1: मतलब इसमें मेरी गलती है। अच्छा ये तो बताइए, ये मैं पूछ रहा था कि अगर आप सबका झूठ पकड़ सकती हैं बहन, सबके झूठ पकड़ सकती हैं, हर एक झूठ, तो आपके लिए आसानी रहती है, अच्छी पावर है, या फिर आपको लगता है नहीं यार दिस इज लाइक कर सही
0: है। नहीं अच्छी पावर नहीं है, बिल्कुल
1: अच्छी पावर नहीं है।
0: अगर इंसान झूठ बोलता है, देखिए फितरत के हिसाब से बोलता है, अगर किसी ने बोला तो एक किसी की फितरत होती है कि भाई उसको झूठ बोलना ही बोलना लाजिम, उसका खाना हजम नहीं होगा झूठ के बगैर।
1: अच्छा
0: एक होता है कि भाई उसको मजबूरन बोलना पड़ा। एक मेरे बुजुर्ग थे वो कहते थे कि जिस झूठ से किसी का घर बसे ना वो झूठ झूठ नहीं होता। ठीक है मैं कभी कभी मजबूरी हो जाती इंसान को होती होगी किसी के कुछ नहीं बताना है भाई। अगर सामने वाला पकड़ ले भाई ना पकड़ो ना, जो चीज अगर क्यों पकड़ना है,
1: ये मुझे लग रहा है एग्जाम होने के बाद ना
0: ये चलने दो। नहीं नहीं हमें क्या, वो है ना एक कीड़ा है जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद बिलबिलाता है बॉडी में कि नहीं नहीं नहीं नहीं जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन हाँ। नहीं कहीं पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है,
1: कुछ तो मुझे चाहिए ये वो ना
0: कुछ तो चाहिए,
1: I don't want peace, I don't want
0: peace, कुछ लग जाएंगे बीवियों के झूठ पकड़ने में,
1: अरे अरे
0: कुछ लग जाएंगे, रिश्तेदार ने ऐसा बोला, अरे नहीं बताना चाह रही बीवी, मत पूछो उससे क्या मसला क्या है।
1: मेन मुद्दे की बात ये थी, आखिरी में यूं गई शुरुआत में कह दी थी बात, इतना घुमाने की
0: चली गई छुप के शॉपिंग करने के लिए, जाने दो क्या मसला है।
1: दत्त साहब मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता, आप मुझे फौरन सजा दें,
0: बिल्कुल भी मत बोले आप मुझसे, अगर झूठ बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आपको लगता है कि नहीं ये मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया, अब इसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा।
1: मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कौन सी पार्टी से खड़ी हो रही है, मैं आपके साथ हूँ,
0: अभी रहने दीजिए बिल्कुल, अभी आप थोड़ी देर किसी और के साथ थे इधर पहले, या आदमी सोखला पार्टियां बदल,
1: मैं क्या करूँ, जहाँ पावर है वहीं जाना पड़ेगा, मजबूरी काम, आदमी क्या कर सकता है। अरे भाई ठीक है बहना, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे ना हाँ? एक वो चीज याद आई,
1: क्या याद आई,
0: स्किन केयर के नाम पे ये जो जेल निकलता है ना वाइट वाइट कलर का, यार मुझे ऐसा लगता है किसी ने भिंडी को पानी में भिगोया और फिर वो जेल निकाले म्यूकस।
1: खुदा का वास्ते मेरी जात पहचान करे, मैं चाय पीते पीते मैं रुक गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन मेरी चाय खराब करने के लिए। ठीक है अभी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके तो सुंबल बहन जो है पेशे से टीचर है, जिनको नहीं पता बता दूं। एग्जाम होने के बाद टीचर्स को अब आ रहा है गुस्सा, और वो पेपर जो है बच्चों के नहीं हम सबके चेक कर रहे हैं। भाई साहब हो, मैं तो इन्हीं की साइड हूँ भाई, आप कुछ भी कह लीजिए, जो उन्होंने बोला सबसे ही। एक मैसेज आया है, जेन जी को हल्के में नहीं लेने का, हनी वाइफ और मुंतजर नहीं हल्के में नहीं ले रहा, ये बस मेकअप वेकअप के मामले में थोड़ा सा हल्के में लिया है मैंने। एक मैसेज कबीर भाई, मुझे एक टाइप का झूठ से बहुत दुख होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर, उनके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, उनके अचीवमेंट्स एक्सेट्रा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं, और सोशल मीडिया पे ना जाने क्या क्या लिख देते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, दिस मेक्स मी सैड। एंड ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया आपने, इस पे बात करेंगे। सुदीप तो सर थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दैट। इरफान भाई लिखते हैं, भाई स्किन रूटीन हमसे ना होगा, पाँच टाइम की नमाज के लिए वुजू करते हैं बहुत काफ़ी है, इसमें भी आपने मतलब ले आए हैं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये झूठ पकड़ने के लिए CID से दया को लाओ, ही हैज द पावर। फिर एक नाजिम है, उन्होंने मैसेज किया है, अभी जिस भाई ने कहा कि आई लव इट, जिंदगी का रूटीन ठीक से नहीं हो रहा, स्किन रूटीन कहाँ से होगा। एक मैसेज है, बाकी यार सुबह का शो सीन ऑन है, शाम को मिस हो जाता है, तला भाई फ्रॉम अलखोर, कोई दिक्कत नहीं भाई। और एक मैसेज है, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है पर्सनल, ओके, झूठ पकड़ने का हुनर होता तो सबसे पहले घर वालों का झूठ पकड़ता, शायद घर वालों से अलग नहीं होता, अपने ही घर के लोग झूठ बोले उससे बड़ा कोई धोखा नहीं, हंगामा ना हो इससे बेहतर है कि अलग हो जाओ, वो घर वाले या फेक फ्रेंड्स। मैं झूठ बोलता हूँ ऐसे झूठ नहीं किसी को नुकसान हो। अच्छा ओके वेरी गुड, बड़े अच्छे आदमी हैं आप। शहजाद सलीम वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया। कादिम साहब आपका भी शुक्रिया, क्या कह रहे हैं, जिंदगी में तुम बाहर नहीं भाई, ये सब गाने नहीं चला पाऊंगा, जिंदगी में तुम बाहर हो, बात चल रही है जिंदगी में बाहर हो। क्या ये सरासर इल्ज़ाम है कबीर भाई, भाई मैं इल्ज़ाम जो है मिल ही नहीं रहा भाई, मुझे पता ही नहीं। फरहत भाई कह रहे मुझे कभी कभी जुल्कनैन साहब की याद आती है। जुल्कनैन साहब आपकी याद में फरहत भाई बैठे। एक मैसेज है, दिन में एक दफ़ा मुंह धो लो तो दो दिन आराम से निकल जाते हैं, ये वही बात कह रहे राणा भाई, बस दो दफ़ा मैं मुंह धो लूं अपना फिर देखो फिर एकदम बढ़िया। जहूर भाई फ्रॉम कश्मीर है, कबीर भाई ये कौन सी कॉल रिसीव हो गई, ऐसा ही है भाई। अरसलान भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सुम्बुल बहन अपनी सारी भड़ास रेडियो पर निकाल, आज निकाली है इन्होंने भर के। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप रोटेशन शिफ्ट पर आ गई, हाँ वसीम भाई के बाद बहन ने माहौल बना दिया। ये क्रिस्टल जी ने मैसेज किया है, मुबारक हो नया टॉपिक, हाँ नया टॉपिक तो लॉन्च हो गया, ये बहन सच बोल रही हैं, जज साहब नहीं जज साहब क्यों, अरे ऐसी कैसे सच बोल रही हैं, वाह वाह वाह। क्या भाई गिरी नहीं करते टीचर मैडम की बात से, मैं तो बिल्कुल नहीं। क्या एक भाई कह रहे हैं बहन ने तो धागे खोल दिए पूरे हर बात को एकदम खोल के रख दिया। दो वाले कभी स्टोरी प्लीज़। क्या है, आज मेरे भाई मोहम्मद तस्लीम अहमद की 26वीं शादी की सालगिरह है, 26th वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत मुबारकबाद हो तस्लीम अहमद साहब को। खादिम साहब ने मैसेज किया है, मेरी वो कह रहे हैं मेरी तरफ से मिस्टर मिसेस मोहम्मद तस्लीम अहमद भाई को 26th वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत मुबारकबाद, 26 साल माशाल्लाह। तब उस मैन कह रही है, मेरे ख्याल से झूठ पकड़ना अच्छी पावर नहीं है, कुछ चीज़ें ना जानने में ही दिल को दिमाग को सुकून रहता है, ऑफिस हो या रिश्ता हो। क्या है, और भी बहनों को आगे आना चाहिए। नवेद भाई क्या चाहते क्या हो है? सुख मेरा जो है आपसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे सुनवाने में बहुत मज़ा आ रहा है आपको। मैं ज़रा हो क्या तो स्टोरी स्टार्ट करें, स्टोरी स्टार्ट होने वाली है कुछ देर में। वैसे तो ये गाना चला दूं मैं। संबल बहन थैंक यू सो मच, मुझे सच में लगा कि भी प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला के जो क्लास ली है बहुत डरा दिया आपने। अच्छा अभी अभी स्टोरी कुछ दिन में आने वाली है, पर उससे पहले मैं एक ज़रा गाना चला देता हूँ। किधर गया? ओके 666-2107 ये नंबर है, स्टोरी कुछ दिन में आएगी। मगर अगर आप अभी भी कुछ मैसेज करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास सबके झूठ पकड़ने की ताकत होती तो ये अच्छी बात है, क्या ही बुरी बात है। आप देख लो, बाकी तो वीकेंड है तो मैं तो नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा। पठान भाई आपको कॉल करता हूँ कुछ देर में इस गाने के बाद। सेन्योर एंड सेन्योरिटा।

देख नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। चार क्यों जा रहा हूँ, कहीं और देख रहा था कुछ और। 7:33 हो चुके हैं। लास्ट मैसेज देन द स्टोरी विल स्टार्ट। क्या है भाई, उधर लेके झूठ बोलने वाले को कुछ ना हो जाए तो मज़ा आए, उधार लेके। अच्छा, मुशीर आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। भाई एक बात ऑनेस्टली बोलूँगा, ये जो आपने गाना बजाया ना, मुझे ये हज़म नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हज़म हो रहा है, मतलब क्यों, कि कौन सी बात इस गाने की हज़म नहीं हो, मैंने कौन सा गाना गाया ये ये हज़म होने वाली इसमें क्या बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम मेरे भाई। देन एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, दो वाले कभी स्टोरी। हाँ, तो मैं स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हूँ, प्री स्टोरी। तो आज की कहानी जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें जो मैटर है, हालांकि ऐसा आपने शायद सुना होगा बहुत सारे जगहों पे, मगर इसका जो कोर मैटर है, भाई साहब इस केस ने मुझे इतनी पढ़ाई करवाई है जिसकी कोई हद नहीं। इसका एक भी मैटर मैंने छोड़ा, इसके केस फाइल से लेकर एक एक चीज़ पे मैं गया हूँ। मतलब समझ रहे हैं आप, लिटरली जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है ना, बोर्ड पे फोटो वोटो चिपका जाते हैं, उस तरीके से मैंने इस केस को रीड किया है। एक एक फोटोग्राफ, एक एक रिपोर्ट को पढ़ के ये कहानी तैयार हुई है। तो प्लीज़ इसकी इज्जत कर लेना, रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो सिर्फ एक गाने के बाद मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, सेटल डाउन होने के लिए टाइम आपके मेरे पास है 3 मिनट।

और 11 सेकंड का, इसके बाद तुरंत स्टोरी शुरू हो जाएगी. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. चाय वाय जो भी आप हमने चाहें, रेडी हो जाइए, इसके बाद सीधा स्टोरी है. मैं दो हवाला कबीर, FM 107 पे.

राइट, अब शुरू करते हैं 7:37, 37 मिनट क्या हो गया मुझे. ओके सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है. इट इज जस्ट क्रेजी, वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट केसेस आई हैव एवर कम अक्रॉस. आई होप वो क्रेजीनेस आप तक पहुंच जाए, समझ पाए कि ये कितना अजीब और गरीब किस्म का केस है. सो लेट्स बिगिन. सो मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है ना, इसे सुनाने के लिए मुझे पूरा माहौल सेट करना पड़ेगा आपके लिए. तो आप ऑब्वियसली अभी गर्मियों का सीजन है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के लिए इमेजिन कीजिए दिसंबर का महीना, जो कि आसान है इमेजिन करना, आप ठंड इमेजिन कीजिए. एंड साल था 1967, विच वॉज 1968, 16 दिसंबर की तारीख, और ये जो जगह थी ये थी एटलांटा यूएसए. तो माहौल इस तरीके का था कि इस जगह पर एक तो बर्फबारी हुई हुई थी हल्की हल्की, अच्छी खासी ठंड थी, सब अपने घरों में थे, और जो बाहर थे चल कोई नहीं रहा था, सब अपनी गाड़ियों में ही थे, गाड़ियों के हीटर्स चालू थे, और सब के सब बस अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते थे. ये दिसंबर का वाला वीक था जब पूरी तरह से लोग वेकेशन की तैयारी कर रहे थे, सबकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, कोई ऑफ ले चुका था, कोई हॉलीडेज की तैयारी कर रहा था, कोई न्यू ईयर की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी चीजें प्लान हो रही थी. और ऐसे में एक और चीज हो रही थी, इसके बारे में अब कहानी में बताऊंगा आपको. तो अटलांटा में ही एक लड़की थी, इसका नाम था बारबरा मैकल. बारबरा के भी बहुत सारे प्लान थे, वो भी चाहती थी कि अपना हॉलीडे बहुत अच्छे से बिताए, लेकिन एक मसला बीच में आ गया था. मसला ये था कि वो एक तो स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट थी वो एमरी यूनिवर्सिटी के साथ. एज अ स्टूडेंट अभी उसको कहा गया कि बस कुछ एग्जाम्स और हैं, उसके बाद तुम लोग फ्री हो घर जाने के लिए. तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि एग्जाम देना है उसके बाद बस खत्म. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दरअसल इस वक्त एक आउटब्रेक आया हुआ था, उस वक्त एक किस्म की बीमारी भी चल रही थी, हांगकॉन्ग फ्लू, है ना. एंड ये बिल्कुल आया था मिड टर्म एग्जाम्स के बिल्कुल बीच में. अब हुआ ये कि बुरी तरह से फंस गई बारबरा, अब वो घर नहीं जा सकती थी. उसने कहा मैं करूं तो क्या करूं, शी वाज स्टक, एग्जाम्स भी हैं. तो ऐसे में उसने डिसाइड किया कि अपनी मम्मी को बुला लेते, उसकी माँ जो थी वो आ गई. उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एग्जाम्स हम देके फिर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, तुम अकेले ट्रैवल भी नहीं कर पाओगी, आई विल मैनेज एवरीथिंग. तो ठीक है, अब जो है जाना था उसे गेबल्स फ्लोरिडा अपने घर पे, लेकिन वो रुक गई एग्जाम्स की वजह से भी, और तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो रही थी, कहीं बिगड़ ना जाए. तो अब मां और बेटी ने फैसला किया कि वो एक मोटेल में जाके रुक जाएंगे. अब दोनों का प्लान बड़ा सिंपल था, एग्जाम्स हम देंगे, एग्जाम्स के दौरान जो है जो भी जरूरत होगी बारबरा को, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मदद करके खत्म करके ड्राइव करके घर चले जाएंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, यही एक रास्ता है. और हालत बारबरा की थोड़ी बिगड़ती जा रही थी, समटाइम्स बहुत अजीब से तरीके से नज़ला हो रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, कभी बुखार हो रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, और एग्जाम्स बीच में चल रहे हैं वो भी क्रॉस करने जरूरी हैं. तो बारबरा तो बड़ी खुशनसीब थी इस वक्त, तो सोच रही थी आई एम सो लकी दैट आई हैव माय मॉम, मेरी माँ कम से कम मेरे साथ में. पर फिर ये जो 16 दिसंबर की तारीख है, बिल्कुल लेट नाइट, हुआ ये कि बारबरा का जो दोस्त था उसका नाम था स्टुअर्ट वुडवर्ड. तो स्टुअर्ट जो था वो तबीयत पूछने के लिए मोटल की तरफ आया, उसने कहा चलो मैं तबीयत तो पूछ लूँ, हालचाल तो पूछ लूँ अपने दोस्त का. तो आया, बात बात करी, उसने सोचा कि अब मैं बात उत करके तबीयत हालचाल पूछ के कैंपस की तरफ चला जाऊंगा. नाउ कमिंग फॉरवर्ड 17 दिसंबर, बहुत बहुत अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 3:30 to 4 AM इन द मॉर्निंग, सुबह का वक्त. अब सोचिए कि वो खूबसूरत लगती ना लाइट्स, बर्फीली जगहों पे, ठंड हो रही है, बर्फ गिरी हुई है, सब अपने घरों में सो रहे हैं, किसी का मन भी नहीं कर रहा है बिस्तर छोड़ने का, और ये दोनों तो मोटल में हैं, माँ और बेटी. तो मोटल के दरवाजे पर सुबह 3:30 to 4 के बीच में इनके डोर पे दस्तक हुई, दरवाजे पे किसी ने खटखटाया.
अब इस वक्त 3:30 या 4 बजे अगर आपका भी कोई दरवाजा खटखटाएगा तो आपको एकदम से किस्म की एंग्जाइटी होगी, कन्फ्यूजन होंगी, आप सोचेंगे भाई कौन आ गया, ये कोई टाइम है आने का, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी दोनों को भी हुई और अंदर से माँ बेटी एकदम से चौंक के उठी एंड दोनों बड़ी कन्फ्यूज थी, फीलिंग ग्रॉगी और सारा भी इतना भारी हो रहा है, आँख अभी खुली है, समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम किसी ने दस्तक दे दी है। तो जेन जो थी, जो बारबरा की माँ थी, वो बेड से उतरी और उन्होंने कहा पता नहीं आखिर कौन है, उन्होंने आवाज दी हु इज दिस एंड शी कॉल्ड। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, उन्होंने बोला कि दिस इज डिटेक्टिव, प्लीज दरवाजा खोलिए। तो जेन ने बोला व्हाट हैपेंड ऑफिसर, और उस ऑफिसर ने बोला मिस्टर स्टुअर्ट, आप जानते हैं उनको? तो बोले हाँ, वो मेरी बेटी का दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि स्टुअर्ट उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो एमरी जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ है, सो हमें कुछ आपसे पूछताछ करनी है। अब जब ये सुना जेन ने, बारबरा की माँ ने, तो उन्होंने ऑब्वियसली उनकी एक तो नींद खुल गई, वो भी फिक्रमंद थी स्टुअर्ट के लिए, तो अब उनकी स्पीड बढ़ी, वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, उन्होंने दरवाजे की नॉब को खोला, उन्होंने घुमाया और दरवाजा खोल दिया पूरा। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर दो शख्स थे, दोनों के दोनों दे बार्ज्ड इन, वो धक्का दे के अंदर की तरफ आए और उन्होंने स्की मास्क लगाए हुए थे। एक ने जो है उनके उसके हाथ में से, उसने हाथ में शॉटगन निकाली बाकायदा एक बैग में से पुल अप करके, और ये कोई पुलिस वाले नहीं थे। जेन को जब तक ये समझ में आता, इट वाज सो फास्ट, सब कुछ विद इन सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हो रहा था। और उनमें से एक ने डक्ट टेप से पूरी तरह से हाथ पैर बांध दिए और जेन को जो है क्लोरोफॉर्म करके बेहोश करके साइड में जैसे फेंक दिया। अब बची थी बारबरा। बारबरा ऑलरेडी बीमार थी, वो उठने की हालत में भी नहीं थी, और इन दोनों ने फिर उसके लिए अलग इंतजाम किए थे।

ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। जेन को बेहोश करके दोनों बारबरा की तरफ बढ़े, फौरन उससे कहा कि उठो, और उसे उठा के जब वो चीख पुकार कर रही थी तो उसको हल्का सा नशा भी हो रहा था, वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि गला उसका खराब हो रहा था। इस हालत में ये दोनों उसे फ्रीजिंग कोल्ड लिटरली बाहर ले जाके खड़ा कर दिया। जस्ट इमेजिन कि आप अभी सोने के लिए कपड़े पहन के अभी लेटे हुए हैं और आपको कोई पकड़ के ठंड में दिसंबर की सर्दी में बाहर एकदम से ला के खड़ा कर दे। वो उसके साथ किया बाहर, इस मोटल की एक गाड़ी खड़ी हुई थी और ये टाइम इन्होंने चुना ये बहुत परफेक्ट था इन लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही थी, ठंड थी, कोई बाहर नहीं था। तो जो बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी वो ऑलरेडी ऑन थी, एज इफ दे वर ऑलरेडी रेडी कि उन्हें करना क्या है। बारबरा को समझ आ गया था कि शी इज बीन किडनैप्ड। इन लोगों ने उसे सीधा गाड़ी में आने के लिए कहा, उसके पास कोई चारा नहीं था, वो चीख पुकार मचा भी नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने डक्ट टेप लगाया, एंड उसको फिर वहां से ले गए। कार चलना शुरू हुई दिसंबर की 4:30-4:15 के करीब, अंधेरा ही हो रहा था, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स और सड़क पे सिर्फ एक लौती गाड़ी जिसके अंदर बारबरा थी। बारबरा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसे सिर्फ ये समझ में आ रहा था, मतलब वो बता सकती थी कि दोनों के दोनों जिन्होंने उसे किडनैप किया ये दोनों पैनिक नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें सब कुछ एकदम अच्छे से पता है कि कब क्या करना है, एंड एग्जैक्टली पता है कि कहां जाना है। बारबरा समझ गई कि अगर अभी उसने कुछ कोशिश करी बचने की तो फिर दिक्कत हो सकती है। शी रिमेंड साइलेंट, उसने अपने आंसू पर भी काबू किया और ऑलरेडी उसकी तबीयत खराब थी तो वो ऑलरेडी डाउन थी। बहरहाल ये लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए और तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर एक बहुत ही रिमोट एरिया में पहुंचे। ये रिमोट एरिया था पाइन स्टैंड साउथ बर्कली लेक रोड, और ये एक किस्म की एक काउंटी है वहाँ पे, ग्विनेथ काउंटी। इस जगह पहुंचे और उसका भी ऐसा एरिया जहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आने वाला। अब जस्ट इमेजिन ऑलरेडी बर्फबारी हल्की फुल्की, ठंड हो रही है और ये बिल्कुल कोने में है, तो क्या माहौल होगा। अब यहां भी उसके लिए बारबरा के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया था। अब इंतजाम सुनिएगा कितना अजीब गरीब है, कहानी यहां से थोड़ी अजीब हो जाती है। इन दोनों ने यहां पर एक कॉफिन तैयार किया था, एक ताबूत तैयार किया था, एक कंटेनर कह लीजिए, तीनों ही तरीके से मैंने बता दिया जैसे आप समझ पाए, ये तैयार किया था बारबरा के लिए। और ये जो कंटेनर था ये ऑलरेडी जमीन में गड़ा हुआ था पहले से ही, सो दे न्यू कि कहां पहुंचना है, ऑलरेडी जमीन में था और इस वक्त ही ओपन था। और ये कंटेनर कोई खाली कंटेनर नहीं था, इसे बहुत आर्टिस्टिकली डिजाइन किया गया था, इंजीनियर्ड किया गया था, मेथोडिकली इंजीनियर्ड किया गया था। इसको मजबूती देने के लिए इसे फाइबर ग्लास, इसमें फाइबर ग्लास का रीइंफोर्समेंट भी लगाया गया था। ये जो था ये 1.5 फीट नीचे दफनाया गया था जमीन में। जैसे मैंने कहा ये खाली नहीं था, इसके अंदर सप्लाईज थी, इसके अंदर पता क्या क्या था, इसके अंदर बैटरी पावर्ड लैंप था, ठीक है, इंसान को थोड़ा थोड़ा दिन जिंदा रखने के लिए कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए थोड़ा बहुत खाना था, पानी था, केमिकल टॉयलेट था, और इस ताबूत के साइड में से 2 पाइप जो है वो निकल के जमीन के ऊपर की तरफ हल्के से आ रहे थे ताकि एयर वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो इसका बना रहे। अंदर इसके इस कंटेनर के एक कागज भी रखा हुआ था जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे अंदर की, कैसे लाइट ऑपरेट करनी है, सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, किस तरफ से पाइप है, सांस कहां से ली जा सकती है। और जिसने डिजाइन किया था उसने एक एक चीज बारीकी से सोची थी। बारबर को जब नजर आया तो बारबरा अब अपने आप को रोक नहीं पाई, वो जोरों से चिल्लाई, लेकिन जैसे वो चिल्लाई इन दोनों में से एक शख्स ने उसकी गर्दन पर ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर दिया। अब वो जब थोड़ी सी झूल रही थी तो उसे कंटेनर के बारे में बताने लगे, एज इफ जैसे होता ना आप नई नई कंपनी में जाते हैं तो आपको इंडक्शन होता है, आपको बता रहे होते हैं कि ये हमारी कंपनी में ये है ये। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही बारबरा को सॉर्ट ऑफ एक मीटिंग की तरह कंटेनर के बारे में बता रहे थे और ट्रैंक्विलाइजर लगा के बता रहे थे, एज इफ कोई ब्रीफिंग चल रही है कि फंक्शन कैसे करता है कंटेनर में, क्या क्या है, ये सब कुछ उसे बताया। उसे भी बताया कि जो अंदर स्टोर्ड पानी है वो बहुत काम आएगा, मगर ये नहीं बताया कि वो जो पानी अंदर है स्टोर्ड उसमें एक टेस्टलेस सेडेटिव मिलाया गया है। मतलब कि ये हुआ कि वो पानी जो है वो जब जब बार बार पिएगी

तब तब वो थोड़ी सी बेहोशी में सिंक इन होने लग जाएगी। ये उसे नहीं बताया, ये इसलिए भी नहीं बताया ताकि वो पैनिक ना करे, और ये जब वो पानी पिएगी तो उसका पैनिक वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करेगा और डर अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब जब एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई, उसके बाद बारबरा को बोला जाओ कंटेनर में जाके लेट जाओ। फिर एक किडनैपर ने, जब बारबरा कंटेनर में जाके लेट गई, ऑब्वियसली इस वक्त ट्रैंक्विलाइजर लगे हुए थे उसके, उन्होंने फिर अपने एक कैमरा निकाला, ये पोलोराइड कैमरे से एक शॉट लिया, एक फोटो लिया, मगर फोटो को रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि बारबरा मुस्कुरा नहीं रही है, और फिर से कहा कि फिर से फोटो ली जाए। तो उन्होंने फिर से फोटो ली और इस वक्त बारबरा को बोला बारबरा इधर देखो, लिसन टू मी, स्माइल, शाबाश, स्माइल। और फिर बारबरा, क्योंकि इस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, बारबरा स्माइल्ड एंड फोटो क्लिक हुई। जब फोटो खींची गई, ये केस फाइल में मौजूद है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग फोटोज एवर। इट इज़ सो वियर्ड, उसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये स्ट्रेट आउट ऑफ कोई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का फोटो है। एनीवे, तो उन्होंने फोटो क्लिक करी एंड फिर लिड लगा दी, बंद कर दिया कंटेनर को जिसके अंदर बारबरा थी। फिर बस 20 हैवी ड्यूटी स्क्रूज के साथ उसे बंद किया, और हर स्क्रू 3.5 इंच का था इन लेंथ। मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कंटेनर से निकल के बाहर भाग सके, कोई सवाल ही नहीं। और फिर जब बारबरा अंदर थी, जस्ट इमेजिन बारबरा की सिचुएशन, कंटेनर के ऊपर दोनों मिट्टी डालने लगे। अब बारबरा जो अंदर हैं, जो थोड़ी होश में आ रही थी, उन्हें महसूस हो रहा था कंटेनर की लिड बंद होने के बाद रेत के गिरने की आवाज, धीरे धीरे हैवी मफल्ड आवाज, रेत गिरी जा रही है, वो दबे जा रही है, और फिर जो वो वजन है जमीन का, ऐसा लग रहा था कि पूरे कंटेनर पर जमीन का पूरा वजन है और उसके नीचे दबी हुई। दैट फीलिंग रियली सेंक इन, और बारबरा को वो समझ में आया। चंद मिनटों में ही बाहर से जो वो फावड़े की आवाजें आ रही थी, जो मिट्टी डालने की आवाजें थी, वो भी बंद हो चुकी थी। एंड एवरीथिंग वॉज गॉन, वॉज पिच ब्लैक, नथिंग बट डार्कनेस, एकदम अंधेरा। एंड ये सेंस उसे आ रहा था कि ये लोग तो मुझे सच में जिंदा ही गाड़ गए। पर हाँ, एक चीज बारबरा को इन लोगों ने बताई थी, दोनों ने जिन्होंने किडनैप किया था, कि बारबरा को बोला कि चंद घंटों में वापस लौटेंगे, तुम्हारी कंडीशंस को चेक करते रहेंगे, और ये बोल के वो लोग गए हुए थे। ये कितना सच है कितना झूठा ये बारबरा को पता लगने वाला था। बहरहाल वो दोनों जिन्होंने बारबरा को अभी इस कंटेनर में लिटरली दफन कर दिया, ये दोनों के दोनों मजे में ड्राइव करते हुए मोटल गए, अपने आप को साफ किया, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पे गए सीधा मायामी। और जब मायामी जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी में, तो ये रेडियो सुन रहे थे और रेडियो पे ताज़ा ताज़ा खबर सुन रहे थे, जिस खबर में इन्हीं की गई वारदात के बारे में पुलिस रिपोर्ट कर रही थी। मतलब बताया जा रहा था कि एक लड़की किडनैप हो चुकी है, और ये अपनी ही खबर को रेडियो पे फुल वॉल्यूम पे सुन के हंस रहे थे। बारबरा दूसरी तरफ बिल्कुल अकेली थी, कंटेनर के अंदर जो सिस्टम बना हुआ था उस सिस्टम के साथ अकेली। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि बाहर की दुनिया उसे ढूंढ पाती है कि नहीं। एक किस्म का ट्रेजर हंट था बाहर की दुनिया के लिए, वरना वहां जो चीज उसके साथ थी इस कंटेनर में, वो कुछ वक्त तक ही उसका साथ दे पाएंगी। एंड कुछ वक्त के बाद उसे समझ में आ गया था कि ये लोग वापस नहीं आने वाले, ये ऐसे ही बोल के चले गए कि चंद घंटे में आके तुम्हें चेक करेंगे। बारबरा की माँ जो थी, जेन, जो होटल में थी, जिनको जिनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, वो जब होश में आई तो उन्होंने जैसे तैसे वो जो एंगर, वो एक हाइपरटेंशन होती है, उस चक्कर में उन्होंने जोर से अपने आप को आजाद करने की कोशिश करी। थोड़ी चोटें आईं, लेकिन शी कुड फ्री हरसेल्फ। उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन जब तक वो हेल्प मांगती, किसी से पूछती, बारबरा भी बहुत दूर जा चुकी थी। वो जो टाइम विंडो थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा स्पीड से हुआ था, बहुत ज्यादा तेजी से। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस को और बाकी को सब पता चल चुका था, सबको पता चल चुका था कि बारबरा जो है वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है ना, शी वॉज नॉट अ नॉर्मल स्टूडेंट। ऐसी रैंडमली कोई किसी को नहीं उठाता, वो भी इतना मेथोडिकली। बारबरा जो थी वो बेटी थी रॉबर्ट मैकल की, जो एक बहुत बड़े लैंड डेवलपर थे उस टाइम पे फ्लोरिडा में, और काफ़ी ज़्यादा कामयाब थे। इनफैक्ट उनकी कंपनी भी थी जिसके वो को फाउंडर थे, डेल्टोना कॉरपोरेशन। ये कंपनी जो थी एक मेजर बिल्डिंग कंपनी थी उस टाइम पे 1968 में, और बहुत

बड़े बड़े घर बनाती थी, बहुत लैविशिंग जो घर होते हैं वो तैयार करती थी। तो काफ़ी बड़ा नाम था और काफ़ी सुखदार, काफ़ी रईस किस्म के रॉबर्ट मैकल। तो बारबरा ऐसी फैमिली से थी जिससे रैंसम मिल सकती है। अपनी बेटी के लिए रॉबर्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे कोई भी मांगेगा तो वो दे देते। और ये केस जो है इतना बेजार, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है, पता भी नहीं बारबरा कहाँ ये केस मिला सीधा FBI को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बारबरा को पता भी नहीं चल रहा था कि बाहर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन से लेवल पे पहुंच चुकी है, बिकॉज शी वॉज इन साइड द कंटेनर। मगर इस वक्त तो कुछ याद भी नहीं करना चाहती थी, उसके लिए अभी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था। शी कुड ओनली रिमेंबर कि किडनैपर्स ने उसे क्या कहा है, कंटेनर के बारे में क्या क्या बताया है, कहां पर क्या रखा हुआ है। टाइम जा रहा था और बारबरा को अंदाजा हो चुका था कि कोई भी नहीं आने वाला। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। अब वो बाहर का ना सोच के इंस्ट्रक्शंस पर फोकस कर रही थी जो एक पेपर पर लिखे हुए थे, और अपने आप को काम डाउन करने के लिए उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चलती रहे वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रही थी, अपने फ्यूचर को सोचकर अपने आप को काम करने की कोशिश कर रही थी, दिल को सुकून दे रही थी। अंदर बारबरा की कोशिश जारी थी और ऊपर जमीन पर उसको अगवा करने वालों ने अपनी डिमांड रख दी थी। जो मांग करी थी इन किडनैपर्स ने, दो लोगों ने डिमांड करी थी $500,000 की उस टाइम पे, जस्ट इमेजिन 1968 में। और के रॉबर्ट मैकल जो हैं वो अपनी बेटी को अगर जिंदा देखना चाहते हैं तो $500,000 दें। और मैसेज भी ऐसे नहीं पहुंचाया, मैसेज दिया ही नहीं। इनफैक्ट ये जो मैसेज था ऑलरेडी रॉबर्ट मैकल के घर के पास एक गार्डन में एक कागज में था, और कागज भी बिल्कुल रोल अप करके एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा गया था, और ये ग्लास ट्यूब थी एक बॉक्स के अंदर। उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मिल जाएगा पुलिस को। जस्ट इमेजिन कि कहां तक सोच के बैठे थे कि दोनों, यानी बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था। अब रॉबर्ट मैकल क्या करते, रॉबर्ट मैकल ने $500,000 रेडी किए और लोकेशन बता के वहीं पर कागज छोड़ दिया और इंतजार करने लगे कब क्या होगा। उस लोकेशन पे लगातार पुलिस ने पहरा दिया। हुआ ये कि इत्तफाकन जब पुलिस के वहां पे पहरा दे ही रही थी तो ये लोग वहां पर पहुंचे। दोनों में से एक बंदा जो है वो गाड़ी के बाहर उतरा हुआ था और एक बंदा इस बैग की तरफ जा रहा था जो लोकेशन पे रखा हुआ था विद $500,000। वो बड़ा, लेकिन पुलिस ने उसी टाइम धावा बोल दिया। और जब पुलिस आ गई तो उन्हें देख के ये दोनों के दोनों डर गए। जो बैग के बिल्कुल पास था वो तो डर ही गया, वो पैदल भागा अंदर जंगल के, और जो गाड़ी के पास था उसने भी अकल नहीं लगाई, गाड़ी के अंदर ना जाते हुए, चालू ना करते हुए वो भी पैदल ही वहां से भागा। इस चक्कर में दोनों से सबसे बड़ी गलती हो गई, वो कार पीछे ही छोड़ गए, और ये कार सबसे बड़ा सबूत बनी FBI के लिए। इसके अंदर एक आदमी की फोटो थी और उस फोटो में उसने पुलिस वालों का हैट पहना हुआ था, और कार में रजिस्ट्रेशन पेपर्स थे इस गाड़ी के जिसपे एक नाम लिखा हुआ था, और नाम था जॉर्ज डेकॉन। एक और अटेम्प्ट हुआ और रॉबर्ट ने फिर से वहां पे एक चिट्ठी डाली और बताया कि इस बार भी पूरे $500,000 रखे हुए, और इस बार वो वादा करता है कि कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, उसे सिर्फ अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए। किडनैपर्स इस वक्त पहुंचे और इस वक्त उन्हें $500,000 मिल गए। पुलिस ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। अब रॉबर्ट मैकल और बाकी सब लोग वेट कर रहे थे कि अब शायद कोई एक दिन कागज रख के जाएगा, बताएगा कि उसकी बेटी कहां पर है, कहां पर है। इट वॉज सो एंग्जाइटी इंड्यूसिंग कि समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त करे तो क्या करें। मगर फिर एक नाम सामने आया। वो नाम कैसे कनेक्ट होता है वो आपको बताऊंगा, पहले नाम सुनिए। नाम जो इस पूरे केस में सामने आया वो था एक 23 साल के लड़के का, 23 साल, 23 years old। इसका नाम था गैरी स्टीवन क्रिस्ट। गैरी स्टीवन जो था उसका नाम जुड़ा एक लड़की के साथ जो कि 26 साल की थी। उनका नाम था रूथ। रूथ और गैरी दोनों के दोनों, इनका साथ में नाम आया। रूथ जो थी वो हालांकि लोकल नहीं थी, वो होंडोरस से आई हुई थी और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। दोनों की मुलाकात मरीन साइंस इंस्टीट्यूट में हुई थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी, जहां गैरी काम करता था और रूथ जो थी वो मरीन बायोलॉजी पढ़ रही थी। दोनों को प्यार हुआ। यूनिवर्सिटी के एक स्पॉन्सर ट्रिप, रिसर्च ट्रिप जो होती उसके दौरान ये दोनों मिले इन बरमूडा, इन दोनों को मोहब्बत हो गई।
गैरी जो था वो पूरे 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का था और बारबरा जो थी वो महज 5 फुट 2 इंच की थी। अब आप बोलेंगे हाइट क्यों बता रहा है, लेट मी एक्सप्लेन, इन दोनों की हाइट जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये फर्क पैदा करता है इस पूरे के पूरे केस में। इन्होंने इस बात का बहुत फायदा उठाया इन इस हाइट डिफरेंस का। एक तो दोनों आपस में लगते ही नहीं थे कि ये कुछ करेंगे, कि मतलब किडनैपर्स होंगे, कभी इन्हें देख के लग ही नहीं सकता। डिटेल्स में ये भी आया कि गैरी सोच रहा था इस पूरे प्लान के बारे में, बारबरा को किडनैप करने के प्लान में, प्लान के लिए बहुत वक्त से, इनफैक्ट नवंबर 1968 से वो बारबरा को टारगेट बना रहा था, क्योंकि उसे पता लगा था एक रईस आदमी रहता है और उसकी बेटी जो है वो एक कॉलेज में जाती है। गैरी ने पूरी की पूरी रिसर्च करी थी बारबरा पे। आप सोचिए उस टाइम पे बिना सोशल मीडिया के ये आदमी किस लेवल की रिसर्च कर रहा होगा। पूरी तरह प्लान उसने बनाया, एक एक चीज, कंटेनर को बनाया जिसको वो कैप्सूल कहता था, ये कंटेनर उसने खुद तैयार किया, कहीं से खरीदा नहीं, खुद तैयार किया एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन ट्रेलर के पास मरीन साइंस इंस्टीट्यूट के, जहां पे वो काम करता था। और जहां पे वो काम करता था, मतलब जहां पे ये बनाया उसने, वो ग्राउंड ऐसा था कि वहां पे किसी को अलाउड नहीं था, तो बिल्कुल आइसोलेशन में बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसने ये कंटेनर बनाया। प्लान उसका यह था कि इस कंटेनर के अंदर बंदा जो है कुछ वक्त तक अंदर रह सकता है। ये जो कंटेनर था इसका साइज अब आप इमेजिन कर सकते हैं, ये 6 फीट लंबा था, समझिए 183 सेंटीमीटर, 29 इंच ऊंचा था फ्लोर से, 29 इंच और 29 इंच ही इसकी चौड़ाई थी, यानी समझ लीजिए वही 60x60 सेंटीमीटर टाइप उतना साइज था इसका। और वजन जो था वो तकरीबन 100 किलो था इस कंटेनर का, और गैरी का वजन भी अमूमन इतना ही था। तो ये कंटेनर जैसे मैंने बताया आपको, इसके अंदर ये था कि एक छोटी हाइट का आराम से फिट हो सकता है, आराम से अंदर बैठ सकता है, पर ये ब्रूटली छोटा है। अगर हाइट जरा सी भी 5 फुट से ऊंची हो तो बारबरा के लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि बारबरा की हाइट 5 फुट से ज्यादा थी। बारबरा बस इसमें जिंदा रह सके इसका प्लान था, और बाकी डॉलर जब मिल जाएंगे तो उसे छोड़ दिया जाएगा, दैट वॉज देयर होल प्लान। गैरी ने रूथ को भी, जो उसके साथ इस प्लान में इन्वॉल्व थी, रूथ को बुलाया कि टेस्टिंग के लिए तुम भी इसमें लेट जाओ, ऊपर से लिड बंद करके, और चला गया और फिर चेक करने के लिए वापस भी आया। और जब उसने चेक किया तो सिस्टम सक्सेसफुल था, ये कंटेनर सच में ऑपरेशनल लायक था। अब इन दोनों की मेहनत देखिए, आयरोनिकली मेहनत देखिए, ये लोग लिटरली जब ये कन्फर्म्ड हो गए कि कंटेनर काम का है, ये लोग निकले और इसको लेके नॉर्थ की तरफ गए। दिसंबर की 13 तारीख गैरी और रूथ इसमें सब कुछ सामान वान भरा और फिर अपनी स्टेशन वैगन में इसे बिल्कुल लगा के बिठा के और ड्राइव करके पहुंचे अटलांटा। पहुंचकर बाकायदा एक वुडेड एरिया ढूंढा, वहां पे जमीन खोदी और उसमें ये कैप्सूल, ये कंटेनर जो था, ये 1.5 फीट गाड़ दिया। फिर ये दोनों गए एम्बरी यूनिवर्सिटी कैंपस, वहां पे इन्होंने चक्कर लगाया क्योंकि इनको बारबरा की शक्ल दिख गई थी, पता लग गई थी, तो उन्होंने बारबरा को ढूंढा, नहीं मिली, पता किया तो ये पता ये लगा डोम रूम क्लासरूम में कि अभी वो मोटल में रह रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर गैरी ने मोटल के चक्कर लगाए और उसे पता लगा कि कहां रहती है, तो उसने, अब यहां पे देखिए व्हाट दे डिड, उसने कॉल करके जेन का कमरा पूछा, जेन ने भी आंसर किया, तो गैरी ने कहा कि उसके पास सर्टिफाइड लेटर्स हैं और फिर एक रात पहले एक डिनर में गैरी और रूथ एक डाइनर में गए थे, एक रेस्टोरेंट में, जहां पे पुलिस वाला आया हुआ था, उसकी टोपी उसने टांग दी थी साइड में, तो उसकी टोपी वहां से उन्होंने चोरी कर ली थी धोखा देने के लिए। गैरी और रूथ ने प्लान इस कदर हाईफाई बनाया था कि उन्होंने दाढ़ी भी हटा दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस वाले बड़ी दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो उन्होंने दाढ़ी पूरी पूरी शेव कर दी थी एंड प्रैक्टिस फोटोज भी लिए थे पोलरॉइड कैमरा से। मगर उनसे एक गलती हो गई थी, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए थे पुलिस के डर से, जो रिकवर हुई और उसका ट्रेस सीधा जाके जुड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से। वहां से पता चला कि मरीन साइंस डिपार्टमेंट है और वहां पे गैरी बनाता है वेंटिलेटेड बॉक्सेस। एजेंट्स को पता चला रूथ के बारे में कि वो भी टाइम बिताती है गैरी के साथ। फिर एक बंदा था जॉर्जिया का, उसने पुलिस को कॉल करी, एफबीआई को,
और उसने बताया कि उसे एक ट्रेलर बेचा गया है जिसके अंदर कुछ सामान मिला है। गैरी ने वो ट्रेलर बेचा था और जो वो बेचा था उस ट्रेलर के अंदर बहुत सारे खत मिले थे। उन खतों में बहुत कुछ था, फिंगरप्रिंट्स पुलिस मिला पाई और उसके बाद गैरी और जॉर्ज एक ही हैं ये पता चल गया था। अब बस पकड़ना है, सिर्फ पकड़ना ही नहीं, ये पता भी लगाना है कि बारबरा आखिर कहां दफन है। इस बीच बारबरा को नहीं भूलना है क्योंकि इसको पकड़ तो लेंगे पर लोकेशन अभी भी आइडिया नहीं है।

एग्जैक्टली मिला नहीं था, पर एजेंट्स वहां पहुंचे. अभी 3 दिन हो चुके थे बारबरा को अंदर उस कंटेनर के, जमीन के अंदर. एजेंट्स 2-3 भाग कर पहुंचे बड़ी एक्साइटमेंट में उस लोकेशन पे, जंगल में जहां पे बारबरा को दफनाया गया है. मगर तीनों के तीनों इतने एक्साइटेड थे कि वो फावड़ा ही लाना भूल गए, शवल नहीं लेकर आए, कि उसे खोद की जमीन से निकालेंगे कैसे. तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बहुत गुस्सा आया. जाहिर सी बात है ये बेसिक उनकी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए था. वो फिर से वापस गए एंड फिर से वापस आए. घंटों बीत गए इन सब चीजों के बीच में. शाम ढल रही थी, डस्क हो रहा था, शाम का वक्त, ऊपर से ठंड और बर्फबारी, कंफ्यूजन डबल ट्रिपल हो रही थी. डर ये था कि कहीं आसपास से ही हम ना निकल गए हों और मिस ना कर दें. तो FBI ने और भी ज्यादा एजेंट्स को भेजा. तकरीबन 100-150 एजेंट्स अपने हाथों में फावड़ा लेके वहां पे पहुंचे और जितने शवल ले सकते थे वहां पर पहुंचे. 4 बजे के करीब जब वापस एक और दिन वेस्ट होने वाला था शाम का, एक एजेंट ने देखा कि छोटा सा क्रूशल पॉइंट जमीन पे जो है वहां पे बहुत फ्रेशली डिस्टर्ब्ड सॉइल है. मतलब अभी अभी मिट्टी यहां से हटाई गई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सॉर्ट ऑफ उसे अंदाजा हुआ. एंड उसका तुक्का जो था वो चेक करना चाहता था. उसे सबको बुलाया कि यहां पे खुदाई करनी पड़ेगी मैं, क्योंकि इस दौरान कोई अपने हाथों से खोद रहा है, कोई शवल से खोद रहा है, कोई थका हुआ है. बहुत बुरी हालत थी एक ऑफिसर की, एजेंट की. एंड देन उन्होंने जब खुदाई शुरू करी तो एक हल्की सी आवाज आ रही थी, मफल्ड वॉइस. एंड एजेंट ने जब और खुदाई करी तो उन्हें फाइनली वो कंटेनर मिला जिसके अंदर बारबरा थी. एजेंट ने देखा बारबरा वॉज अलाइव. वो हाइड्रेटेड थी, थोड़ी कमजोर और भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन शी वॉज अनहार्म्ड. कुछ नहीं हुआ था उसे, उल्टा कॉन्शियस थी. प्रॉब्लम यह थी कि वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती थी. एजेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत सारे लोगों की आंखों में नमी थी. एंड दिस एजेंट ने, नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, ओके, एक एजेंट ने जिसने बारबरा को इस कॉफिन से, सो कॉल्ड कंटेनर से बाहर निकाला था, बारबरा के वापस बचने के बाद सबसे पहले वर्ड उस ऑफिसर के लिए थे कि मैंने तुमसे ज्यादा हैंडसम इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा. एंड बाद में शी गॉट मैरिड टू हिम ओनली, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट. लेकिन अब जरा गैरी पे आ जाते हैं. बारबरा को तो बचा लिया गया, उसे हॉस्पिटल ले गए. गैरी जो था वो भाग रहा था फ्लोरिडा कोस्ट पे एक स्पीड बोट में. ये उन्हीं पैसों से खरीदी गई थी जो उसने रॉबर्ट मैकल, बारबरा के फादर, से रैंसम में पैसे लिए थे, डॉलर्स लिए थे. एंड वो भाग रहा था लेकिन वो पकड़ा गया. रूथ जो थी वो पकड़ी गई कुछ टाइम बाद, 5 मई को 1969, नॉर्मन ओक्लाहोमा में. दरअसल रूथ से गलती ये हुई कि रूथ जो थी वो एक हॉस्पिटल में नौकरी मांगने के लिए गई. जब उनका बैकग्राउंड चेक हुआ तो ओक्लाहोमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनके फिंगरप्रिंट को मैच कर लिया और वो पकड़ी गई. उन्हें 7 साल की सजा हुई जिसमें से 4 साल बिता के उन्हें वापस उनकी कंट्री होंडुरस भेज दिया गया जहां से वो आई थी. गैरी की बजाते गैरी का बहुत ही अजीब किस्म का किस्सा है. गैरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. 10 साल के बाद वो बाहर आया, ना जाने कैसे कौन सा जुगाड़ लगा के, और फिर उसे पार्टन दे दिया गया. मतलब ठीक है, जा आजाद है, एक मौका दिया जाए. मौका लिया उसने, मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया, मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था इंडियाना में, लेकिन फिर अपने लाइसेंस से हाथ धो बैठा 2003 में डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से. फिर आया मार्च 2006, उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया अलबामा कोस्ट में एक सेल बोट में, जहां 14 किलो का गैर कानूनी सामान वो ले जा रहा था जिसकी कीमत तकरीबन $1 million थी. उस टाइम इसे 5 साल 5 महीने की सजा हुई और फिर नवंबर 2010 में ये फिर से बाहर आ गया. और फिर से 2012 में फेडरल जज ने रोक लगा दी इस बार कि इस बार नहीं छोड़ना है इसे, क्योंकि वो बिना बताए कंट्री छोड़ के सेल करके क्यूबा और साउथ अमेरिका घूम रहा था. जब वापस आया, वापस पकड़ा गया, 40 महीने की एक और सजा उसे सुनाई गई और 2015 में वापस छोड़ दिया गया. आज की तारीख में गैरी भी आजाद है, रूथ अपनी कंट्री में है, एंड बारबरा जिसको लिटरली इतना सब कुछ झेलना पड़ा, बारबरा इज हैप्पीली मैरिड एंड आज उनके बच्चे भी हैं. 1970 में इनफैक्ट उन्होंने एक किताब भी लिखी थी. बारबरा ने जो किताब लिखी थी उसका टाइटल था 83 आवर्स टिल डॉन. इसे इंस्पायर होके 1990 में टेलीविजन मूवीज एंड काफ़ी कुछ आया है. एंड पब्लिक में उन्होंने ज़्यादा अपेयरेंस नहीं दी, उनका मन भी नहीं था, बट अभी वो एक सिंपल लाइफ जी रही हैं एंड शी इज़ एल्डर नाउ.
बहुत सादा जीवन बिता रही हैं अटलांटा में अपनी फैमिली के साथ एंड काफ़ी खुश हैं।

बट दिस वॉज हर स्टोरी. आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो. 666-22-107 पर जरूर बताइएगा. 666-22-107 पर. दिस वॉज द वीकेंड स्पेशल स्टोरी. आई होप यू लव्ड इट. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: 8:12 अस्सलाम वालेकुम। और जो भी आपने कहानी सुनी कुछ देर पहले, बहुत मेहनत लगी उस पर, मुझे सुना के भी बड़ा मजा आया। वन ऑफ द मोस्ट एंग्रोसिंग स्टोरीज। तो आपको कैसी भी लगी हो प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भर भर के तारीफ चाहिए, मगर एटलीस्ट आपको कैसी लगी, व्हाट इज़ योर फीडबैक, आपने सुनी कि नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा। तो बताइएगा ज़रूर। एक गाने के बाद मिलते हैं, ठीक है? एक या दो गाने, एक गाने के बाद मिलते हैं। बंटाई बंटाई बबले क्या सर।

0: अस्सलामुअलैकुम, मैं तो हूँ कबीर। अब ज़रा मैसेज पढ़ दूँ क्योंकि कहानी के बाद रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। भाई बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, मैंने कहानी सुनाई है, सिमिलर चीज़ तो नहीं है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पढ़ना ज़रूरी है। क्या क्या आ गया भाई? एक बस अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वाटर स्टोरी जस्ट ऑसम, मॉर्निंग से मूड ऑफ द कहानी से अच्छा हो गया। भाई आपका मूड एकदम सेट रहना चाहिए। मोहम्मद क्या नाम है भाई का, एक सेकंड। इस्लाम भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत मोहब्बत, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल चलो ले लेते हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क्या

0: बेटे इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हैं आप, ये क्यों तकलीफ दे रहे हैं आंखों को, ये बताएं आप मुझे क्या परेशानी है
1: यार। तकलीफ क्या होंगे यार भाई, यार मिस कर रहा होंगे तो भाई के पास पहले हाजिरी लगा।
0: अरे मैं हिचकी नहीं आई आपको, मैंने तैयार किया सुबह से, आई तो होगी।
1: अब तो सोना भाई, अब तो सोना ही सोना है। 10 दिन तक, 30 तारीख तक जो है ना सोना ही सोना। दोपहर के बाद में ना, बाद 1 बजे के बाद में गायब।
0: जब उठोगे तो 2028 आ चुका होगा मुझे ऐसा लग रहा है इतना मस्त हो जाना है ना, न्यू ईयर मना लेना बीच
1: ना
0: में।
1: भाई साहब अब तो फुल नहीं रिलैक्स होना, कोई काम नहीं कुछ नहीं।
0: हाँ
1: 1 बजे के बाद में बिल्कुल ही गायब।
0: 31 दिसंबर को उठ जाना, न्यू ईयर बना के फिर सो जाना, ठीक है?
1: चलो सोचेंगे, कोशिश करेंगे।
0: हाँ ये सही है, सोचेंगे। कहानी तो नहीं सुन पाए होगे, मुझे लग रहा है अभी भी उठे ही हो।
1: नहीं बस अभी ट्यून इन किया है, क्योंकि लड़की को ड्रॉप किया है कॉलेज में, तो अभी ट्यून इन किया। भाई कह रहा टाइम चेक, मैंने कहा हाँ हम भी आ गए टाइम चेक करने।
0: अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है फिर मैं भेजूंगा आज कहानी, जरूर सुनना, अच्छा खासा टाइम पास होगा क्योंकि छुट्टी में भी हो, सो यू विल लव इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई बिल्कुल,
0: ठीक है जायज़
1: भाई। और सब बढ़िया,
0: एकदम शानदार सेट चल रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी, इंशाल्लाह बस दुआओं में याद रखिए मेरा भाई।
1: ओके भाई, ओके भाई,
0: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जैस भाई के बाद कुछ मैसेज जल्दी पढ़ दूँ। कबीर भाई आप लोगों के मैसेजेस कौन से प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं? बिकॉज आई ओनली यूज व्हाट्सएप, नो इंस्टेंट। हाँ मैं इधर ही पढ़ता हूँ, इधर ही व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ। कबीर कहानी बहुत अमेजिंग थी, थैंक यू सो मच भाई। ये मैसेज किया मोहम्मद मोहित अहमद साहब ने, भाई इधर ही व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ ना, अभी आपका मैसेज पढ़ा ना मैंने जस्ट अभी। अरफात भाई ने मैसेज किया था, अरफात भाई लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम कबीर भाई, व्हाट अ स्टोरी मॉर्निंग। अच्छा आपका मैसेज था अरफात भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपका मूड सेट रहा है मेरे भाई, दिल से दुआ। अच्छा तब उसमें मैंने मैसेज किया है अमेजिंग स्टोरी कबीर भाई, गूज बम्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द एफर्ट्स, थैंक यू सो मच बहन। और लिखती है व्हाई नॉट यू डिजर्व बराबर की तारीफ एंड हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क कबीर भाई, थैंक यू सो मच बहन। ये पढ़ाई जो मुझे पूरे हफ्ते करनी होती है कसम से वीकेंड आता है मुझे लगता है अरे वाह कोई एग्जाम नहीं है, ये एक मैसेज आया, इट्स अ क्रेजी स्टोरी एंड लॉन्ग एज वेल, यस बहुत डिटेल है ना इसमें हुसनुद्दीन भाई, तो ये स्टोरी लंबी होनी थी बिकॉज इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। प्रिंस भाई ने मैसेज किया है सबके लिए खुशखबरी, आज कोई नहीं मरा वीकेंड स्पेशल कबीर भाई ने आज तो गर्दा उड़ा दिया, नाइस ब्रो, नाइस स्टोरी ब्रो विद योर अनमैच्ड वॉइस, जज़ाकअल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आज बच गए सब। आरिफ भाई ने भी मैसेज किया भाई एक बात ऑनेस्टली बोलूंगा, ये जो आपने गाना बजाया, अच्छा नहीं इसके नीचे वाला भाई, फाइनली आज किसी को नहीं मारा, बेस्ट स्टोरी थी, मौत के मुंह से निकल कर बचा दिया आज। बिल्कुल फैसल भाई कह रहे हैं कहानी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी बात ये कहानी में आपने किसी को टपकाया नहीं है, अभी एंडिंग करा दी, डजंट मीन कि आने वाली कहानी में कोई बचेगा, ठीक है इतनी उम्मीद मत लगाना मेरे से। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई कैसे हैं, हैप्पी थर्सडे एंड हैप्पी वीकेंड। अबू आकिब भाई लिखा है जबरदस्त स्टोरी भाई, आई विल मिस योर शो सिंस यू मूविंग टू द इवनिंग बिकॉज दिस शो इज़ वेरी एक्साइटिंग ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग, बट देर इज नो फिक्स टाइम टू लीव द ऑफिस, स्टिल आई विल फाइंड अ सोल्यूशन। बहुत सारा प्यार मेरे भाई, मीन्स अ लॉट भाई, मीन्स अ लॉट। एक भाई ने लिखा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप मुझे स्टोरी का चस्का लगा के शाम में जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? अरे शाम में जाना कोई दिक्कत थोड़ी है। अबू साद भाई ने मैसेज किया गुड स्टोरी, आपका अंदाज माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकअल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फराज भाई कह रहे हैं स्टोरी वाज गुड, ये बेवकूफ़ था कह रही पैसे लेके कंट्री से चला जाता, ज़्यादा ही अक्ल लगा रहा था। फराज भाई कह रहे हैं करा एक नंबर स्टोरी थी कबीर भाई, कफन दफन एकदम एकदम, थैंक यू सो मच भाई। लिखा है शुक्र है कोई मरा नहीं उमर शहजाद भाई, वो उतने ठंड में मफलर से पीछे आदमी आता है, अरे क्या हुआ, अच्छा कोई मरा नहीं। एक मैसेज है ग्रेट स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिर शहबाज साहब ने मैसेज किया है देन अस्सलाम वालेकुम, हम भी यही वेट कर रहे थे कि अब कोई मरेगा, है ना मुझे पता था, बहरीन में भी हमारी बहन जो है वेट कर रही थी कोई ना कोई जो टपकेगा, ये इस ताबूत के अंदर बची कैसे रह गई क्योंकि वीकेंड था इसलिए मैंने ये बचा के रखी थी कहानी कि वीकेंड पर सुनाई जाए ज़्यादा बेहतर है। अमन भाई कह रहे हैं नाइस स्टोरी 67, 68, 79 राइट और 81 को 89 करेक्ट, हाँ करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही, 67, 68 इज़ ब्रो 68, 67 इज़ 67 सही तो लिखा है आपने। नाइस स्टोरी, थैंक गॉड बारबरा इज़ अलाइव, सब बहुत खुश हैं बारबरा के लिए वाह वाह वाह, इतने तो लोग रिश्तेदार के लिए खुश नहीं होते जितने कहानी में बारबरा के लिए खुश है कि चलो अच्छी बात है बारबरा तो बच गई, वरना ये कबीर तो छोड़ता ही नहीं, कल तो जहाज़ में से गिरवा दिए लोगों को और आज बताइए बारबरा की किस्मत है कि वीकेंड था भाई साहब, हर किसी किस्मत बार बार जैसी थोड़ी होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ रहे हो इस गाने के बाद मिलते हैं करण ओजला और आपको कहानी कैसे लगी बता सकते हैं 666-221-07 पर। वेरी हैप्पी वीकेंड, हाँ भाई बार बार के फैन आ गए।

0: तो क्या है, एक मैसेज फरद भाई कह रहे हैं शादी के लिए ऐसी दुआ देते हैं कोई रहे? मैं बिल्कुल दुआ देता हूँ, आपको चाहिए? और उन्होंने मैसेज किया है, मजा आ गया तुम उस वाले के सॉन्ग्स पे लगा दिए। भाई मैं देखना पड़ेगा इफ़ आई हैव द सॉन्ग्स इन द प्ले लिस्ट और नॉट, क्योंकि कुछ गाने होते हैं ना थोड़ा सा भाई के थोड़े अलग किस्म गाने होते थे ना। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आप तो कराची तक छा गए, आपकी स्टोरी कराची में आजकल सुन रहे हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं आप, कराची में लोग सुन रहे हैं कहानी? ये तो मेरे लिए बॉर्डर पार पहुंच गया मैं इरफान भाई, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं खुशी के आंसू है, थैंक यू सो मच भाई, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ये क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर, कबीर सेठ, अरे खैरियत में कबीर सेठ, क्या बात है। एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी मेरा भाई, क्या चल रहा
1: है? कबीर सेठ,
0: कबीर से बैठे हुए हैं अपने वो नारी के गल्ले में मेरा भाई। नारी होटल में लाओ भाई छोटे चार प्लेट। हाँ बताइए आसिफ भाई कैसे?
1: बाकी आज भाई मैंने तुम्हारी पोल्ट्री बंद होते हुए देखा हो भाई,
0: है ना?
1: मालूम किससे? अभी तुम ये सोचो किससे, तुमको कॉल किए भाई, तुम सोचो एक लिस्टनर ने तुम्हारी बोलती बंद किया भाई आज।
0: हाँ ये
1: मैं
0: तो है,
1: सुनना चाहता हूँ नाम,
0: मैं मानता हूँ सुंबुल बहन ना, सुंबुल बहन ने जब कॉल करी थी वही ना?
1: जी जी जी
0: हाँ, अगरी अगरी हथियार डाल दिए थे भाई, मैंने हथियार डाल दिए थे मैंने।
1: मैं बोला ये भाई ये बंदा चुप नहीं होने वाला, दुनिया को चुप कराने वाला, आज ये चुप करके सुन रहा है।
0: उन्होंने इल्जाम ऐसे से लगाए कर रहे मतलब, फिर मेरा वकील भी भाग गया, बोला सर ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगा।
1: तुमको पता है भाई मैं तुमको मैसेज कर रहा था।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: मैं बोला भाई बचो बचो।
0: पर देखो उनकी उनकी उनकी बात भी पार्शली सही है, कुछ मैंने देखे हैं लोग बहुत ज्यादा अभी स्किन केयर में आ गए हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्गली फॉलो करते हैं एकदम रूटीन को। आप भी हैं कि उनमें से आंखों पे खीरा रखने वाले?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: मुल्तानी मिट्टी वाले हो क्या?
1: नहीं भाई मैं तो सीधा साबुन वाला हूँ।
0: फिर अपनी दोस्ती बहुत लंबी जमेगी, ठीक है। एक काम करना, आज जो है मेरी पब्लिक से गुजारिश है, प्लीज आज सरोवर भाई से कहिएगा कि सरोवर भाई आप मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हैं इतनी? बहुत जरूरी है ये उनके साथ एक बार आज होना चाहिए, आज वीकेंड है सो ये हमारा जो प्रैंक है उन तक जाना चाहिए, इतना कहना कि सरोवर भाई आप इतनी मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हैं, इतना ही बोलना है बस, ठीक है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट
1: भाई, ले लेंगे रिस्क, और क्या है।
0: हाँ ये रिस्क लेने का बहुत जरूरी है।
1: बाकी
0: वो क्या नाम है,
1: सुम्बुल बहन टीचर है ना?
0: हाँ सुम्बुल बहन टीचर है, यस।
1: लाख लाख लाख शुक्र है भाई, नए टाइम पे नहीं थे।
0: देखिए मैं जो हूँ उनसे सवाल पूछूंगा आपके बारे में, फिर आप सुन नहीं पाएंगे, बता रहा हूँ। बहुत खतरनाक इल्जाम लगाए हैं उन्होंने पब्लिक पे,
1: बहुत डेंजर है भाई। जब वो जैसी बात स्टार्ट की थी ना, भाई ये तो चार्ली शॉट लगा रही है।
0: हर गेंद जो है वो स्टेडियम के बाहर जा रही है।
1: स्टेडियम के बाहर जा रही डायरेक्टली, ये ना मान के छोड़े
0: है, ये ना माने है, यो ना माना भाई छोड़े। क्या बनता है, मजा आ गया, थैंक यू मेरा भाई। पर याद
1: आज ट्रैफिक क्यों भाई इतनी
0: भाई, क्या किधर ट्रैफिक हो रहा है आज बार?
1: हाँ भाई थोड़ी थोड़ी जगह पर ट्रैफिक बहुत हो रही है।
0: तो भाई मुंबई की याद आ रही है ना तुमको, इसलिए ट्रैफिक लगवाया मैंने।
1: अरे भाई जाने वाला हूँ, दुआ करो बस इंशाल्लाह जल्दी जाओ जाके आओ।
0: अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर जल्दी जाओ जाके।
1: चल रहे तुम भी चलेंगे ना भाई?
0: भाई मैं ट्रैफिक में निकलता ही नहीं हूँ, मैं घर पे क्या तो है। बैटमैन सुने भाई, बैटमैन देखा
1: भाई? अपने उधर ट्रैफिक ओके, आई नो ट्रैफिक है, मगर अपने पास ट्रेन है भाई, ट्रेन।
0: अरे भाई मुंबई की ट्रेन से मेरे को बचा हुआ है, मेरे बस का नहीं
1: भाई। एक बार सफर तो करके देखो, कभी सफर नहीं किया भाई तुमने?
0: नहीं भाई एक मरतबा गया था, खाली थी उस टाइम पे, रात में जो चलती है ना, रात वाली जो बिल्कुल लेट टाइम होती है, उस टाइम पे बैठा था मैं एक्सपीरियंस के लिए।
1: मजा आएगा भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, एक बार तुम ट्राई करो भाई, बहुत मजा आएगा।
0: ठीक है किसी दिन तूफानी करेंगे भाई, किया जाएगा। ठीक है भाई,
1: ओके कबीर भाई, अपना ख्याल रखो,
0: आप भी ख्याल रखो मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो आज जो है आपको ये करना है कि सरोवर भाई को बोलना है कि सरोवर भाई आप इतनी मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हैं, ये आपको करना है। उनके शो 11 बजे उनका शो शुरू होगा। एक मैसेज आया क्रिस्टल जी का, वो कहते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी, आई रियली विश आप कभी पश्तो ट्राई करें, आई वांट टू सी यू हाउ यू साउंड स्पीकिंग पश्तो, डोंट डोंट डोंट इवन इमेजिन मी स्पीकिंग पश्तो, अरे

0: मैं बेचारा खड़ी भाषा बोलने वाला इतनी मीठी भाषा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत फ्लो चाहिए पश्तों के लिए ना। एक में से कबीर भाई, शो के बाद क्या कर रहे हो, मूड हो तो बता चलते। भाई शो के बाद अपने को 10-12 रिकॉर्डिंग है भाई। ईद पे आरजे जो है वो सिपाही बन जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए नदीम भाई, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड भाई, कॉल की बज रही। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: भाई, वाकई में जो है ना भाई बोल के गए अभी संबुल बहन ने, तो आपकी जो है बोलती बंद कर दी, सही है बंद कर दी, सबकी बंद कर दी भाई, और कोई टिक नहीं सकता है, ये भी कमाल है।
0: पर मुझे उन्होंने जो बातें कही, मैंने कहा यार मैं मानता हूँ वो बातें कई कुछ हद तक सच भी है।
1: हाँ हाँ, आज के दौर में चल रहा है।
0: हाँ तो आपको कैसे लगे?
1: जी कहानी तो बहुत जबरदस्त भाई, और मैं तो पहले ही समझ गया था कि जब आपने एक बीच में कहा था कि जो है उनके जुबानी जो कहानी सुनाई आपने, मतलब जो है कि मतलब जो लिखा था उनका जो हिस्ट्री बताई ना आपने, जो बहन किए थे क्या बोलते ताबूत में, तो समझ में आ गया था कि ये तो जिंदा रहे कि हो सकता है और भी जो गिरने पर हो वो शायद मर जाए या कुछ भी हो पकड़े जाए,
0: पर आपको ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो टपकेगा।
1: हाँ लेकिन आपने आज तीनों को बचा लिया, तो कमाल की बात है,
0: कमाल की बात है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। नहीं ठीक है, ओके बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। मैं वीकेंड के लिए बजा के रखी थी, मैंने कहा चलो वीकेंड पे ऐसी सुनाएंगे जो
1: नहीं, कहानी तो अच्छी लगी भाई, बस एक चीज है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई बार बार इस चीज को याद मत दिलाओ ना भाई, आप सामने जा रहे हैं यार।
0: अरे नहीं वो
1: तकलीफ दे रहे,
0: अभी तो प्रोमो के लिए बोलना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा था मैं।
1: मतलब यही एडवर्टाइजिंग भी करना है।
0: अच्छा ठीक है, तो ये आप कोशिश कीजिएगा शाम में कभी आ सके, अगर नहीं आ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कहानी आप तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है,
1: कभी कभार हो जाता है, कोशिश कर लेते हैं।
0: डन डन डन, डेफिनेटली
1: ओके कभी,
0: ओके मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। एक मैसेज आया मेरे पास, यू रिमेंबर ईच नेम एंड ईच स्टोरी, इट्स अ क्रेजी टास्क, इट इज़ अ क्रेजी टास्क। बहुत हुस्न दीन साहब, ये पढ़ाई मैंने खुद ही बुझ ली, मैं ही टीचर मैं ही स्टूडेंट हूँ। आगे सरवर भाई तक मैसेज जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए भारा भाई। ये मैसेज क्या है मुझे रिफत हुसैन भाई ने, जज़ाकअल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देन एक मैसेज, सलाम कबीर भाई स्टोरी के लिए थैंक्स, नाइस स्टोरी। फैसल भाई लिखते हैं, भाई बारबरा को पता ही नहीं होगा उसके बचने के करीब 55-56 साल बाद लोग खुश हो रहे होंगे। वो भी कतर में, बारबरा के लिए लोग हद से ज़्यादा खुश हैं भाई, ठिकाना ही नहीं है। एक मैसेज है कबीर भाई, आपको स्टोरी डेली सुनता हूँ, मेरे दोस्त लोग सुन नहीं पाते क्योंकि वो लोग के 7 बजे से ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको स्टोरी सेंड कर तो बोलता हूँ। हम रात के 9 बजे मिलते हैं, हमारे पास रूम पहुंचने के लिए 30 मिनट होता है, 7-8 लोग मिलके आपकी स्टोरी एंजॉय करते हैं। थैंक्स कबीर भाई, भाई दिस इज सच ए स्वीट मैसेज भाई, थैंक यू सो मच। 7-8 लोग मिलके एक कमरे में फिर स्टोरी सुनते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। मैं भेजूँगा आपको स्टोरी, डोंट वरी अबाउट इट। क्या वो क्या यार, क्या यार सरोवर भाई को हम करके प्रैंक, लेकिन हमारे साथ हो जाता है, उनको लोडिंग सिस्टम बहुत स्लो, वो स्लो हो जाने तो उनका लोडिंग सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। वो लास्ट टाइम अपने वाली जोक पर बोला था उनके शो में करना, जो किया बेचारे एक दूसरे से पूछ रहे क्या है। नहीं इस बार उनसे कही है, मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हो सरोवर। फवाद भाई चाय पी रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं सिखा दूंगा पश्तो, बहुत आसान है भाई, आसान क्योंकि आप बोल लेते हैं माशाल्लाह। इरशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इतने सारे मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट इतने सारे लोगों ने अलग अलग वजूहत के लिए मैसेज किए हैं कि अच्छे लगते एक साथ सुनते हैं, मीन्स लॉट। 8:40 मैं कह जी दलजीत दोसांझ का गाना, शारमर दिल से

0: 42
1: by the clock. अरसलान भट्ट साहब ने इतना प्यारा मैसेज किया, मैं बोलूंगा तो मेरे जो है ना वो गले में एक किस्म का लंप आ जाएगा. इट इज़ यू मेड मी सो इमोशनल भाई. अरसलान भट्ट भाई ने बहुत प्यारा मैसेज किया है, उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं. मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे पता है मैं इमोशनल हो जाऊंगा. थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर सो बिंग सो सो काइंड टू मी. सेट कर दिया आपने भाई वाइब, दिन नहीं पूरे महीने की सेट कर दिया आपने वाइब. थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली थैंकफुल. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई.
1: अरे प्रिंस भाई, ये रेखा जी कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है.
2: रेखा जी तो
1: नहीं बता बताएं, मैं नहीं बताऊंगा.
2: अब क्या ही बताएं,
1: क्या ही बताएं जी. प्रिंस भाई आप भी बताएं, क्या कहना चाहते हैं भाई, कैसे लगी कहानी भाई को?
2: बस बढ़िया भाई,
1: बढ़िया
2: बढ़िया, यानी बढ़िया है,
1: यानी बढ़िया.
2: अल्फाज नहीं है कैसे बयान करें,
1: पर जिंदा बजने की खुशी तो बार बार की आपको भी है, ये तो मानेंगे आप.
2: मुझे लगता है बाबरा को ज्यादा खुशी होगी जिंदा बचने की.
1: उसे पता भी नहीं यहाँ से कितनी सारी दुआएं जा रही हैं उसके लिए.
2: हाँ मैंने सोचा चलो भाई न्यूज रिपोर्टर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सबको खुशखबरी पहुंचा देते हैं. बाबरा बच गई है,
1: बाबरा बच गई है, एवरीबॉडी सो हैप्पी. खुशी का मामला देखिए, लोग अलग से सिर्फ उसके लिए मैसेज कर रहे हैं, बड़ी बात है.
2: हाँ यार भाई,
1: हाँ तो और बताए
2: भाई. सिंपल सी बात है, जब आप कुछ लोगों को बचाते हो, यानी बहुत सारे लोगों को, कभी एक प्लेन में बहुत सारे 300-400 लोगों को बचा लिया, कभी इधर बचा लिया, कभी उधर बचा लिया, अब इनको मैनेज करने के लिए किसी को तो मारना ही पड़ेगा ना.
1: एक आध को तो जाना ही पड़ेगा ना, मतलब इतना तो
2: भाई. अब 300 आदमियों को, एकदम 300 पैसेंजर्स को बचाया है, तो वन बाई वन एक एक को मारते जाएंगे तो फिर हिसाब लेवल होगा ना.
1: वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, इतनी सी मैथ से बताइए
2: भाई.
1: क्या भाई,
2: सिंपल मैथ है, मैथ में कमजोर है ना, क्या करें.
1: ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, मैं अब आप पे सारा ब्लेम डाल दूंगा, ये मुझे प्रिंस भाई ने सिखाया है. आप ही बचाएगा ब्लेम, ये कोई बोलेगा भाई इस कागज में क्यों लोग टपक गए, भाई प्रिंस भाई ने बोला था पिछली बार बचा लिए थे अभी मारो.
2: अरे भाई लेवल होना चाहिए ना.
1: हाँ.

0: पसीना लगता है कि ऊपर नीचे रहे लेवल पे होना चाहिए भाई।
1: जज साहब पढ़ दीजिए कानून की किताब।
0: हाँ, जज जबान से पोछा लगवाएगा अगर आप ऐसे बोलेंगे जज के सामने। हाँ, जज है वो, घर का नौकर नहीं है।
1: नहीं प्रिंस भाई, सच में बहुत अच्छा लगा यार आज, मुझे भी कहानी सुना के भी इनफैक्ट मजा आया, बिकॉज ये बचा के रखी थी वीकेंड के लिए। बट हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल प्रिंस भाई। और
0: भाई थैंक यू एंड सेम टू यू भाई।
1: थैंक यू।
0: मजे तो ये हैं
1: जी
0: पब्लिक के
1: जी,
0: एक तो सुनते हैं कि सोचते हैं मर जाए,
1: और फिर
0: नहीं मरते हैं।
1: हाँ।
0: तो अरे बचा दिया,
1: अरे बचा दिया।
0: और ऊपर से भाई पहले जब सॉन्ग्स आते थे ना माशाल्लाह, तो वो सिर्फ सॉन्ग्स होते थे, यानी काफी इमोशनल एंड समथिंग लाइक दैट। आजकल के जो सॉन्ग्स है ना भाई, आप पंजाबी सीख लो, आप कोई और लैंग्वेज सीख लो, आपने इंग्लिश नहीं आती आप इंग्लिश सीख लो, थोड़ी बहुत हरियाणवी आपसे सीख लो, यानी अगर एजुकेशन पर्पज से देखा जाए तो सारे हिंदी और उर्दू गानों में इस वक्त इंग्लिश और पंजाबी और मराठी और सारी घुसी पड़ी है लैंग्वेज।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सच है। ये तो
0: एक अरबी इन चीजों से परे थी, वो भी आ गई,
1: वो भी आ गई। अरे बहुत सारे गाने, बहुत सारे गाने भाई, बहुत सारे। इनफैक्ट मैं हैरान था, मैंने जब वो अरबिक डब स्टेप सुना, मैंने कहा भाई साहब ये कहां तक पहुंच गया मामला, तो बहुत आगे तक चला गया। किसी ने कुछ
0: ऑप्शन नहीं, बढ़िया बढ़िया गाने। हाय रे जबरा, हाय रे जबरा भाई, मौत
1: है ना,
0: मजे करा दिए सिंगर्स ने। तो
1: बिल्कुल,
0: आपने सीखना है सीख लीजिए।
1: हाँ।
0: आपने सिर्फ सुन के एंजॉय करना है, एंजॉय कर लीजिए,
1: आपके ऊपर है,
0: बस आपके ऊपर है।
1: वरना नहीं भी समझ में आएगा तो वाइब तो है गाने की, वाइब पे नाच लो।
0: हाँ, वाइब तो है भैया। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया है, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी सुना एक दो दिन पहले, मामा समथिंग लाइक दैट।
1: ओके, बताइएगा कौन सा गाना है ये आपने सुन ली। एक तो आजकल ये बताना मुश्किल है कौन सा गाना सुना है। स्टार्टिंग नहीं मिलती है।
0: हाँ भाई, उन लोगों ने रैप को भी बस मौत के घाट पहुंचा दिया है।
1: मुझे उन्हीं को देख के तो कॉन्फिडेंस आता है, मैंने कहा ये कर सकते तो मैं तो कर ही सकता हूँ। नहीं, आई हैव सीन बहुत बहुत
0: स्टार्टिंग वर्डिंग्स है, अगर आप चला सके तो।
1: हाँ, कौन सा है, क्या है
0: ये? इंग्लिश वर्जन है, इसकी स्टार्टिंग वर्डिंग है मामा लुक एट मी नाउ, समथिंग लाइक दैट।
1: अच्छा, ये आपको यूट्यूब पे ढूंढ के देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गाना है। पर किसी को समझ में आ गया हो तो हो सकता है मैसेज कर दे, मैं मैसेज भी देख रहा हूँ लगातार। नहीं अभी तो किसी के समझ में नहीं आया भाई। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्रिंस भाई, अगर मिलेगा तो बताता हूँ।
0: चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। अरे भाई कभी अपना नंबर भी दे दिया करो, कभी गरीब इंसान आपको सोचे कि भाई इनवाइट करें किसी चीज पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा
0: ते नंबर पहुंचा दें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: बेशक बेशक बेशक बेशक,
0: कब तक हम 107 को तकलीफ देते रहेंगे। है कि नहीं?
1: अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस भाई, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाने का मुझे लिंक भी दे दीजिएगा, ठीक है?
0: ये देखिए, ये पहुंचा आपके पास में गाने का लिंक, वो भी पूरी फुर्ती के साथ।
1: अच्छा एक सेकंड, मैं ये देख रहा हूँ, मामा लुक एट, नहीं ये वाला नहीं है अपने पास गाना भी, आई डोंट थिंक सो, ये गाना है। हाँ। सुनना पड़ेगा,
0: भेज दिया ना, इसी को सुन लीजिए और इसी को लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया। यानी आपको क्या ही बताऊं,
1: नहीं मैं इसको सुनता हूँ और फिर देता हूँ अपनी टीम को, देखते हैं। अरेबिक गाना है क्या ये?
0: है तो अरेबिक, फिलहाल इंग्लिश वर्जन में है, लोग इसको एंजॉय ही करेंगे इंशाल्लाह।
1: ठीक है ठीक है, डन डन डन। ओके प्रिंस भाई,
0: है अरेबिक है एक्चुअल, जो है सॉन्ग ओरिजिनली अरेबिक है, लेकिन नाउ इसका मैं इंग्लिश, यानी भैया चलो जिन्हें नहीं भी आती है वो इंग्लिश में गा लें जैसे भी हो।
1: या फिर कर लो, टाइम पास कर लो, और तो
0: हाँ, वो बड़े मजे आते हैं, पता है मेरे दोस्त जब गाड़ी में बैठे होते, अब तो बहुत ही कम है, वैसे ही बहुत कम ही लोगों को लेके गाड़ी में घूमता हूँ, क्योंकि वो लोग कहते भाई भाई एक हिंदी सॉन्ग लगा देना, वो आवारापन का लगा देना, वो उसका समथिंग जिसमें आलाप हो लंबी वाली।
1: हाँ, वो लंबी वाली आलाप आदत
0: लगाने के बाद में जहाँ आलाप शुरू हो और वहीं आपने इसको पोच कर दिया, वाह मजे ही मजे हैं जिसकी आवाज सुन के।
1: मैं भी आलाप वाले गाने इसे लगाता हूँ, जब पता होता गाड़ी के अंदर जो है आदमी उस आलाप के साथ एकदम बह जाता है, बहुत मजा है उसका।
0: अरे बह जाता है, अरे आपने बांध बांध रखा होगा तो टूट जाएगा।
1: चले ठीक है प्रिंस भाई, मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, इसी के साथ ही।
0: भाई भाई सॉरी सॉरी,
1: नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं
0: थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम,
1: जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई,
0: एंड डोंट फॉरगेट योर नंबर।
1: नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके प्रिंस भाई, जजाक अल्लाह।
0: अच्छा क्या कुछ है आपके साथ?

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही

0: लेकिन लाइफ के लेसंस भी दे पाए।
1: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
0: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: एक्सक्यूज मी,
3: अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
4: हाँ उसके लिए तो
3: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
4: वैसे वो तो देखो,
3: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
4: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है।

0: नहीं छोड़नी चाहिए। जब मोमिन से कोई गुनाह सादिर हो जाए तो वो दिल दिल में बेचैन हो जाता है, क्योंकि ईमान वाला गुनाह पर मुतमईन नहीं रह सकता। अब इस मोमिन के दिल की कैफियत ये होती है, इलाही ए मेरे अल्लाह, कैफ अफरहु वक़द असैतुक, मैं कैसे खुश रहूं जबकि मैंने तेरी नाफरमानी की है। وكيف لا افرح وقد عرفتك, लेकिन मैं खुश क्यों ना हूं जबकि मैंने तुझे पहचान लिया है। गोया यहां साइल की नजर उम्मीद के दरवाजे की तरफ है। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने रहमत का दरवाजा पा लिया है। वो जानता है कि अल्लाह माफ करने वाला, सुनने वाला और रहमत फरमाने वाला है। फिर वो मजीद कहता है, وكيف ادعوك وانا خاطئ, मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं खुद खताकार हूं। यहां बंदा अपनी कमजोरियां मान रहा है, अपनी आजिजी को नुमाया कर रहा है। फिर कहता है, وكيف لا ادعوك وانت كريم, और मैं तुझे क्यों ना पुकारूं जबकि तू बड़ा करीम मेहरबान है। क्योंकि वो देखता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है, हर चीज को अपने हाथे में ले लेती है। इसी वजह से वो गड़गड़ा कर ये कहता है, इन कुंत ला तरहम इल्ला ताइईन फमन लिल आसीन, अगर तेरी रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए हो तो फिर गुनहगारों का कौन है मेरे मौला। यानी अल्लाह की रहमत तो सिर्फ कामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो तौबा करके बार बार अपने रब की तरफ लौटते हैं उनके लिए भी है। मजीद इसी अंदाज में फिर वो कहता है, وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ, अगर तू सिर्फ बेहतरीन अमल वालों को कबूल करे तो हम जैसे कमजोर लोगों का क्या होगा। वह यहाँ बंदे का इतराफ है कि हमारे आमाल कामिल नहीं, इसीलिए हम अमल से ज्यादा अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। फिर वो कहता है, रबी हस्साइमून वफाजल काइमून वनजल मुखलिसून, रोजा रखने वाले कामयाब हुए, इबादत गुजार कामयाब हुए, इखलास वाले नजात पा गए। यानी तो सारे नेक लोग हैं, ये तो नजात पा गए, लेकिन हमारा क्या होगा। وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। فَارْحَمْنَا, हम पर रहम फरमा। وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ, अपने फजल और एहसान से हम पर करम फरमा। यानी हम अपने गुनाहों के बावजूद तेरे ही तरफ लौट कर आए हैं और तुझे ही से हमारी सब उम्मीदें वाबस्ता हैं, बस तू हम पर रहम फरमा। واغفر لنا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے امید رکھو, عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو, بلکہ हम हर वक्त अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। हम अपने आमाल के एवज कुछ हासिल नहीं कर सकते। ए अल्लाह, ए इंसो जिन के रब, ए तमाम लोगों के रब, अल्लाहुम्मा रब्बन नास, तो हम सब को माफ कर दे, हम सब पर, इंसानियत पर रहम और करम का मामला फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
4: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
5: ये शो कौन सा है?
6: द सुपर किड शो।
4: Sunday to Thursday, 1:30 p.m. से 3 p.m. तक, only on FM 107, दिल से देसी। I love the Super Kid Show.

0: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें। राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है, ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो, जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से बीसी।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद आरजे श्रुति।
2: कभी सोचा है हेल्थ की शुरुआत हॉस्पिटल से नहीं घर से होती है? एग्जैक्टली जिस जगह पर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जहां हम थक कर लौटते हैं, जहां हम बिना मास्क के खुद को देख सकते हैं, वहीं से हेल्थ शेप लेना शुरू करती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ स्टार्ट्स एट होम की। घर सिर्फ चार दीवारी का नहीं होता, घर एक फीलिंग होती है और वही फीलिंग आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालती है। वेल सोचिए, सुबह उठते ही अगर घर का माहौल एकदम शांत हो, थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा फ्रेश हवा का फ्लो हो, तो दिन ऑटोमेटिकली कितना हल्का लगता है ना। और अगर घर में हमेशा शोर, टेंशन या क्लटर हो, तो बॉडी और माइंड दोनों अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वेल, हेल्थ स्टार्ट्स एट होम इसका मतलब सिर्फ हेल्दी खाना नहीं होता। हाँ, घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर घर का एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्पेस सिर्फ एस्थेटिक लिए नहीं होती है, क्लीन स्पेस आपके माइंड को काम डाउन करती है। जब चीजें अपनी जगह पर होती है, तो दिमाग भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। और घर के अंदर की हवा, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। कभी कभी सिर्फ खिड़की खोल देना थेरेपी जैसा काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर का कॉन्वर्सेशन बहुत मैटर करता है। वेल, घर वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा बोलते भी हैं और सबसे ज्यादा चुप भी रहना पसंद करते हैं। अगर घर में बातचीत ओपन हो, फीलिंग शेयर करना सेफ हो, तो इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती है। और अगर सब कुछ दबा के रखा जाए, तो वो स्ट्रेस बनकर बॉडी में उतर जाता है। हेल्थ स्टार्ट्स एट होम का मतलब है छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि साथ बैठकर खाना, फोन साइड में रखना और सिर्फ एक दूसरे को सुनना। घर वो जगह है जहाँ रूटीन बनती है स्लीप टाइमिंग, ईटिंग हैबिट्स, स्क्रीन टाइमिंग से। इसीलिए जब हम घर पर हेल्थ फ्रेंडली हैबिट्स क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ के बाकी एरियाज में भी फ्लो हो जाती है। और हाँ, घर सिर्फ फैमिली के साथ नहीं होता, अगर आप अकेले रहते हो तो भी ये बात उतनी ही ट्रू है। आप अपने घर के केयर टेकर हो, आप डिसाइड करते हो कि वो स्पेस आपको स्ट्रेस देगी या सुकून। वेल, घर ऐसी जगह होनी चाहिए कि ऑफिस के पूरे टाइम के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद, आप एक ऐसी जगह आ रहे हो जो सिर्फ आपकी है, जो आपको सुकून दे रही है। एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड गोइंग बैक टू होम। तो आज का एक सिंपल सा थॉट, घर को सिर्फ रहने की जगह मत बनाइए, उसे रिचार्ज जोन बनाइए। क्योंकि जब घर हेल्दी होता है ना, तो आप भी हेल्दी फील करते हो, और जब आप ठीक होते हो तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा स्मूथ लगती है। इसलिए याद रखिए, हेल्थ का फाउंडेशन कहीं और नहीं, घर से ही शुरू होता है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

कल्ट फिगर पीके बनर्जी यानी प्रदीप कुमार बनर्जी और लोग उन्हें बहुत प्यार से पीके बुलाते थे। यहाँ दोस्तों पीके बनर्जी सिर्फ एक बेहतरीन फुटबॉलर नहीं बल्कि इंडियन फुटबॉल की पहचान थे। 1950 और 1960 के दौर में इंडियन फुटबॉल का चमकता हुआ सितारा थे। अलॉन्ग विद चुनी गोस्वामी बलोराम पीके बनर्जी डिफाइन इंडियन फुटबॉल ड्यूरिंग द टेरा। उनकी स्पीड बॉल कंट्रोल और गोल स्कोरिंग एबिलिटी ने उन्हें एशिया के बेहतरीन फॉरवर्ड्स में शामिल कर दिया। उन्होंने इंडिया के लिए कई यादगार मैचेस खेले और इंटरनेशनल स्टेज पर मुल्क का नाम रोशन किया। स्पेशली 1956 ओलंपिक गेम्स जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया फोर्थ पोजीशन हासिल की थी, उस टीम में भी पीके बनर्जी वाज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर अलॉन्ग विद चुनी गोस्वामी बलराम जैसे मैंने बताया। 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा होना उनके करियर का एक अहम संग मील था। बाद में पीके बनर्जी ने इंडियन फुटबॉल टीम की कप्तानी भी की और अपनी लीडरशिप से टीम को नया हौसला और डायरेक्शन दी। रिटायरमेंट के बाद यानी एज अ प्लेयर व्हेन ही रिटायर्ड, उसके बाद भी उनका फुटबॉल के साथ रिश्ता जो था टूटा नहीं। वो कोच और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहे और नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में बुनियादी किरदार अदा किया। दोस्तों पीके बनर्जी का जुनून, मेहनत और कमिटमेंट इंडियन फुटबॉल के लिए हमेशा मिसाल रहेगा। वो एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर की पहचान थे जिनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: डियर कस्टमर, आपका बैंक अकाउंट आज रात 12 बजे ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई करें।
4: फोन वाइब्रेट, हार्ट बीट बढ़ जाती है और दिमाग ऐसी सिचुएशन में काम करना बंद कर देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। ये इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं अकाउंट ब्लॉक थ्रेट स्कैम। स्कैमर्स फेक एसएमएस या व्हाट्सएप भेजता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट एटीएम या यूपीआई बंद होने वाला है। साथ में एक लिंक भी होता है बिल्कुल असली जैसा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फेक वेबसाइट्स ओपन हो जाती है और आप खुद ब खुद अपनी बैंकिंग डिटेल्स इंटर कर देते हैं। बस फिर डेटा उनको मिल गया है, वो बाकी काम खुद कर लेते हैं। अब कैसे बचें? बैंक कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस पे लिंक भेज के डिटेल्स नहीं मांगता। अकाउंट ब्लॉक का मैसेज अगर आया है, वेरिफिकेशन का प्रेशर बनाया जा रहा है, ये एक स्कैम का सिग्नल है। सो अकाउंट ब्लॉक होने से पहले सोच ब्लॉक मत होने दो।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488

0: 8886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। शो लेकर आ गए हैं एक दफा फिर से आपके लिए इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, और उम्मीद करते हैं कि आज भी ये आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अक्सर ऐसा ये होता है कि कुछ सोशल प्रेशर की वजह से या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम इन बाउंड्रीज को इग्नोर कर देते हैं या हमें लगता है कि ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। लेकिन आज हम आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताएंगे कि क्यों आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज है वो मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं ये होती क्या है। इंसानी जिंदगी ताल्लुकात से बनती है। हम घर में वालदैन, बहन भाइयों, शरीकों हयात और बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। बाहर दोस्त, पड़ोसी, साथी, कारकुन और माशरे के दीगर अफराद से हमारा वास्ता रहता है। इन ताल्लुकात को खूबसूरत, मुतवाजन और बावकार बनाने के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है और वो है आपकी जाती हुदूद यानी पर्सनल बाउंड्री। सादा लफ्जों में बाउंड्रीज का मतलब है अपनी जिंदगी, वक्त, जज्बात, तवानाई और हुकूक के गिर्द एक मुनासिब दायरा कायम करना, ताकि दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम और तवाजुन के साथ जिया जा सके। ये दीवार खड़ी करना नहीं बल्कि अपने लिए एक सेहतमंद हद मुकर्रर करना है। बाज़ लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज बनाना खुद खर्ची है या दूसरों से दूरी इख्तियार करना है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ज़ाती हुदूद दरअसल हमारे ताल्लुकात को खराब नहीं बल्कि बेहतर बनाती हैं। ये इंसान को सिखाती हैं कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं, कहाँ खामोश रहना है और कहाँ अपनी बात रखनी है। आज के दौर में बहुत से लोग जज्बाती दबाव, जहनी थकन और ताल्लुकात के बोझ का शिकार हैं। अक्सर वजह ये नहीं होती कि उनके पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं, बल्कि वजह ये होती है कि उनके पास अपनी हुदूद वाज़े नहीं होती। हर एक को खुश करने की कोशिश, हर मुतालबा मान लेना, हर बात बर्दाश्त करते रहना, अपनी राय ना देना, ये सब इंसान को अंदर से थका देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स हर वक्त आपसे वक्त मांगता है, आपके आराम की परवाह नहीं करता, कोई बार बार ऐसी बातें कहता है जो दिल को चुभती हैं, कोई आपकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करता है। अगर इंसान इन मामलात में हद मुकर्रर ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल बोझल हो जाता है। यही वजह है कि बाउंड्रीज सिर्फ एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक इंसानी जरूरत है। बाउंड्री सिर्फ एक चीज का नाम नहीं, इसकी कई शक्लें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल स्पेस की। इसका मतलब है कि अपने दिल और जज्बात की हिफाजत। हर शख्स को हक है कि वो अपनी इमोशनल स्पेस महफूज रखे। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताना जरूरी नहीं। हर शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचाए। फिर आ जाते हैं کہ ہر وقت

0: शायद नहीं, क्योंकि सप्रेस्ड सेल्फ इवेंचुअली हर्ट होती है, और जो दिल बार बार इग्नोर हो वो एक दिन थक जाता है। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट लग्जरी नहीं, जरूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है? ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है अपनी वैल्यू पहचानने से, अपने राइट्स समझने से, गिल्ट के बगैर नहीं कहने से, और टॉक्सिक एक्सेप्टेंस छोड़ने से, और ये समझने से कि मेरी भी अहमियत है। अगर कोई चीज आपकी डिग्निटी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है, वहां बाउंड्री चाहिए। अगर कोई ताल्लुक आपको मुसलसल इमोशनली ड्रेन कर रहा है, वहां बाउंड्री चाहिए। अगर कोई पैटर्न आपको खुद से दूर कर रहा है, वहां बाउंड्री चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज है। बाउंड्रीज बाहर से शुरू नहीं होती, अंदर से शुरू होती हैं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जन्म लेती हैं। जब इंसान अपनी कदर जान लेता है, तब वो अपनी बाउंड्री बनाता है, और जब बाउंड्री बनती है, दिल महफूज हो जाता है, और महफूज दिल बेहतर ताल्लुकात बनाता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट का हुसन है। जब पर्सनल बाउंड्री की बात होती है, तो बाज लोग समझते हैं कि ये मॉडर्न साइकोलॉजी का मौजू है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इस्लाम ने सदियों पहले इस तसव्वुर को निहायत खूबसूरती से वाज़ेह कर दिया था। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम है, और इस निज़ाम में वक़ार, इज्जत, हुदूद, तवाज़ुन और हुकूक बुनियादी उसूल हैं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान हर बात बर्दाश्त करता रहे, खुद को मिटा दे, अपनी इज्जत कुर्बान कर दे और खामोशी को नेकी समझता रहे, बल्कि इस्लाम इंसान को बावकार जिंदगी जीना सिखाता है। सबसे पहले इस्लाम ने इंसान को इज्जत दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने औलादे आदम को इज्जत बख्शी। ये आयत बताती है डिग्निटी इंसान को अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है, ये अर्न नहीं, गिफ्टेड है। इसीलिए अपनी इज्जत की हिफाजत भी बंदे की जिम्मेदारी है। जब अल्लाह ने इंसान को ऑनर दिया, तो कोई इंसान अपनी या दूसरों की इज्जत पामाल करने का हक नहीं रखता। यही बाउंड्रीज की बुनियाद रख दी गई है। इस्लाम में हद यानी बाउंड्री का तसव्वुर बहुत गहरा है। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं, ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे तजावुज ना करो। सोचिए, पूरा दीन ही बाउंड्रीज पे कायम है। हलालो हराम की हद, निगाह की हद, गुफ्तगू की हद, हुकूक की हद, मामलात की हद, रिश्तों की हद। इस्लाम बाउंड्रीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रोटेक्ट समझता है। बाउंड्रीज कैद नहीं होती, हिफाजत होती हैं। जैसे दरिया के किनारे पानी को सिम देते हैं, वैसे हुदूद जिंदगी को तवाजुन देती हैं। अपनी इज्जत बचाना ईमान के खिलाफ नहीं है। बाज लोग समझते हैं कि अपनी बाउंड्रीज बनाना शायद सबर के खिलाफ है। ये गलत फहमी है। सबर जुल्म कबूल करना नहीं, सबर हिकमत के साथ साबित कदम रहना है। अगर कोई आपकी तोहीन करे, मुसलसल इमोशनली हर्ट करे, हुकूक पामाल करे, तो खामोश रहना हर बार तकवा नहीं। कई बार हिकमत के साथ हद कायम करना ज्यादा दुरुस्त होता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है ज़हनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से।
2: इस्लाम जिल्लत पसंद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन खुद को जलील नहीं करता। ये कितनी बड़ी बात है, यानी इंसान ऐसी सूरत हाल में खुद को ना डाले जहां उसकी इज्जत पामाल हो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी बाउंड्री है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा नरम दिल और रहम करने वाले थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में वाज़े हुदूद भी थी। लोग मोहब्बत करते थे, कुर्बत महसूस करते थे, मगर अदब के साथ। ये बाउंड्री थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेसी सिखाई, इजाजत लेकर दाखिल होना सिखाया, दरवाजे पर खड़े होने का अदब सिखाया, किसी के मामलात में बिला वजह मुदाखलत से रोका। ये सब बाउंड्रीज हैं। आज मॉडर्न लैंग्वेज में जिसे पर्सनल स्पेस कहते हैं, इस्लाम ने उसे अदब के नाम से सिखाया। आज प्राइवेसी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझा जाता है, मगर इस्लाम ने उसे बहुत पहले एस्टैब्लिश किया। कुरान कहता है, बगैर इजाजत घरों में दाखिल ना हो। सोचिए, ये सिर्फ दरवाजा खटखटाने का हुक्म नहीं, ये पर्सनल बाउंड्री की हिफाजत है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान की प्राइवेट स्पेस वॉयलेट हो। इसी तरह रीबत से मना किया, तजस्सुस से मना किया, दूसरों की खामियां तलाश करते से रोका। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्रीज क्रॉस करता है। इस्लाम सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज नहीं बल्कि वर्बल बाउंड्रीज भी सिखाता है। किसी की दिल आजारी ना करो, तंस ना करो, तहकीर ना करो, बुरे लकब ना दो। ये सब कुरान ने सिखाया। क्यों? क्योंकि अल्फाज भी बाउंड्रीज तोड़ते हैं, बाज़ख़म ज़बान देती हैं। ये कितनी मुकम्मल तालीम है। इस्लाम हुकूक व फ़राइज के जरिए बाउंड्रीज बनाता है। वालदेन के हुकूक, औलाद के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, दोस्तों के हुकूक। जब हुकूक डिफाइन हो गए, बाउंड्रीज खुद ब खुद बन जाती हैं। जहाँ हक खत्म वहाँ ज्यादती शुरू। इस्लाम इस ज्यादती को रोकता है। मसलन वालदेन की अताअत फर्ज है, मगर अगर मसीहत का हुक्म हो तो अतात नहीं, ये भी बाउंड्री है, यानी मोहब्बत के साथ लिमिट। कई लोग समझते हैं कि इनकार बदअखलाकी है, हमेशा हाँ कहना ही

मुमकिन है कि आप अच्छे नजर आए मगर अंदर से खाली हो जाएंगे। और एक एम्प्टी इंसान दूसरों को भी हेल्दी मोहब्बत नहीं दे सकता। खुद को बचाना सेल्फिशनेस नहीं, जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कंपैशनेट थे मगर पीपल प्लीजर नहीं थे। फर्क समझे, रहमत थे मगर प्रिंसिपल भी थे, नरमी थी मगर हुदूद भी थी। ये आइडियल मॉडल है। अगर आप में ये चीजें हों तो गौर करें। हर बात पर फौरन यस कहना, इनकार से घबराना, लोगों के मूड के मुताबिक खुद को बदलना, नाराजगी के खौफ से सच ना कहना, अपनी जरूरियात पर शर्मिंदा होना, हर वक्त अप्रूवल ढूंढना, ये साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझें, आप सबके जिम्मेदार नहीं, आप हर मसला सॉल्व नहीं कर सकते, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और ये फेलियर नहीं, हकीकत है। फिर छोटी बाउंड्रीज बनाएं। छोटी छोटी बातों पर भी कभी आपको लगे ठीक नहीं है तो नहीं कहना शुरू करें। छोटी जगहों पर अपनी राय दें, आहिस्ता आहिस्ता दिल मजबूत होगा। अक्सर लोग सिर्फ तब खुश होंगे जब आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ें। तो क्या वो एक्सेप्टेंस सेहतमंद है? सोचने की बात है। मोहब्बत जो आपको मिटा दे और उसके बाद मिले, वो मोहब्बत नहीं बोझ बन सकती है। खुद से सवाल करें कि अल्लाह की रजा या लोगों की रजा, और ये बहुत बुनियादी सवाल है। अगर इंसान हर वक्त लोगों की खुशनुदी के पीछे भागता रहे तो अक्सर अल्लाह की रजा, अपनी सेहत, अपना सुकून पीछे रह जाता है। इस्लाम तरजीह दुरुस्त करता है, पहले हक, फिर हिकमत, फिर ताल्लुकात। ये तरतीब जरूरी है। बाउंड्रीज में हेल्दी काइंडनेस होती है, कंपैशन होता है मगर सेल्फ निगलेक्ट नहीं, नरमी होती है मगर सेल्फ लॉस नहीं। ये बैलेंस्ड गुडनेस है। लोगों को खुश रखना अच्छी बात है मगर खुद को मिटा कर नहीं। मोहब्बत अच्छी है मगर अपनी इज्जत गवा कर नहीं। मदद खूबसूरत है मगर बर्न आउट तक नहीं। अक्सर मोहब्बत नहीं, पीपल प्लीजिंग खौफ का लिबास पहन लेती है, और बाउंड्रीज इस खौफ से आजादी देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हर वक्त सबको खुश रखना जरूरी नहीं, सच्चाई, तवाजुन और वक्कार के साथ जीना जरूरी है। आज सेल्फ केयर का लफ्ज बहुत आम हो चुका है। अमूमन लोग सेल्फ केयर को आराम, छुट्टी, अच्छी खुराक, एक्सरसाइज, स्पा डे जैसे ख्यालात से जोड़ते हैं। ये चीजें अपनी जगह अच्छी हैं मगर सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं, हकीकी सेल्फ केयर बहुत गहरी चीज है, और इसका एक अहम हिस्सा है हेल्दी बाउंड्रीज। बाज़ोकात सबसे बड़ी सेल्फ केयर किसी एक्सपेंसिव चीज में नहीं बल्कि एक बावकार नहीं में होती है। कभी अपनी एनर्जी बचाना सेल्फ केयर है, कभी अनहेल्दी डिमांड रद्द करना सेल्फ केयर है, कभी इमोशनल डिस्टेंस सेल्फ केयर है। खुद से मोहब्बत का अमली इजहार है सेल्फ केयर। अपनी जज्बानी, जहनी और जज्बाती और रूहानी सेहत का ख्याल रखना, और बाउंड्रीज इन सब की हिफाजत करती हैं। अगर बाउंड्रीज ना हो तो सेल्फ केयर अक्सर नामुकम्मल रहती है। पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट का ये जो टॉपिक है, ये एक सिर्फ नजरी बात नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की एक हकीकत है। हम सब किसी ना किसी सतह पर ताल्लुकात, जिम्मेदारियों और तवक्कात के दरमियान जीते हैं। ऐसे में अगर इंसान अपनी हुदूद वाज़े ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की तवक्कात के बोझ तले दब जाता है। आज की पूरी जो गुफ्तगू है, इसका बुनियादी नुक्ता यह है कि अपनी इज्जत, वक्त, जज्बात और तवानाई की हिफाजत करना खुद गर्जी नहीं बल्कि शऊर है। आज हमने देखा कि पर्सनल बाउंड्री इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्री की बुनियाद है। इस्लाम इंसान को वक्कार, इज्जत और तवाजुन के साथ जीने की तालीम देता है। हर वक्त लोगों को खुश रखने की कोशिश, पीपल प्लीजिंग, अंदर से इंसान को थका देती है, और बाउंड्रीज असल में एक ताकतवर सेल्फ केयर का नतीजा है और जरिया है।

0: ये थी हमारी आज की एपिसोड और इसमें हमने जान लिया कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, और ये भी मैं कहती चलूं आखिर में कि जब इंसान अपनी बाउंड्रीज जान लेता है तो वो सख्त नहीं होता बल्कि बहुत क्लियर हो जाता है, और क्लैरिटी ही वो चीज़ है जो आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और दिल को सुकून देगी और जिंदगी को बोझ के बजाय मीनिंग्स देगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कम्युनिटी, चैरिटी और सोशल इम्पैक्ट के हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिए, सुनते रहें ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: हला हला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो में 11 बज के सही 2 मिनट।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन

0: FM 107, दिल से देसी।
1: सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है वीकेंड यानी थर्सडे का दिन, थर्सडे की मॉर्निंग, और हम दोनों आ चुके हैं। दो घंटे आपके साथ रहेंगे और दो दिन फिर छुट्टी पर जाएंगे, तो यहाँ पे दो बहुत टाइम कर रहा है। फिर आपको भी साथ देना है। यस, हमारे दो नंबर्स हैं, नंबर्स है 666-22-107 और दूसरा नंबर है 443-443-77। तो बस आप सबका साथ और हमारा साथ मिलके इस वीकेंड की जो स्टार्ट है इसको पूरी तरह से सेट कर देगा। तो बताइए आप कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं, कैसा जा रहा है आपकी आपकी थर्सडे की मॉर्निंग कैसी जा रही है, ये भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड और भी हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। एंड ऑफकोर्स आज है 21st of May, दिन बड़ा खास है, क्यों है ये भी बताएंगे।
2: क्या बात है भाई, यौमुल खमीस आ गया है, वीकेंड जिसका हम सबको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो दिन आ गया। अब जैसे नादिया ने बताया भाई, हमारी तो छुट्टी है इंशाल्लाह ताला, आगे आने वाली है ईद, खासम खास दिन भी चल रहे हैं ज़ुलहिज्जा के। तो भाई आप सब अपनी इबादत भी अच्छे से कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है, और अल्लाह ताला उनको कबूल भी फरमाए और ज्यादा से ज्यादा हिम्मत ताकत भी दे। फिलहाल आज खासम खास दिन, तो खूब बातें भी होंगी, तफरी भी होंगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी होगी, और चलते चले जाएंगे आफ्टरनून तक। ये गाड़ी चल पड़ी है फिलहाल नाजिया सरवर आपके साथ, तो शो का कर देते हैं बाकायदा आगाज। और भाई गाने वाने भी चलेंगे, आज थर्सडे है, तो माहौल भी हमें बनाना ही है। वीकेंड के हिसाब से कुछ फिल्टर्ड सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए, नीरज पाजी की आवाज में कॉलर ट्यून। आप सुन रहे हैं एक्सप्रेस पे सर्वनाथी आपके साथ दिल से।

0: हाँ जी, तू मेरा है जो क्या क्या बनने के लिए तैयार है इंसान। कह रहे हैं भाई के कॉलर ट्यून बना लो मुझे,
1: मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून।
0: मजबूरी है, मजबूरी।

0: You are listening to
1: Afternoon Express. Afternoon Express. Afternoon Express.
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी. Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस. सर्वर नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और आज जैसे हमने कहा आज का दिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ना दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. हर जगह हमें और आपको देखने के लिए मिलता है कि डिफरेंट कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि आज इसी का दिन है, इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का दिन है. आज है 21st of May और आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट. इट्स सच अ लॉन्ग टाइटल, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट नेशनैलिटी से जो लोग आते हैं उनके साथ किस तरह से मिलकर हम एक बहुत ही खूबसूरत इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो बनाते हैं जिसमें टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो आज बस इसी टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं. और सर्वर ने बहुत
2: बर्दाश्त की.
0: अब देखो अपनी नेशनैलिटी को तो हम लोग आपस में एक दूसरे को
2: कर ही रहे हैं,
0: करना कितना बड़ा काम है।
2: आजकल तो सबसे बड़ा काम बर्दाश्त करना ही हो रहा है.
0: पर आजकल हमें लगता है हम सब में बर्दाश्त की सबसे ज्यादा कमी भी है.
2: अच्छा,
0: एक चीज है कि बहुत कम हो गया है. हर कोई जो है ना वो इसमें बहुत ही ज्यादा समझता है कि ग्रोथ है, कि प्रोग्रेस है, कि हम फौरन ही रिएक्ट कर दें, फौरन जवाब दे दें. और शायद ये ट्रेंड भी बन चुका है. आई डोंट नो इसमें किस तरह से सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट लोग कहते हैं कि यस, इसमें सोशल मीडिया का भी हाथ है. मुझे लगता है सोशल मीडिया वो बेचारा टूल बन गया है जिस पर सारे इल्जाम जब कहीं भी समझ में आया तो इसके ऊपर डाल दो.
2: इसमें तो ये बेचारा समझ का बहुत बड़ा हाथ रहना चाहिए या होता है. नाजिया जी, मैं तो ये कहता हूं,
0: इसमें मैं कहती हूं सर्वर, इसमें अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ
2: बिल्कुल
0: है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है.
2: मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, शायद किसी को नागवार गुजर जाए तो अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. कभी गुरूर नहीं किया भैया.
0: गौर कीजिए.
2: तो भैया आज ये खास हम खास दिन और इसके हवाले से जो नाजी जी ने अभी समझाया आपको इंग्लिश में और बड़े ही खुलासे के साथ, तो लुबे लुबाब ये है आज बात इस पे करने वाले हैं कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग हमारे साथ काम करते हैं
0: या हमारे
2: कतर में बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों के हैं, नेशनैलिटीज के हैं. तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, कोई ऐसा जो आपका हम वतन नहीं है मगर आपका बहुत करीबी है तो उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं. उन्होंने आपकी कभी कोई मदद करी है वो भी आप बता सकते हैं, या किसी से बहुत ज्यादा जमती है, निपती है, वो भी आप बता सकते हैं. अगर हम अपनी बात करें तो जिस शहर से मैं और नाजिया आते हैं और वहाँ हमारी जो यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं. तो हमारी तो बचपने से ही अल्हम्दुलिल्लाह अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है कि हमने खास तौर पर मिडिल ईस्ट वालों के साथ और दूसरे एशियंस के साथ पढ़ाई भी करी और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे आके सेट जो हुए हैं, लगा चुके हैं, काम भी कर रहे हैं. तो आप भी इस हवाले से बातचीत कर सकते हैं और मुख्तलिफ कल्चरल कहना चाहिए चीजें अगर आप जिंदगी में करते आ रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज में, आज खास हम खास कुछ आप

0: सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है 666-22-107 और कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 443-443-77। तो यहाँ पर हमारे साथ आज के पहले
1: कॉलर
0: हेलो
1: रईस भाई अच्छा नाम सुनाई दिया
0: आवाज आ रहा है
1: आ रहा है
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आवाज रुक रुक के आ रहा है
2: आगे बढ़ोगे तो फिर कुछ बातें कुछ मतलब ये करेंगे नहीं तो फिर वहीं पे आप
1: ये तो रईस जी है सही मतलब मैं समझी हूँ
0: क्या बात है भाई आइए पहले आप
2: तशरीफ पटकिए
1: क्या है
0: पता नहीं कुछ
2: तशरीफ पटकिए
1: तशरीफ पटकिए
0: पटकवा रहे हैं तो भाई
1: अच्छा कोई है ऐसा जो इस तरह से कहा जाता है कि आइए लुढ़क जाइए
0: आइए भाई लीजिए साहब या
1: आई डोंट नो किसी कल्चर में इस तरह से किसी को रिस्पेक्ट दी जाती हो हां जी
2: एक जोक सुना कार्टून का जोक तो उसने बीवी ने कहा कल अभी मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे कहां मतलब लाओ पैसे कहां बाकी तो उसने कहा अरे यार खर्च हो गए कहां खर्च कर दिए तुमने यार वो दोस्तों के साथ कुछ खान पान पार्टी शार्टी हुआ तो यहाँ की एक शर्त लग गई बोले वो क्या बोले यार कि बोले कि जिसकी सबसे
0: जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो ही पार्टी के पैसे देगा मेरा भाई
2: कर दिया यार तो
0: यार आप यार। आप जोक बता रहे हैं ये तो आप बीती है ये तो हमारे यहाँ तो चलते ही रह रहा है ये
1: यहाँ भी देखिए अंडरस्टैंडिंग काम आ रही है
0: पूरे तरीके से
1: क्लेवरली अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को
2: अरे ठीक है ठीक है ठीक है बोले यार और कुछ पैसे का काम होना तो बोले यार आज भी 10,000 रुपए का कुछ जरूरत
0: 15 लेके जाओ भाई 15 लेके जाओ मोहतरमा ही तो कहलाई और हेल्पफुल भी कहलाई उन्होंने मदद भी करी
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल ना दिए जी बिल्कुल
1: मैं करने वाली भी
0: वही वही मिस नाजिया
1: इसमें आप समझिए स्टोरी से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहिए हस्बैंड हजरत कितना झूठ बोलते हैं
0: नहीं नहीं झूठ यार कैसे झूठ कैसे हो सकता है
1: ये सच था
0: ये तो सच था यार
1: कितना समझदारी से काम ले रहे हैं
0: जाहिर है अब इसमें मैं और
2: मतलब कहा यार 5,000 को मतलब ये करना है तो चलो बस बड़े अच्छे से मीठी तारीफ करके और आराम से उनको खुश भी हो गई और पैसे का भी मतलब बचत हो गया
0: कहाँ थे कहाँ बैठे थे आप बीती कहाँ की सुना दी ये तो बताइए
2: हमारे उत्तर प्रदेश की है
0: ओके देन तो रईस भाई आज बात हो रही है खासम खास मुख्तलिफ कल्चर के हवाले से आज खास दिन भी है नाजिया क्या है वो लंबा सा नाम दिन का
1: आज का दिन जो है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मतलब ऑल टुगेदर
0: वही जो अभी नाजिया ने जो बताया अभी वही वाला दिन अब आप इस पे बताना ये है कि आप अगर अपने जो भी दोस्त अहबाब या आपके जो कलीग्स वगैरह हैं कोई मुख्तलिफ मतलब आपके हम वतन नहीं हैं तो कैसे ताल्लुकात आपके रहते हैं या निभ रहे हैं या आपके दोस्त हैं है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे करीब मैं यहाँ पे खासकर प्रदेश में रह के सर भाई
0: जी रही
2: तो
0: भाई।
2: मेरे ख्याल से अपने घर वालों से मतलब ज्यादा क्योंकि जो अपने के साथ में होते हैं या करीब होते हैं तो उनसे अगर फिर उनकी पर्सनालिटी और उनका बिहेवियर देख के हम पहचान लेते हैं कि इनके साथ किस टाइप का ताल्लुक हमें रखना चाहिए अगर वो बंदा उस टाइप का है कि मतलब हाँ आपके बात को मतलब थोड़ा सा ये कर रहा है तो आप समझ के कोशिश करें अगर वो थोड़ा सा मतलब का मकल भी है मतलब मान लो आपके बात को ये नहीं कर रहा है मिसाल दे रहा हूँ एक मैं
0: अच्छा नहीं और तारीफ की बात ये वो भी हमें यही समझ रहा है वो उधर से यही समझ रहा है हम इधर से यही समझ रहे हैं इसलिए दोस्ती लिपती चली जा रही है कि ये बेचारा तो कम अकल है चलो भैया ले लो
1: वो भी यही समझ रहा है ये बेचारा तो बहुत
0: दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं दोस्ती बेहतरीन निभ रही है
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिंपैथी में तो ये एक अच्छा तरीका भी है एक्चुअली अपनाने का
1: बने रहो
0: ये हाँ मेरा मशवरा है आप दूसरे को बिल्कुल यही समझिए कि थोड़ा मसला है ऊपर वाले फ्लोर में लिहाजा ये मेरा अपना है
1: तो मतलब लोग उन्हीं को अपना बनाने के लिए तैयार हैं जिनका थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लोर में मसला हो।
0: हाँ, नहीं ये
1: अगर ऊपर मतलब वाला फ्लोर मजबूत हो, सीमेंटेड हो,
0: बिल्कुल आप
1: हो,
0: देख लीजिए
1: तो फिर नहीं लोग भटकते हैं।
0: कभी नहीं, कभी नहीं, ताल्लुक ही नहीं बैठेंगे एक साथ, आप देखिए कभी नहीं बैठेंगे।
1: ये फैक्ट है,
2: रोड में चल रहे हैं।

0: सामने वाला सामने
1: यार ये तो आपने यार मेरे मतलब मैं बताऊं हमारे अब्बा ने हमें ड्राइविंग के वक्त ऐसे ही सिखाया बराबर में बैठ के ताकि हमें बुरा भी नहीं लगे. मतलब उनको कहने का मकसद उनका यही था कि हमें समझाना, मगर ये कि हम काबिल भी अपने आप को समझे. तो कह रहे उन्होंने दिखाया, देखो ये सामने से जो गाड़ी आ रही है ना बेटा, इसको चलाने ही नहीं आती. अब तुम्हें अपने आप को कैसे बचाना है, तुम्हें उसको भी बचाना है, तुम्हें अपने आप को भी बचाना
0: है. अब ये ड्राइवरी के हिसाब से ही मैं मतलब ये एग्जांपल दूंगा कि बड़ा स्ट्रांग होके चलना पड़ता रोड में. हमारे हमारे थॉट के हमारे सोच के हर ड्राइवर और हमारे हजारों लोग हमें मिलते हैं.
1: चलिए हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो बात हो गई रोड के हवाले से, मगर आज जो हम बात कर रहे हैं खास हम खास कोई ऐसे आपके
2: किसी और नेशनलिटी
1: के आपके कोई दोस्त आपके साथ जो आपके बहुत ज्यादा करीब हो, किसी का नाम लेना चाहते हैं, किसी के बारे में आप बताना चाहते हैं.
0: तकरीबन तो अब हम लोग तो इंडिया नेपाल पाकिस्तान ये तकरीबन ये लोग समझ लो हम लोग के करीब ज्यादा होते हैं. बहुत से जो कि हमारे ये रहते हैं कि मतलब हम कभी कभी उनकी बातों को ऐसे मतलब गहराई से वो समझाए हैं अपने हिसाब से और उनकी बातों को यू तरजीह दिए तो बहुत से मतलब कामयाबी में हमारे हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा जरिया एक बना. कभी कभी वो हम उस वक्त नहीं समझ पाए थे लेकिन उन्होंने मतलब बात को कि भाई आप ये ऐसे नहीं ऐसे करो. तो हम पहले तो सोचते थे कि नहीं यार ऐसा कहाँ होता है, लेकिन वो बातें हमारे सामने वो आ गई कि मतलब हाँ यार सामने वाले ने ये बात सही कहा था और सही ये किया था. तो तकरीबन अगर हम मुस्बत हिसाब से अगर सामने वाले को ये करके रखें तो कोई मतलब नेशनलिटी मैटर नहीं करता है, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से भाई.
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है. इंसानियत दिल में और दिमाग में हो तो हर शख्स अपना है.
0: हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए उसके मतलब अगर वो सही हमारे साथ में ये कर रहा है इस पर कर रहा है तो हमें उसकी बातों को लेना चाहिए. और फिर हर बात को जरूरी भी नहीं है, हर बात को जरूरी भी नहीं है, लेकिन हमें उस बात को तोलें और देखें अपने अपने उसमें ये करें तो शायद कि वो हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है. तो इस बात को हमें सोच समझ के मतलब ये करना
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात रही भाई, जबरदस्त भाई, क्या बात है.
2: यही पैगाम भी है, यही मैसेज देना भी चाहते हैं.
1: बिल्कुल,
0: ये नेशनलिटी से कोई मैटर नहीं करता कि हम ये कहां का ये हमें ये कैसे समझाने लायक हो गया. इसके बहुत से लोग इस उसमें उलझे हुए हैं. नहीं हमें मतलब वो सामने वाला किस बात की तरफ ये कर रहा है, सही बात कर रहा है हमारे फायदे के नुकसान के या दुनिया के, हर बात कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हमारे हमारे उससे. तो उसको थोड़ा सा परखो थोड़ी दिन तक, फिर बाद में उसकी बातों का मतलब ये करना, इज्जत देना और उसके बाद को मतलब ये करना जरूरी है. और उसको मतलब सामने वाले को ये भी करना है, एपिसेट भी करना चाहिए कि हाँ भाई आपने जो बात कहा था बिल्कुल सही हक बात कहा था, सच बात कहा था. तो ये इस बात को भी मतलब ये करना चाहिए सामने वाले को. ये नहीं कि यार अब हम अपनी अकलमंदी घुसेड़ दिए कि अरे यार मैंने ऐसे ऐसे ऐसे मैंने अपने ही हिसाब से किया. नहीं, सामने वाले ने अगर हमारे लिए रहनुमाई कुछ किया है तो हम उसकी मतलब तारीफ करें जरूर.
1: बहुत
0: आगे वो बढ़ता है,
1: सही सही सही,
0: दूसरे को भी वो इस बात से मतलब ये करता है. तो अपने सोच के ऊपर मुनासर है
1: भाई. क्या बात है, क्या बात है, किस कदर प्यार से मोहब्बत से और मजाक से भी रईस भाई ने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी. बहुत बहुत शुक्रिया
2: रईस भाई, बहुत शुक्रिया
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच. क्या है सुला दो चले गए.
1: अच्छा नहीं वो बराबर में शायद बात कर रहे होंगे तो.
2: और एक चीज और मैं यहाँ पे सर्वर ऐड करना चाहूंगी कि देखो जब हम दूसरे कंट्री में होते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो हमारे एक्शंस, हमारे डीड, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं दूसरे किसी और कल्चर के दूसरे नेशनैलिटी पर जो है वो एक इम्प्रेशन डालता है कि इस कंट्री के लोग ऐसे हैं. They don't say कि नाजिया ऐसी है कि सर्वर ऐसे हैं. They say कि इस कंट्री के लोग ऐसे हैं.
1: बिल्कुल.
2: So हमें जो है वो मिसाल बननी है एक अच्छाई की, रिस्पेक्ट
1: और वहाँ से शुरू होके बात आती है आपकी तरबियत तक, आपके घर तक, आपके वालिदैन तक, आपके घर खानदान तक के आप कौन हैं.
2: कौन है
1: बड़े बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि बोलिए ताकि पता चले आप कौन है.
2: सही बात है,
1: कितनी इम्पोर्टेंट.
2: बोलिए कि हमें पता चले हमारे साथ कौन है.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब आप दोनों?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: हम दोनों खैरियत से हैं. आप कैसे हैं? आई थिंक शुएब जी हैं.
3: अल्लाह का शुक्र. जी जी जी, मैं शुएब जी.
1: अहलन वसहलन शुएब भाई, कैसे हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया है.
1: जी शुएब भाई, तो सुना आपने अभी तक किस हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग?
3: जी जी, मैंने सुना, मैंने स्टार्टिंग से सुन लो.
1: क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या बताना समझाना चाहते हैं?
3: अगर आप मेरी बात रखें तो

0: अराउंड 2015 और 16 में सऊदीया गया था. एक होटल था वहाँ पे एज ए कॉन्शियल मैंने जॉब की थी, तो मुझे अच्छा लगता था. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी कंट्री के लोगों से घुल मिल जाऊँ, उनके कल्चर को जानूँ, अपने अपने अपने कल्चर को उनको सिखाऊं, उनको बताऊं कि हम लोग कहाँ से हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं. अच्छा, मतलब ये मेरी एक तरह की एक हैबिट है. और फिर एक जैसे कि अब हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उससे जुड़ा हूं, तो ये मेरा काम भी है.
1: मैं इधर ही आ रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने हॉस्पिटैलिटी में काम किया है या कर रहे हैं.
0: फिलहाल तो मैंने हॉस्पिटैलिटी को क्विट कर दिया, लेकिन हाँ ये है कि इंसान की आदत नहीं जाती है ना.
1: नहीं, वो एक्चुअली वो एक इदारा ऐसा है, हुरेका हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एयरलाइंस हो गया, हॉस्पिटल कहना चाहिए अगर हम बात करें, तो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, तो मैं समझ सकता हूँ. बहरहाल ये बहुत अच्छी आपने बात रखी कि जब आप मिलेंगे. देखिए हमारा दिन भी यही है एक्चुअली. क्यों हमें कहा गया है, नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला घर में भी कह सकते थे अगर हम बात करें, तो हम मस्जिद क्यों जा रहे हैं. ठीक है, दिन में पांचों वक्त मस्जिद जाओ, हफ्ते में एक दिन बड़ी मस्जिद जाओ, जुमे के लिए बाहर जाओ, साल में एक बार और बाहर जाओ, जिंदगी में एक बार हज करने जाओ. तो ये क्या है, मुख्तलिफ लोगों से मिलो, उनको अपने आदाब बताओ, उनके आदाब सीखो.
2: सही बात.
1: तो ये हमारे दीन का भी हिस्सा है एक्चुअली.
2: exactly.
1: बहुत बढ़िया भाई,
2: बहुत ही अच्छा.
1: और क्या कहना चाहते हैं
0: जी? जैसे कि मैं कतर से, मैं कतर में 4 साल में हॉस्पिटैलिटी, मतलब एक होटल में, यहाँ पे भी एज ए कॉन्शियल मैंने जॉब की है.
1: ओके.
0: बहुत से लोगों से मिला, बहुत अलग अलग कंट्रीज से, सभी तरह के, मतलब.
1: सही.
0: और आपको तो पता है फीफा वर्ल्ड कप था, तो
1: क्या बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने. बिल्कुल, मैं उधर ही आ रहा था कि पूरी दुनिया हमारे कतर में आई, और हमारे कतर का तो इस चीज में जवाब ही नहीं है भाई. हम सब यहाँ मौजूद हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे अपने लिए.
2: बिल्कुल.
1: के मुख्तलिफ ममालिक के और इतने लोग मिलके एक साथ काम करते हैं और कर रहे हैं.
0: काफी सेलिब्रिटीज भी थे जो यहाँ थे, मैंने उनसे भी मुलाकात की सच में. कुछ सेल्फीज भी ली उन लोगों के साथ होटल में. मतलब हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं सामने वाले से का जो कल्चर है उसमें बिल्कुल, मतलब डूब जाऊँ उसके, उससे उससे बिल्कुल उसको सीख जाऊँ. और आप यकीन नहीं मानोगे बिल्कुल ठीक है. तो मान लीजिए जैसे कि अदर, हम जैसे कि इस्लाम रिलीजन है, अदर और भी रिलीजन है, तो मैं उनके टेम्पल में भी काफी विजिट किया, जैसे कि अपने
1: गुरुद्वारा. बिल्कुल बिल्कुल, जाते हैं हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल.
0: अभी मैं जैसे कि नैनीताल गया था ऑन द वेकेशन, तो मैं वहां पे जाके मैं थोड़ी देर क्रिश्चियंस को, क्या वो क्या होता है,
1: चर्च
0: वहां पे जाके मैं तकरीबन एक
1: से. आपका ताल्लुक कहां से है शेब भाई?
2: दिल्ली.
0: मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली की है, लेकिन
1: तो फिर तो लोटस टेंपल में आप गए ही गए होंगे.
0: नहीं गया मैं.
1: अच्छा, वहाँ नहीं गया. ओके ओके ओके ओके, वो भी एक देखने वाली जगह. और
0: बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल करीब है, यहाँ तक कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ हफ्ते में 2 से 3 मैं उधर से हूँ, ओखला शाहीनबाग पास में है.
1: अच्छा, ओहो हो, क्या बात है भाई, क्या कहने चलिए.
2: ऑल टुगेदर ये कह रहे हैं कि किसी भी कल्चर को समझने के लिए उसकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट,
1: सबसे पहला स्टेप है एक्चुअली. सही, बिल्कुल.
2: और अगर हम ये डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं, तब हम यूनाइटेड होते हैं एज एन ह्यूमन. और ये चीज जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया और जो आपने कहा, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं. मतलब चाहे हम किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वी आर ऑल कनेक्टेड विद वन वर्ड एंड दैट इज ह्यूमैनिटी.
1: क्या बात,
2: इसको जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई. अब क्योंकि अजान का वक्त है, तो इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह फिर आपसे बात भी होगी.
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: कनेक्ट भी होंगे. हैप्पी वीकेंड. हैप्पी वीकेंड. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.
1: तो भाई ये थे हमारे साथ शुएब भाई, और आज बात हो रही ही है आपकी, आपके अपनों की, आपके दोस्तों की, आपके कलीग्स की,
2: जिनका ताल्लुक किसी और नेशनलिटी से है, बट आपके साथ वो घुल मिल गए हैं. आप उनके डिफरेंट कल्चर्स में, मतलब उनके ट्रेडिशन में, उनके फेस्टिवल्स में आप हिस्सा बनते हैं. कोई यूनिक ट्रेडिशन आपने एक्सपीरियंस किया तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर, या फिर डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए. कॉल करने के लिए नंबर है 4434377.
1: फिलहाल तो ची राना.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, और इसी चीज को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए ये डिक्लेरेशन पेश की गई थी. और मैं कह सकती हूँ 2002 से लेकर आज तक इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं,
1: सही
0: मिनिस्ट्रीज हैं, स्कूल्स में हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो, जिस पर हमारी कंट्री भी यानी कतर भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो है कि डायलॉग के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए. और ये एक सबसे अच्छा तरीका भी है. मतलब हर चीज़ का, मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज़ डायलॉग, बातचीत. बातचीत के थ्रू हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन कई बार हम इतने रिलक्टेंट हो जाते हैं कि हम बातचीत को सबसे लास्ट ऑप्शन में डाल देते हैं, जबकि ये ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए. एंड देयर कम्स द डिफरेंट थिंग्स. अगर हम क्या है, बस एक्सट्रीम पे पहले जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इस तरह का मसला. आप इतने क्यों घबराए, परेशान से उसमें नजर आ रहे हैं?
1: नहीं, मैं जरा मैसेजेस देख रहा था, मैंने कहा कि अब शेयर करना शुरू करूं, इजाजत है?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: इनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था मगर मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाहते हैं. हाँ, वो असल में थोड़ा सा हिज्जे भी करनी पड़ी. बहरहाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम,
0: और
1: अगर कोई तुम्हारे हिस्से के फूल ले जाए, फिक्र ना करो, क्योंकि जो बाहर अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है वो तुम तक ज़रूर पहुँचेगी. सुबह खैर कहते हैं. तो हैं कौन हमारे साथ, मैं ये देख रहा हूँ, और दो तीन नंबर हैं उसके अंदर. क्या ये ग्रुप है कोई जिसमें हम ऐड हुए हुए हैं? FM 107 का नंबर. एनी हाउ,
0: वही
1: जानने की. हाँ बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को. सरवर सर, आप मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अरसलान.
0: क्योंकि मुल्तान से लाए हैं स्पेशली.
1: अर्शी कैसी बातें कर रहे हो, जब पहले तो लगाता था फोड़े फुंसी होते थे, तो नाजिया ने बताया था ये लगाया करो, तो मैंने अच्छा ठीक है और लगाई और मैं सो गया भाई. ओ भैया, वो उतारनी मुश्किल हो गई
0: फिर एकदम कड़क मुंह के साथ खड़े. हाँ,
1: जब से ऐसे ही रह गए ताऊ. कहते हैं आओ, अरे ताऊ पे आओ. अच्छा, ये सलाम का भी शॉर्ट फॉर्म आ गया भाई अब नादिया. कहते हैं सर, उर्दू रेडियो FM 107 स्टेशन सुनने के लिए कौन सी ऐप है बताइए नादिया, कौन सी ऐप है?
0: QMC ना हुआ करते
1: हैं. माई फैमिली इज माई लाइफ कहते हैं, और बैठे हुए इस वक्त मेरे भाई.
0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग, क्या आपके दोस्त हैं? आई मीन कोई ऐसा दोस्त है जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से है, ओमान से है, इजिप्ट से है, यमन से है, सीरिया से है, फिलिस्तीन से है, ईरान से, इराक से, तो उनके एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. अच्छी मेमोरीज जो है वो हमारे साथ.
1: जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी से पहले जिक्र किया था. अच्छा बिल्कुल, इनसे बात करते हैं फिर हम बात करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
1: आइए आइए आइए आइए आइए, इधर आ जाइए, इधर इधर इधर, इस वाले सोफे पे आ जाइए, इस वाले सोफे पे. हाँ
2: नहीं नहीं, पहले आप, पहले.
1: अरे नहीं नहीं नहीं, आप
0: ये ऑलरेडी धसे बैठे
1: हैं, ये आपके लिए हमने साफ.
2: वही तो, ताकि आपको जगह बस दूसरे ने बैठेंगे.
1: जब ही तुम पहले बैठा ले, हम तो खड़े रहेंगे तो भी ठीक है.
0: ये तो इनके पास जो सोफा है उसका स्प्रिंग टूटा हुआ है. बैठ गए तो बैठ ही गए, बैठ गए नीचे.
1: क्या बात है
2: सरवर भाई और नाजिया जी, क्या खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. आप बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं?
2: शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है. और आप जैसे जो है ना
1: बुजुर्गों की दुआएं हैं,
2: दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, बुजुर्ग नहीं बोला, बुजुर्ग बोले तो फिर आपको लकड़ी देना पड़ता.
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाल ही में समझ गया.
0: लकड़ी तो मैं अपने हाथ में रखूंगी ना डांटने के लिए, स्टिक.
2: जी बिल्कुल. थोड़ी देर पहले आप मुल्तानी मिट्टी की बात करें, तो मुल्तानी मिट्टी के ऊपर मैं एक बात बोलता हूँ. उस इंसान को मुल्तानी मिट्टी की जरूरत ही क्या है जो हर हमेशा अल्लाह पाक का जो ना जिक्र करते हुए अपने चेहरे को चमकाता.
0: क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात कही आपने मेरे बारे में यार, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: ये आपके बारे में नहीं.
1: अच्छा, मेरे बारे में नहीं थी
0: ये, जनरल.
1: अच्छा,
0: है
1: मैंने कहा वो मुल्तानी मिट्टी मेरे ही मुंह पे लगा रहे थे, तो शायद ये भी मेरे ही नहीं, वो मुल्तानी मिट्टी मेरे ही मुंह पे लगाई जा
0: रही है. लगानी पड़ेगी क्योंकि चेहरे पे वो निखार नहीं है ना. ये तो उस शख्स के बारे में बात करें, चेहरे पे नूर है ना, मिट्टी ना कुछ और,
1: तो बाहर है. अच्छा चलिए साहब, सैयद
2: सरवर भाई. हाँ. भाई आपका सैयद नहीं है, शेख हजरुद्दीन फरमाई.
1: अच्छा,
2: आप हमेशा नाम भूल जा रहे हैं सरवर भाई, ऐसा मत करो. खाली सैयद, खाली जिलानी पाशा को याद करें तो हमारी पैसा याद होता है
1: यार. अगर भाई आपको लगता है कि मैं आपको नहीं पहचानूंगा, मैंने अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे खोले, सोफे साफ किए आपको बिठाने के लिए. इतना हंसी मजाक कोई अदर भाई के साथ ही कर सकता है, किसकी हिम्मत है वरना.
2: नहीं नहीं,
0: अरे ये बहुत ही बढ़िया झूठ बोल लेते हैं, ये इनका टैलेंट है.

0: अलग मंगाली गाड़ी में एक आवाज आई
1: है। थर्सडे ये टैलेंट अलग चलता है।
2: सर्वर भाई कैसे हैं? सब कैरियर से मैं करूंगा भाई।
0: अच्छा
2: आपको जो है ना काफी अर्सों हो गए बात नहीं करके, मैं बोला चलो आपसे थोड़ा बहुत सलाम दुआ कर ले।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: लेकिन अजहर जी हम चाहेंगे कि आज हमने जो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं उस पर भी अगर कुछ आप ऐड करना चाहें, कोई और नेशनलिटी का आपका दोस्त जिसके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बनती है और कोई अच्छी मेमोरी आप शेयर करना चाहें।
2: जी बस शेयर करने का तो खैर कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि
0: चीता कर दीजिए।
2: हाँ चीता कर देंगे, उसके बाद बबर भी करेंगे। हाँ, जैसे कि आप है।
1: हाँ, बबर कर जैसे आप है।
0: भाई अपने हैदराबाद में तो यार दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपकी भी कुछ अपनी पढ़ाई के वक्त की मेमोरीज होंगी, कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की, वो भी शेयर कर सकते हैं।
1: या फिर कोई घूमने आया इनफैक्ट और फिर आपके इंटरेक्शन हुआ।
0: गेस्ट बहुत ज्यादा जैसे हमारे अलीगढ़ में होता है, इसी तरीके से हैदराबाद भी हमारा इसमें कम थोड़ी है।
1: बिल्कुल सही बात है
2: जी, बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे जो ना सरोवर हुई यानी हैदराबाद के करीब में जो ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी
0: है,
2: पहले जमाने के
0: बिल्कुल
2: जी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। हाँ वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो बगल में जो ना एक बस्ती थी, जैसे कि उसको हम लोग बोलते कि तीन नंबर कैंप यानी कैंपस था वो, यानी हमारे वालिद साहब और हमारे दादा लोग की यानी पुरानी बस्ती थी। तो वहां से वो कैंपस हम लोग को बहुत करीब है, यानी हम लोग ऐसा जंगल में से चले आते थे वो कैंपस को, अगर यूनिवर्सिटी को जाना है तो हम लोग को।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: एकदम करीब था, यानी जंगल में से हम लोग चले आते थे, जैसे कि कभी वो गोर की फल्ली तोड़ने और वो खजूर वगैरह बोलते हैं वो तीरने करने स्विमिंग करने के लिए जंगल में से हम लोग कैंपस को स्विमिंग पूल को ऐसा चले आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि ये युगांडा और उधर नाइजेरिया
0: वहाँ के बच्चे जो थे, बिल्कुल समझ गया मैं जी, ओके।
2: वहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे वो लोग जो है ना मतलब फॉरेस्ट यानी जंगल को देखेंगे कैसा है क्या
0: ओके।
2: वो लोग इधर आए थे तो वो लोग को नहीं मालूम कि हम लोग वहाँ पे एक जगह ऑलरेडी मौजूद थे। हम लोग इस वजह से थे ताकि हम लोग वो टाइम पे जो है ना हम लोग यानी शिकार ज्यादा करते थे वो लोग, जैसे कि वो तीतर।
0: मैं समझ गया जी।
2: तो वो लोग को नहीं मालूम कि हम लोग उधर थे, तो उस टाइम पे वो लोग भी जो है ना कुछ ऐसा आवाजा सुन रहे थे। तो एक पुराने जंगल में जो पुराने जमाने की जो बॉडी रहती वो लोग उसमें हम लोग स्विमिंग भी कर रहे थे। तो ये उसको स्विमिंग करने के लिए दिल चाह रहा था, उसको नाइजीरिया का था, उसको दिल चाह रहा था करने के लिए। लेकिन जिस जब भी वो उसमें स्विमिंग पूल में जब वो जंप करा हो उसके बाद जो है ना ऑलमोस्ट एक दो चार मिनट तक वो बाहर ही नहीं आया सर्वर। हाँ नहीं नहीं सुनिए, तो हम लोग परेशान हो गए,
0: माहौल बना दिया आपने, टेंशन लो या खुश हूँ ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ।
2: नहीं नहीं फिर हम लोग क्या सोचे, हमारे जैसे कि खादर भाई बोल के एक है वो बहुत बड़े यानी माहिर थे जी, बहुत बेहतरीन थे, और एक जैसे हमारे शोएब भाई बोल के थे, जावेद भाई लगा तो बहुत माहिर थे। वो बोले अरे यार किधर क्या बंदा, आप यकीन मानिए 4.5 से 5 मिनट के दरमियान तक वो पानी में था, उसके बाद ऊपर से आके बोलता है ब्रो आई एम हियर डोंट वरी मैन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन, फॉर
0: अरे
2: यार ये क्या,
0: बल्कि आपको भी बुला लिया हाथ पकड़ के, आओ नीचे जरा टहल के आएंगे थोड़ी देर यल्ला।
2: हम बोले भाई तो नीचे आने का तो छोड़, पहले तू ऊपर आ, तू गया तो गया किधर गया, फिर आया तो किधर से आया, हम लोग ये परेशान हो गए थे भाई।
1: तो कहीं आप ही को नहीं डरा रहा था कि
0: नहीं, मगर माशाल्लाह अपना अपना टैलेंट है और अच्छा खासा शेयर किया।
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया साहब, अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप गेम में भी तशरीफ लाइएगा अगर टाइम मिलता है जरूर, है अहलन वसहलन मेरे भाई, अहलन वसहलन, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड सर, मोस्ट वेलकम अजहर भाई, मोस्ट वेलकम। तो भाई यहाँ पे बातचीत हो रही है, अजहर भाई ने बड़ा प्यारा किस्सा भी सुनाया और कुछ मैसेजेस भी हैं, कुछ कॉल भी हैं यहाँ पर, कॉल भी लेते हैं।
1: हम लोगों ने भी जो किस्सा अपना डिस्कस किया वो भी बताएंगे हम अपने।
0: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरोवर भाई आप, अच्छा ये तो हो गया, कबीर भाई ने पूछा ना इसलिए बोला, अरे ये रोज, अच्छा ये उनका छोड़ा हुआ शोशा है भाई सुबह का मुल्तानी मिट्टी का, चलो इसके हवाले से भी देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मुझे ऐसे दोस्त पसंद नहीं है जो दूसरे हों, मतलब मुझे सिर्फ मैं पठान हूँ, पाकिस्तान से मुझे पाकिस्तानी दोस्त एंड पठान दोस्त अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान में भी पठान दोस्त नहीं हैं सर। और सर मैं अभी अभी कतर में, इतना टाइम तो नहीं हुआ, 4 महीने हो गए, अगर अच्छा दोस्त मिला तो देखेंगे, वफादार होना चाहिए बस पठान की तरह। क्या बात है,
1: क्या बात है,
0: क्या पठानी मैसेज है अरबाज भाई।
1: और एक बार आप खुद को मौका दें, थोड़ा सा ओपन रहें और आप देखिए दूसरे नेशनलिटी के लोग भी कितने अच्छे हैं, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे ही। अच्छा एक और हमारे साथ यहाँ पे कॉलर कनेक्ट हो

0: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, खैरियत से? सरवर भाई आप मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हो? ये कबीर भाई के शो से आया है सवाल। नादिया बाजी अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर भाई को ही शो कर लो बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब।
0: आइए आइए गावा भाई, कैसे हैं?
1: अलीगढ़ में आपका स्वागत है।
0: क्या कहने, वहीं से बात कर रहे हैं क्या?
2: शमशाद से।
0: क्या हाल चाल गावा भाई, हैप्पी वीकेंड?
1: एकदम मस्त सर, वीकेंड के जैसे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भी बिल्कुल परफेक्ट हैं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज खासम खास दिन और बातचीत हो रही है। आपने सुना अभी तक प्रोग्राम या अभी कनेक्ट हुए हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पीजी वाली बात ने ना सर जी? मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें उजागर कर दी।
0: ओके,
1: एक छोटी सी बात ने।
0: हाँ सही, क्योंकि हम सब उस टाइम से गुजरे हैं एक्चुअली, और होता ही है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जब बाहर से लोग आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी हेल्प एक तो पीजी की ही होती है। अगर हम अपने शहर अलीगढ़ की बात करें तो, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। एनी हाउ जी, आप क्या शेयर करना चाहते हैं गावा भाई?
1: सर जहाँ से मेरा ताल्लुक आता है ना इंडिया से, वो चंडीगढ़ के बिल्कुल करीब पड़ता है वो एरिया।
0: सही।
2: अच्छा,
1: तो आपको पता है चंडीगढ़ तो आज का ट्रेंड में नहीं है, तो बहुत सारे सालों से ट्रेंड में वहाँ पे सर, बहुत सारी एमएनसीज
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आज नहीं बहुत लंबे समय से आना जाना रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो ये जो आपने सर पीजी वाली बात की है ना, ये चीजें सर पहले होती थी, बंदा दूसरी कंट्री का है, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, हमें उससे डील करने में बहुत मुश्किल होगा। मगर अभी सर जब से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ना सर, मेरे को लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है।
2: ये बात तो है, चीजें आसान।
1: इसका सर एक कारण है सोशल मीडिया।
0: सही,
2: सोशल मीडिया ने
1: तो सर हमारे वहाँ पे भी जी, हमारे वहाँ पे भी सर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, आप यकीन मानिए सर, मेरे को पता नहीं लाइसेंस क्या प्रोसीजर है इंडिया में अगर किसी बाहर ले बंदे ने बनाना है। बहुत सारे अफ्रीकन नेशनल्स, इवन अफगानिस्तानी ब्रदर्स, उन्होंने अपने लाइसेंस बनवा के वहाँ पे टू व्हीलर्स रखे हुए हैं सर, यूनिवर्सिटी जाने के लिए आने के लिए। हाँ, तो ये चीज सर पहले बहुत बड़ी होती थी कि बंदा दूसरी कंट्री का है, दूसरी नेशनलिटी का है, दूसरी लैंग्वेज का है, मगर ये चीजें अब सर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है हर जगह।
2: और उसकी एक बड़ी मिसाल है फूड, खाना। देखिए हर कंट्री का और डिफरेंट डिफरेंट फूड दूसरे कंट्री में इतनी खूबसूरती से ना सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है बल्कि मैं कहूँगी ब्लेंड हो गया। अब कितने खाने हैं अरबिक फूड, आज हम कितने शौक से हमारी कंट्रीज में मिलते हैं और हम खाते हैं। चाइनीज फूड कितना पसंद किया जाता है, मैक्सिकन कितना पसंद किया जाता है। अब देखिए यही चीज़ है, यही कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाता है कि अब जैसे आपने कहा कि दुनिया वाकई ग्लोबल विलेज है और सुकड़ सी गई है और चीज़ें आसान भी हुई हैं, और फूड ने, म्यूज़िक ने, आर्ट ने, लाइफस्टाइल ने, इन सारी चीज़ों ने जो है वो कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा हाईलाइट किया है। और ये बात
1: दो चीजें मैडम, मेरे ख्याल से दो चीजें हो रहे हैं मैडम, एक तो हो गया फूड, एक हो गया मैडम एजुकेशन।
2: एजुकेशन के लिए भी लोग ग्लोबली, और मुझे लगता है जो हमें चीज जोड़ती है म्यूजिक एंड आर्ट आल्सो,
1: म्यूजिक एंड आर्ट आल्सो मैडम जी। तो मैडम तीसरी एक चीज और है जो मेरे को लगती है, वो है टूरिज्म मैडम।
2: हाँ, टूरिज्म भी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को खींच के लाता है। अब आप देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे यहाँ कतर की बात कर लीजिए, डिफरेंट नेशनलिटी से लोग आते हैं, विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छी मेमोरीज जो है वो लेकर जाते हैं।
0: सही।
2: तो बस ये यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है ऑफ कोर्स। और मैं भी अपने बारे में एक चीज़ ये बताऊँगी, जब मैं पहली बार जीसीसी कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो लोग इतना ज़्यादा जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं मिलती जो मैंने यहाँ पर पहली बार। हाँ, अभी भी नहीं मिलती। हाँ, मैं थोड़ी सी काइंड होके उसको बोल रही थी। तो यहाँ जब मैं पहली बार जीसीसी कंट्री में आई तो और मैंने देखा कि लोग पर्टिकुलरली गाड़ी रोक देते हैं और वो इतने हम्बली आपसे कहते हैं कि आप अपना रास्ता जो है पहले आप क्रॉस कीजिए और उसके बाद। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की, मुझे इनिशियली नहीं पता था। आई वाज लाइक, कई बार होता है ना हम लोग अपनी कंट्री में थोड़ा तेजी से निकलते हैं, थोड़े घबरा के निकलते हैं कि पता नहीं अगला ठोकी ना दे हमें, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि आराम से निकली है एंड दे जस्ट गिव यू अ गुड स्माइल और फिर वो आराम से अपनी गाड़ी निकाल के जाते हैं। तो कितनी बड़ी चीज हमें यहाँ पर मिली जिसको हम कितना रिस्पेक्ट और चेरिश कर रहे होते हैं।
0: सो
2: ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि लोग कैसे हैं इस मुल्क के।
1: मैडम आपका सबसे पहले यहीं जीसीसी में आना हुआ था, कतर में?
2: नहीं, मेरा यहाँ नहीं हुआ था, पहले मैं यूएई गई थी सबसे पहले।
1: ओके, और वहाँ

0: पे काफी साल मैं रही तो इसीलिए मैंने अभी नाम नहीं लिया बट मैंने बताया कि किस तरह से जीसीसी कंट्री में जब मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुई तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और वो बहुत ही
1: एक्चुअली मैडम पता क्या है जी, ये जो इमोशंस की लैंग्वेज है ना मैडम, ये तो हर बंदा समझता है, हर बंदा, चाहे उसकी लैंग्वेज आपसे मैच करती है नहीं करती, चाहे उसको बोलना भी नहीं आता है, ये तो हर बंदा समझता है। अगर आप बैठ के आप और सर्वर जी खाना खा रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आपके साथ बैठा है, ही इज फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटी, अगर आप उसको ऑफर करोगे वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देगा मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा ना, फूड हो या फिर किसी भी कंट्री का म्यूजिक हो या फिर आर्ट, पेंटिंग्स हो, ये सारी चीज़ें ये इतनी खूबसूरती से हर एक कल्चर के साथ ब्लेंड हो चुकी हैं कि हम हर इन तीनों ही सेगमेंट, और आपने भी कवर भी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें पर्टिकुलरली हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही खूबसूरती से इंजॉय कर रहा है, चेरिश कर रहा है। अब खाने देख लीजिए।
1: बिल्कुल, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैडम, देखिए ना तो कोई इंसान बुरा होता है, ना कोई कंट्री, ना कोई कास्ट, कुछ भी बुरा नहीं होता है, बुरा होता है तो बंदे का नजरिया बुरा होता है।
0: वाह क्या बात है भाई, कितनी अच्छी लाइन है।
2: बस वही जो बुरा चश्मा है वो हटाने की जरूरत है।
0: क्या बात है, दिस इज
2: और
0: nice।
2: उसके बाद सारी राहें आपको नादिया को अवॉइड करती हुई मेरी तरफ लेके चली आएंगी, बस वो जो चश्मा है अच्छे नजरिए वाला वो आप मुझसे ले लीजिएगा जाते वक्त,
0: आई साइड वीक हो गई है, पहले चश्मा नहीं पहले आई साइड चेक कराई,
2: मुझसे ले लीजिएगा गाबू भाई।
1: मैडम पता कौन सा चश्मा पहनते हैं? जो चश्मे बतूर शायद मूवी में पहना था ऋषि कपूर में, जो ऊपर से खुलता है
2: जिसकी फरारी की तरह, फरारी के दरवाजे खुलते हैं तो उसकी आगे खुलती है। चलिए भाई, गाबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, बहुत अच्छी बात और काफी कुछ जानने के लिए भी मिला, थैंक यू सो मच गाबा भाई। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। तो भाई ये थे गाबा भाई, हैप्पी वीकेंड मनाते हुए, और बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं एक ट्रैक, वीकेंड है तो जरा गाना भी चलना चाहिए।

0: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना। तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से दिल।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
1: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
2: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए 12 बज के सही 2 मिनट।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 से दोपहर के 1 तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Afternoon Express. सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 12:03 on the clock. और अब आपके कुछ अच्छे और प्यारे वाले मैसेजेस उस तरफ आ जाते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, गुड आफ्टरनून सर्वर भाई और मुल्तानी मिट्टी लगाते क्यों हैं? चलिए तो ये आज यही रहा, मैं भी आप लोगों को बराबर भेज रहा हूँ उसका जवाब और आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से उसको जो मुल्तानी मिट्टी है ओ कबीर साहब को वो कैसे लगा रहा हूँ उसको मैं अभी नादिया को भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड भाई। आज सुबह के शो पे आकर चर्चा हुई मुल्तानी मिट्टी, ये भी कह रहे हैं वाइब्स ही अलग हैं, बेस्टेस्ट शो कहते हैं। सर्वर भाई मुल्तानी मिट्टी क्यों लगाते हैं ये राज भी बता दें। ओके बता दूंगा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन कर लो मुझे भी अपने किरदार में प्लीज। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला रमेश भाई। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून नाजिया जी एंड सर्वर जी, गुड आफ्टरनून रमेश भाई। ये कौन सी ड्रिंक मेरी है, कौन सी नाजिया की, इसमें बताइए। नादिया आप क्या पीना पसंद करेंगी? रमेश भाई ने भेजी, मैं तो पीछे वाला कद्दू उठा लेता हूँ, मेरे ख्याल में काम भी आ जाएगा, एक दोपहर का खाना भी इंतजाम हो जाएगा भैया, लंच का
1: आप तो खाएंगे नहीं।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजिया बहन।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: थोड़ा सा अखरोट सरवर भाई को भी खिला दें, वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा नतीम भाई हमारे साथ। नादिया कल से अखरोट क्या, मेरे ख्याल में आधा आधा किलो बादाम काजू और पिस्ता और अखरोट, तो ईद का भी इंतजाम हो जाएगा जरा, मीठे मीठे बनने इंशाल्लाह ताला, ईद आ रही है तो ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड मैडम नाजिया, हैप्पी वीकेंड। एंड सरवर भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुल्तानी मिट्टी, बिकॉज़ मिस्टर कबीर हैज सेड टू आस्क यू। मैं इंग्लिश में लगाता है, मुल्तानी मिट्टी लगाता है, वो मुल्तानी मिट्टी का बात नहीं करता है। अरे खादिम भाई आ गए भाई, आज कहां से निकला सूरज भाई? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं
1: मुबीन बुखारी।
2: वालेकुम अस्सलाम मुबीन भाई, नहीं खादिम भाई नहीं है, कहाँ है ये सब के सब? शहजादा सलीम अमजद भाई तो खैर पाकिस्तान में है,
1: बट मुबीन जी हमें इतने मैसेजेस कर रहे होते
2: एमबीबी
1: सब खैरियत, तो आज हम इनको
2: अल्लाह ताला आपको हाँ यार कॉल मिलानी पड़ेगी, बाकी हमें खैरियत देनी पड़ेगी। यूसुफ भाई इज ऑलवेज देयर विद अस, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच।
1: अस्सलाम वालेकुम
2: रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी एंड सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल। आफ्टरनून एक्सप्रेस में हमारा वेलकम करते हैं, थर्सडे वीकेंड सबको विश करते हैं। सरवर भाई आज आपको आपके सभी फैंस आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं पूछेंगे, क्योंकि आज कबीर भाई ने कहा कि सब आपसे ही पूछेंगे, सेम एज यस्टरडे एंथनी। ठीक है भाई, अब मैंने आपको भी भेज ही दिया है, नादिया को भी दिखा देता हूँ। कहते हैं या अल्लाह, ये देखिए ये कबीर की मुल्तानी मिट्टी मैं लगाता हुआ और कहते ना देखिए मिल रहा है, पेशानी देखो, दांत देखो, ये आप उसको फॉरवर्ड करना, आप है ना सब याद रखना, मैंने जिन जिन को फॉरवर्ड किया है वो सब उसके शो में संडे मॉर्निंग इंशाल्लाह उसको जरूर भेजना।
1: वो
2: कहना ये मैंने और नाजिया ने भेजा है खास तौर पे,
1: मुझे मत लगा
2: फेस पैक जो है नाजिया ने बनाया था लगा मैं रहा हूँ।
1: देखिए कबीर मैंने नहीं भेजा है, ये
2: सरवर भाई,
1: सरवर भाई की तरफ से आपको जवाब है या सवाल है,
2: खादिम भाई
1: सवाल जवाब मिलके है।
2: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नाजिया सिस्टर आज मेरे भाई मोहम्मद तस्लीम अहमद खान की 26th वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी तरफ से मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद तस्लीम अहमद को 26वीं शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक,
1: और हमारी तरफ से भी इस कपल को शादी की जो सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक।
2: अरे भैया मसला ये है कि तस्लीम भाई से तुम्हें कोई पूछे कि वो
1: मुबारकबाद
2: नहीं, मैंने मतलब ये है कि उनकी आप लोग किसी और बात को मत समझिए भाई, तस्लीम भाई खुश तो होंगे ही आप, जाहिर बात है। खादिम भाई कह रहे हैं तो मैं भी मान ही लेता हूँ, चलो भैया। कहते हैं भाई मुझे भी भेज दो, अच्छा रमेश भाई, अच्छा वो फेस पैक मैं बिल्कुल सबको भेजूंगा, आज बारी बारी यही करूंगा शो के बाद बैठ के आप सबको भेजूंगा, उसके शो में जरूर भेजना। अब एक अपडेट शेयर कर लेते हैं अगर टाइम है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे
1: और
2: एक कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात।
2: आइए पधारिए, कहाँ थे 3 साल बाद मुलाकात हो रही।
4: बस आप तो किसी का पूछते भी नहीं है कैसे भाई हो मालूम नहीं है, बस मुझे तो कुछ शक पड़ रहा है
1: यार। मुझे तो कब से शक था, आप आज हुआ है।
2: डेली डेली याद करते हैं आपको। सैयद खादिम हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, मैं बता दूं सभी को, और मैं तो आपको डेली याद करता हूं, यहां तक के बस नाजिया इशारे से यूं करके कहती है, हाथ के इशारे से कहती है छोड़ो छोड़ो।
1: मेरे भाई को यकीन ही नहीं आएगा ये झूठ बोलता है।

0: ये बात तो सही है,
1: है ना? नहीं, कौन सी वाली, नाजिया की या मेरी?
2: मेरी वाली बात तो क्या नहीं सही है।
0: नाजिया बहन अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: लेकिन नाजिया बहन के बारे में मुझे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे उधर घर वाले पाकिस्तान में भी कुछ बोले तो मुझे यकीन
1: नाजिया, चलो ये यहीं तक, ये हमारी हमारी पूरी सेटिंग सेट बैठ गई। अब इनकी सारी जायदाद वायदाद सारी चीजें खातिम भाई के हाथ पड़ा लेते हैं और फिर आगे की
0: पाने
1: की भी जरूरत।
0: सरवर भाई बात सुनो, हमारे सिर्फ हमारे फैमिली में हमारे बाबा हमेशा ये कहते थे कि सबसे पहले अपनी बहन का हिस्सा दे दो, बाकी कुछ आप लोगों को मिले या ना मिले। मैं तो कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह उधर आपका जितना भी हिस्सा बनता है ले लो।
1: क्या कहने यार। अच्छा, और बहन से ज्यादा भाई का हिस्सा है?
2: अगर, कौन से भाई का?
0: अगर उसको अगर,
2: अगर माने तो
0: सरवर भाई अगर नाजे बहन को मैसेज नहीं आया मैसेज और आपको नहीं दिखाया तो फिर आप मुझे कहो कि हाँ आपने झूठ बोला।
1: क्या बात है यार,
2: मेरा भाई मुझे यकीन है।
1: सुन तो लो फातिम भाई यार, लेकिन मैं सुनो तो
0: मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि आज मेरे बच्चे मैसेज करेंगे नाजे बहन को कि आ जाओ आप अपना हिस्सा ले।
1: क्या बात है, अल्लाह ताला मुबारक करे। और नाजिया बहन के साथ जो भाई हैं उनका भी तो है कुछ थोड़ा बहुत बच्चा।
2: हाँ, उनके लिए है रैपर्स हैं।
0: नहीं, असल में हम लोग
1: पता चला खादिम भाई, पता चला घर वाले सुन रहे हैं और उसके बाद खादिम भाई को जो फोन आएंगे, क्या आप कहाँ बांटते फिर रहे हो अब्बा, हमारे हिस्से किसके सर जा रहे हैं?
0: ये बात कभी ऐसे बात आप, मैं
2: सही कह रहे हैं, मुझे यकीन है इनकी तरबियत पर, हाँ इनके बच्चों पर।
0: लेकिन सरवर भाई एक बात याद रखो कि हम भाई आपस में नहीं बांटते, बहनों को देते हैं।
2: देखा, और आप ऐसे भाई हैं तभी इनको मच्छर ने काटा।
1: और
2: नहीं
0: माशाल्लाह,
2: नहीं सच में काटा,
0: मुझे
2: बहुत तगड़ा
0: माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने कॉल
2: किया।
1: चलिए तो अब मेरी बात तो सुन ली है, ड्यूटी तो आपकी मुझे मालूम मजबूरी है, उसके बाद भी आप टाइम निकालते हैं, हम जल्दी से आपके साथ गेम भी खेल लेते हैं, जरा सा गेम भी शुरू हो जाएगा इस बहाने और काम भी हो जाएगा, ठीक है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, नहीं सुनूंगा, गेम खेलूंगा, खेलना पड़ेगा।
2: अरे सुन तो लीजिए,
1: ये बात देखो, मना लिया ना मैंने,
2: आप हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, दो बार धोते हैं
1: वजू करके। चलिए तो खादिम भाई उल्टी गिनती चल रही है, ठीक है?
0: नहीं ये तो ऐसा है ना, ये तो ऐसा है कि एक आपने किसी और को दावत दी और मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और आपने मुझे भी बुलाया कि आ जाओ बैठ जाओ।
1: क्या बात है यार, क्या
2: ये ऐसे ही होता है,
0: चलो बिस्मिल्लाह,
2: ये बासी दावत ऐसे ही निपटाते हैं।
1: चलिए तो आसान है क्योंकि आज थर्सडे है तो उस हिसाब से हमने रखा है, और 178 से 168 वापस जाना है, खाली 100 की गिनती पे, और बहुत आसान है।
0: 178 से
1: 100
0: यानी गिनती उल्टी गिनती 178 से
1: 168 बस खाली 10
0: 178 से 168 तक।
1: आई वाह,
0: ओके जी,
1: रेडी है?
0: बिस्मिल्लाह,
1: चलिए ठीक है, तो आपका टाइम शुरू हो गया अब।
0: 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168
1: हो गया पूरा, 68, 66, 69, 69 सारे हो गए, 13 सेकंड लिए मेरे भाई ने, अच्छा किया क्लियर था यार, क्लियर
2: पूरा क्लियर था।
1: क्या बात है भाई, कादर भाई,
0: वो वन असल में वो 169 मैंने 169 इसलिए एक्सप्लेन किया कि अक्सर 179 और 169 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं,
1: कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए भारत बहुत जबरदस्त,
0: उसमें दे दिए,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खादिम भाई, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जायदाद में हिस्सा देने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, गेम खेलने के लिए,
2: बहुत बढ़िया भाई, और जब मौका मिले प्लीज जरूर जुड़ा कीजिए हमारे साथ, जब भी आपको मिले आप मैसेज कीजिए
1: जी।
0: सरवर भाई यकीन करें आपसे बात हो के ना, आपसे फजील भाई से या जिससे भी हो, हमारे भाई है सारे, और फिर बहनों में हमारी नाजिया बहन से, अमीता बहन, सबसे बात हो तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, इससे कि ये हमारी बहन है और आप हमारे सब भाई हो, इंशाल्लाह ये हमारा घर है और हमारी एक फैमिली है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वो फोन कट गया, फैमिली बता के गए तो वो जरा सा एक चावल की बोरी

0: एक आटे की बोरी ये और एक क्रेट अंडे, जरा सा खादम भाई देखना मैं
1: चावल के साथ अंडा खाएंगे।
0: नहीं यार,
1: कोई कॉम्बिनेशन,
0: दूसरे दिन का इंतजाम कर रहे हैं यार, खाली एक ही दिन का थोड़ी ना दिया।
1: चावल किसके साथ खाएंगे,
0: आगे का भी इंतजाम कर रहे
1: हैं। अंडा तो मैंने
0: समझा, अब वो अभी दूसरा कौन है कॉल पे, आटे तो ये करेंगे ना, दाल वाल का इंतजाम, हर एक आदमी पे डाल दूं सब कुछ, भाई दूसरों को भी कुछ दूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम,
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: भाई आपका छोटा भाई, बहुत टाइम लगा दिया फोन
1: उठाने से। देखिए आप क्या मांगते हैं
0: आसिफ भाई, क्या हाल चाल है आसिफ भाई?
1: आपसे कुछ मांगेंगे पहले, रुकिए
0: मैं तो मोहब्बत मांगता हूँ बस। और
1: सर मिर्जा आप कितने समझदार हैं, जिनसे आप बता रहे हैं उनसे आप मोहब्बत मांग रहे
0: हैं। जाहिर बात पता है कहाँ से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, खाली जूते ही खाता रहूँ सुबह से, तो मैं खाने का भी इंतजाम करूंगा।
2: मैं एक बात बोलता हूँ, सरोज भाई ने ना मेरे को अच्छे से पढ़ चुके, बोले ड्राइवर है कुछ तो घर के खाने भी।
0: अरे यार भाई कैसी बातें कर रहा हो यार भाई, नादिया कह रही है कि खतरनाक बॉम्बे के लोग ना जरा सा टेंशन हो जाता है ना, अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम पिटपिटा जाएंगे, मामला ये वाला
2: नहीं भाई,
0: नहीं
2: मेरी जगह अगर सबर भाई होते
1: जी जी,
2: तो अगर ऐसा ही मतलब बात होती तो मैं ये बोलता है, अरे भाई सरवर भाई तो खुद एक ड्राइवर है, दो टाइम का खाना अंदर से आते मेरे को कहां से बोरी चावल भिजवाएंगे।
0: यार अब मैं क्या ही बोलूं आसिफ भाई,
1: आसिफ जी आप सवाल जो है ना रिवर्स कर दीजिए,
0: मेरा भाई भी आप ही की तरह यहाँ पे है और वो भी काम करते हैं और एम्प्लॉयड हैं और ड्राइविंग की जॉब करते हैं, तो मुझे मत बताना, मुझे सब पता, कितने मजे आ रहे हैं भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे।
1: बताओ आसिफ जी, आपके पैसे से आपके बैंक बैलेंस से नहीं होता कि आप चीज देते नहीं देते, ये जज्बा होता है।
0: क्या बात,
1: कुछ लोगों के पास कुछ ना होकर भी वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, कुछ के पास सब कुछ है फिर भी वो कुछ नहीं देने को तैयार है।
0: अब एक काम छोटा सा, अब एक छोटा सा काम, ये जो गाड़ी है ना, बस ये मैं बता रहा हूँ कहाँ पहुँचानी, ये लेते आना। मेरा भाई आसिफ भाई, आसिफ भाई गेम खेल लेते हैं, 153 से 143 जाना है उल्टे।
2: कौन सा पर मतलब?
0: 153, 153 से 143, 143 वापस जाना है।
2: 143 से
0: ना 53 से 43, 53 से 43,
2: 53 से
0: 100 से 153,
1: 153 से वापस 143।
0: उर्दू इंग्लिश हिंदी
2: मतलब जिसमें बोलो, पीछे आना है ऊपर आना भाई,
1: बैकवर्ड पीछे पीछे
0: पीछे रिवर्स, देखो पीछे देखो 43 पीछे
2: 153 से
1: 143
0: क्या हो गया, अब लेके जाओगे साथ में हाथ पकड़ के, हाँ भाई फिर 53 से आइए इधर आइए अभी
2: भाई, जरूर
0: रेडी रेडी रेडी,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चलिए ठीक है आपका टाइम शुरू हो गया अब।
2: 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143.
0: यार कहने मेरा भाई, यार आसिफ यार कमाल कर दिया यार, 8 सेकंड में किया यार ना दिया।
1: I think this is so far
0: क्या कहने, हाँ बिल्कुल यार।
1: Minimum seconds अभी तक के जब मैं एक दो दिन से हम लोग गेम खिला रहे हैं तो 9 was highest. 9 सेकंड्स में जितने भी हमारे यहाँ पे चैंपियंस जुड़े उन्होंने किया तो वो विनर डिक्लेयर हुए। दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग के क्या हो गई बेचैनी।
0: अरे मच्छर नहीं मान रहे यार भैया, नादिया को भी काट ले, मुझे ही काटेगा आज पूरे दिन। तो आसिफ भाई यार कमाल कर दिया यार,
1: बहुत ही
0: अब तो ये पार्टी, अब पार्टी बनती है यार
2: भाई, पार्टी बनती है फुल जोरों शोरों में भाई,
0: आसिफ भाई पार्टी बनती है भाई,
2: बिल्कुल भाई,
0: चलो यार बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, खुश रहिए, ख्याल रखिए,
1: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एलन वसैलन
1: दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ जो चैंपियन जुड़े आसिफ जी, उन्होंने स्कोर किया है 8 सेकंड्स। अब ये ओपन चैलेंज है आप सबके लिए, सबके लिए एकदम ओपन वाला चैलेंज है, लेट्स सी कि कोई चैंपियन हमारे साथ जुड़ेगा और इसको, इस काउंटिंग को 7 सेकंड्स में फिनिश करेगा
0: और उसके बाद जीतने के बाद आज जुमेरात में हमें खाना खिलाने ले जाएगा
1: और मिर्जा बेग जो है गले लगेंगे।
0: तो भाई एंजॉय कीजिए कुछ जुमेरात के गाने, सरवर नादी आपके साथ बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं एक्सप्रेस पे ओनली ऑन FM 107।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
1: दिस इज समथिंग

0: लश्कारा, जसवीर, अकौर और महालक्ष्मी एक दूसरे का साथ निभाते हुए। हाँ भाई, तो उल्टी गिनती के लिए कौन कौन है, आ जाओ भाई, एक एक करके आ जाओ।
1: यू आर लिस्निंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजी नाजिया और आरजी सर्वर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सर्वर नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं 12:26 ऑन द क्लॉक। और चलिए एक शॉर्ट छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सेलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी की सरपरस्ती में कल यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो क्लोज हुई। एक बहुत ही शानदार और यादगार लम्हा रहा। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन हर एक्सेंसी रोलवा बिन राशिद बिन महमूद अल खातिर भी मौजूद थी। ये सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी बल्कि मेहनत, हौसले और कामयाबी का इजहार थी। इस साल ऑल टुगेदर 1321 ग्रेजुएट्स ने अपने एकेडमिक सफ़र को मुकम्मल किया। इनमें देखा जाए तो 1111 बैचलर डिग्री होल्डर्स थे जबकि 57 मास्टर डिग्री होल्डर्स ने अपनी तालीम को और बुलंदियों तक पहुँचाया। साथ ही 153 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर्स भी आज अपनी मतलब कल उन्होंने अपनी मेहनत का फल हासिल किया। फख्र की बात यह है कि 250 ग्रेजुएट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया जिससे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वेल, देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ तालीम का मरकज नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं यूनिटी और डाइवर्सिटी का भी पैगाम देता है। जैसे आज का दिन भी हमारा यही है कि वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, तो उसकी अहमियत को भी यहाँ हाईलाइट करता है क्योंकि यहाँ पर ऑल टुगेदर 51 यानी 51 डिफरेंट नेशनैलिटीज से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स ने एक साथ एक जगह एक ही अंदाज में अपनी कामयाबी का जश्न बनाया। मैं कह सकती हूँ कि ये जश्न अपने आप में बहुत यादगार था क्योंकि हर ग्रेजुएट के पीछे एक बहुत ही कमाल की कहानी थी, उनकी मेहनत की, उनकी स्ट्रगल की और उनकी कभी भी जिंदगी से हार कर, हताश होकर, थक के बैठने की। तो अपने आप में ये सेशन मतलब ये जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत और कहीं ना कहीं हमें और आपको एहसास दिलाती हुई कि ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है बात बल्कि कहीं ना कहीं हकीकत की तरफ आपको लेके जाती है कि किस तरह से जब हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हर एक की फीलिंग को सोचते समझते अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैं कह सकती हूँ कि जो क्लास ऑफ 2026 थी वो आज सिर्फ मतलब कल सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हुए बल्कि कहीं ना कहीं ये वो लीडर्स हैं मुस्तकबिल के जो इस दुनिया को आने वाले टाइम में शेप भी करेंगे। सो बहुत ही कमाल का ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस और मैं खुद इस पर्सनल एक्सपीरियंस को मैंने जो था वो विटनेस किया। इट वॉज रियली ट्रूली अमेजिंग, एक अलग ही फीलिंग, अलग ही माहौल।
0: क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरीके की चीज़ें हैं जो खूबसूरत भी होती चली जाती हैं, जिंदगी से जुड़ती भी चली जाती हैं, यादगार भी होती चली जाती हैं जैसे नाजिया ने बताया। तो भाई आ जाते हैं गेम, अगर आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोग यहाँ कनेक्ट हो भी रहे हैं। एक छोटा सा मैसेज, उसके बाद हमारे चैंपियन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं एफएम 107 की सारी टीम को हैप्पी वीकेंड। आज मैं सुबह 8 बजे के करीब एक सुपर मार्केट गया था, ओके नाम नहीं है यहाँ पे, अच्छी बात है। मुझे मुल्तानी मिट्टी चाहिए थी लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि 11 बजे एफएम 107 पे शो आएगा जरूर भाई का, तो उनसे पूछना कि मुल्तानी मिट्टी कतर में शॉर्ट क्यों है। अब बता दो भाई, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ इंतजार करते करते। नीचे लिखते हैं मैसेज नहीं पढ़ लेते ना दिया, तो बोले पहले मेरा मैसेज पढ़ो वरना मैं आपकी ट्रेन में तो उतर जाऊंगा। हैं कौन हमारे साथ, ये है साहब मोहम्मद भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है इंतखाब भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाब भाई बहुत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब उनका पता है, एक एक मिनट। हेलो,
0: हाँ हाँ बोलिए नदीम भाई। जी नदीम भाई,
3: मदारी
0: है क्या हो गया, कोई और भी आ गया, कोई परेशान कर रहा है?
1: कुछ हुआ है।
0: मेरी फोटो मत दिखाइएगा खुदा के वास्ते उवैस भाई।
3: ओके
0: तय। अच्छा कहीं और लग गए। तैयब भाई को याद करना है
3: जी।
0: अरे क्या हो गया, खैरियत तो है? मैं कह रहा हूँ कि ये मत बताइएगा मुझसे बात कर रहे थे, अगर कहीं बसड़ हो गई कुछ तो। कहीं परेशानी में ना हो, अल्लाह ताला आसानी करे। तो यहाँ पर हमारे साथ चैंपियन से जुड़ते हुए हमें कुछ लोगों ने कहा है कॉल करने के लिए, हम उनको कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर और नाजिया, आप दोनों, आप लोगों का शो सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, मगर सुना है कि आगे अब नहीं होगा। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद लिखा खाली, या महमूद है, मोहम्मद है। तो भाई ऐसा नहीं है कि खुदा नखास्ता नहीं होगा, मतलब अभी के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे तो सीजन होते हैं, साल में दो बार तीन बार हमारे यहाँ प्रोग्राम शफल होते हैं, लोग शफल होते हैं, हमारे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, जैसे हमने इधर किया, ये तो लंबा ही बर्दाश्त किया 9 महीने के करीब। मगर यह है कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को वो क्वालिटी मिले, वो बेहतरीन प्रोग्राम्स मिले, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भी हों, आपको समझने में भी अच्छे लगे, आपको सुनने में भी अच्छे लगे, आप उससे कुछ हासिल वसूल भी कर सकें, और आप हमें स्पेशली आरजे जो भी आपके साथ होते हैं उनको भी कुछ सिखा सकें। तो इसलिए ये चीज़ होती है, इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोगों की हमसे मुलाकात वैसे तो होती ही रहेगी। और नाजिया सुबह की जिम्मेदारी निभा रही है मैविश के साथ, इधर दोपहर में नाजिया की जगह सफा मेरे साथ होंगी, मैं यहीं का यहीं हूँ, और इंशाल्लाह ताला बस बाकी सब खैर है इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके नाजिया, क्या ज्वाइन किया हमें चैंपियन ने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
3: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: हेलो।

0: रमेश, मिथिलेश, रमेश,
1: सुरेश,
0: सुरेश,
2: ये सब भाई हैं हमारे.
1: कह रहे सारे भाई हमारे ही हैं.
0: कौन है ये तो बताइए हमारे साथ प्लीज. देखिए मैं आई इंसिस्ट,
1: आप अपना नाम मत बताइएगा रमेश जी, प्लीज मत बताइए.
0: रमेश भाई आई इंसिस्ट, अपना नाम बताओ.
1: रमेश भाई प्लीज नाम बताओ.
0: रमेश भाई नाम बताओ वरना मैं नहीं खेलूंगा. मैं नहीं खेलूंगा. रमेश भाई नाम बताओ.
1: यही तो हम चाह रहे हैं अपना खेले.
2: आप तो खुद ही नाम ले रहे हैं हमारा, तो मैं क्या बताऊं.
0: अच्छा ऐसे ही है क्या. क्या बात है भाई. चलिए साहब रमेश भाई की आमद. हैप्पी वीकेंड रमेश भाई. उम्मीद करता हूँ अच्छी मॉर्निंग हुई होगी और आफ्टरनून तक आते आते आपका मिजाज अच्छा होगा. नादिया पेन दे दीजिए. मैंने पूरे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया इशारा कर करके. नादिया ने पेन नहीं दिया मुझे.
1: सर रमेश साहब क्यों नहीं दिया? ये चौथा पेन
2: है कि मेमोरी को वॉक कर देता है बिल्कुल एकदम.
0: और आज वैसे भी बहुत आसान है, बहुत आसान है.
2: सही बात है.
0: ठीक है तो रेडी है.
1: शुरू हो जाइए.
0: चलिए तो साहब 188 से 178 जाना रमेश भाई. ठीक है
1: कहाँ से कहाँ
2: जाना?
1: किधर से किधर निकल?
0: ये जोधपुर से सीधे अमिनी चांग की तरफ चौराहे पे.
2: अलीगढ़ की तरफ. अलीगढ़, अलीगढ़ से जोधपुर.
0: ये तो ससुराल पहुंचा रहे हैं मुझे. वही वाह रमेश भाई, वाह रमेश बाबू वाह. ओके तो रेडी है
2: जी.
0: ओके चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब.
2: 178, 177, 176, 175, 174, 172, 171, 172, 169, 168, 167, 166.
0: क्या हो गया? अच्छा छाछ पीनी पड़ेगी लग रहा आज. यार 188 से 178 जाना था.
2: 188 से.
0: हाँ वो गलत गलत टर्न ले लिया आपने. लेफ्ट पे जो मुड़े हैं मानी है, सीधे जाना था. आगे से यू टर्न उसके बाद राइट. आप यहीं से ही लेफ्ट ले रहे हैं तो ये गलत हो गया ना.
2: नहीं नहीं
0: चलिए तो फिर से करते हैं. आपका टाइम शुरू हो गया अब.
2: 188, 187, 186, 185, 184, 182, 181, 180, 189, 188, 187. दोबारा उसी पे चले गए थे.
1: क्यों
0: 183 खा गए जल्दी में? भूख लग रही है. मैंने कहा नाश्ता करके आना.
2: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: 183.
2: अच्छा वन सेकेंड.
0: वन सेकेंड क्या बात है.
1: फिर से
0: अपना नारा अपने आप ही. चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब.
2: 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 182, 189, 178.
0: आई वाह. रुक जाओ ब्रेक लगाओ रमेश भाई. डिस्क पैड जो है वो घिस जाएंगे, दोबारा ब्रेक डलवाने पड़ेंगे. भाई ने 9 सेकंड में किया ना दिया. नॉट बैड रमेश भाई.
1: वेरी नाइस. नॉट एट ऑल.
0: नंबर दो के ही काम है. नहीं मेरा मतलब है नंबर दो पे आप हैं आज रमेश भाई.
2: कुछ भी कह लीजिए सर पर आप ओके.
1: एक चीज है जो आउट ऑफ कंट्रोल है ज़बान.
0: यार रमेश भाई की मोहब्बत नादिया कितने अच्छे कितने प्यारे हैं. देखिए आपको कितना बर्दाश्त करते नादिया है. कमाल है यार, कमाल है रमेश भाई का. चलो
1: भाई
2: थैंक यू सो मच. हैप्पी वीकेंड सर. वन एफएम को जो बर्दाश्त कर लिया वो पूरी दुनिया को.
0: क्या बात है. चलिए इसको मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव बात नहीं समझूंगा मैं. ठीक है वीकेंड है
2: तो प्यार है
0: मेरा.
1: ओके
0: थैंक यू. हैप्पी वीकेंड.
1: हैप्पी वीकेंड.
0: ये थे भाई रमेश भाई नंबर दो पे आते हुए.
1: साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं. हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जी कौन है हमारे साथ?
3: अली वजदाद.
0: Mr. Ali.
1: Ahlan
0: wa sahlan. Alhamdulillah, we are good. How are you?
3: Alhamdulillah, akhbarkum tayyibin.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Anta tamam?
3: Allah yakhlik. Alhamdulillah, antum bkhair?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Inshallah dom. شو متى هاي بروجرام الاغاني الهنديه؟ انا دائما اتابعكم بس ما ادري متى تحطونه يعني.
0: عادي سمعت
3: الاغاني يعني تحط اغنيه انا اقول اسم الفيلم اسم الاغنيه يعني بس ما في وين هاي بروجرام.
0: اوكي this will be sunday inshallah. sunday inshallah.
3: الساعه كم؟
0: 11 to 1 يعني 12 o'clock inshallah you can come to play.
3: انا دائما اتابعكم بس ما في برنامج يعني قلت يمكن كنسل البرنامج يمكن. يمكن كنسل يعني ما

0: درام بس مرة واحدة مثلا؟
1: نو
0: اوكي ساندي ها؟
2: ساندي ان شاء الله.
1: ساندي ان شاء الله
2: 12 اوكلاك
0: 12 12 12 12.
2: ايوه ايوه
0: 1 2 1 2.
2: ايوه ايوه
0: خلاص.
2: Thank you, thank you, Mr. Ali. Happy weekend. Thank you so much.
1: Thank you so much.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. شكرا. أهلا وسهلا.
1: यहाँ पे हमें थैंक यू सारा का भी करना चाहिए.
2: सारा बैठी हुई बात में हमें समझाती रहती है. ऐसे ऐसे सारे इशारे सारी हैंड लैंग्वेज जो है सारा से हम समझते रहते हैं बैठे हुए.
1: क्योंकि जैसे ही हमें आया हमने सीधा टर्न किया अपनी मुंडी सारा की तरफ कि हमें समझ में नहीं आया. सारा हमें हाँ ना थम दिखा रही थी. कम्युनिकेट कर पाए.
2: असल में बात समझ में आती तो है मगर वो उस वक्त उस हिसाब से बोलना
1: और मोटी अकल में जब आ ही गई
2: उतना तो समझा. अब होता क्या आ भैया कहाँ को जा रहा है इधर आइयो. एक चीज है कि भाई कहाँ जाने इधर इधर तशरीफ लाइए. तो इसी तरीके से अरबी में अपनी अपनी लुगत अपने अपने तरीके हैं ना.
1: अरे भाई लुगत क्यों छोड़ी आप क्यों ऐसे मुंह से निकल रहा है भाई वर्ड.
2: वहाँ जितना समझा सकते हैं उतना समझा पाते. बहरहाल अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. ये मोहब्बत है अली भाई.
1: वो गेम खेलने की
2: बिल्कुल गेम खेलने आते हैं. बॉलीवुड के चैंपियन है वो. तो पूछ रहे थे कि किस दिन खेला जाएगा तो हमने कहा संडे 12 बजे तशरीफ लाइए तो सब समझ ही गए होंगे.
1: हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सरवर साहब कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं?
3: अल्लाह का करम है.
2: अहलन वसहलन. कौन है हमारे साथ ये तो बताइए.
1: कैसे बताइए?
3: मेरा नाम है जुनेद निजाम.
2: ओ हो हो क्या बात है भाई. बड़ा खूबसूरत नाम लिखा है.
3: नाजिया मैडम को भी सलाम वालेकुम.
2: नाजिया के नाजिया मैडम के सलाम पे आपकी आवाज गिर गई है एकदम जमीन पे. हेलो.
3: हाँ आवाज ही नहीं आ रही. आप पूरा खेल दिए है ना वो माइक.
2: अरे
1: आपने आवाज पूरी छेक रखी.
2: आपकी आवाज वाकई ही नहीं आ रही. निजाम साहब जरा माइक मेरे ख्याल में फोन डायरेक्ट यूज कीजिए.
3: अभी डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ सर. और कैसे आ रही आवाज सरवर साहब?
2: आ तो रही है मगर उतनी नहीं आ रही. गाना लगा दूंगा. आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा.
3: ये उर्दू रेडियो जाकर अरबिक हो गया माशाल्लाह. हमको
2: देखिए ऐसे ही है. ऐसे ही करते रहते हैं हमारे रंग अनेक. आज असल में दिन भी वही है. एक्चुअली क्या है निजाम साहब आपका जो नाम है और यूजुअली हैदराबाद में ये नाम कॉमन भी है जुनेद निजाम या निजाम जुनेद. ये मेरे एक बहुत करीब और अजीज का भी नाम है तो उनसे आपका नाम मिलता है बहुत ज्यादा. तो मतलब एक खुलूस एक मोहब्बत एक प्यार जो है अपने आप
3: मिलता है या कुछ और भी चीज मिलती है जैसा?
2: अब वो तो मैं देख के बताऊंगा क्या क्या मिल रहा है. मतलब मैं सुन
1: के
2: तो.
1: अच्छा अच्छा
2: अच्छा चलिए सुनना. नहीं नहीं इंशाल्लाह दावत वगैरह हैदराबाद वाले बहुत अच्छी करते हैं नादिया और मुझे उम्मीद है
1: आप भी जो है बहुत मेहमान नवाज़
2: हैं. शुक्रिया. नहीं इसमें आपको शुक्रिया नहीं कहना था निजाम साहब. आपको कहना था अहलन व सहलन. आज जुमेरात है तशरीफ लाइए आप और नादिया. इससे शुक्रिया.
3: मगर ये नादिया मैडम ये नहीं बुलाएंगे किसी को याद रखिए.
1: कभी नहीं कभी नहीं. आप ये
2: अच्छा भाई हैप्पी वीकेंड. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. अब
1: देखा कैसे पतली वाली पतली
3: नहीं है. ऐसा नहीं है.
1: कह रहे सर मिर्जा रुकिए हम दावत दे ना दे उम्मीद तो देंगे आपको.
2: चलिए साहब नाम लिखते हैं निजाम भाई का और हमारे साथ रेडी हैं खेलने के लिए जुनेद निजाम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद और अब कतर में काफी टाइम से भी हैं. अहलन वसहलन.
3: मगर थोड़ा सा गेम बिल्कुल 5 मिनट पहले
2: मैं बता रहा हूं.
3: मुझे थोड़ा आईडिया दीजिए.
2: मैं बता दे रहा हूं. नादिया बताइए क्या.
1: हां हमारा जो गेम है वो है रिवर्स काउंटिंग यानी बैकवर्ड काउंटिंग. एक स्लॉट आपको दिया जाएगा और आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है. जितने सेकंड्स में आप कंप्लीट करेंगे उस हिसाब से विनर हम डिसाइड कर रहे हैं. फिलहाल का मिनिमम इज 8 सेकंड.
2: 8 और जो दूसरे नंबर पे हैं वो 9 सेकंड पे हैं.
1: हाँ तो लेट्स सी कि आप 7 सेकंड्स में करें.
3: प्राइज या दावत रहेगी या बस?
1: हाँ हाँ
2: आप इसको खेलिए उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या मिल रहा है. यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें जमा करके रखी हुई हैं. दुआएं हैं अख्याली पुलाव है काफी इस तरीके की चीजें हैं.
1: भेजा फ्राई है
2: बिल्कुल ठीक है. तो आप रेडी हैं?
1: आपके लिए नहीं वो ये तो सर्वर के लिए भेजा फ्राई.
2: भाई आप रेडी हैं खेलने के लिए?
3: जी जी बिल्कुल रेडी हूँ मैं.
2: ओके तो मैं अपनी घड़ी सेट कर लेता हूँ और निजाम आपको
3: आप
2: जी मैं दे रहा हूँ 130 से 120 जाना है. 130 से आपको उल्टा 10 कदम 120 120 ठीक है.
3: ओके
2: क्लियर है।
3: एक तो तीस अब इंग्लिश या अरबी कुछ भी चले, मतलब इंग्लिश या उर्दू,
2: इंग्लिश उर्दू अरबिक इटालियन स्पेनिश जो भी आपको अच्छी आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आर यू रेडी?
3: यस सर आई एम रेडी। आप बोलिए, आपके काउंटडाउन से शुरू करूंगा।
2: ओके देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
1: 6 seconds
2: में किया यार इस आदमी ने। यार हैदराबाद की बिरयानी आज स्पाइसी थी लग रहा है।
1: अब आपको इनको डबल का मीठा खिलाना पड़ेगा। आपको करनी ही पड़ेगी।
3: मैडम मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आप ये बताएंगे कि अब 8 seconds से हम 4 पे आ गए।
2: अरे भाई
1: आप इन्हें सीरियसली नहीं छोड़िएगा और ये डेफिनेटली आपको डबल का मीठा खिलाएंगे।
2: यार
3: बिफोर दैट मेन कोर्स, बिफोर दैट मेन कोर्स, लास्ट टाइम मैं हार गया था लिटिल बिट 9 seconds में।
2: अरे आज तो डॉक्टर साहब आप 6 seconds से आप भाई चैंपियन बन गए। समझ में नहीं आया गाली किधर से निकल गई।
3: हाँ
2: बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही थी बात। बहुत बहुत शुक्रिया
1: में कितना तेज
2: भाई वाह। आज के आप हैं चैंपियन।
1: हाँ
2: मेरे ख्याल में ये तो आप रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाएगा। 3 दिन वैसे ही रह गए हमारे पास। अब क्या टूटेगा?
1: अब क्या टूटे? अभी तो किसी ने 6 seconds में किया भी नहीं था
2: भाई। वाह क्या बात है।
3: प्राउड
2: ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप गिफ्ट ले लेंगे मुझे पहुंचा दिएगा। बिल्कुल सही ख्वाहिश है आपकी।
3: अच्छा सर्वर साहब एक नाजिया मैडम, मैं जानता हूँ सर्वर साहब की आवाज बहुत सुरीली है। दो मुखड़े मेरे लिए। आप
2: सुरीली तो बहुत मेरी आवाज, बहुत आवाज सुरीली है। बिल्कुल अभी आपका फोन रखते ही गुनगुनाता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है
3: पक्का?
2: ओके बहुत बहुत शुक्रिया। एनन वर्स एनन सर,
3: यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग वर्क।
2: थैंक यू,
1: यू बीन सो काइंड, थैंक यू सो मच।
2: तो भाई ये थे जुनेद निजाम फ्रॉम हैदराबाद जो आज के चैंपियन हो गए हैं भाई। अभी तक कोई है जो भाई 6 seconds में रिकॉर्ड तोड़ेगा?
1: लेट्स सी। अभी तक हमने कहा था कि 8 seconds का रिकॉर्ड एंड ओपन चैलेंज आप सबके लिए, कौन जो है वो 8 seconds का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो यहाँ पर किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो जीत के गए हैं विद 6 seconds। अब देखना है क्या 6 seconds का भी रिकॉर्ड टूट सकता है या इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैसे कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं। सो लेट्स ट्राई, गिव योरसेल्फ अ गुड चांस। और मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे, आई मीन चैंपियन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो
4: वालेकुम
1: अस्सलाम
4: जी, खुर्रम शहजाद बात कर।
1: खुर्रम शहजाद जी,
2: कैसे
1: हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा इतनी रेस लगी
2: है, बहुत अच्छा किया सर आपने।
1: nice.
2: तो हम गेम जल्दी से खेल लेते हैं क्योंकि वक्त भी करीब आ रहा है, एक ब्रेक भी लेना है हमें छोटा सा। हाँ तो खुर्रम भाई हमारे साथ
4: बड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन कहने से पहले स्टार्ट बोलेंगे तो मैं शुरू करूँगा।
2: बिल्कुल सही, आपको 196 से 186 जाना है, 196 से 186। ठीक है रेडी है?
4: 196 से 186
2: जी बिल्कुल। ठीक है तो आपका टाइम शुरू हो गया अब।
1: 186 से 186।
2: चलिए ठीक है आपका टाइम शुरू हो गया अब। 6 seconds से थोड़ा सा जो पीको सेकंड आ गया हम 6 seconds में देंगे हम इनको। निजाम के साथ आज तो दो दो यार चैंपियन हो गए यार, क्या बात है भाई, क्या कहने भाई।
1: ये बताइए जबान इतनी फर्राटे से चल रही है।
2: हाँ बहुत, ये घर पे भी ऐसे ही रहता है मामला, मतलब इतनी अच्छी गिनती गिन लेते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच,
1: मैं कह सकती हूँ प्राउडली किसी ने आपको जबान में पीछे छोड़ा।
2: यार ये तो वाकई कमाल हो गया। हाँ देखिए
1: जबान देखिए इतनी तेज खटखट खटखट सारी की थी।
2: ये वो लोग हैं जिनसे हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
1: मैं कह रही हूँ आपको जरूरत नहीं है, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छी बातों में जो है वो आगे हैं।
2: अच्छा
1: आप तो गिनती छोड़ दीजिए।
2: हाँ ये
1: गिनती है, अब तो सर्किल में आगे हैं।
2: नहीं मगर ये
1: रेडियस
2: नहीं नादिया जी देखिए इसमें ये बात तो है लोग काफी कुछ समझ भी रहे हैं जान भी रहे हैं सीख भी रहे हैं मैं कह रहा हूँ ये अगर ज़बान घर पे इस तरीके की अगर चले तो
1: मजा आ जाए सेट होने हो ही नहीं पाएगी
2: फिलहाल एंजॉय कीजिए ट्रैक नो एंट्री से इस वक्त आपके साथ सोनू निगम अलीशा चिनॉय नादिया और सरवर दिल से
1: देसी

0: भैया नो एंट्री वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर और किस वजह से हो रही है। हाँ जी, तो भाई इसी के साथ अब वक्त हो गया कि आज आप लोगों से इजाजत भी लेते हैं क्योंकि अब वक्त हो गया है। अब से थोड़ी देर में आप दूसरे प्रोग्राम भी समाप्त करेंगे। फिलहाल आज के जो आफ्टरनून एक्सप्रेस के गेम के विनर हैं उनके बारे में हम नाम ले लेते हैं। बड़ा अच्छा खेले, खादिम भाई भी, आसिफ भाई भी, रमेश यादव भाई भी, निजाम जुनेद और खुर्रम साहब के बीच में टाई है। दोनों ने आज कीर्तिमान स्थापित किया है, 6 सेकंड में उल्टी गिनती को पूरा किया है। तो भाई अभी तक के लिए तो यही अपडेट है और हैप्पी वीकेंड कहेंगे आपको और आज इजाजत भी ले लेते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज आपसे इजाजत लेंगे हैप्पी वीकेंड के साथ और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी डायरेक्टली ऑन संडे 11 बजे इसी शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107। दिल से

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है, इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का। मैं हूं मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हर जुमेरात को जैसे मैं इसी वक्त पहुंचता हूं 1:01 पर और हमारी कंप्लीट जो मतलब परफेक्ट टाइमिंग है स्टूडियो की घड़ी पर 1:01 और ये वक्त होता है स्पोर्ट्स को लेकर बातचीत करने का। अच्छा बेसिकली ये है कि स्पोर्ट्स के एक राउंड अप है पिछले हफ्ते से आज तक जो भी कुछ हो रहा है क्रिकेट फुटबॉल टेनिस या ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो भी कुछ हुआ है होने जा रहा है सब कुछ सबकी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगा यहां आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंड अप। हर खेल का हर पहलू सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए। तो 5 टॉप हाइलाइट्स है उससे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों को एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं सो दैट आप लोग थोड़ा बिजी रहें और मेरे साथ जुड़े रहें ऑन 666-22-107 पर। आपका ये जितने भी जवाब हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो आज का जो सवाल है वो सवाल ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड कप का मौसम है, वर्ल्ड कप का अगले महीने से शुरू होने जा रहा है तो कतर टीम भी वर्ल्ड कप में है। यहाँ पर एक सवाल ये है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कतर में उसमें कतर के लिए वाहिद गोल किस खिलाड़ी ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि कतर की तीनों मैचेस में कतर को हार मिली थी यानी शिकस्त मिली थी, लेकिन एक मैच में कतर ने गोल किया था। आपको सिर्फ ये बताना है वो गोल किस खिलाड़ी ने किया था, दैट्स इट। और आपका जवाब जो है मेरे पास पहुंच जानी चाहिए 666-22-107 पर। दोबारा दोहरा देता हूं, 2022 वर्ल्ड कप में फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर के लिए वाहिद गोल किस खिलाड़ी ने किया था। सुन लीजिए ठीक से, आई रिपीट इट फॉर द थर्ड टाइम, 2022 फीफा वर्ल्ड कप में कतर के लिए वाहिद गोल यानी द ओनली गोल ऑफ कतर इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री वाज स्कोर्ड बाय दिस प्लेयर। कौन प्लेयर, प्लेयर का नाम बताइए, आपका नाम बताइए 666-22-107 पर टेक्स्ट कीजिए। एनीवे मूविंग ऑन टू द टॉप स्पोर्ट्स हाइलाइट्स ऑफ द वीक, अरब गल्फ कप फुटबॉल फेडरेशन यानी अरब खत्ते में जो फुटबॉल टूर्नामेंट सबसे मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है वो है गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट, और जिसका नाम दिया है ब्रांडिंग किया गया है खलीजी 27 इसलिए कि ये 27 एडिशन है, अगले साल नहीं हो रहा है ये इसी साल होना है। और इसी टूर्नामेंट की जो विजुअल आइडेंटिटी है उस विजुअल आइडेंटिटी को पेश किया गया, लॉन्च किया गया, और ये टूर्नामेंट 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुनाकिद होगा। दोबारा बता दूं कि खलीजी 27 इज नॉट द 27 मींस अगले साल की बात हो रही है, खलीजी 27 मींस 27 एडिशन ऑफ द गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये 23 सितंबर से यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप जुलाई में खत्म होने के बाद 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट एक या अगस्त 1.5 महीने के बाद ये टूर्नामेंट इस खत्ते का ही आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है फॉर द अरब कंट्रीज, आई मीन जीसीसी कंट्रीज, नॉट फॉर द अरब कंट्रीज बट द जीसीसी कंट्रीज। और एक बात इसमें भी बता दूं कि कतर किस ग्रुप में है, कतर को ग्रुप बी में रखा गया है और ये ग्रुपिंग ये ड्रॉ सेरेमनी है ये कल मुनाकिद हुई थी इन जद्दा में, और इसमें कतर के साथ यूएई बहरीन और यमन है, और ग्रुप ए में मेजबान टीम सऊदी अरब इराक ओमान और कुवैत शामिल है। तो दोबारा बता दूं कि अरबियन गल्फ कप 27th अरबियन गल्फ कप जो कि जद्दा में होने जा रहा है 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। मूविंग ऑन टू जीसीसी गेम्स, कतर दोहा में जारी है जीसीसी गेम्स, इसमें कतरी शूटर्स ने अपनी फतेह को जारी रखते हुए मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, मतलब ये समझ लीजिए कि शूटिंग में कतर को गोल्ड मेडल मिला है। ट्रैप एंड स्कीट ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं वो कभी और समझाएंगे आप लोगों को कभी, हाँ मैं समझा दूंगा कि ट्रैप क्या होता है और स्कीट भी क्या होता है। और जबकि मिक्स्ड टीम 10 मीटर पिस्तौल इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया कतर की टीम ने, वाह वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा वहीं वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 11 जून से और फ्रांस स्विट्जरलैंड ये तमाम जितने भी टीमें हैं उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्विट्जरलैंड तो कल ही अनाउंस कर दिया है एंड स्विट्जरलैंड की टीम जो है आपको पता है कतर के ग्रुप में है, और वहीं फ्रांस नेशनल टीम पिछले वर्ल्ड कप में रनर अप टीम फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बापे को स्क्वाड का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। या एम्बापे द ओनली स्टार राइट नाउ अगर देखा जाए वर्ल्ड फुटबॉल में फ्रॉम द पिछले वर्ल्ड कप से जो कि हैट्रिक किया था, और जाहिर सी बात है कि कतर को एक ब्रांड एक ब्रांडिंग की जरूरत है और किलियन एम्बेपे जैसे और कोई खिलाड़ी उनके नजर में आ ही नहीं रहा है, तो किलियन एम्बेपे विल लीड द टीम एट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। मारूफ रैली ड्राइवर, कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर सालेह अलातिया और कैंडिडो करेरा ने जॉर्डन रैली में फतेह हासिल की। इस जॉर्डन रैली जो है इस खित्ते का अगवलो मिडिल ईस्टर्न रैली जो चैंपियनशिप है उसमें नासिर सालेह अलातिया इज अ लेजेंड, उनको रोकना क्या हराना ही नामुमकिन है। इंडिया की अंडर 18 मर्दों और खातीन की नेशनल बास्केटबॉल टीमें कोलंबो श्रीलंका के कोलंबो शहर में होने वाले फीवा अंडर 18 एशिया कप और फीवा अंडर 18 वुमेन्स एशिया कप 2026 क्वालिफायर्स में हिस्सा लेंगी। और गाम्बा ओसाका ने रियाद में मुनाकिदा एएफसी चैंपियंस लीग 2 के फाइनल में अल नसर क्लब को हराकर टाइटल जीता। अल नसर क्लब याद है या याद दिलाऊं, अल नसर क्लब वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब्स इन सऊदी अरब फुटबॉल लीग, और इसमें कौन खेलता है ये आपको पता है, अल नसर क्लब, और इस अल नसर क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम में खेला तो ज़रूर लेकिन उनकी टीम की हार हुई, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि क्या रोनाल्डो साहब इस बार के वर्ल्ड कप में, एंड ये उनका सिक्स वर्ल्ड कप होने जा रहा है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, तो क्या अल नसर क्लब में खेलते हुए उनके परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए क्या यही रोनाल्डो पोर्चुगल को वर्ल्ड कप में कुछ नॉकआउट स्टेज तक पहुंचा देगा या नहीं देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ मैजिक और मैजिक जिस दिन वॉक कर जाए जिस दिन चल जाए उस दिन पोर्चुगल के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर लेता हूँ छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो क्रिकेट की खबरों के साथ आऊँगा, और टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंड अप, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था स्पोर्ट्स राउंड अप के इस शो में कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर के लिए वाहिद गोल किस खिलाड़ी ने किया था। आप लोग अपना जवाब जो है 666-22-107 पर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम भी शाउट आउट कर दूंगा। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कतर इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप, ठीक है, इन दिस नेक्स्ट मंथ्स वर्ल्ड कप, और कतर की टीम वहाँ पे मौजूद है। और एक हिस्ट्री, एक तारीख कायम किया गया था 2022 वर्ल्ड कप में, और इस खिलाड़ी ने पूरे कतर की फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम जो है उन्होंने लिखवा दी। उन्होंने लिखवाया किस लिए कि उन्होंने वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म में, यानी वर्ल्ड कप के स्टेज पर वो वाहिद खिलाड़ी बना टू स्कोर अ गोल फॉर द कतर नेशनल टीम। बहुत बड़ी बात है, चाहे कतर को जीत मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन टीम कतर के लिए एक गोल करना वर्ल्ड कप के स्टेज में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो जस्ट मेंशन योर नेम एंड इस खिलाड़ी का नाम के साथ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 666-22-107 पर। अच्छा, लेट्स मूव ऑन इन दिस सेगमेंट पे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट में काफ़ी कुछ उलट फेर हमें देखने को मिला है, और सबसे इम्पोर्टेंट अहम रिजल्ट जो मेरे नज़र में है, आप लोगों के नज़र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, IPL भी है, PSL गुजर गया, और कई चीज़ें और भी होने जा रहे हैं, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान का भी है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान जो टू मैचेस के जो टेस्ट सीरीज, उसमें बांग्लादेश टीम की जो जीत हुई है उसमें हर कोई कह रहा है कि क्या बांग्लादेश इज़ द नेक्स्ट मेजर फोर्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। मुझे कुछ ऐसा ही लगने लगा है, स्पेशली नाहिद राणा,

कॉन्फिडेंस। अब बांग्लादेश जो है बेसिकली व्हिपिंग साइड, यानी हर कोई उनको मार के पिट के यू नो अलग नहीं हो सकता है कि भाई तुम जाओ, यू आर द सेकेंड बेंचर्स या यू नो लास्ट बेंचर्स। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अगर बॉलिंग एक्शन, बैटिंग परफॉर्मेंस अगर आप लोगों ने देखा होगा इन द रिसेंटली कंक्लूडेड सिलेट के जो टेस्ट मैच में, तो उसमें आपको साफ एंड साफ अंदाजा हो गया होगा कि दे रियली डोमिनेटेड और पाकिस्तान टीम को हरा कर क्लीन स्वीप, यानी दो मैचों में दो मैचेस जीतकर पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी मरतबा, दूसरी सीरीज थी ये 2024 के बाद, 2026 इस सीरीज में पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश ने साबित किया कि दे आर हियर टू स्टे। एंड क्यों नहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक चेंजेस हमें नजर आए, और उस चेंज में क्या था कि तमीम इकबाल वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तमीम इकबाल अभी हाल ही में उन्होंने क्रिकेट खेल ही रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया था। सो एक सोच हमें नजर आ रही थी, 37 साल का तमीम इकबाल यंग है और सोच में कई चीज़ें हमें देखने को मिल गया है, जहां पर यू नो बॉलिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, बैटिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, और ओवरऑल जो कप्तानी की बात कर लें, लिटन दास जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने मुशफिकुर रहीम जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, सो ये सब चीज़ें ओवरऑल एक पिक्चर, एक श्योर शॉट एक पिक्चर है जिससे साबित होता है कि बांग्लादेश टीम अब वो टीम नहीं रही है जब उनको हर कोई मार के हरा के पीछे हो जाते थे भाई, आगे हो जाते थे और बांग्लादेश को कहते कि भाई आपको बहुत काम करना है। अन्ना वानली बांग्लादेश ने शो कर दिया कि नो, अब हम उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, एंड यू नो दीज आर द टू टीम्स जो सब कॉन्टिनेंट के, और इंडियन टीम डेफिनेटली से। तो ये आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में बांग्लादेश क्रिकेट टीम विल रियली डू गुड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के जितने भी सपोर्टर्स, फैंस, लोग कतर में मौजूद हैं, उनको हमारी और एंड इन FM 107 की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स अ गुड विन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम। अच्छा, इंडियन प्रीमियर लीग जारी है और इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यू नो स्टेज पर है अभी, एंड इसमें पिछले दिन यानी कल के जो मैचेस हुए थे उसमें एक जीत हुई है कोलकाता की, लेकिन काफ़ी लेट है कोलकाता 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा कर दे फाइनली वॉन दिस गेम। आज गुजरात का सामना है चेन्नई का, और ओवरऑल स्टैंडिंग से की अगर बात करूँ तो यू नो बैंगलोर ऑलरेडी क्वालिफाइड, गुजरात ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ, हैदराबाद ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ। बैंगलोर की टीम जो है 13 मैचेस में 18 पॉइंट लेकर सबसे टॉप, गुजरात 13 मैचेस में 16 पॉइंट लेकर सेकंड पोजीशन में, और हैदराबाद की टीम 13 मैचेस में 16 पॉइंट लेकर थर्ड पोजीशन पे। सो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कुछ यू नो चेंजेस नहीं दिख रहा है बस, लेकिन पंजाब टीम जो कि दो हफ्ता पहले 2 वीक्स बैक दे वर लीडिंग द टेबल, अब वो नीचे की तरफ है, 5वीं पोजीशन पर है, लास्ट 5 मैचेस में हार, ये कुछ समझ में नहीं आया। अब मुंबई इंडियंस फॉर्मर चैंपियन, 5 बार की चैंपियन, और चेन्नई टीम 5 बार की चैंपियन, ये थोड़ा सा नीचे के पायदान में है। लखनऊ सबसे नीचे है 13 मैचेस में 8 पॉइंट, और उससे थोड़ा अगर देखा जाए ऊपर में मुंबई इंडियन की टीम है 8 पॉइंट पे। तो आज मैचेस हैं और ये जो मैचेस होने जा रहे हैं दैट इज बिटवीन, जैसे कि मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट मैच कह सकते हैं या कह भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड हो ही चुका है। एंड आप जितने भी मैचेस हैं, आज गुजरात तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अगर चेन्नई अगर आज थोड़ा सा जीत भी जाए तो हो सकता है कि चांसेस बने जो फोर्थ टीम है टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ, तो चेन्नई कैन रियली मेक इट। कल जो है हैदराबाद का और बैंगलोर के दरमियान मुकाबला है, सो दीज आर द मैचेस दैट इज गोइंग टू हैपन। और वहीं अगर मैं बात करूं कि BCCI और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उन्होंने टीम का ऐलान कर दिया है फॉर द अफगानिस्तान वन ऑफ टेस्ट सीरीज और वन ऑफ टेस्ट सीरीज और ODI स्क्वाड के लिए बुमराह, जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था, इसके साथ साथ मोहम्मद शमी को भी बाहर कर दिया गया है। इवन संजू सैमसन जो कि T20 में इंडियन टीम को जीत दिलाने में बड़ा ही अहम रोल अदा किया था एज अ बैट्समैन, उनको भी ODI के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, एक और यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक रिकॉर्ड हुआ था, मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम द क्रिकेट एंड नाउ मूविंग ऑन टू द रीजनल एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स। काफी कुछ हुआ है और कतर के हवाले से एक बात बता दूं, सुप्रीम कमिटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी और उनके की स्टेक होल्डर्स का एक डेलीगेशन
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डिलीवरी में हिस्सा ले रहा है. इट मींस कि कतर की जो एक्सपीरियंस रहा है 2022 वर्ल्ड कप में, उन्हीं टीम मेंबर्स को, स्टाफ को अमेरिका में या मैक्सिको में या

फीफा वर्ल्ड कप के स्टेज पर एक गोल तो कर दूं, सो दैट उन लोगों के नाम के साथ मारूफ जितने भी खिलाड़ी हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ दिस सर्टन प्लेयर हैज स्कोर्ड अ गोल इन फीफा वर्ल्ड कप, जो कि मोहम्मद मुंतारी के साथ ऐसा है। तो सोचिए, डियागो माराडोना का नाम है, लियोनेल मेसी का नाम है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, रोनाल्डो का नाम है एज वन ऑफ द गोल स्कोरर्स, तो जितने भी टॉप पहले ही का नाम है, एंड यू नो कई ऐसे पाओलो रोसी का नाम है। तो उन नेम्स के साथ जो गोल स्कोरर्स हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वहाँ पे मोहम्मद मुंतारी का नाम भी जुड़ गया है। तो लेट्स वेट फॉर अनदर न्यू स्कोरर फॉर कतर। बेस्ट ऑफ लक टू द कतर नेशनल टीम। और आज शाम को एक मैच होने जा रहा है, वो फ्रेंडली मैच है, दोस्ताना मैच है, लेकिन ये मैच आप लोगों के लिए नहीं है, ना मीडिया के लिए है, किसी के लिए भी नहीं। ये क्लोज्ड मैच है अगेंस्ट सूडान नेशनल टीम, जहाँ पे प्रिपरेशंस हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे मैचेस खेलने हैं कतर को। सो दिस बेसिकली अ प्रिपरेटरी मैच, नॉट फॉर द फैंस। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और आप सभी को इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन

स्टेशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं, तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी कितने बज रही है मेरी आवाज़ सुनने के बाद आपको पता चली जाना चाहिए कि इस वक्त 1:31 ऑन द क्लॉक हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं शो द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा।
4: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो।

तो भाई बच्चा पार्टी, ढेर सारा वेलकम है आपको सुपर किड्स शो में। और आज की खुशी हमारी डबल है, क्यों? क्योंकि हमारी खुशी में इस वक्त जो है ना वो वीकेंड भी शामिल हो गया है, थोड़ा सा सुकून भी शामिल हो गया है, और स्कूल से तो वापस घर जा ही रहे हैं, तो इस चीज़ की भी खुशी है कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो खाना भी मिल जाएगा मज़े मज़े का, अम्मी के हाथों का बना हुआ। तो बच्चा पार्टी, आज का दिन थोड़ा सा सुपर होता है हमारा, और ज़्यादा सुपर से भी ऊपर वाला होता है क्योंकि वीकेंड शुरू हो जाता है ना। तो भाई आज का दिन हमारा कैलकुलेटिवली हमारी बातें ये होती हैं कि भाई बताओ आज कहाँ जाओगे। पिछले दो हफ्ते से ना मैं कहीं नहीं गई, तो आज प्लीज़ मुझे थोड़े से सजेशन दें कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या किया जा सकता है इस वीकेंड। बच्चा पार्टी, आप मुझे इस शो में कॉल कर सकते हैं, 4434377 इज़ द नंबर। क्या है नंबर कॉलिंग का? 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल। और अगर आप चाहते हैं तो आप मैसेजेस भी भेज सकते हैं 666-22-107 पर। क्या नंबर है? व्हाट इज़ द नंबर टू कॉल? 666-22-107 द नंबर टू मैसेज इज 666-22-107। दो नंबर होते हैं, मैं मिक्सअप हो जाती हूँ भाई, क्या चल रहा है ये। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है, थर्सडे है तो थर्सडे को तो गलतियां माफ हो ही जाती हैं, क्या कहते हो? रिलैक्सेशन वाला मूड होता है ना। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि इस शो में शामिल होने का सिर्फ एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि भाई आप 18 ईयर्स से कम होने चाहिए। मेरा और आपका साथ रहता है 3 बजे तक। कोशिश ये करेंगे कि 2:55 तक कॉल करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर वो कॉलों का सिलसिला बंद हो जाता है हमारा। तो बच्चा पार्टी, आ जाओ कॉल करने के लिए, आ जाओ। 4434377 इज़ द नंबर। खेलेंगे हम आज का जो वीकली गेम हमारा चल रहा है, कंटिन्यू करेंगे उसे। हमारी कौन सी गेम चल रही थी? नेम प्लेस एनिमल थिंग। और भाई, ओ भाई, 12 सेकेंड का कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है? अब्दुल सलाम ने 12 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था, विद इन 12 सेकंड ही टोल्ड मी नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो भाई बताओ कौन कौन ऐसा

0: द माइंड सेट कि आप कहने कि यू हैव द चॉइस, आप उसके अंदर से चूज कर सकते हैं. अच्छा ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, आई विल चूज ब्लैक कलर. अच्छा गाड़ी में जाना है या आज मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, आई चूज टू ट्रैवल इन माई ओन कार. अच्छा भाई फ्रॉक पहननी है, शलवार कमीज पहननी है, आई चूज टू वेयर अ देसी शलवार कमीज. फॉर एग्जाम्पल पैंट शर्ट पहननी है या शलवार कमीज पहननी है, अच्छा आई चूज टू वेयर पैंट शर्ट. तो चूज का मतलब ये होता है कि आपको अगर लाइफ में ऑप्शन मिलते हैं तो आप उसके से कोई एक चूज करते हैं. और फिर चूज करने के अंदर भी एक चीज आती है कि चूजिंग द राइट ऑप्शन. अब लाइफ में कई दफा ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत हम लोग बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि भाई चूज टू बी अ माइंडफुल पर्सन, चूज टू बी काम, चूज टू बी काइंड. हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. जब हम किसी रिएक्शन या एक्शन के बारे में बात करते हैं ना, अपने बिहेवियर के बारे में, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा होता है, कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमें फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है. बट एट दैट इन दैट सिचुएशन वी चूज टू बी काइंड. तो भाई आज हम बात कर रहे हैं choosing to be kind. For example, अगर मैं आपसे बोलूं कि be kind, kindness का मतलब क्या है? Being nice, being caring, being helpful. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बच्चा पार्टी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. For example, sharing your toys with your friends, helping your parents at home. This is a choice. Saying please and thank you, helping your classmate who is sad, feeding the animals, caring for them and caring for the nature. This is what you choose to do. ऐसा भी हो सकता है कि आप घर के अंदर अकेले कोने में बैठे रहें, अपना वाईफाई चलाते रहें, अपना मोबाइल, अपना जो भी गैजेट है, आप एक कोने में बैठे हुए बस किसी से बात नहीं कर रहे. But you choose to be kind. आपके घर में कोई आता है तो you choose to be caring for them. अच्छा आप ये खा लें, ये पी लें, अच्छा आप इधर बैठ जाएं. This is what we are going to talk about today. तो बच्चा बाटी आज आपने मुझे कॉल करना है 4434377 पर. और आज हम कुछ चॉइसेस के बारे में, कुछ काइंडनेस के बारे में, कुछ आप कह लें कि अच्छी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको लाइफ चांस देती है तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बीइंग काइंड, चूजिंग द काइंड ऑप्शन और चूजिंग टू बी इन अ नेगेटिव साइड. तो भाई चलते हैं पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. हमारे साथ हैं साइंटिस्ट, इज इट?
1: या
0: कौन से वाले साइंटिस्ट, क्या नाम है आपका साइंटिस्ट सर?
1: तमीम
0: विद ई एन आई, बोथ राइट?
1: बोथ.
0: ये अच्छा बच्चा है, कहता है देखो मुझे चूज नहीं करना, मुझे ई भी चाहिए, मुझे आई भी चाहिए, मुझे सब चाहिए. अच्छा तमीम, हाउ आर यू टुडे?
1: फाइन.
0: आज कुछ तमीम की आवाज में एनर्जी लग रही है. तो आज खाना वाना खाया था? हाँ क्या खाया?
1: वॉफल खाया.
0: क्या खाए?
1: वॉफल.
0: वॉफल खाए? ओह माय गॉड, यू कैन मेक वॉफल्स बाय योरसेल्फ?
1: नो.
0: नो, देन हु मेड इट फॉर यू?
1: माय मदर.
0: ओह माय गॉड, चलें भाई वॉफल खा लिए. मेरे साथ कौन शेयर करेगा वॉफल्स? I also like waffles with that strawberry jam on them. Do you like it with chocolate or do you like it with the strawberry jam?
1: Chocolate.
0: अच्छा चलें ठीक है. मेरे लिए कल ना वो strawberry jam वाले बचा के रखना, ठीक है?
1: ठीक
0: है, okay. अच्छा tell me, Tamim, how is your day going today?
1: Good.
0: Good? Very good or only good?
1: Very good.
0: Very good. Why very good?
1: Because I didn't go to school.
0: Oh my God, celebrating your weekend already. Oh, अच्छा स्कूल क्यों नहीं गए?
1: क्योंकि मैं सो रहा था.
0: तमीम को अपनी नींद बहुत प्यारी है भाई. तमीम, you have to be punctual. You have to go to school.

0: You cannot keep on sleeping every day. Okay?
1: Okay.
0: Sunday se jayenge school, okay?
1: Okay.
0: अच्छा ये बताएं तमीम, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट चॉइसेस. सो इफ आई गिव यू एन ऑप्शन, वुड यू लाइक टू सिट अलोन और वुड यू लाइक टू सिट विद समबडी. इफ आई एम सेइंग चूज अ काइंड ऑप्शन, आपके घर पे मेहमान आए हुए, ओके, आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, ओके, लेट्स से आपके घर पे मेहमान आए हुए, there is a younger kid and he wants to sit and play with you. तो फिर आप क्या करेंगे? You will choose to be kind enough to sit with him and play with him, or you will choose to stay in your room alone?
1: Play with him? Yeah.
0: नहीं नहीं, alone बैठ जाएं. Sitting alone is kind, or playing with your guest is fine. वेरी नाइस, तालियां तमीम, तालियां, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा. अच्छा भाई तमीम ये बताएं, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे? तो फिर आज की गेम शुरू की जाए. ओके तमीम, द रूल इज सिंपल, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू सॉर्ट द गेम आउट विद इन 45 seconds.
1: Okay.
0: और अभी तक का हमारे पास जो स्कोर है ना, जो किसी ने किया है, वो है विद इन 12 सेकंड्स दे प्लेड द होल गेम. तो देखते हैं आज तमीम कितना स्कोर करते हैं. ओके पक्का पक्का?
1: हाँ.
0: चले भाई मैं अपनी स्टॉप वॉच तो देख लूँ. एक तो मेरी स्टॉप वॉच पता नहीं कहाँ चली जाती है. हाँ जी, रेडी हो गई है मेरी स्टॉप वॉच. और तमीम को क्या दिया जाए अल्फाबेट में? तमीम एस चलेगा? एस चले. 1 2 3 गो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एस नेम
1: साद.
0: ओके साद. एंड प्लेस
1: सऊदी अरेबिया.
0: ओके एंड एनिमल एनिमल एनिमल एनिमल व्हाट?
1: स्नेक.
0: ओके थिंग लास्ट थिंग जल्दी जल्दी जल्दी. क्या चीज? स्कूल. ओके ओके जी, कितना हो गया? 33 seconds तमीम साहब, 33 seconds, विच इज नॉट बैड बिकॉज माशाल्लाह, गुड गुड. बिफोर पहले से तो ज्यादा अच्छा है स्कोर. वीकेंड की एनर्जी, वेरी गुड तमीम. इट्स अ बेटर स्कोर देन बिफोर, माशाल्लाह, वेरी गुड. आज खाना पीकर पीना खा कर आए, सही. तो ये बताएं वीकेंड पे कहाँ जाएंगे तमीम?
1: लुसेल.
0: यू वांट टू गो टू लुसेल?
1: या.
0: चलें भाई ठीक है, फिर मैं भी लुसेल जाऊंगी. ओके
1: ओके,
0: मुझे ले चलेंगे? हाँ चलें भाई. बड़ा फूलों में लपेट के पत्थर मारा गया, कह रहे हैं कि हाँ हाँ ले जाऊंगा. अच्छा ये बताएं कि इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं?
1: नहीं
0: चलें फिर जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज दे जाएं, वीकेंड हैप्पी वीकेंड बोल जाएं सबको.
1: हैप्पी वीकेंड.
0: थोड़ा थोड़ा हैप्पी होकर ना, हैप्पी स्माइल करके थोड़ा सा.
1: हैप्पी वीकेंड.
0: अच्छा ये स्माइल है. चलें जी, अच्छा जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. अरे भाई आज तो तमीम साहब ने भी स्कोर कर लिया, मतलब ये कि 33 सेकंड अभी तक कर नहीं पाए थे ये, लेकिन उन्होंने कर लिया. देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ? हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: मैं रिश्ता हूँ.
0: रिश्ता रिश्ता, कैन यू स्पेल योर नेम फॉर मी?
2: R-U-S-H-D-A.
0: रिश्ता नहीं, रुश्ता. रुश्ता इज इट? हाँ जी. रुश्ता कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: रुश्ता आई बिलीव आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये नाम मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है. वाओ माशाल्लाह, इट्स अ वेरी यूनिक नेम. रुश्ता इसका मतलब क्या है? नाम आपके नेम का मतलब क्या है?
2: पता नहीं.
0: अच्छा एक काम तो कर.

0: ये जो रेडियो है ना, इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करें, क्योंकि मुझे वापस से अपनी आवाज़ आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम कर लें। रिश्ता का मतलब होता है कि somebody who is a right guidance, the one with wisdom, good judgment, the one which is the right one. तो चले आज हमें पता चल गया रिश्ता का मतलब क्या होता है। रिश्ता आपने कभी नहीं पूछा मम्मा बाबा से कि मेरे नेम का मतलब क्या है?
1: पूछा था पर भूल गई।
0: लो जी, नेम का मतलब कौन भूलता है? पता है, इट टुक मी सो मेनी इयर्स टू नो द एक्चुअल नेम ऑफ माय नो टू नो द मीनिंग ऑफ माय नेम। मैं बचपन से क्यूरियस थी कि मेरा नाम सफा है एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। तो मैंने तो पता लगा लिया, तो रिश्ता ने क्यों नहीं पता लगाया? और पता लगाया भी तो भूल गई है। ऐसे कैसे भूल गई? अच्छा ये तो बताएं कितने साल की हैं?
1: 9 and a half.
0: 9 and a half. और आपकी बर्थडे कब आ रही है? कि पूरी 10 years की कब होंगी?
1: August 4.
0: अरे माशाल्लाह, आपकी तो अभी आने वाली है बर्थडे।
1: हाँ।
0: तो ये बताओ बेटा, इनविटेशन कहाँ है बर्थडे का? तो आपको कौन सा फ्लेवर वाला केक पसंद है ये तो बताएं।
1: चॉकलेट।
0: ये सारे बच्चों को चॉकलेट केक क्यों पसंद होता है? वाय डोंट नो राइट। मुझे भी नहीं पता, जब मैं छोटी थी ना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अब आके मुझे पता नहीं क्यों फ्रूट केक पसंद है। द व्हाइट वन, द वनीला केक विद द फ्रूट्स ऑन द टॉप ऑफ इट, आई डोंट नो व्हाई। थिंग्स चेंज, इट्स ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड, बच्चों को ही पसंद होना चाहिए। इट्स चॉकलेट, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लाइक्स इट। अच्छा भाई ये बताएं कि रिश्ता, हाउ वाज योर डे टुडे?
1: गुड।
0: स्कूल गई थी?
1: हाँ।
0: तो स्कूल में क्या क्या किया?
1: नोट्स लिखा और पढ़ा।
0: लो जी, ये तो डेली सोप हो गया, कुछ कुछ कुछ डिफरेंट नहीं हुआ? अरे भाई, थर्सडे वाले दिन भी ऐसी बोरिंग नोट्स लिखे और पढ़ा, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई आर्ट क्राफ्ट नहीं, कोई पीई नहीं,
1: नहीं।
0: अरे भाई चले कोई बात नहीं, वीकेंड तो आ गया है ना, तो ये बताएं वीकेंड के क्या प्लान है?
1: शायद।
0: अच्छा, यू आर दैट काइंड ऑफ किड के जो प्लान्स बनाता है ऑलरेडी वीकेंड के, या वो वाले बच्चे, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा अम्मा अब्बा जहाँ पे भी ले जाएंगे चले जाएंगे।
1: सेकंड ऑप्शन,
0: अम्मा अब्बा जहाँ पे भी जाएंगे ले जाएंगे।
1: हाँ।
0: एंड व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू डू एट वीकेंड्स? अगर मैं पूछूं कि अच्छा अगर आपको ऑप्शन मिलता तो आप क्या करती, व्हाट वुड यू प्रेफर? हाय हाय, कभी सोचा ही नहीं। हाय, मैं तो इतनी डे ड्रीमर हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ। मैं तो इतने इतने प्लान बनाती हूँ, मैं तो कहती हूँ हाँ आफ्टर 2 weeks ना मेरी छुट्टी स्टार्ट होगी, तो मैं जो हूँ यहाँ जाऊँगी, ये खाऊंगी, आई ऑलरेडी स्टार्ट प्लानिंग इन माई ब्रेन। तो आप बिल्कुल भी नहीं करती प्लान?
1: कभी कभी।
0: तो कभी कभी के अंदर क्या आता है, क्या चीज अच्छी लगती है रिश्ता को?
1: खरीदना है।
0: हाँ अच्छा, आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। लेट से मम्मा बाबा आस्क्स यू, रिश्ता आज कहाँ चलें, तो आप क्या बोलेंगी?
1: तो
0: अरे इट्स दैट्स योर फेवरेट प्लेस।
1: यस।
0: हाँ, एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग ओवर देयर यू लाइक?
1: चॉकलेट शॉप।
0: ये मेरी तरह है, वो जो छोटी छोटी दुकान है ना सुख वाके में, अच्छा उसके अंदर जाकर घूमने भी कितना मजा आता है ना इवन वी डोंट बाय एवरीथिंग फ्रॉम दोज शॉप्स, वी बाय सर्टेन थिंग्स, बट इवन दे दोज शॉप्स आर वेरी आई वुड से वेरी ट्रेडिशनल लुकिंग एंड दे हैव देयर ओन वाइब। मजा आता है उन शॉप्स के अंदर भी जाने को, और उसके अंदर जो मजे की चीजें पड़ी होती हैं वो भी देखने में मजा आता है। या आई वुड गो अलॉन्ग विद यू कि हाँ मज़ा आता है। अच्छा ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं चॉइसेस की, ठीक है, मेकिंग काइंड चॉइसेस, मेकिंग बेटर चॉइसेस, मेकिंग गुड चॉइसेस। तो लेट्स से आई विल गिव यू

0: सिनेरियो, ठीक है. एक बच्चा है जिसने जो है वो क्लास में है, आपका क्लास फेलो है, ठीक है, आपकी कोई क्लास फेलो है. यू डोंट रियली टॉक टू देम मच, इट्स जस्ट अ क्लास फेलो, नॉट अ वेरी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड. बट एट सर्टन डे, किसी एक दिन आप ये देखती हैं कि भाई वो जो है ना बच्चा या बच्ची जो है ना वो सैड बैठे हुए. यूजली दे आर नॉट दैट सैड. सो वॉट वुड बी योर काइंड चॉइस टू डू?
1: I would make them happy.
0: You would make them happy somehow. Yes. You will go and talk to them.
1: Yes.
0: हाँ भाई, इसके लिए तालियां बनती हैं भाई, तालियां तालियां. Rushda has, Rushda is like her name. the right one. Okay. चलिए भाई, very good हो गया, ये एक अच्छी choice है. अच्छा ये बताए, हमारे साथ name place animal thing खेलेंगी?
1: हाँ.
0: चलो जी, name place animal thing खेलेंगे. तो Rushda, आपने हमें फर्स्ट टाइम कॉल की है, तो आप ये बताएं कि अच्छा एक बात तो बताएं कि आप पहले, क्या पहले नहीं सुन रही थी, क्या पहले नहीं कॉल की, क्यों नहीं कॉल की पहले? डर रही थी, नर्वस हो रही थी?
1: पहले नहीं करता.
0: क्यों? कोई एग्जाम थोड़ी था कि जिससे भाग रही थी?
1: एग्जाम था.
0: कॉल करना एग्जाम था? अरे भाई मैं तो शुरू में ही बोलती हूँ, इधर कोई विल लिसन एंड वी डोंट जज, वी जस्ट कॉल एंड वी टॉक. चले ठीक है, अब ये बताएं आप पहली दफा कॉल कर रही हैं, तो कौन सा लेवल खेलेंगी गेम का? इजी, मीडियम, एडवांस?
1: मीडियम.
0: मीडियम, मीडियम में चलें जी. ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला. ओके, दिस इज गुड, दिस वन लुक्स गुड. पी कैसा अल्फाबेट है? पी, पी फॉर पापा. ओके चलिए भाई, आपको दी जाएंगे 45 सेकेंड्स एंड रिलैक्स. ओके, रिलैक्स एंड प्ले, इट्स नॉट, वी आर नॉट जजिंग ओवर हियर, इट्स जस्ट अ गेम. ओके एंड यू विल बी गिवन 45 सेकेंड्स मैक्सिमम एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. नेम?
1: पी फॉर प्रियंका.
0: ओके. And place. Acha, animal.
1: Paddy.
0: Okay. And thing.
1: Animal, panda, thing, pear.
0: Pear. Okay. And ab reh gaya hamare paas place.
1: Parrot.
0: Place, place, place, parrot. Parrot is a place?
1: Paris.
0: Oh, Paris. Okay. I thought parrot. Okay, bhai. Kitni der ho gayi? 43 seconds. Very good. Very good. Bachcha party. Not that bad. Very, very good ho gaya. Very, very good. Very good ho gaya, bhai. Very good ho gaya. 43 seconds. Matlab, you covered up the whole game within 43 seconds. Aur... I would say, I would appreciate it, क्योंकि अक्सर औकात ही होता है जब हम कॉल करते हैं ना, there are things which we know, but we forget them. But you did not forget it. Very good. Nice, nice. I like the confidence, girl. And may Allah ताला bless you. ये बताएं, weekend पे कोई खास plan आपने मुझे बताया था? है तो नहीं, अम्मा अब्बा जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगी, ठीक?
1: Yeah.
0: तो क्या पता हमारी मुलाकात हो जाए, क्योंकि मैं भी ऐसी randomly ही निकलती हूँ बाहर, ठीक है? तो भाई अपना ख्याल रखिए, और जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज दे दें सबको जो आपको सुन रहे हैं.
1: बी पॉजिटिव एंड हैप्पी
0: वीकेंड. बी पॉजिटिव, तो मेरा ब्लड ग्रुप है, तो आई एम ऑलरेडी पॉजिटिव. चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, हैप्पी वीकेंड.
1: थैंक यू.
0: तो भाई बच्चा पार्टी, कॉल करते रहा करो भाई, कॉल करते रहा करो. देखो ये मत सोचा करो एग्जाम नहीं है भाई. रुचिता कह रही हाँ एग्जाम ही तो था कॉल करना. अरे भाई एग्जाम थोड़ी था, मैं कोई यहाँ पे टेस्ट थोड़ी ले रही हूँ, टीचर थोड़ी ना हूँ मैं, स्कूल में थोड़ी पढ़ा रही हूँ, रैंडम गेम खेल रहे हैं, जीते जीते नहीं जीते कोई बात नहीं, अगली दफा फिर कॉल करेंगे. चलिए जी, देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. द नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377. आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ?
2: आफिया.
0: आफिया,

0: आफिया पता है आपको, मेरी एक दोस्त है उसका नाम राफिया है, राफिया. सो योर नेम राइम्स विद देम आफिया.
1: मेरा
0: नाम तो माफिया से भी राइम करता है. किससे किस? ओह माय गॉड गर्ल, दिस इज सैवेज. अच्छा इन्होंने सही वाला राइम किया है. नहीं नहीं बेटा, हम रेडियो पे ये वाली राइमिंग नहीं लेंगे, हम अच्छी अच्छी वाली राइमिंग लेंगे, चॉइस अच्छी वाली करेंगे, ठीक है. चलें जी, ये भी, दिस वॉज गुड, आई लाइक इट आफिया, आई लाइक इट. अच्छा कितने साल की हैं आप?
1: 11
0: साल की हैं? 13 साल की हैं. चलें भाई ठीक है, 13 साल की हैं आफिया. आफिया ये बताएं, हमेशा सीरियस रहती हैं कि कभी मजाक मस्ती भी करती हैं?
1: कभी कभार कर लेती हूँ.
0: कभी कभार, देखो एहसान करती हूँ मैं लोगों के ऊपर मस्ती मजाक करके, वरना तो मैं हमेशा सीरियस ही रहती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ. अच्छा ये बात बताएं कि अगर मैं आपको एक चॉइस दूँ, ठीक है, बट इट नीड्स टू बी अ काइंड चॉइस, ओके. अगर मैं आपको चॉइस दूं कि ये देखें, ये सोचें कि आपकी अम्मी घर पर काम कर रही हैं, ठीक है, अम्मी डेली काम करती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अम्मी बेचारी बहुत थक जाती हैं काम करते करते, वो फिर भी बेचारी काम कर रही होती हैं, तो व्हाट वुड बी योर ऑप्शन, व्हाट वुड यू चूज?
1: मैं जाके उनकी मदद करूंगी.
0: तालियां आफिया के लिए, तालियां. वेरी गुड, वेरी गुड. भाई हेल्प करना, वो भी अम्मी की हेल्प करना, तो भाई जन्नत के दरवाजे खोलना है, ठीक है. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर कभी खुदा ना खास्ता अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई हो तो हम उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है. तो भाई इसी के साथ साथ अब ये मुझे बता दें कि वीकेंड का क्या प्लान चल रहा है आपका?
1: सोना.
0: ए हम क्या दोस्ते हैं क्या? पुरानी बिछड़ी हुई दोस्ते हैं हम? ये तो बता दो आफिया.
1: पता नहीं, शायद होंगे.
0: शायद होंगे. क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं बस सोती रहूँ सोती रहूँ सोती रहूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो जाना होता है ना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए. अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूँ, मैं आपको ऑप्शन दूँ कि भाई आफिया चले बाहर घूमने चलते हैं, तो आप कहाँ जाएंगी?
1: बेडरूम.
0: बेडरूम, लो जी इनकी कहानी वहीं पर. तकिया, मेरा तकिया, मेरा बिस्तरा, और मैं तकिए के मुंह देकर सो जाऊं, बस ये सेट है. ये एक अलग ही दुनिया की वासी हैं. देखें ये रहती हैं एक अलग प्लेनेट में, जो कि इनका रिलेटेड, इनका प्लेनेट शुरू होता है इनके बेड से और इनके तकिए पे ख़त्म हो जाता है. चलें खैर है, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी जैसी हूँ इस मामले में. अच्छा ये बताएं, हमारे साथ नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगी?
1: जी.
0: चलें हम जो है वो 1 2 3 चलें आफिया आपको दी जाएंगे 45 seconds, ठीक है. एंड विद इन दैट 45 seconds आपने गेम मुकम्मल करनी है, ठीक है. चलें जी 1 2 3 आपका जो है वो अल्फाबेट है एफ. एफ फॉर हम कहते हैं ना फ्रॉग या समथिंग. ओके 1 2 3 गो. एफ. F से नेम. ओके.
1: फ्लोरिडा.
0: ओके.
1: फिश.
0: फिश. ओके.
1: एंड फ्रॉग.
0: फ्रॉग. ओके चलें जी. अरे भाई 15 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर ली बच्चे. आज की हाईएस्ट टॉप स्कोरर हैं अभी तक की आप, अभी आज की. वेरी गुड वेरी गुड. 15 सेकंड में गेम खत्म, काम तमाम. चलें जी वेरी गुड हो गया. जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी?
1: बड़ों की इज्जत करो.
0: बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स. वेरी गुड. तो भाई 15 सेकंड की आज की टॉप स्कोरर अभी तक की हैं हमारे पास आफिया. आफिया अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीकेंड एंजॉय करें, एंड कीप ऑन राइमिंग योर नेम. चलें जी अल्लाह हाफिज. खतरनाक राइमिंग की है आफिया ने अपने नाम की. चले जी एक और कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ? एंड रूहान. अभी मैं ये बोलने लगी थी कि भाई ये अकेले अकेले

0: जो है ना रूहान की आवाज क्यों आ रही है, अनम की आवाज क्यों नहीं आ रही, फिर पीछे से अनम की भी आवाज आ रही
1: है।
0: ओह माय गॉड, सो हाउ आर यू गर्ल्स?
1: फाइन।
0: सो हाउ्स योर डे गोइंग गर्ल्स?
1: गुड।
0: हम गर्लीज है ना, हम ऐसे ही बात करते हैं। ओह माय गॉड, हाउ आर यू? You look so pretty, like a model. ये बताएं अनम एंड रूहान, आज स्कूल में क्या क्या किया? What was wonderful about school today?
1: Nothing.
0: For
1: me, it was wonderful because like in PE we did yoga and I am like stretching for myself. Selected for myself, selected me for like some program.
0: Oh, nice. आज किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है भाई। May Allah Ta'ala make you more successful and more brighter. May you shine even more brighter. अच्छा भाई, अनम का आज कुछ स्पेशल नहीं हुआ, रूहान got selected in something, some participating in something. In yoga, okay. अच्छा पता है ये जो ना बड़ा मुश्किल काम है भाई, मैंने एक दो दफ़ा ना जोश में आकर कोशिश की थी कि हाँ हाँ मैं भी करती हूँ भाई, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल काम है।
1: मैंने मेरा पैर, मेरा हाथ
0: करके,
1: क्या
0: हुआ? भाई ये जिमनास्टिक्स एंड योगा ना बड़ी अजीब सी चीज है, आपको रबर बैंड बनना पड़ता है इसके लिए। आई रिमेम्बर मैंने बच्चों को देखा है, माई एल्डर डॉटर वो, उसको बहुत शौक है जिमनास्टिक्स का, शी ऑल्सो डज द सेम थिंग्स लाइक यू गाइज, और वो बहुत मुश्किल काम है भाई। अनम मेरी कैटेगरी में आती हैं। अनम डज नॉट डू इट। अनम, मैं और आप दोस्त बन सकते हैं अनम, हम मिलकर ऑडियंस, हम अनम और मैं ना रूहान को ऑडियंस की तरह बैठकर स्टेज से देखेंगे नीचे बैठकर, बस ये सही है हमारे लिए। अनम है ना? चले भाई ठीक है, रूहान वी आर योर ऑडियंस, ओके? अच्छा ये बताएं कि जी
1: आपको भी टीच कर सकते?
0: नहीं बेटा, मेरी उम्र चली गई है टीच होने की, मैं मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मैं जो हूँ ना मेरी जॉइंट्स में ऑयल खत्म हो गया है। जैसे वो गाड़ी का या घर का दरवाजा होता है जिससे ची ची की आवाज आती है, तो मेरी बोन्स जो है ना वैसी हो गई है, अब मैं ना सीख पाऊंगी। मुझे नहीं सीखना, मम्मा मुझे घर जाना है।
1: घर में?
0: अच्छा घर में भी आकर सिखा देंगी? कह रही ये फैसिलिटी भी है, घर आके सिखा जाऊंगी, छोड़ेंगी नहीं मुझे। अच्छा चलिए थोड़ा बस यू नो इजी लेवल तक सिखा देना, ठीक है? ज्यादा एक्सट्रीम वाला नहीं सिखाना, पता चले सीखते सीखते मेरी हड्डियां जो है ना वो रबर बैंड बन गई। चलें ठीक है, ओके भाई डन हो गया भाई, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात तो बताएं, आप लोगों का वीकेंड का क्या प्लान है भाई?
1: वीकेंड नॉट मच।
0: व्हाई नॉट मच? इट्स वीकेंड।
1: आप मम्मा
0: से पूछ लीजिए
1: क्या हुआ, किधर लेके जाएंगे।
0: अच्छा मम्मा पापा के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लेकर जाएंगे। चलें जी, मम्मा पापा कहीं तो अच्छी जगह पर लेकर ही जाएंगे ना
1: जी।
0: दे नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू गाइस लाइक, राइट
1: जी?
0: लास्ट वीकेंड कहाँ गए थे?
1: लास्ट वीकेंड किधर भी नहीं।
0: लो जी मेरी तरह ही है ये भी, लास्ट वीकेंड मैं भी कहीं नहीं गई थी पता है। मैंने कहा मुझे सोना है, मुझे घर बैठना है, मुझे सोना है। आई लाइक स्लीपिंग एट होम एट वीकेंड्स, आई लाइक स्लीपिंग एट होम, आई डोंट नो व्हाई बट आई डू। अच्छा भाई टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट चॉइसेस, काइंड चॉइसेस, मेकिंग काइंड चॉइसेस। सो आई विल गिव यू अ सिनेरियो एंड यू हैव टू चूज अ काइंड जेस्चर फॉर इट, ओके?
1: ओके।
0: लेट्स से Rohan is sitting somewhere and everybody is playing games and you just have a look at Rohan and she feels left out. There are girls

0: who are not playing with her, what would you do?
1: I will support them and I need them to play.
0: Yes, very good. Aur agar wo kehti nahi, nahi, we don't want to play with her, then?
1: हाँ
0: पूछेंगी क्यों एंड यू ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं भाई हमें अच्छी नहीं लगती ये जो है ना ऐसी है ये वैसी है तो फिर आप उन्हें समझाएंगी बिठाकर कि दैट यू आर हैविंग अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग हर शी इज नॉट लाइक दिस राइट तो भाई तालियां हो जाए तालियां वेरी गुड अच्छा रोहान कहाँ गई रोहान कहाँ गई रोहान
2: मैं तो इधर ही हूँ
0: आप तो इधर ही हैं तो आपसे भी एक हाँ. सिनेरियो पूछ ही लेते हैं आप स्कूल
2: मैं ऑलरेडी बोली हूँ मैं
0: अच्छा अनम मैं समझी मैं अनम से बात कर रही हूँ अच्छा रोहान ने बता दिया अच्छा रोहान थी जो सॉर्ट आउट करेंगी चीजों को ओके अनम कहाँ गई अनम से पूछते हैं अनम अनम अनम ये बताएं आपकी एक फ्रेंड है जो आपसे लंच शेयर करती है स्कूल में व्हाट वुड बी योर काइंड चॉइस क्या कर सकती हैं
2: गिव अ स्मॉल गिफ्ट और ब्रिंग हर लाइक हर फेवरेट फूड
0: और समथिंग हां आपके पास भी तो आपका लंच है दोनों अपना अपना लंच बॉक्स लेकर बैठी हुई हैं तो वो आपसे अपना फूड शेयर करेगी तो आप क्या करेंगी काइंडनेस का जेस्चर क्या होगा आपका
2: I'll share her my food.
0: Yes, because sharing is caring and this is a kind of kindness कि अगर आप आपको कोई food offer करता है तो आप भी अपना थोड़ा सा lunch box आगे बढ़ाते हो कहते हैं you can have mine also, we will share. तो भाई very good हो गया भाई बच्चे intelligent चल रहे हैं very good, very good, very good. तो भाई पहले game कौन खेलेगा आप बता दो
2: Anam.
0: Anam, name place animal yes. thing के लिए ready हैं
2: Yes.
0: चलिए लास्ट स्कोर याद है आपको अपना
2: फोर
0: था कितने सेकंड्स में
2: याद नहीं है
0: चलो भाई याद नहीं चलो कोई बात नहीं चलिए भाई अब भी आपको 45 सेकंड्स दिए जाएंगे ठीक है एंड यू हैव टू टेल मी विद इन 45 सेकंड्स द नेम प्लेस एनिमल थिंग ओके डन है चलें जी आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ एंड योर अल्फाबेट इज डब्ल्यू यस
2: नेम विलियम
0: ओके
2: प्लेस वॉशिंगटन डीसी
0: ओके
2: एनिमल वुल्फ
0: ओके
2: थिंग थिंग
0: कपड़े किसमें धुलते हैं अच्छा वुड ओके ओके ओके ओके ओके चलें भाई 22 सेकंड वाओ Wow, nice. 22 seconds में लड़की ने सॉल्व कर लिया भाई तालियां बच्चा पार्टी तालियां वेरी गुड वेरी गुड आई लाइक इट वेरी वेरी नाइस हो गया भाई वेरी वेरी नाइस तो भाई अब कौन आ रहा है रोहन रोहन
2: जी
0: तो भाई बताएं खेलने के लिए रेडी हैं
2: जी
0: आपको अपना स्कोर याद है लास्ट टाइम का
2: मैं ना पूरी करी हूं
0: पूरे कर रही हूँ अच्छा चलें ठीक है अभी भी पूरे करेंगी लेकिन सेकंड्स याद है कितने सेकंड्स में किया था चलो जी याद ही नहीं है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा चलें
2: 22 सेकंड्स में करी
0: ओ ओके चलें भाई अब उससे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे ओके
2: जी
0: चलें जी आपका अल्फाबेट है क्या अल्फाबेट दिया जाए आपको क्योंकि आपने पहले भी अच्छा स्कोर किया था तो अब थोड़ा सा गेम को मीडियम लेवल तक लेकर आया जाए और आपका अल्फाबेट है वाई वाई एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ
2: यारा प्ले यार यमन देन एनिमल याक देन थिंग योयो
0: ओके जी ओ भाई 11 seconds? Oh my God, 11 seconds? अभी तक तो किसी ने 11 seconds का score नहीं किया. किया कि नहीं किया? नहीं, 12 का किया था, 11 seconds. Very nice हो गया, अभी तक का highest score है ना? हाँ. 11 seconds का अभी तक किसी ने score नहीं किया. पूरे वीक में 11 सेकंड का स्कोर अभी तक किसी ने नहीं किया सो ऑसम गर्ल वेरी वेरी ऑसम ये बताएं प्लेस आपने कौन सी बताई थी प्लेस
2: यमन

0: यमन, हाँ मैंने सही सुना, मैंने कहा मैंने शायद गलत सुन लिया. चलें भाई ठीक है भाई, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड. और मामा से बोले बिकॉज इट्स वीकेंड तो गेम भी जीत ली है, तो फिर कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाया जाए, क्या कहती हैं? अरे भाई पानी पूरी एक प्लेट मेरे लिए भी प्लीज पार्सल. ये क्या बात है,
1: मैं अकेले के लिए ऑर्डर करके आपको दे दूं?
0: नहीं नहीं, मैंने आपके साथ बैठ के खानी है, ये तो गलत बात है. ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ भाई, ऐसे टिक टिक टिक टिक करके मोबाइल पे. मुझे आप बना कर खिलाएंगी फिर खुद ही?
1: ठीक है
0: चलें, ठीक है भाई बना लेंगी. पता चला
1: मम्मा तो बनाती है.
0: मम्मा नहीं बनाती, नहीं नहीं नहीं, रोहान बनाएंगी.
1: ठीक है मैं पता चले तरकारी सब ऑर्डर कर लेती हूँ फिर बना.
0: ये देखो जरा ऑर्डर करके फिर पता चले पानी मुझे खाली पिला रही हूँ, कह रही हूँ ये लो पी लो ये पानी पूरी है. खाली पानी देखिए, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड, दिस इज द पानी पूरी. चलें जी, जब बनाना सीख जाएं तो फिर मुझे बताइएगा, जब खुद बनाएंगी फिर हम मिलके खाएंगे. ठीक है अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रख.
1: 100 ईयर्स,
0: वाह. ये भी नहीं कह रही कि एक दो साल में सीख जाऊं, 100 ईयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्रोग्रेसिव चल रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव. तो चलो भाई जाने से पहले
1: बड़ी हुई जब
0: क्या क्या क्या
1: बड़ी हुई
0: जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर बना लेंगी. बेटा 100 ईयर्स भी बड़ा नहीं होना, अब मैं इंतजार करती रहूंगी, मैं तो कट लूंगी फिर ऊपर की तरफ 100 ईयर्स में. मुझे पता नहीं मैं 100 ईयर्स तक होंगी भी कि नहीं होंगी, पता चले मेरे दांत ही नहीं होंगे अगर होंगी भी तो मैं कैसे खाऊंगी फिर 100 ईयर्स बाद. चले जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज दे दें.
1: Always be happy what you have.
0: और अनम ने क्या मैसेज देना है?
1: Enjoy your weekend.
0: And भाई 100 ईयर्स से पहले पानी पूरी बनाना सीख लेना प्लीज मेरे लिए. चले अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह
0: हाफिज. लो जी 130 ईयर्स ओल्ड की बुढ़ी माई हो जाऊंगी तब मैं खाऊंगी पानी पूरी. वाह वाह रुहान वाह. चलो जी अभी देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: मैं तारिश हूँ.
0: कौन है कौन है?
2: सॉरी
0: इंग्लिश. ओके. मे आई हैव योर गुड नेम?
2: तारिश.
0: दानिश.
2: तालिश. THEHALISH.
0: तानिश.
2: या
0: इट्स तानिश और थानिश?
2: तालिश.
0: तालिश LISH. ओके ओके. TAL.
2: THEHALISH.
0: लो जी, you're confusing me. Your name is so confusing. THEALISH. Is it?
2: Not E-A.
0: Yeah, T-A. No,
2: THEALISH.
0: Yeah. Thalish. It's a new name for me. And it's a complicated name for me.
2: Yeah.
0: Thalish. Okay, Thalish, what does it mean?
2: Beautiful.
0: Beautiful. Thalish. Is it a Urdu or an Arabic name?
2: English.
0: English name. Okay. Because it gives me Thalish. No, it's Thalish. It's in Arabic, it's something else. Okay. I'm mixing up the word. Chalein ji, tell me Thalish, what's your age?
2: I'm 9.
0: 9 years old, mashallah. Acha, tell me, 9 years old Thalish. I believe I'm talking to you for the first time.

0: Go chase your dreams.
1: Go chase your dreams. Yes. If you don't chase them, you cannot fulfill them, right?
0: Yeah.
1: Chalem, very good. And don't forget your dreams. Some people, when they are growing up, they forget what they dreamt of or what they wanted in life. So keep on chasing them and don't forget them. Right. I like this. Okay. Chalemji, take care of yourself. Ta-ta. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Happy weekend. तो भाई बच्चा पार्टी आप भी चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल और फिलहाल के लिए एक काम करते हैं एक काम कर ही लें क्या कहते हैं और वो एक काम पता है क्या है एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं भाई मुझे ब्रेक की ज़रूरत पड़ रही है और वैसे तो आई एन्जॉय योर कॉल्स बट अभी फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे कीप ऑन एन्जॉयिंग और ये भी मुझे ज़रा प्लान कर किया हुआ तो होगा आपने लेकिन मुझे बताएं तो ज़रा कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है प्लीज प्लीज टेल मी हबीबी वेयर आर यू गोइंग हबीबी वेयर आर यू गोइंग इन दिस वीकेंड चलो जी जब तक के लिए आप एंजॉय करें एक सॉन्ग मैं वापस आती हूँ टेंशन नॉट मेंशन नॉट जी अरे मेरा सॉन्ग कहाँ गया कि मुझे आज ये वाला गाना सुनने को दिल कर रहा है चलिए ये वाला लगाते हैं गाना वीकेंड वाइब के साथ बच्चा पार्टी सुनते रहे FM 107 पर द किड्स शो नो द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहाँ उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहाँ आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
4: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
3: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि एफएम 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर दिल से देसी।
5: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए हर मंडे 3 बजे से। हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से,
6: हर मंडे 3 बजे से
5: विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर Every Monday, 10 a.m. onwards, only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.

0: तो भाई ट्विस्ट तो हम करेंगे क्योंकि आज है वीकेंड हमारा. क्या कहते हो बच्चा पार्टी, वीकेंड में ट्विस्ट फिस्ट हो जाए. ज्यादा ट्विस्ट मत करना नहीं तो अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा चॉकलेट ज्यादा खा लिए.
1: आप सुन रहे हैं द सुपर किड शो.

0: तो बच्चा पार्टी वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो विद सुपर सफा ऑन एफएम 107 और आज हमारी बातचीत हो रही है काइंडनेस की चॉइस के ऊपर. देर आर थिंग्स विच आर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इन अस, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनके अंदर हमारे पास चॉइस होती है. वी चूज काइंडनेस, वी चूज नॉट टू बी एंग्री, वी चूज नॉट टू बी रूड, वी चूज टू बी अ बेटर पर्सन. इसी के पर बात कर रहे हैं. तो देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पर. अस्सलाम वालेकुम.
1: Welcome,
0: Shlam. Oh my God, Princess, how are you?
1: I'm good. How are you?
0: All good. क्योंकि हमारा वीकेंड शुरू हो गया है ना. अच्छा आपका तो वीकेंड संडे को आता है ना?
1: नहीं.
0: आपका वीकेंड भी अभी आता है?
1: मेरा 23rd
0: में से समर वेकेशन
1: शुरू हो रही है.
0: Oh my God, आपको पता है मेरी समर वेकेशन तो अभी से ही शुरू हो गई है. अब मेरी मुलाकात होगी बाद में कहीं कब कहीं 2 जुलाई से मैं वापस आऊंगी. फिर मैं जा रही हूँ छुट्टी पे.
1: तो मेरी छुट्टी रहेगी.
0: हाँ सबकी छुट्टी रहेगी. तो फिर मैंने भी तभी छुट्टी ले ली. सब छुट्टी करेंगे तो मैं भी छुट्टी करूंगी. चलें कोई बात नहीं, फिर से मुलाकात होगी हमारी, बातचीत रहेगी वापस आकर भी इंशाल्लाह. थोड़ी थोड़ी तो छुट्टी.

0: की जरूरत सबको होती है ना।
1: मेरे फ्रेंड और मैं छुट्टी की डेट सुन के बहुत खुश होकर
0: पार्टी कर रहे, पार्टी ये। मैं भी अपनी छुट्टी की डेट सुन के बहुत खुशी हूँ, मैं भी करी ये। चले अमायरा, हमारे पास ना टाइम बहुत कम रह गया है, तो हमने आज जल्दी जल्दी बात कर लेनी है, ठीक है? तो भाई पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं अमायरा से पूछूं कि अमायरा जरा मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कचरा देखा, ठीक है, कचरा हुआ हुआ है, तो फिर आप क्या करती हैं, आपका काइंडनेस का एक्ट क्या होगा?
1: वो कभी कुछ पर या खाली वाटर बॉटल मिल जाती है तो मैं अपनी कैप के लिए कलेक्शन में आने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले कैप निकाल के बाद में वो डस्टबिन में डाल देती हूँ।
0: अच्छा, कैप की कलेक्शन है आपके पास?
1: हाँ जी।
0: वाओ, व्हाट डू यू डू विद देम?
1: उसके साथ मैं खेलती हूँ पिरामिड बना के।
0: वाओ, दिस इज वेरी प्रोडक्टिव।
1: 130
0: कैप वाटर कैप्स है। माशाल्लाह भाई, ये तो कैप कलेक्टर हैं भाई। अच्छा, मैंने सोचा यूजुअली व्हाट व्हेन आई वाज अ किड व्हाट डिड आई यूज्ड टू डू विद द कैप ऑफ द बॉटल्स इज मैं ना उससे मॉडल्स बनाती थी, मतलब कभी कैसल बना लिया, कभी कोई बिल्डिंग बना ली। बट दिस इज गुड, दिस प्लेइंग थिंग इज गुड, I like this
1: और
0: idea.
1: मुझे ना अपने टेबल में एक कैप लिखे और 30 सेंटीमीटर का एक वो प्लास्टिक का स्केल ला। फिर मैंने स्टडी टेबल से गए, स्कूटर में बैठी थी मैं, स्टडी टेबल से मैंने निकाले दो, फिर बाद में मैं नीचे डाल के उनको क्रिकेट की तरह खेलने लग गई।
0: अच्छा ये भी है, यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वो जो कैंस नहीं होते सोडा के कैंस, हम उसको जो है ना कंप्रेस करके फिर उससे फुटबॉल खेलते थे, बॉल की तरह। या
1: और कभी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स एक अपने नोटबुक से एक पेज लेकर
0: हाँ
1: को एक बॉल बनाकर टेप वो रोल करके खेलते थे।
0: हाँ, ये हम लोग ने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे। अच्छा चले, मुझे जल्दी से बता दें वीकेंड का कोई प्लान है आपका, कहाँ जाएंगी? वीकेंड पे कहाँ जाएंगी, कहीं जाएंगी कि घर में बैठेंगी?
1: आपको तो मैंने बताया था कि मेरा भाई आ रहा
0: है। अरे फिर तो मजे,
1: तो मैंने प्लान किया है कि मैं और वो अकेले घूमने जाएंगे।
0: नाइस, भैया के साथ टाइम गुजारेंगे अच्छा सा। भैया टाइम, ठीक है भाई। अच्छा चलिए, हम जल्दी से हमें काम करते हैं, हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल लेते हैं क्योंकि मुझे साइन आउट भी करना है जल्दी जल्दी, ठीक है? चलें जी, आपको दिए जाएंगे 45 seconds एंड टुडे वी विल रिलैक्स एंड प्ले, ओके? तो कोई वो नहीं करना, घबराना नहीं है, ओके?
1: क्या होगा?
0: तो भाई घबराते हैं तो फिर जो है ना समझ में नहीं आता ना। चलें, आप यू विल गेट 45 seconds, ओके? 1, 2 कौन सा लेटर देंगे? यू, यू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू
1: उस्मान,
0: ओके।
1: उज़्बेकिस्तान,
0: ओके। एनिमल,
1: एनिमल।
0: अच्छा
1: अम्ब्रेला,
0: ओके, थिंग हो गई, ठीक है।
1: यू से एनिमल
0: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी टाइम है अभी इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड।
1: मेरे निकनेम का लास्ट लेटर क्यों दिया?
0: अच्छा, एक शीप होता है वो माउंटेन्स में रहता है, एक वाइल्ड शीप होता है वो माउंटेन्स में रहता है, उसका नाम आता है ना। अच्छा हाँ, अम्ब्रेला बर्ड भी है। हाँ, वेरी गुड हो गया, दिस इज कॉल शार्पनेस, वेरी गुड। थोड़ा सा टाइम ले लिया हमने, टाइम ओवर हो गया हमारा, वेरी गुड। वैसे तो 45 सेकंड्स में आपने 3 स्कोर किया, लेकिन

0: नेम आते थे, लेकिन हमें एनिमल चाहिए थे ना. चलें जी, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? समथिंग गुड. वीकेंड है, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी.
1: एक बार बताऊं?
0: हाँ जी.
1: मेरे फोन में ऑलरेडी चैनल बना हुआ था. तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन ऐड किया है. फिर कुछ दिन बाद में वो अपने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया.
0: चलें फिर, मैं जो ना आपके चैनल का नाम बाद में आपसे लूंगी, ठीक है? अभी के लिए ओके. चले, मैं उसको फॉलो करूंगी, ठीक है? चले, अपना ढेर सारा जी जी.
1: एंड बिलीव इन योरसेल्फ.
0: यस, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. एंजॉय योर वीकेंड. अल्लाह हाफिज. तो भाई, बच्चा पार्टी, हमारे जाने का टाइम आ गया है. मुझे अभी भी कॉल्स रिसीव हो रही हैं. आई एम रियली सॉरी, अभी फिलहाल मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगी. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक बात होगी. ये याद रखिए, बच्चा पार्टी, कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होती हैं, कुछ चीज़ों की चॉइसेस हमारे हाथ में होती है. तो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस की चॉइस हमारे पास होती है, मेकिंग गुड फ्रेंड्स की चॉइस हमारे पास होती है, बिल्डिंग अ बेटर कम्युनिटी की चॉइस हमारे पास होती है, और ये सब कुछ होता है काइंडनेस से. काइंडनेस कभी ज़ाया नहीं जाती. तो भाई, याद रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल भी नहीं रख सकता. इसी नोट पर एंजॉय योर वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. सफ़ा को दीजिए इजाज़त. सुनते रहें FM 107, दिल से देसी. और हमारा गाना कहाँ गया भाई? गाना ये रहा. बाय बाय. नहीं, ये वाला नहीं था, सॉरी ये वाला था. चलें जी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों आप सभी का ये खास शो आपके लिए। फिलहाल टाइम कर लेते हैं चेक, 3:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और शो का नाम है
2: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिच परफेक्ट शो में आप सभी का वेलकम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और ये पिच परफेक्ट शो क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं और बाय द टाइम अभी तो जनवरी से शुरू होते होते ये मई का महीना है। आई थिंक आप लोगों को रट गया होगा पिच परफेक्ट और मेरे साथ है आरजे फजील और मैं हूँ मोहम्मद अमीन। और पिच परफेक्ट में आज हम क्या बात करेंगे, पहले तो काले रंग के सूट पहने हुए हैं। अच्छा ये सूट से ये नहीं है कि काले रंग से कुछ वो होता है, मतलब यू नो क्या बोलते उसको, शोक।
1: अच्छा
3: हाँ वो ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड ईद का जो माहौल है वो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में भी हम आज बात कर लेंगे। एंड ये नहीं कि हम वो कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं, बांग्लादेश टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वहीं आईपीएल की भी बातें होंगी और आईपीएल में क्या हो रहा है कि कल मैच हुआ था एक, कोलकाता फाइनली धीरे धीरे लंगड़ाते एक मैच जीत ही लिया और मुंबई इंडियन टीम को हरा कर 4 विकेट से हराया। एंड इसके अलावा जो आईपीएल के जो लास्ट स्ट्रेच ऑफ गेम्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, बिकॉज प्ले ऑफ का सीज़न जो मैचेस है वो शुरू होने जाएगा नेक्स्ट वीक से। एंड फाइनली हम कुछ और एक दो चर्चा कर लेंगे कि फ्रेंचाइजी टीम्स, कुछ खिलाड़ी के बारे में, बीसीसीआई के बारे में, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बीसीसीआई के ऊपर तंकीद करना मेरा फेवरेट है। हाँ अच्छा मैं बता दूं कि मैं जब जर्नलिज्म करता था इंडिया में, लोग मुझे कहते कि ये बहुत ज़्यादा सकास्टिक और पोकिंग नेचर के हैं, तो बस यही है कि मतलब अच्छा लगता है।
1: अब और फिर वही जो है वो रगों में दौड़ गया कि अब जो है मज़ा आता है किसी की जो है अगर गलत चीज है तो उस पर बोल बैठे तो, और फिर वो फिर अगर आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है ना फिर वो उससे काम मिल गया है।
3: हाँ।
1: हमारी पर्सनालिटी ऐसी है ना क्रिटिसिज्म वाली, तो फिर पर काम मिल गया उसी यू नो एरिया में उसी टॉपिक।
3: बिल्कुल देखिए हम बात यहाँ पे पिच परफेक्ट में हमने हमेशा टैलेंट की क्वालिटी की और जिसको हम कहते हैं कि इसके बारे में हमने थोड़ा सा इंकरेज किया है और हमने सख्त अल्फाज में हमने उस बात को मतलब हमने वो किया है कि क्या बोलते हैं उसको क्रिटिसाइज किया है जहाँ पे चापरूसी की बात हो बिना कुछ किए। अगर आप जो गद्दी में बैठ जाते हैं, मसनद में बैठ जाते हैं, टीम में जगह बना लेते हैं, उसके बारे में हमने बहुत दिल की गहराई से हमने बहुत हमने किया है। लेकिन यही चल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कह दूँ कि फजील, आज एक साहब से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही मारूफ और यू नो जर्नलिस्ट हैं, रह चुके हैं इंडिया में, कतर में भी थे। एंड उन्होंने पहले क्रिकेटर थे, बॉम्बे में क्रिकेट खेलते थे। एक इंटरेस्टिंग बात आज उन्होंने ये भी इस पॉइंट पे बात की कि क्या मोहम्मद शमी या सरफराज या एक दो और जो कश्मीर के जो बॉलर हैं
1: आकिब नबी
3: और एक और साहब के बारे में उन्होंने बताया कि क्या इन लोगों को क्या मतलब, जैसे उसने हमने बात किया था कि इन लोगों को क्या कंटेनर में डाल के बीसीसीआई ने पैक करके एक जगह रख दिया है कि भाई सड़ सड़ के तुम लोग जो है अपना क्रिकेट ही भूल जाओ।
1: सही।
3: तो हर जगह पे ये बात हो रही है कि दिस इज व्हाट इज दिस। उमरान मलिक के बारे में उन्होंने कहा था एंड उससे पहले वरुण एरन के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। बड़े वैलिड पॉइंट है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट क्रिकेट के बारे में, मैं बीसीसीआई के बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि एक बात है कि बॉम्बे में जो क्रिकेट स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, तो बॉम्बे के जो वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, सुनील गावस्कर स्टैंड, दिलीप सिंह सर का स्टैंड। इन्होंने एक वैलिड पॉइंट हमें मुझे शेयर किया कि आप संजय मांजरेकर से पूछिए, एंड उन्होंने संजय मांजरेकर का नंबर भी मुझे दे दिया कि आप उनसे बात करिए।
1: अच्छा,
3: मैंने कहा किस बारे में? आप उनसे बोलना कि आप उनसे पूछना कि जो आचरेकर, रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर के और विनोद कांबली के जो गुरु थे, जो टीचर थे, उन्होंने 12 क्रिकेटर दिए इंडिया को, 12 क्रिकेटर में से 6 तो इंडिया के लिए खेले ही हैं, जिसमें सचिन नंबर 1 है, विनोद कांबली है, संजय मांजरेकर है। मतलब उस कोच के बारे में बीसीसीआई ने कभी सोचा नहीं कि उनके नाम पे कोई स्टैंड हो। ये एक वैलिड सवाल, वैलिड पॉइंट। तो वही बात है कि चापलूसी वाली बात चल रही है आजकल इंडियन क्रिकेट में। जो जिसका जितना आप मक्खन लगा दें, तो आपने परफॉर्म किया है नहीं किया है,
1: आप टीम में आ जाते हैं,
3: टीम में आ जाते हैं। और इसी सिलसिले में हमने पिछले मंगल को भी हमने इस बारे में बात किया कि बीसीसीआई इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया। और गौतम गंभीर ने कुछ बयानात भी दिए कि उन्होंने ये कहा कि मैंने क्यों मोहम्मद शमी या एक और क्रिकेटर जो है, हाँ, संजू सैमसन, उनको हमने बाहर रखा है। तो हर किसी के ओपिनियन अपने अपने पास होता है भाई। किसी ओपिनियन वो करेंगे हाँ सही है, किसी का कहेंगे नहीं। जो आप 6 देख रहे हैं, मैं 9 देख रहा हूँ, मैं 9 देख रहा हूँ, आप 6 देख रहे हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर यार्डस्टिक है, की फैक्टर अगर परफॉर्मेंस है, तो क्यों बाहर रखा गया है? दिस इज अ क्वेश्चन। अच्छा, सवाल मैंने पूछा नहीं, अरे भूल ही गया मैं। अरे
1: अब सवाल कर लेते हैं और फिर हम छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम मजीद इस शो को आगे बढ़ाएंगे।
3: जी, सवाल ये है, आप लोग नोट कर लीजिए कि फर्स्ट एवर हैट्रिक वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में फर्स्ट एवर हैट्रिक किसने लिया था?
1: T20 या फिर ODI?
3: ODI में फर्स्ट एवर हैट्रिक किसने लिया था, ये आपको बताने हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत पुरानी बात है, तो आप अपना मोबाइल में, आजकल तो है सब मास्टर बैठे हुए मोबाइल में, नेट मास्टर्स हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। एंड ये जवाब आप 666-2107 पर हमें बता सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद इस शो पे, इस शो में हम बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का मैच और उसमें थोड़ी मोड़ी हल्की बुल्की कंट्रोवर्सी के बारे में, उसके बाद आईपीएल में क्या कुछ चल रहा है और दुनिया की क्रिकेट की बातें यहीं FM 107 पर। सुनते रहें दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: या दोबारा इस्तकबाल है आवाज, अस्सलाम वालेकुम और पिच परफेक्ट शो में। और पिच परफेक्ट शो में ब्रेक से पहले हमने एक सवाल पूछा था कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में फर्स्ट हैट्रिक लेने वाला बॉलर का नाम। आप अपना जवाब जो है 666-22-107 पर भेज सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने आईपीएल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के बारे में, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट सीरीज, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये जो है ये PhD के एकदम लेवल का है। सो T20 नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने एक तारीख रच दी, एंड दिस इज़ द मुसलसल, आई मीन दूसरी मरतबा अगर देखा जाए 2024 और 2026, फर्स्ट टाइम 2024 में पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराई थी। और इस बार अपने ही ग्राउंड

0: पर दो मैचों की सीरीज में बांग्लादेश ने तमाम मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तान के उन बल्लेबाज के बारे में जिनके बारे में थोड़ा बहुत इज्जत है, मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब ने कल कुछ ऐसा किया जिसके क्या कहें, मतलब सोशल मीडिया में छा गए हैं। कुछ इन्होंने करा नहीं है पर उनकी हरकतों से थोड़ा लोगों को परेशानी हुई, एक्सपर्ट्स, कोचेस, टीम मेंबर्स, टीम प्लेयर्स, जिस तरह से उन्होंने टाइम वेस्ट करने का एक क्या करूं, एक दिमाग लगाने की कोशिश की, जबरदस्ती का आगे पैड कर देना और रोक देना मैच को, बॉलर से कहना कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, साइड स्क्रीन के ऊपर कोई है, तो ये शोभा नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान बहुत ही उम्दा क्रिकेटर, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इस तरह के अगर हरकत आप करेंगे तो नौजवान खिलाड़ी क्या सीखेंगे।
1: बात सही है, लेकिन ये जेन्युइन नहीं हो सकता। हो सकता कि वो सही में कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो, क्योंकि बहस भी हुई थी, कंट्रोवर्सी इसी बात पे हुई थी फील्ड में जब मैच हो रहा था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, जहां पर 437 रन का टारगेट था, 358 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन 94 रन पे खेल रहे थे। रिजवान ने 94 रन का स्कोर भी किया, बट बीच में हुआ ये कि साइड स्क्रीन पर कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने इस बात को उठाया और फिर कीपर से लेटन दास से बड़ी बहस होने लगी, तो वहां पर मैच जो है कुछ देर के लिए रुका था, लेकिन एक दिन का पूरा मैच बाकी था, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सिचुएशन आती। और उसके अलावा सिर्फ 3 विकेट बाकी थे और जो कि आसानी से बांग्लादेश की टीम ने ले लिया। अगर देखा जाए तो 358 रन बना लिए थे, अभी भी कुछ 80 प्लस रन चाहिए थे, है ना, तो 80 नहीं तकरीबन 70 से 80 के दरमियान रन चाहिए थे, और 3 विकेट पे बहुत मुश्किल होता है जब आप रेड बॉल खेल रहे हो। कैसा परफॉर्मेंस रहा पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, क्या आपकी राय है?
0: बांग्लादेश का,
1: हाँ
0: बांग्लादेश तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में जो श्रीलंकन टीम पहले हमें नजर आती थी वही उनकी जगह जो है लेने को तैयार है। बांग्लादेश, मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे एक बता देता हूँ, बॉलिंग एक्शंस या परफॉर्मेंस, बैट्समैन के बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस ये देख के लग रहा है, जो ताजुल इस्लाम की बॉलिंग को देखें, नाहिद राणा, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास की इनिंग्स देख लीजिए, और ईच एंड एवरी एक्शन में वो कॉन्फिडेंस झलक नजर आया मुझे, एंड यही कॉन्फिडेंस वॉज लैकिंग इन बांग्लादेश क्रिकेट टीम सालों साल। 2000 में आईसीसी ने जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिया था उस टाइम में, तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि ये ही तैयार नहीं है ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम, आपने सिर्फ वोट के चक्कर में, आईसीसी में वोट के चक्कर में आपने इनको दिया था जगह, इनको जगह दे दी थी। बट द थिंग इज ओवरऑल 25-26 साल के बाद ये एक हमें नज़र में आ रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम में वो कॉन्फिडेंस जो नाहिद राणा की बॉलिंग में, बाबर आजम ने तारीफ की इस बारे में कि नाहिद राणा के अंदर में वो पैशन, वो पोटेंशियल देखने को मिला। ताजुल इस्लाम के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिस तरह के बॉलिंग उन्होंने की, हर एक बल्लेबाज को नॉट ओनली चकमा दिया बल्कि आउट भी किया, और वो डिलीवरीज जिस तरह के घूमता फिर की बॉलर है, और जिस तरह से वो बॉल जो है टप्पा खाने के बाद आप ऑफ स्टंप पे आप बॉल को फेंक रहे हैं और बॉल सडनली डिप इन करता है, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ तो वेरिएशन था। या मजे की बात यह कल मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के मशहूर लेग स्पिनर, मुश्ताक अहमद बांग्लादेश स्पिन बॉलिंग कोच है। ये एक बहुत बहुत ही प्लस पॉइंट रहा है, जो वेरिएशन, जो टेक्निक, जो कायदा कानून है स्पिन बॉलिंग में, ये मुश्ताक का ही कमाल है। कल अच्छा मुझे पता नहीं था, कल जो विक्ट्री सेलिब्रेशन में मैंने कहा यार ये दाढ़ी वाला बंदा, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, बाद में चेक किया मैंने दोबारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ट्विटर हैंडल एक्स में जाके मैंने पूरी टीम देखी, तो उसमें स्पिन बॉलिंग एनालिस्ट या कोच जो है वो मुश्ताक अहमद है। इनका जो हेड कोच है फिल सिमंस वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे, बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, बहुत ही अच्छे बॉलर थे, उनका आना, फिल सिमंस इससे पहले भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोचिंग करवा चुके हैं, लेकिन वो बीच बीच में चले जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, अब उनका आना दोबारा इस टीम को बड़ी मोटिवेट किया है, मुश्ताक अहमद का होना, एंड इनके फास्ट बॉलिंग कोच कौन है, मैं नाम भूल रहा, आई थिंक डेल स्टेन है शायद, तो इनका बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम कि जो आउट से कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत किया है, एंड इससे लग गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आने वाले वक्त में

0: जो पहले श्रीलंका करती थी, श्रीलंकन टीम इंडिया पाकिस्तान को हराने के जो एक जो छवि हमारे सामने
1: टर्न कर देती थी मैच या टूर्नामेंट को,
0: तो अब वो चीज बांग्लादेश में मुझे नजर आई। सो ओवरऑल बांग्लादेश वाज सुपर, सिर्फ जीतने की जीते हारने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का फर्स्ट बॉलिंग कोच जो है वो शॉन टेट है, सो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। तो ये सब चीजें जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक नए सिरे से सजाया गया है, तमीम इकबाल को एक प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम में एक आउट से कि एक न्यू फेज है, न्यू रे ऑफ होप है कि ये टीम अब चल पड़ेगी।
1: सही, बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम बात करें नए जो बॉलर्स हैं जैसे कि नाहिद राणा, उनके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे बॉलिंग रही? क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी ही बॉलिंग करी है, उन्होंने भी जिस तरह से यू नो डोमिनेट किया है पाकिस्तान के बैट्समैन को, वो साफ दिखता है कि
0: अच्छे
1: है। उसके अलावा टास्किन भी ने, उसने भी, सारे बॉलर्स ने अच्छा अपना काम कर दिखाया, फास्ट बॉलर्स ने भी और स्पिनर्स ने
0: भी।
1: अब आते हैं जरा बैट्समैन पर, सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। ये है सबसे पहले ओवैस और फजल जो ओपनर बैट्समैन है, ये जो है अगर हम दोनों मैचों के बारे में बात करें, दोनों मैचों में ओवैस और अफजल, सॉरी फजल नहीं चल पाए, क्या कुछ रहा, क्या इनकी ओपनिंग ऑर्डर गलत है? क्योंकि अगर हम बाबर आजम के बारे में बात करें तो बाबर आजम दोनों मैच में इतना तो चल गए हैं कि टेस्ट के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा रन स्कोर किया है, बट फिर भी डिसेंट स्कोर है। एक में अगर हम देखें उन्होंने 50 स्कोर किया, 68 रन बनाए, और एक में 47, यानी कि दूसरे इनिंग में 47। शान मसूद ने भी अच्छा खेला, पहले इनिंग में उन्होंने 21 रन बनाए और फिर दूसरे वाले में 71। तो ओवैस और फजल जो है दोनों इनिंग में सही नहीं कर पाए, 21 और 6 रन बनाए दूसरे इनिंग में, ओवैस ने 21 और फजल ने 6। इन पर क्या टिप्पणी है?
0: जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात
1: करूँ,
0: ओपनिंग पेयर की अगर मैं बात कर लूँ, ओपनिंग पेयर में जो सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा है कि एक विकेट के नुकसान पर 22 रन, ठीक है, और अगर हम अगर थोड़ा सा सेकेंड इनिंग्स पे नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि 27 रन पर एक विकेट, उसके बाद 41। तो ये जो फर्स्ट विकेट सेकेंड विकेट, ये जो जल्द जो विकेट जाना, विकेट गिरना, तो इसमें पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन, ओपनिंग जो दोनों बल्लेबाज हैं उनमें अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है,
1: और ये ओडीआई और टी20 का प्रेशर भी तो नहीं है 10 ओवर का या 6 ओवर का,
0: करेक्ट। तो अब आजान जो है उन्होंने अपने मेडन सेंचुरी किया मेडन टेस्ट मैच में, लेकिन वो कंसिस्टेंसी सब समझ रहे थे कि ये बंदा जो है कुछ कर दिखाएगा, लेकिन वो इस तरह जो लॉन्ग इनिंग्स, दिस इज नॉट टी20, दिस इज नॉट ओडीआई या ये टेस्ट मैच है, यहीं पर ही अपनी बात जो है, अगर आपने सेंचुरी किया है तो उसको प्रूव कीजिए कि वो सेंचुरी मतलब उसके पीछे कुछ एक मेहनत है, तो वो हमें नजर नहीं आया। एंड ओपनिंग जो पेयर है, हमेशा हर टीम में ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं भाई, वो दरवाज़ा जो इन्हों खोल जाता है ना जो फास्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए, अगर वो बल्लेबाज टिक जाए और वो बल्लेबाज रन बना दे, एक सॉलिड फाउंडेशन है, सॉलिड पार्टनरशिप दे दे टीम को, वो टीम देन फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन बल्लेबाज जो है उसको आगे बढ़ा, यहाँ पे प्रेशर पड़ने गया, पड़ता गया। एंड शान मसूद जो है उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में दे ही ट्राई हिट्स बेट, बाबर आजम ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ करने दिखाया, लेकिन प्रेशर ओवरऑल आपके मिडल ऑर्डर बैट्समैन पे जाके गिरा। मोहम्मद रिजवान ने भी कोशिश की, 94 रन बनाए, सलमान भी 71 रन बनाए। जो बात हो रही है कि सेकेंड एंड थर्ड डाउन बहुत ट्रिकी होता है, सेकेंड एंड थर्ड डाउन बैट्समैन के ऊपर बड़ा ट्रिकी होता है, प्रेशर अगर झेल नहीं पाया तो वेर हो गया आप। दैट इज द रीजन कि बांग्लादेश की बॉलर्स ने मुसलसल प्रेशर बना के रखा, और बाबर आजम ने ये कहा भी कि हमारी बैटिंग में कुछ खराबी है, वो मेंटल ब्लॉक है जिसको उससे हम उभर नहीं पाए, दैट इज द रीजन ऑफ द डाउनफॉल।
1: एग्जैक्टली, एक तो ये टेस्ट मैच है, ऊपर से दूसरी चीज ये भी बड़ी जरूरी है कि बॉलर शाहीन अफरीदी भी नहीं खेल रहे थे। दूसरा ये है कि बैट्समैन और अच्छा कर सकते हैं, सलमान अली आगा ने 71 बनाया, रिजवान 94 रन, अगर ये दोनों और लंबा खेल जाते तो मैच जो है वो हाथ में आ सकता था, क्योंकि सिर्फ 80 रन और जीतने के लिए चाहिए थे। लेकिन 2-0 से बांग्लादेश से पाकिस्तान जब हारती है तो पाकिस्तान के जो आवाम हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आप उनके चैनल्स पर देखिए, वो टीवी पर देखिए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से आईपीएल की तरफ बढ़ते हुए, और राजस्थान रॉयल ने अपना सेकंड लास्ट मैच जो है वो अभी जीत लिया है, एक आखिरी मैच जो है वो आज होना है। लेकिन अगर हम बात करें इस खतरनाक खिलाड़ी की जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, एक बार फिर से ये लाइमलाइट में है, सेंचुरी मारते मारते रह गए, लेकिन

0: एक और रिकॉर्ड के करीब है। अच्छा। और ये रिकॉर्ड वैसे तो एक रिकॉर्ड बना लिया है कि इंडियन इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं या इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं आफ्टर क्रिस गेल जिन्होंने सबसे ज्यादा एक सीजन में छक्के मारे हैं। 2012 का रिकॉर्ड है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के प्लेयर क्रिस गेल का कि एक सीजन में उन्होंने 59 सिक्सेस मारे थे और अभी 53 नॉट आउट पे है वैभव सूर्यवंशी। और अगर आज वैभव ने 7 या 8 छक्के लगा दिए क्योंकि लास्ट मैच में जैसा वो खेल रहे थे जबरदस्त खेल रहे थे, उन्होंने टोटल जो है 53 छक्के मारे और चौके कम हैं छक्के ज्यादा हैं। पहला ये प्लेयर है जिसके इनिंग में छक्के ज्यादा हैं चौके कम हैं, पहला। दूसरा ये है कि अगर आज 8 छक्के मार देते हैं 52 या 53 के आसपास हैं तो ये आगे निकल जाएंगे क्रिस गेल से भी आगे।
1: अच्छा,
0: तो ये एक रिकॉर्ड उनके नाम हो सकता है। उसके अलावा सेंचुरी मारते मारते रह गए बट उनकी वजह से टीम ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है जो लास्ट मैच उन्होंने लखनऊ के अगेंस्ट खेला है। और ऋषभ पंत बहुत ज्यादा चिड़चिड़े भी हो गए थे इसलिए उन्होंने कुछ गलत लफ्ज कभी इस्तेमाल कर दिया, यान बिशप को कुछ गलत जवाब दे दिया, गलत इन द सेंस के वो अपने टीम की तारीफ ही कर रहे थे। तारीफ करते करते होता ना इंसान थोड़ा सा ज्यादा बोल बैठता है, तो वहां तक पहुंच गए ऋषभ पंत। बट एनीवे लखनऊ जो है वो हार गई है और राजस्थान रॉयल जीत गई है। आखिरी ये मैच बाकी है, आज जो मैच होगा उसमें सूर्यवंशी के पास मौका है कि वो 60 छक्के लगा के पूरे वर्ल्ड में T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बैट्समैन बन जाए।
1: कमाल का, कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान टीम और सूर्यवंशी को। और आज बता दूं कि बैंगलोर जो अभी आज की जो टीम की जो पॉइंट्स टेबल है उसके बाद बैंगलोर ऑलरेडी जो है जगह अपना
0: क्वालिफाई
1: कर चुकी है फॉर द प्लेऑफ 18 पॉइंट्स लेकर। गुजरात भी प्लेऑफ के लिए एकदम पहुंच चुकी है 16 पॉइंट्स के साथ। हैदराबाद थर्ड पोजीशन पर है एंड ये नेट रन के ऊपर डिपेंडेंट है तो 16 पॉइंट्स इनके पास भी है तो दे आर ऑल्सो थ्रू टू द प्लेऑफ। राजस्थान पंजाब कोलकाता तो राजस्थान के पास 14 पॉइंट है, पंजाब के पास 13 पॉइंट है और कोलकाता के पास 11 पॉइंट है। अब यह है कि पंजाब जो एक टाइम भाई ये तो ऊपर चल रहे थे, अब उनका पिछले 5 मैचेस में हार, पता नहीं क्या हो गया, कड़ी चावल खाना भूल गए होंगे उन्होंने तो 13 पॉइंट एंड 0.227 ये इनका नेट रन रेट है। तो आज जो मैच है काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है इस हिसाब से कि है ना पंजाब के भी कल परसों मैच है, पंजाब इज प्लेइंग लखनऊ। तो यहाँ पे कुछ समीकरण है कि इक्वेशंस क्या है कि हो सकता है कि पंजाब ना क्वालिफाई करे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पंजाब क्वालिफाई करे और राजस्थान जो है नीचे चले जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये दो ये सिर्फ एक पोजिशन के लिए एक टीम के लिए है कि एक ही टीम यू नो दे विल क्वालिफाई फॉर द फोर्थ पोजीशन। अब देखते हैं कि क्या होता है।
0: सही, तो देखते हैं क्या कुछ होगा इसमें हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे कि और क्या क्या चल रहा है आईपीएल में और क्रिकेट की दुनिया में। सुंदर FM 107 दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Are you ready? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील वो शो जिसका इंतजार होता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आप

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट।
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो दोबारा इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का।

0: हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और पिच परफेक्ट शो जारी है और मेरे साथ है आरजे फजील एंड वी ऑलमोस्ट एट द स्ट्रेच थर्ड सेगमेंट एंड आखिरी सेगमेंट हमारा शुरू होने वाला है और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भूल गए क्या? ओडीआई वर्ल्ड कप की तारीख में पहला बॉलर जिन्होंने हैट्रिक लेने का एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया था, और ये काफ़ी आसान सा सवाल है और क्योंकि क्रिकेट का ही सवाल है, कोई मैंने एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बारे में नहीं पूछा था तो कुछ आया क्या?
1: बिल्कुल, हम जवाब पर बढ़ेंगे। जो आज का ये जो सवाल है, लेट्स सी के कितने लोगों ने सही जवाब दिया। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
0: सवाल ये है कि ओडीआई क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप है, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला बॉलर जिन्होंने हैट्रिक लिया था, इसके बाद उनके बाद कई बॉलर्स ने हैट्रिक लिए, तो आपको सिर्फ बताना है उस बॉलर का नाम, और वो बॉलर काफ़ी फेमस है, फेमस कुछ एक रीज़न से हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत आप अगर इधर उधर ढूंढिएगा तो आपको पता चल जाएगा।
1: तो हरजिंदर ने जवाब दिया है 1987 में इंडिया के ये प्लेयर थे, नाम है चेतन शर्मा। ओके, पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जलालुद्दीन 1982, आमिर शहजाद ने कहा है। और एक और ही मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है भाईजान, आई थिंक इट वाज चेतन शर्मा इन 1987 और इनका नाम है सैयद अली हैदर शाह। और भी मैसेज है वैसे तो
0: काफी मैसेजेस हैं।
1: का नाम कहाँ गया, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने भी चेतन शर्मा ही लिखा है सिर्फ। और इसके अलावा एक और ही मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चेतन शर्मा लिखा है और इनका नाम है अली। ओके, शेख साहब ने लिखा है मलिंगा, वाह मलिंगा मलिंगा ने तो 4 विकेट लिए, 3 नहीं है ना तो मलिंगा ने वो जो विकेट लिया था वो तो कोई सीरीज चल रही है,
0: सीरीज वर्ल्ड कप में,
1: वर्ल्ड कप में नहीं।
0: दोस्तों ये बता दो कि आपने एक एक जवाब जिन्होंने दिया है, जिन साहब ने, कि जलालुद्दीन साहब के बारे में, जलालुद्दीन साहब 1982 में पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया कराची में मैच हुआ था, जलालुद्दीन साहब बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन ओडीआई में, ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट हैट्रिक है वो जलालुद्दीन साहब का था। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करूं, वर्ल्ड कप जो कि 1975 में शुरू हुआ, 1979, 83, 87, उसके बाद होते गया 92, 96, तो चेतन शर्मा इंडिया के मीडियम फास्ट बॉलर तो बहुत ही उस टाइम होते ही नहीं थे इंडिया में, तो चेतन शर्मा नागपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में एंड तीनों ही डिलीवरी वॉज क्लीन बोल्ड, और उस मैच में चेतन शर्मा ने ये एक तारीख जो है कायम किया था, बिकॉज उनसे पहले देयर वाज नो बॉलर हु टुक अ हैट्रिक इन ओडीआई वर्ल्ड कप में, सो चेतन शर्मा बिकेम अ हिस्ट्री ऑन दैट। अच्छा, एक साल, मजे की बात चेतन शर्मा एक साल पहले 1986 का वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, एक ही साल पहले शारजा में आखिरी गेंद पर चेतन शर्मा को एक सिक्सर मारा था किन्होंने, जावेद मियांदाद ने, और वो मैच भी चेतन शर्मा के ऊपर बदनाम है, आप भी देखा था हुआ है चेतन शर्मा, अरे चेतन तुमने तो वो छक्के खाए थे ना तो एक तरफ अगर उनके पास ये रिकॉर्ड है, तो दूसरी तरफ उनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि आखिरी गेंद में उन्होंने फुल टॉस डाल दिया, और किन को, जावेद मियांदाद को, जिन्होंने सीधा पुल करके एकदम आखिरी गेंद में 4 रन की जरूरत थी पाकिस्तान को, और उसी वजह से चेतन शर्मा को याद रखा जाता है। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में जाना पड़ा, नेट ढूंढना पड़ गया आपको, लेकिन अगर आज मैं बोलता कि ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में जावेद मियांदाद ने किस बॉलर को छक्का मारा, आप लोग फटाफट बता देते चेतन शर्मा।
1: सही, चेतन शर्मा, वेल बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। और अब जरा हम बात कर लेते एक बार फिर से, उस दिन अगर आप लोगों ने ना सुना हो या फिर कुछ लोगों को ना पता हो, वो है ओडीआई का स्क्वाड और एक और अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेल अमीन भाई, अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर उनसे दो बहुत अहम सवाल पूछे गए, पहला तो शमी का सवाल और दूसरा आकिब नबी का। तो पहले तो आकिब नबी पे आते हैं, तो उनका ये कहना था कि बहुत करीब तक हम पहुंच गए, अनफॉर्चुनेटली हम आकिब नबी को नहीं ले पाए, हालांकि वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने दूसरे को चांस दिया है, लेकिन हम उनके करीब तक नहीं पहुंच पाए। वो बहुत बहुत पास आ गए थे कि हम उनको ओडीआई में ले लेते, लेकिन मजबूरन नहीं ले पाए, तो बहुत ही सटल वे में ये कहते हुए वो निकल गए। तो क्या ये बस ऐसे ही मीडिया को जवाब देने के लिए था, या फिर सही में कोई बात रही होगी?
0: डेफिनेटली बात रही होगी, लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आज सुबह को मेरे पास ये कॉल आया था एक फॉर्मर जर्नलिस्ट जो कि खुद क्रिकेटर थे बॉम्बे में, तो उनका ये भी मानना है कि अगर आपने इनको बैठाया तो उनको क्यों नहीं बैठाया। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मोहम्मद शमी को आपने नहीं खिलाया, क्यों नहीं?
1: उनका कहना है सिराज और उनको रेस्ट दिया है, सिराज और बुमराह को रेस्ट कहा है,
0: शमी
1: अगरकर ने कहा है।
0: अच्छा,
1: शमी को नहीं, सिराज और शमी के बारे में तो अभी आएंगे, हाँ। उनके बारे में तो कुछ अलग कहा है और कुछ ज्यादा ही निराला कह दिया है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन आकिब नबी को कहा है कि हम बहुत करीब तक आ गए थे, हम बस उनको सेलेक्ट करने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। तो सिराज और जब एक ये पूछा गया सिराज और बुमराह को क्यों नहीं खिला रहे, तो उनको कहा रेस्ट देने को कि
0: उनको को रेस्ट है,
1: और बुमराह को समझ में आता है। सिराज को किस बात का रेस्ट है?
0: वही बात, सिराज को किस बात का रेस्ट है। तो यही बात, ये हमने उस दिन भी एक टॉपिक, इसी टॉपिक पे हम बात करते आए हैं कि कोई नैरेटिव तो नहीं है, कोई प्रूव करने के चक्कर में तो नहीं है कि अजित अगरकर और ये अपना गंभीर साहब जो है ये कुछ एक किसी फिलॉसफी को अप्लाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लग रहा है जो कि थोड़ा बहुत, जो अगर आप टीम को ऑन अ न्यूट्रली देखेंगे तो उसमें लगेगा कि शमी साहब क्यों बाहर है, और कश्मीर के दो बॉलर्स हैं वो भी बाहर हैं, और इसके साथ साथ संजू सैमसन को भी आपने टीम में जगह नहीं दी। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ यू नो ओडीआई में दे देते तो कौन सा आपका वो हो जाता, नुकसान हाँ। होता।
1: वैसे एक चीज आपको बतानी है, 2023 में संजू सैमसन ने ओडीआई खेला, सेंचुरी मारी, अब ओडीआई में नहीं है। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारी, अब टीम में नहीं है। ओडीआई में सेंचुरी मारने के बारे में हम बात करें, एक और प्लेयर उन्होंने सेंचुरी मारी ओडीआई में अपने लास्ट मैच में, और अब अगेन वो नहीं है। तो वो प्लेयर क्यों नहीं है जो सेंचुरी मार रहे हैं, और वो प्लेयर क्यों है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे ओडीआई में?
0: जैसे कि उस दिन मैंने इसमें शेयर किया था कि आई थिंक एक वो दौर आ रहा है या आ चुका है इंडियन क्रिकेट में, जब रीजनल बायस और कुछ अपना ही पसंद नापसंद वाली बात है,
1: ये बुरे दौर में चला है। अगर इसी तरह के कोचेज या सेलेक्टर्स आते रहे तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम का भी डाउनफॉल जो है वो शुरू हो जाएगा, अगर ऐसे देखे तो
0: हो सकता है, क्योंकि अपने अच्छे प्लेयर्स को बाहर रख रहे हैं, और जो प्लेयर, जिस खिलाड़ी, जिस बॉलर ने आपका हाईएस्ट विकेट टेकर था पिछले वर्ल्ड कप में, आपने उस पिछले साल वर्ल्ड कप है एक और वर्ल्ड कप, और उससे पहले आप एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट में अगर एक तीन मैच में खिला लेते तो कौन सा आपका नुकसान होता, और आपने बैठा के आखिरी मरतबा आई थिंक 2025 में, मार्च 2025 में मोहम्मद शमी जो है उन्होंने इंडिया के लिए खेला था, तो एक साल से ज्यादा हो गया, मार्च 2025 और ये मई 2026 है, तो एक साल से कुछ ऊपर ही हो गया, 14 महीने हो गया। तो
1: और साथ ही ये जो शमी है, शमी के लिए भी अजीत अगरकर ने कहा है कि उनको किसी ने बताया गया है, ऐसा कहें कि मुझे बताया गया है कि वो T20 के लिए फिट है, मतलब वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं यार, डोमेस्टिक टेस्ट मैच है दोस्तों, जो उसमें 90 ओवर गेम चल रहा है, प्रॉपर गेम चल रहा है, और सेमीफाइनल में लेकर गए, अच्छे विकेट उन्होंने दिलाए, और अब आप ये कह रहे हैं, ये पछती नियम ना बातें कि आप कह रहे हैं कि शमी T20 के लिए फिट है,
0: बिल्कुल
1: 50 ओवर और टेस्ट के लिए नहीं फिट।
0: अब T20 में इतनी भीड़ है, T20 में तो नौजवान खिलाड़ियों का भीड़ जो है, अच्छा ये हम अक्सर ये कह रहे थे कि भाई ये 30 साल का हो गया, अरे आप क्रिकेट में नहीं चलेगा, 30 साल का हो गया, अब इनके ऊपर ये भी लगेगा कि अच्छा ठीक है, हर बॉलर एक इंजरी प्रोन हमेशा होता ही है, जैसे बुमराह के साथ प्रॉब्लम है, इंजरी, शमी के साथ भी प्रॉब्लम था, लेकिन अब ये ना कहना शुरू कर दें कि अब ये भाई 35 साल का हो गया, एग्जैक्ट इनका एज तो मुझे पता नहीं, पर अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा कि क्या है मोहम्मद शमी का एज, हाँ 35 साल एक्यूरेट, तो ये भी कहना शुरू हो जाएगा कि ये तो 35 साल हो गया, T20 का प्रेशर नहीं ले पाएगा, तो T20 में जगह बना दो। अब T20 में इतने सारे तो बॉलर्स आपने भर्ती कर दिए बिकॉज ऑफ IPL के चक्कर में, तो अब इसको क्या, मतलब इनको, मोहम्मद शमी को क्या आपने ऑलरेडी उसमें डाल दिया है कि काला पानी का सजा दे दिया कि भाई चलो आपने खेल लिया अपना, और आपका जो वर्ल्ड कप खेलना था, इंडिया के लिए खेलना था, आपने फाइनल खेल ही लिया, अब वो बंदा क्या करे, कोई भी क्रिकेटर आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर ऊपर, फिर आप मेंटल ही आप थोड़ा सा यू गेट थोड़ा सा हिल जाते हैं आप कि मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई मीन इसमें आप अपना टाइम पास कर देते हैं, एंड देन एक सेटबैक होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और बाहर वो कहेगा कि मुझे अब नहीं खेलना है। ऐसे हुआ है इंडियन क्रिकेट में, बहुत हुआ है कि ना चांस दे दे के आपको खत्म कर दिया गया।
1: सही, तो दोस्तों ये था आज का शो एफ एम 107 पे पिच परफेक्ट। फिलहाल अमीन और फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे इसी शो में जिसका नाम होगा पिच परफेक्ट। और जो आने वाले ट्यूसडे को शो होगा हमारा वो होगा आखिरी पिच परफेक्ट, जहां पर हम क्रिकेट की तमाम बातें करेंगे। सुंदर एफ एम 107 दिल से देसी।

0: Assalamualaikum and good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये डियर फैमिली और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मावज खान. चार बज के हो गए हैं, दो मिनट मेरा आपके साथ रहना है पांच बजे तक और उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे. हवाएं तो खैर आज भी चल रही हैं लेकिन ये कि आज हमने थोड़ी निस्बतन गर्मी महसूस हुई है कि थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत जो है वो बड़ी है. वैसे देखा जाए तो ये हफ्ता वाला हफ्ता भी ना बड़ा ही जबरदस्त चिल बिल्कुल माहौल गुजरा है. इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था, खासतौर पर ये वाला जो वक्त होता है ना शाम चार पाँच बजे का, पाँच बजे जब यहाँ से मैं निकलती हूँ तो अच्छा इतना अच्छा वाला मौसम हो रहा होता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कतर की गर्मियों के मौसम में हूँ, लग रहा होता है कि काफी अच्छी सी मतलब शामें जो होती है ना खूबसूरत शामें तो वो गुजर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आज है वीकेंड है तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी वीकेंड. भी थर्सडे आ गया है एक दफा फिर से और उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा प्लान व्लान किया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा कि कहीं जाना है, कहीं घूमना है फिरना है. वैसे भी अगले हफ्ते जो है वो ईद उल अज़हा होगी तो उसकी भी तैयारी के लिए काफ़ी लोग आज तो शॉपिंग के लिए ही निकलेंगे, कुछ नहीं तो कम अज़ कम शॉपिंग के लिए निकलेंगे. तो चलिए इन्जॉय कीजिएगा अच्छी तरीके से अपने वीकेंड को, कुछ ना कुछ कीजिएगा. और मेरी आवाज़ का लेवल थोड़ा सा कम था, हाँ अब मुझे लगता है कि सही हो गया होगा. खैर जी, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से अपना वीकेंड सेलिब्रेट कीजिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा, मतलब रूटीन से हट के कुछ कीजिएगा और जरूर एंजॉय कीजिए आज. अच्छा, आज का टॉपिक मैं बता दूं पहले कि आज हम बात करने वाले हैं, ज़रा लाइट सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन वही कि हम बैक टू फैमिली हो गए हैं दोबारा से. तो फैमिली, घर से रिलेटेड एक टॉपिक, बहुत इजी. घर को आखिर कौन सी चीज़ असल में घर बनाती है, मतलब कौन सी चीज़ होनी चाहिए घर में जिसको आप मकान को घर कह सकते हैं अगर वो हो तो, ठीक है, मतलब आपके लिहाज से आपके ख्याल में जो भी चीज़ हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. और शेयर करने के लिए नंबर है 4434377 एंड 6622107 पे आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज. तो देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ है कौन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: हंसते भी आया, कौन आया?
1: अरे मैं ना इंतजार कर रहा था कि मैविस बहन कब आएगी. थोड़ा
0: टाइम पास करूंगा. आसिफ, आसिफ
1: जी जी,
0: हां सही.
1: एक्चुअली क्या है ना बहन, मैं थोड़ा बाहर निकला तो गाड़ी में आके बैठा तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई
0: है ना. आज है, आज है ऐसा.
1: तो इससे मैं फिर तुम्हारे तुम बोले ना कि गर्मी बहुत है, ये बोला ये बात तो सही कर रहे यार. इनको कैसे मालूम है, तो आप तो एसी में बैठे हो ना. मगर
0: हाँ, लेकिन अभी मैं भी तो भाई गाड़ी में आई हूँ ना.
1: मतलब गरीबों का, गरीबों को फील कर सकते हो तुम.
0: ये चल रहा है.
1: कैसे बहन, क्या?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं भाई, सब कैसा है, सब सेट है?
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेट है, एकदम
0: जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट. और भाई क्या मकान कुछ क्या चीज घर बनाती है? मुझे लगता है आसिफ के जन में तो यही आएगा, भाई बहन मेरे लिए दुआ करे, मेरी शादी हो जाए फिर घर बनेगा.
1: नहीं वो अभी वो पब्लिक बहुत उस दिन तो इतनी पब्लिक दुआएं दी मेरे को, मेरे लगता है किसी ना किसी की दुआ कबूल हो ही जाएगी.
0: हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो क्या बनाते हैं घर को घर?
1: घर को घर बनाने के लिए तो ईंट सीमेंट वही सब लगता है ना बहन, और क्या लगता है.
0: अरे वही लगता है, मतलब ईंट सीमेंट लगेगा तो घर बन जाएगा.
1: पक्का ईंट सीमेंट लगा ऊपर छत डालने के लिए, झोपड़ों पर कुछ भी डाल दो बन जाएगा घर घर.
0: अच्छा अच्छा चले, मतलब ये बेसिक वाला चल रहा है आपका.
1: मैं भी चाहता हूँ नहीं मगे घर बनाने के लिए, घर को घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे भी, मोहब्बत होती है. जो मतलब भाइयों में भाईचारा होता है, मिलजुल के जो फैमिली होती है ना, मिलजुल के जो फैमिली चलती है उसी से घर बनता है. बाकी तो सब अपने जगह पे सही है. मेरा मतलब, मेरा सोचने, मेरे नजरिए से तो मैं यही समझता हूँ कि मतलब अगर आपस अपनी जो फैमिली होती है, फिर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना ज्यादा मतलब बात करने को जमता नहीं है.
0: अरे मसला नहीं है, आप जो बोलते हैं हमें समझ में आता है. हाँ हाँ समझ में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, इतना ना सोचा करें.
1: क्योंकि मेरी लैंग्वेज ना थोड़ी बहुत कड़क लैंग्वेज है मेरी थोड़ी. मैं ऐसा इधर आके बात करता हूँ, आप तुम जी हाँ, तो हम लोग की लैंग्वेज में तो सब बोलते एकदम कड़क बोलते, अरे यार छोड़ना यार उसको, क्या है फैमिली तो अपनी फैमिली, ऐसा हम लोग की लैंग्वेज एकदम कड़क है थोड़ी. तो थोड़ी मेरे को ना जब जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बात कर रहा
0: हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं होता। देखिए होता है क्या है कि यहाँ कतर की ना सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि हम सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और हम सब लोगों के अपने अलग अलग लहजे हैं और उसमें हम बात करते हैं और एक दूसरे के साथ सब लोग मिलकर रहते हैं। तो ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि गुलदस्ता, गुलदस्ता पता है ना, बुके फूलों का जो होता है ना, उसमें हर रंग के फूल हो ना तो खूबसूरत लगता है, एक ही रंग के फूल हो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये तो खूबसूरती है यहाँ की।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा मेरा मेरा नजरिया ये है कि मतलब घर को अगर घर समझा जाए अपने तरीके से, मतलब घर मकान कैसे बनते, जैसा आपका जो सवाल था वो ये कि मतलब आपस में जो फैमिली होती ना वो उसमें मोहब्बत होगी ना, अगर एक एक इंसान भी अगर टूट गया तो वो घर टूट जाता है। ये बात से सहमत हो बहन मेरी?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, मतलब सबको लेके चलना होता है। अगर आपने किसी को भी अकेला कर दिया तो बस फिर वो फिर घर नहीं है, उसमें एहसास नहीं है।
1: अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जो खाला का लड़का है उसका नाम सिराज है।
0: अच्छा।
1: और इसका एक भाई है उसका नाम सौरभ है।
0: अच्छा।
1: पहले उसके पापा मतलब मेरे फूफा इंतकाल कर गए, फिर उसके बाद में मेरी फूफी इंतकाल कर गई, दोनों इंतकाल कर गए। फिर बची मेरे तीन, दो भाई एक बहन बची, मतलब एक बहन है कौशर उसकी भी शादी हो गई, खाल फूफू की लड़की, और एक भाई है सौरभ उसकी भी शादी हो गई, और जो छोटा भाई है उसकी भी हो गई। मतलब ये तीनों की शादी कराने के लिए ना मतलब पूरी फैमिली वाले लोग एक नहीं हुए थे, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने ऐसा मिलके उन लोगों की शादी कराए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि उन लोग घर जब तक कामयाब था जब तक उन लोग के ऊपर सर के ऊपर हाथ था, माँ का और बाप का हाथ था। जैसी जैसी मतलब वो सर पर से साया हटा, जितनी भी थे खालू खाला चाची भाभी देवर जितने भी थे ना सब अलग अलग हुए। ये मतलब ये हुआ उस लोग के साथ में। तो आज भी जब भी मैं उनसे बात करता ना तो वो मेरे को एक ही चीज बोलता है, आशीष तेरी अम्मी अब्बा है तो उनका मतलब क्या बोलते हो, इज्जत कर उनकी, उनकी इज्जत कर, उनकी रिस्पेक्ट कर और फखर कर अपने ऊपर कि तेरे माँ बाप है तो आज सही है। देख हम लोग को आज मतलब उन लोग की शादी भी हो गई ना बहन, तो मतलब फिर भी ना उन लोग रोते हैं हमेशा, क्योंकि फैमिली नहीं है ना, टू के फैमिली नहीं है उन लोग के पास, ऐसा है। तो मतलब एक भी अगर खम तो फिर पूरा घर गिर जाता है।
0: ऐसे ही बिल्कुल, मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरे भी पेरेंट्स नहीं है ना, तो ये होता है। मतलब आपके जब तक पेरेंट्स होते हैं ना तो आपके रिश्तेदार भी होते हैं, और वो शुरू में जब आपके ऊपर टफ टाइम आता है ना, क्योंकि जब हमारा भी मतलब जब पेरेंट्स का हुआ था तो उस वक्त मेरी बहनें अनमैरिड थी, भाई अनमैरिड था, सब छोटे थे, तो उस वक्त में उन लोगों को लगता है यार ये हमारे ऊपर ना आ जाए कहीं, तो सब लोग पीछे हटते हैं। लेकिन फिर जब मसले सॉल्व हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अपने अपने घर के हैं, तो फिर वही लोग आपकी तरफ भी आते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात रह जाती है कि यार मतलब आप जब कोई होना चाहिए था ना बड़ा, मतलब लोग जो है रिश्तेदार वो इसी बात के लिए होते हैं कि कुछ मतलब कुछ नहीं आप आसरा दो, कुछ और थोड़ी किसी को कुछ चाहिए। लेकिन ये है, ऐसे ही है, माँ बाप का होना जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आपके माँ बाप होते हैं, जब तक आपको लोग पूछते हैं रियली, और उसके बाद बस अल्लाह ताला किसी छोटे बच्चे के साथ कभी भी ऐसा ना करे कि उसके माँ बाप ना रहे, क्योंकि ये मतलब बहुत जालिम दुनिया है, बहुत ज्यादा।
1: बहन वो लोग ना मतलब शादी से पहले बहुत साल उन लोग ने ना रो रो के निकाले, मतलब हम लोग के बचपने की बात था, हम लोग वो लोग रो रो के निकाले,
0: क्योंकि ऐसे मतलब ही होता है।
1: कोई गले नहीं लगाता था मतलब उन लोग को, सिवाय मेरे माँ बाप के, मेरे माँ बाप
0: अल्लाह बहुत अच्छा रहते, उनको अजर थे इस बात का।
1: मेरी माँ ना मतलब हर चीज में आगे बढ़ बढ़ के उन लोग को बोलती थी नहीं तू मेरा बच्चा है, तू मेरा तेरी बेटी है। आज मगर उन लोग माशाल्लाह सेटल है अपनी अपनी लाइफ में, वैसा नहीं सेटल जैसा होना चाहिए था उन लोगों को। बस है कि रोज का कुआं खोदते, रोज का पानी निकालते, रोज का पीते, वही सीन है उन लोग का।
0: वही माँ बाप बहुत जरूरी होते हैं, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही।
1: एक दिन एक छोटी और बात बोलना चाहता हूँ,
0: बोलिए बोलिए।
1: मतलब ये लगता इसके तरीके से नहीं, मगर मैं बताता हूँ, लोग अपने बाप को मतलब अपने अपने जो बाप होते हैं, फादर होते हैं, वो लोग से मतलब बहुत दूर है या फिर नजदीक है एक्स वाई जेड, मगर कभी भी अपने पापा को लोग बोलते ना कि बोलते नहीं कि पापा आई लव यू, पाप को अपने अपने बाप को नहीं बोलते बाप मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम सब चीज मतलब अपनी मतलब जैसा एक्स वाई जेड वाइफ हो गई या फिर गर्लफ्रेंड हो गई, वो लोग सब बिंदास बोलते लोग, मगर कोई अपने बाप से नहीं बोलता आई लव यू, क्यों वो नहीं मालूम क्यों नहीं बोलते, मगर बहुत से लोग बोलते भी होंगे। और मेन जो घर का जो मेन जो है ना खंबा बाप ही होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, नो डाउट।
1: तो मैं ना आज एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मतलब भाई बहुत से लोगों को देखा हो मैंने दुनिया में, यहाँ पर भी देखा हो और इंडिया में भी देखा हो, अरे माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो। और आज ये सवाल तुमने पूछ के ना बहुत अच्छा काम करे भाई इस शो के ऊपर। मैं भी जानना, मैं आज शो पे एक घंटा पूरा कार में बैठूंगा एसी ऑन करके सुनना चाहूंगा कि कौन बंदा ये बोलता है कि मेरा मतलब मेरा बाप है तो आज हम लोग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं सुनना चाहता हूँ
0: बिल्कुल भाई, बहुत जबरदस्त आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ना सोचा करें कि लोग नहीं समझते होंगे आपकी बात, हम बड़े आराम से समझते हैं और आप बिंदास बात किया करें, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत, थैंक यू जी। रही जी, तो हमारे साथ है आसिफ भाई और मैं सोच रही हूँ मैंने एक गाना लगाना है, बहुत ही ज़रूरी है इसका, मुझे पहले से कहा गया है और मैं बता भी दूँ कि रीज़न क्या है कि ये गाना लगाना है। तो आज बेसिकली हमारे बड़े ही अच्छे कॉलर, हमारे लिस्नर सईद खातिब हुसैन, उनके जो भाई हैं ना, उनकी मोहम्मद तस्लीम अहमद, उनकी 26th माशाल्लाह से, मतलब उन्होंने अपनी पिछले साल सिल्वर जुबली कंप्लीट कर ली, अब इंशाल्लाह गोल्डन जुबली भी करेंगे, तो उनकी 26th वेडिंग एनिवर्सरी है और उनकी तरफ से वो कहना चाहते हैं और हम सब लोगों की तरफ से भी इनके भाई मिसेस मोहम्मद सॉरी मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद तस्लीम अहमद को 26th वेडिंग एनिवर्सरी मुबारक हो एक तो, और उसके साथ ही उनको डेडिकेट करते हैं ये वाला सॉन्ग। सॉन्ग सुन के वापस आते हैं फिर आपकी कॉल्स लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम बैक आप सुन रहे हैं 107 एफएम और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ एक कॉलर हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू
1: जी क्या हाल चाल हैं समद भाई आपके
2: मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आपको हैप्पी वीकेंड
2: आपको भी
1: और क्या हो रहा है
2: बस ठीक है मैडम अच्छा चल रहा है और आज आपने बड़ी बेहतरीन टॉपिक छेड़ी है आपने
1: घर को घर किस तरह कहा जा सकता है
2: घर किस तरह कहा जा सकता है और हमारे आसिफ भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की आसिफ भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो बंटा है टेंशन नहीं लेने का जो भी बोल रहा है ना एकदम बिंदास बोलने का क्या भाई इतना भी नहीं सोचने का भाई जो भी अपन बोल रहा है अपने दिल से बोल रहा है अपने मन से बोल रहा है किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रहा है बस इतना काफी है क्या बोलता है आसिफ भाई
1: बिल्कुल सही
2: आसिफ भाई के स्लैंग में मैंने बात कही है आपने बड़ी अच्छी बात कही है घर को घर कैसे कहते हैं तो शायद मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहूंगा शायद इससे कुछ

0: लोग इत्तेफाक रखेंगे या फिर नहीं, लेकिन मेरी अपनी सोच है ये कि हमारा सबसे पहला घर होता है वो है हमारी माँ की कोख। तो वो जो घर है हमारा, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो जो एक औरत होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है घर को घर बनाने में। वरना ऐसे कितने सारे महल हैं जो सिर्फ महल कहलाने के लायक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो जो अल्लाह की रहमत है वो है औरत। वो अगर घर में हो तो घर जन्नत है। और मैं सभी की बात नहीं करूंगा, माजरा चाहता हूँ कि कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो घर को जहन्नुम ही बना के रखती हैं।
1: लेकिन ऐसा भी
0: लेकिन एक मायने में जो है कि है कि औरत का रोल बहुत बड़ा होता है घर को जन्नत बनाने में, घर को घर बनाने में। तो हमारे घर का जो माहौल होता है, जो घर में हम जिस तरीके से रहते हैं, वो सब सारी चीजें जो है हमारी माँ तय करती है।
1: बिल्कुल। अच्छा, एक भाई का और पता नहीं क्या नाम है उनका, लेकिन उन्होंने भी मैसेज मैंने देखा था कि उन्होंने भी कहा था कि औरत, और अगर देखा जाए वाकई मतलब जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मतलब वो घर वाली एक जो फील है ना वो नहीं आ सकती। डॉक्टर एमएस नहीं आ सकती। बिल्कुल।
0: क्योंकि क्या है ना कि ये औरत जो है अल्लाह की तरफ से दी हुई रहमत है। वो जो है बेटी की शक्ल में भी है और बहन की शक्ल में भी है, माँ की भी शक्ल में है और जो है बीवी की शक्ल में है। तो कहना ये है कि भाई अब मर्द भी इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन औरत का रोल बहुत ज्यादा होता है घर को घर बनाने में। अब होता ही नहीं कि जंगल में शेरनी शिकार करती है और शेर एक जगह बैठा होता है, तो शेरनी के पास में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? उसे पता है कि मेरा शेर पीछे है, अगर कोई किसी की हिम्मत नहीं है मेरी तरफ आंख उठा के देखने की।
1: बिल्कुल,
0: वैसा वाला।
1: बिल्कुल।
0: तो हस्बैंड और वाइफ का होना बहुत जरूरी है, बच्चों के ऊपर साया, माँ बाप का भी। तो घर जो है उसी चीज से कर रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक शायद कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे मेरी इस बात से, लेकिन जहां तक मैं दुनिया को देखा हूँ वो है कि बाप नहीं होता है तो फिर भी घर जैसे तैसे चल जाता है, संभल जाता है। माँ नहीं होने से सब बिखर जाता है।
1: ऐसा ही है, ये फैक्ट है।
0: अब वो कहते हैं ना कि शतरंज में जो है वो राजा तो है ही, साथ में और के कौन होता है? वो रानी होती है, क्या होता है वो?
1: ये मुझे नहीं पता।
0: अच्छा। हाँ। तो रानी होती है वो, मतलब सब घर चलती है, वो सब करते हैं कि वो अगर चले गई तो राजा को चेकमेट देना आसान हो जाएगा।
1: हाँ हाँ।
0: तो वैसा वाला होता है।
1: मैंने देखा है कि पता है हमारे यहाँ भी मतलब बड़ी मिसालें इस किस्म की हैं कि मतलब खानदान में एक खातून थी, उनकी माशाल्लाह तीन बेटियाँ थी, तो उनकी डेथ हो गई और उनकी बेटी की भी साथ में। वो बेसिकली सी व्यू हमारा समंदर है, तो वहाँ पे घूमने गए थे और वहाँ पे वो घूम मतलब डूब गए। तो उनके शौहर ने, जबकि उनकी बेटियां बड़ी थी मतलब 17-18 साल की थी, तो उस वक्त उन्होंने दूसरी शादी की और फिर बिल्कुल मतलब घर का बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया। और इस तरह से और भी मतलब जितने होते हैं तो नहीं रह सकते बहुत, मतलब वो घर चलाना और सारी चीज़ें चलाना आदमियों के अकेले बस की काम नहीं है। लेकिन जहाँ पर यही चीज़ ना वाइस वर्सा औरतों के साथ होती है तो वो अकेले सब कुछ संभाल लेती हैं।
0: हाँ, होता है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अब जैसा कि घर संभालने की बात होती है, स्पेशली मैंने शुरू में ही कहा है कि घर की जो मेहनत है, घर की जो रौनक है वो है औरतों से ही है, चाहे इस बात माने या ना माने। मर्द आदमी तो घर में कितना ही रुक पाएगा बताओ, ज्यादा नहीं रहता है। मर्द आदमी का मन होता ही नहीं है घर में रुकने का। वो तो बाहर घूमने का मतलब और काम में रहेगा, हजार किस्म की टेंशन रहेगी, घर में थोड़ी देर बैठेगा सब चीज, उसके बाद में फिर बाहर ही। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम जो घर में गुजारते हैं वो घर की औरतें गुजारते हैं और वही जो है घर को संभाल के रखती हैं अच्छे से और सब चीजों का ख्याल रखती हैं। तो मेरा ये मानना है घर को घर जो है एक बेहतरीन माहौल बनाता है और जो है क्या कहते हैं अपने खुश मिजाज चीज़ें बनाती हैं और मीठी ज़ुबान बनाती हैं और तलख चीज़ों को जितना घर से दूर रखें उतना बेहतर है। मोहब्बत जितना घर में रहेगी उतना अच्छा है और जितना हो सकता हम सबको जो है मिलजुल के रहना चाहिए। छोटी मोटी बातों पे अख्तलाफात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हज़ार किस्म की टेंशनें चाहे कुछ भी हो, ये मर्द आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने घर में जब दाखिल हो रहा है तो सब चीज़ें बाहर छोड़ कर आएँ, अपने बीवी बच्चों के पास में आकर एक खुशनुमा माहौल पैदा करें और जो है अच्छी बातें करें, खाए पिए, खुश रहे, जो भी अल्लाह ने अता किया है शुक्र अदा कर उसमें जो है आगे बढ़े, ना कि हज़ार किस्म की बाहर देख। वो मिसाल दी जाती है ना कि अगर पैर में कीचड़ लग जाए तो हम जो है बाहर ही धो देते हैं, घर में थोड़ी ना लेकर आएंगे। तो उसी तरीके से बाहर की हज़ार किस्म की हमारे जितने

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. कबीर के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM. पहले हम मैसेजेस पढ़ देते हैं, फिर आपकी कॉल्स की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम कतर, ये कहते हैं अमजद इकबाल, और कहते हैं कि मुझसे तो एक घर ना बन सका या रब, तूने सारा जहां कैसे बना डाला. हमेशा की तरह आज भी आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और सब बातें सही हैं कि आप घर में कितने भी नौकर रख लो, काम करने वाली मासियाँ रख लो, लेकिन जब तक एक औरत नहीं होगी वो मकान घर नहीं बन सकता. और माशाल्लाह जंजीरें बहुत ज़बरदस्त है, और जो आपको ड्रामे पसंद है तो उनका जिक्र ज़रूर कीजिएगा. टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त, और हमारी मोहतरम बहन मिसेस अफजल के बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान से. बिल्कुल जी. और अच्छा हाँ, तो ड्रामे जो मुझे पसंद आ रहे हैं, जंजीरें वाकई बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है जैसे आपने कहा, और मैं अभी बात कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा. तो जंजीरें बहुत अच्छा चल रहा है. जंजीरें की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, उसमें वो सस्पेंस बरकरार रख रहे हैं. अभी जो सोहाब नाम है ना, मेरा ख्याल है ये जो कल जो हुआ है, मुझे अब तक उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाउट था कि ये सोहराब है, बल्कि हाँ, तो मुझे डाउट था कि कहीं ना पीछे ये तूरसम की बजाय इन्वॉल्व ना हो, पता चले. और कल जब वो हुआ है, पहले एक्सीडेंट करवाया उसने, वो फायर वगैरह करते हैं, तो उस वक्त ना उन्होंने दिखाया भी नहीं कि किसने किया है, लेकिन फिर बाद में उनके नाचने कूदने से अंदाज़ा हो गया कि तूरसम और उनके जो चचा हैं वो मामू मामा ही इन्वॉल्व हैं, तो वो जितना जश्न मना रहे थे. लेकिन पहले मुझे काफ़ी हद तक डाउट था सहराब के ऊपर, बाद में ही मुझे लगता रहा कि शायद ये उसको उकसार है और ख़ुद से जो है ना चाहता है कि कहीं ना कहीं सरदारी इसको मिल जाए. लेकिन उसने ख़ुद फिर जब बनाया अपने ये छोटे वाले को, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये जो अली ज़फ़र का भाई है, तो फिर लगा कि नहीं भाई, मतलब सही है, मतलब शायद ये मतलब वाकई इन लोगों के लिए मुखलिस है. खैर, काफ़ी अच्छे तरीके से सस्पेंस रखते हुए ये ड्रामे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है जंजीरें देखते हुए. बाकी अभी मुझे इंतज़ार है, वही मैंने बताया था कि आहत रजा मीर का एक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा होगा. और क्या नाम है उसका भी, मैंने कल परसों ही नाम फिर देखा था, फिर मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो अच्छा लग रहा है. माया अली और आहत रजा मीर होंगे, उसका इंतज़ार हो रहा है. डॉक्टर बहू जो है वो थोड़ा मतलब अभी इंटरेस्ट लूज़ कर चुका है, मैंने लास्ट वीक भी ये बात बोली थी. वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब कुछ ऐसी बातें लग रही हैं जो लग रहा है कि रियलिटी में होती नहीं होंगी. मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे इतने बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स हैं और इतना पढ़ा लिखा घराना है, तो वहाँ पे कैसे इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं होती होंगी कि मतलब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं. लेकिन भाई, होने का कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर दिमाग में कोई मसला हो तो फिर वो कहीं पर भी हो सकता है, कितना ही पैसा क्यों ना उनके पास हो. तो भी बाकी और कौन सा मैं देख रही हूँ, डॉक्टर बहू हो गया, ये हो गया, एक और भी कोई चल रहा है. अच्छा, मैंने भी पता क्या, मैंने सोचा एक तो समर ब्रेक्स में ना, मतलब ये होगा कि थोड़ा सा टाइम होता है आपके पास, सुबह की उलझन नहीं होती, जबकि अभी मुझे तो उलझन होगी, लेकिन फिर भी चलो, मतलब बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है. लेकिन वो एक ड्रामा हुआ करता था दूर शहवार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें. और वो इस तरह का ड्रामा है कि अपने बच्चों को भी दिखाएं भाई, मतलब तरबियत एक उनकी होती है. तो वो मेरा इरादा है कि समर ब्रेक्स में मैं दोबारा देखूंगी. बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा ड्रामा है, लड़कियों के लिए भी उनको दिखाना चाहिए आपको. और उसमें बाप बेटी का रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त था, तो मेरा तो वो इरादा है. बाकी ये कि अभी फ़िलहाल ये वाला अच्छा चल रहा है, जंजीरें सबसे मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट जंजीरें ही है, और उसके बाद बाकी सब सही चल रहे हैं. मतलब बाकी आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई

0: आउटस्टैंडिंग ऐसा वाला नहीं है, बस सही चल रहे हैं। हाँ वो वाला बस तेरा साथ हो, वो भी थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग उसमें थोड़ा सा मामला चल रहा है अभी, फरहान सईद और ये हिना जावेद वाला, वो थोड़ा सा मज़े का चल रहा है, अच्छी एपिसोड्स, मज़ा आता है, खासतौर पर सना जावेद की जो एक्टिंग वगैरह उसमें मज़ा आता है, तो ये अच्छा चल रहा है, बस ये है। चले जी, तो इसी के साथ हमारे साथ कॉलर हैं, फिर हम मैसेजेस आपके बाकी के पढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, पहले तो नाम बताइए। अच्छा हाँ हाँ, वो कॉल सही सही, हाँ मैंने एक रिसीव तो की हुई थी, ठीक है, तो आपकी कॉल मिल गई, लेकिन आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है रईस भाई। चले आप आइए, इतनी देर में मैं थोड़े से मैसेजेस पढ़ देती हूँ, ठीक है, ताकि वो भी हो जाए साथ में। अच्छा जी, तो ये अस्सलाम वालेकुम मैम, गुलाम बादशाह ड्रामा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बस अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। गुलाम बादशाह मैंने शुरू के कुछ एपिसोड देखी नहीं, लेकिन मुझसे ना नुमान एजाज का बेटा बर्दाश्त नहीं होता, सबसे बड़ा मसला ये, जावियर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, हो सकता है ज़फ़र अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन जो अभी पिछले जहाँ तक मैंने देखा ना, तो वो पता नहीं चल नहीं रहा होता, तो मैंने देखा। और दूसरा वो अपना जो दूसरा वाला कैरेक्टर है ना इमरान अशरफ, वो भी मुझे जब देखो उसके बाद तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें भोला ही नजर आ रहा होता है, तो मजा नहीं आ रहा होता, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ट्रेंडिंग पे हो सकता है कि हो, ठीक है। और आजकल पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग पे है, ये अच्छा ड्रामा है, बहुत ही अच्छा है, अगर मिले तो देखिएगा। मैंने एक दो एपिसोड देखी थी, लेकिन पता नहीं मुझे वो वाला मज़ा नहीं आया, इसलिए फिर मैंने देखना छोड़ दिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और जी, घर मर्द और औरत दोनों मिलके बनाते हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हो, मशवरा करके घर के मामला चलाते हो, तो एक अच्छा घर बन सकता है। और ये भाई राबिया ने कहा, भाई नहीं बहन ने कहा ये, अच्छा उम्मीद है कि इनका फ़ोन का मसला ठीक हो गया होगा। जी भाई
1: जी जी जी जी जी मैम, मैं ये बात रखना चाह रहा था कि असल में जब हम पहले फर्स्ट स्टेप पे जब हम रहते हैं, तो वहीं पे हम गलत कर जाते हैं कुछ। पहले जिस तरीके से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है कि शादी कैसे करो, और मतलब वो चूज करने के टाइम हम गलती कर जाते हैं, पहले उसके घर का मतलब जो उसकी माँ है और वो बाकी लोगों का किस तरीके का उनका रवैया है पहले, अगर वो फिर मतलब इस तरीके से अपने से बहुत अमीर में, और बहुत से लोग जहेज पाने के लिए बहुत तकरीबन ये सब मामला तो अपने से बहुत बड़े उसमें कर लेते हैं, तो फिर वो मसला अक्सर घर में उसका जरिया बन जाता है मेरे ख्याल से।
0: ये बिल्कुल ऐसे ही है।
1: तो ये अपने लेवल में या अपने से थोड़ा सा डाउन मतलब उसके उसमें अगर करें शादी, तो शायद ये मामला मतलब
0: अच्छा मेरा मुझे लगता है रईस भाई कि आपको ना बिल्कुल अपने जैसे लोगों में करना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में ना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं इसी बात से तरजीह देता हूँ कि हम लोग फर्स्ट जो है अपने उसको हम खाली औरत को गलती देते हैं, ये खाली औरत के ऊपर गलती नहीं होता मैम, फैसला मर्द के हाथ में होता है, अगर उसके उसमें कुछ कमियां भी हुए तो मैनेज करना मर्द के हाथ में, अगर वो चाहे तो कर सकता है। फैसले लेने के टाइम तो उसके हर बात को तरजीह ना दे, जो हक बात रहे माँ का जो एक अलग होता है बहन का, ये सब चीजों को बहुत हिसाब से उसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से अगर वो मैनेज करके चले तो शायद है कि मतलब है, ये तो होते हैं कि मतलब उनको कितने भी मतलब ये करो तो वो को कैसे कहते हैं नहीं तो दूध कितने भी पिलाओ लेकिन वो काट लेता है, तो ये सब अगर उसके उसके फितरत में होता है तो ये सब तो समझ लो कि जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मर्द थोड़ा सा अकलमंदी से मतलब ये करके काम ले, हर बात को हर उस पे मतलब वाइफ के साथ में बहुत ज्यादा ये ना रहे, तो शायद है कि मामला मतलब इतना खराब नहीं होएगा मेरे हिसाब से।
0: घर में सुकून अंडरस्टैंडिंग होता है आपके ख्याल से, है ना?
1: और दूसरी बात मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जॉइंट फैमिली का जो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग के मतलब खासकर पाक और हिंद के उसमें, ये तो थोड़ा सा हम अगर सही से अगर दिल मिल के रह रहा है तो रहो, नहीं तो तकरीबन उससे अलग हो जाओ, ये सबसे बड़ी मतलब ये है, तुम्हारे घर को बिगाड़ने का ये बहुत बड़ा जरिया बन जाता है मेरे ख्याल से।
0: सही हो,
1: अगर मैनेज करके रह सकते हैं उनके साथ भी तो रहो,
0: वरना अलग हो जाओ, सही हो गया।
1: पर तरह तरह की बुराइयां उनकी उनके सुनते सुनते तो फिर वो मर्द कितना भी परेशानी उठा के घर तो उनकी वो उनकी उसने ये वो ये सबसे बड़ा मसला का जरिया बन जाता है।
0: सही हो गया, सही हो गया भाई। अच्छा थोड़ी आपकी ना आज कॉल में डिस्टर्बेंस है, तो जबरदस्त आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर बात करते हैं क्योंकि कॉल थोड़ी सी आपकी ना सुनाई नहीं दे रही।
1: असल में
0: हाँ मुझे अंदाजा हो रहा है, अंदाजा हो रहा है बिल्कुल जी।
1: तो थोड़ा सा साउंड भी आपको आ
0: जी जी जी जी जी इसी वजह से ना चले। बहुत शुक्रिया रईस भाई आपकी कॉल का, इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप ये बात करिए ना कि घर में औरत हो हम क्या करें, हमारी तो शादी नहीं हुई। खान का मैसेज है मेरे पास, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी भाई, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। और इसके साथ ही जी शुक्रिया बहन। और ये किसने मुझे मैसेज किया है, आसिफ। ओके आसिफ का मैसेज है, और उनको बोलो आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल जी मैंने उनको बोल दिया। सलाम भाई मैम, हैप्पी वीकेंड एंड वेरी नाइस योर शो मैम, मैं बिजी हूँ आपका शो सुन रहा हूँ। सुरजीत, यही मैं सोच रही थी कल जब आपका मैसेज मैंने ऊपर से देखा ना, मुझे अंदाजा हुआ कि ये सुरजीत है। मैंने कहा इनसे बोलूंगी जरूर कि काफी दिनों से आप कहीं पे हैं नहीं। अच्छा जी मैम, इमरान अशरफ तो मैम बहुत अच्छा एक्टर है, इमरान हाशमी के बारे में कुछ ना बोले तो बहुत अच्छा है। इमरान हाशमी कौन सा वाला, इमरान हाशमी इंडिया वाला, उसकी बात करें? हाँ वो तो दूसरा, हमारा तो कोई इमरान हाशमी है ही नहीं, तो वही होगा। पता नहीं, मैंने वैसे पर्सनली इमरान हाशमी की, मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया हमारी अधूरी कहानी, लेकिन मैंने नहीं देखी, मुझे मैंने उनका काम ही नहीं देखा, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। खैर जी, इमरान अशरफ बहुत अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट, लेकिन जब से उन्होंने वो भोला वाला करेक्टर किया ना, मुझे उसके बाद मैं जब भी देखूँ तो मुझे पता नहीं उनके अंदर एक भोला ही नज़र आ रहा होता है, तो ये वाला चक्कर है। सलमान फारूकी और कराची पाकिस्तान से उन्होंने मैसेज किया, वही कहते हैं शाम बखेर खुश आमदेद, टॉपिक के हवाले से घर को प्यार सुकून और एहसास अपनाइत घर बनाते हैं, और चार दीवारी फर्नीचर तो बस इमारत का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसमें रहने वालों का खुलूस, एक दूसरे का एहतराम, छोटी छोटी खुशियां ही असल घर की बुनियाद होती हैं। घर की सबसे खूबसूरत जीनत वहां रहने वालों का प्यार है, एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनना, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना, और दिन भर की मसरूफियात के बाद एक मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करना घर में सुकून भर देता है। जजाक अल्लाह। और इस घर को कभी फल फूल नहीं देखा, उस घर को कभी फलते फूलते नहीं देखा जिस घर के मकीनों में मोहब्बत नहीं होती। ओए होए क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मैसेज। और आप अब चाहें तो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस हो गए तकरीबन, अभी तक काफी कॉल आ रही थी, आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन मुझे यही होता है रोजाना तकरीबन जो मैसेजेस है ना वो नहीं शामिल हो रहे होते, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है फैजान।
0: जी फैजान, क्या हाल है आपके?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
2: जी क्या है टॉपिक
0: आज का? टॉपिक है घर को घर क्या बनाता है,
2: घर को घर क्या बनाता है, ये फैमिली के रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर,
0: मतलब जैसे भी आपको जो लगता हो, आपको आपके ख्याल में जो चीज भी हो, आपको क्या लगता है कि घर कब घर कहलाने का जो है ना एक तरह का मुस्तहिक होता है?
2: ये दो तीन बातें छोटी छोटी करूंगा आपके साथ। एक तो मेन चीज जो है कि सब्र, ठीक है, कि कोई भी बात है, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, घर में कोई लड़ाई हो गई या किसी ने कोई गलत काम कर दिया, अब ये ना कि हर बात में टोके ना, ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, खाना ऐसे पकाते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपको जो है ना सब्र करना है हर लिहाज से। आपने कोई चीज मंगवाई है भाई से या छोटे से बड़े से, वो उसने आने में देर कर दिया है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पोंड करना है, तो इसको मतलब हम ले जाते हैं सब्र में। और सेकंड चीज है इग्नोर, बड़े से बड़ी बात भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने ऐसी देखना कि जिस तरह मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है, देख के अनदेखा कर देना है, ताकि जो है ना भरम भी रह जाए चीजों का, और जो है वो बात तूल पर ना जाए। कोई भी मतलब होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भाभी के देवर के साथ हो जाते हैं, देवरानियों के हो जाते हैं, जिठानियों के हो जाते हैं आपस में, मोस्टली तो खैर फीमेल्स के ही होते हैं और इन्हीं की वजह से लड़ाई होती है। तो जो भी है बस उसको इग्नोर करें और सब्र करें, तो इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो है ना ये जुबान को भी कम चलाएं, आजकल वो हर बंदे के पास फेसबुक है, सोशल मीडिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ताने निकाल के मारते हैं, अगले की जो रूह है ना छलने कर देते हैं उसको, तो ये काम भी प्लीज ना करें।
0: बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त फजान, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फजान आपका, हैप्पी वीकेंड आपको, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी फजान हमारे साथ थे और बिल्कुल सही बात, और वाकई इसी तरह का बिहेवियर अगर हमारा हो घर वालों के साथ, हमें थोड़ा सा मतलब सब्र तहमुल का मुजाहरा करना चाहिए, तो यकीनन चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं सॉल्व और घर में माहौल खराब नहीं होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं मुदस्सिर भाई?
3: मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ आप कैसे? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक
3: जी। आपका फोन नहीं लग रहा है मैम।
0: नहीं वो बेसिकली कॉल ज्यादा आ रही है, लेकिन आप लोगों का फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ट्राई करते रहते हैं आखिर तक।
3: आखिर तक हम ट्राई करते रहे लेकिन फोन नहीं मिल रहा है, आखिरकार मिल गया है,
0: आखिरकार मिल गया,
3: हो गया कि हमारा फोन ना किया।
0: जबरदस्त, तो आप क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर भाई, घर को घर कैसे बनाया जा सकता है?
3: बस घर को ऐसे बनाया जाता है जिस घर में तो बड़े मौजूद होते हैं, उस बड़ों को इज्जत करनी चाहिए, उनको फैसलों को तस्लीम करना चाहिए, तो फिर घर चल सकता है। तो और जिस घर में बड़े नहीं होते वो तो घर ही नहीं होता है ना।
0: मतलब आपके लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में आपके बड़े मौजूद हों,
3: बड़े मौजूद हों
0: और बड़ों को इज्जत मिलती हो। अच्छा पता है कि ये तो एक बात आपने जैसे कही कि एक तो ये कि घर में बड़े मौजूद हों, अब ये होता है कि जाहिर सी बात है जिंदगी हमेशा नहीं होती और माँ बाप भी हमेशा नहीं रहते, बड़े लाजमी नहीं आपके पास हों, लेकिन ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, तो हमें अपने घर में ना बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर हमारे जैसे सामने दो तीन बच्चे हैं तो जो बड़ा भाई बहन है उसको उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है ना दो।
3: जी जी देखो मैम, अभी हमारे घर में जो हमारे बड़े, तो सबसे मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, एक मेरा अंकल का बेटा है, वो हम दोनों हमारे घर के बड़े हैं, ठीक है, तो वो घर को ऐसे चलाते हैं ना, वो मेरे बच्चे को अपनी बच्चे समझता है, मैं उनको बच्चों को अपनी बच्चे समझता है,
0: वेरी नाइस,
3: तो फिर घर में जंग लड़ाई ये नहीं आता है। तो हम एक दूसरे को ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, तो फिर घर सही तरह चलता है। जिस घर में बड़े नहीं होते, मसलन जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उनको चाहिए जो जॉइंट फैमिली में रहता है आपस में एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। मैंने ऐसे घर बहुत देखा है कि जिनके माँ बाप वो बहुत छोटे छोटे थे, माँ बाप चले गए हैं माशाल्लाह, उनको अभी अपने बच्चे उनकी शादी हो गई है, लेकिन वो ऐसे रहते हैं ना जैसे वो भाई भाई को भाई नहीं समझते, ऐसे ऐसे रहते हैं ना कि मसलन उसमें एक घर में अभी तक लड़ाई नहीं हो गया, वो तीन भाई है, तीनों का शादी अलग अलग जगह से हो गया है, लेकिन वो एक दूसरे के ख्याल रखता है, तो फिर घर चलता है, घर में कोई झगड़ा फसाद। एक तो ऐसा होता है कि आप बड़े को बड़े नहीं समझते, जो हमारा मसलन बड़ा भाई होता है, तो छोटे को वो समझाते तो छोटे बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं किया, वैसा करेगा, वैसा नहीं है, तो पैसे घर का तो आप कौन होते हो बोलने वाले? अक्सर बड़े भाई क्योंकि छोटों को समझाता है, या वो छोटी बहन होती है या छोटी भाई होती है, क्योंकि अक्सर बड़ा भाई जो होता है ना वो बाप का रोल अदा करता है, वो आपके घर में रहता है या नहीं रहता है लेकिन वो बाप का रोल अदा करता है, क्योंकि उनके सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है ना।
0: जी जी बिल्कुल।
3: तो बस एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, और टाइम भी कम है आपके साथ पूरा होने वाला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई आपने कॉल की।
3: जी जी। आप कभी यहाँ पे तीन बजे का जो तुम्हारा शो है वो भी बहुत टाइम कम है।
0: किसका?
3: तुम्हारा।
0: मेरा तीन बजे का कौन सा?
3: ये जो चार बजे से पांच बजे का शो करते हो ना, अभी तो छह बजे आओगे ना।
0: हाँ तो छह बजे आएंगे, छह से नौ रहेंगे।
3: जी जी आपके साथ तो मैडम नाजिया है ना?
0: मैडम नाजिया है, लेकिन नाजिया का ये सीन है कि नाजिया जाने वाली है वेकेशन पे, तो चार दिन नाजिया और मैं होंगे, फिर बाकी फिर मैं होंगी आपके साथ, मतलब तकरीबन अच्छा। कोई जुलाई के मिड तक इस तरह से रहेगा।
3: अच्छा, अच्छा।
0: जी तो ये सिलसिला है।
3: ठीक है, चलो ठीक है, ओके
0: चलें, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। اچھا جی, تو میرے پاس میسج سید خادم بھائی کا, اور یہ کہتے ہیں کہ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا تھا, انہوں نے کہا محبت محبت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ایم اقبال ان کا میسج تھا, پتہ نہیں اب سن رہے ہوں گے یا نہیں سن رہے ہوں گے, کیونکہ شروع میں انہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا ماں اور وائف اور ساتھ ہی محبت. اوکے جی, اور نائس سانگ یہ کہا ہے کس نے, یہ کہتے ہیں ہشام, ہشام کا میسج ہے. اوکے جی, تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امجد اقبال کہتے ہیں جی عمران ہاشمی وہ بھی ہے جیو ٹی وی پر, ہنسنا منع ہے. اچھا میں نہیں جانتی, میں دیکھوں گی کہ کون ہے. اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ سلیم, اور یہ کہتے ہیں کہ یس وائی ناٹ, کس بات پہ. اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم کا ہے, ہیپی ہیپی ویکینڈ کہتے ہیں آنسو پر, ٹینشن لینے کا نہیں ہے اور دینے کا ہے. کیا بولتی ہے پبلک. اور اس کے ساتھ بس آپ نے یہی بولا ہوا ہے. چلے جی, بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ. جسپندر سنگھ کالا کا بھی میسج آ گیا ہے, اور کیا دیواس کا دیسی, ابھی انہوں نے نام بدل لیا, میں نے کل غلطی سے نا میرے منہ سے کچھ اور نکل گیا تھا, انہوں نے کہا نام ہی بدل لو, مطلب کچھ اور بولو. جسوندر سنگھ کالا آپ کو بھی ہیپی ویکینڈ, تھینکس اے لاٹ.

बट आप सब लोगों के मैसेजेस का, आपकी कॉल्स का, और इंशाल्लाह ताला संडे को मुलाकात होती है. संडे मंडे मिलेंगे आपसे डियर फैमिली में, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे ईद के शोज में, और फिर एक दिन बस होगा डियर फैमिली का. तो बस अब ये मतलब समझेंगे वाला स्लॉट बिल्कुल अख्ताम की तरफ जा रहा है, आखिर आखिर के शोज हैं, लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है. खैर अभी हम लेते हैं आपसे इजाज़त, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे. थैंक्स अ लॉट, हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाला हबीबी टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल हो रहे हैं 5:02।
2: यू आर

0: वाइब्रू और मुबारक भैया, आ गया वीकेंड है। इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा कि आज ही बहुत ज़्यादा दिन हो गए। कभी कभार ऐसा एहसास होता है, आप जब छुट्टी से भी आते हैं ना अपने मुल्क से, दो तीन महीना गुजारते हैं और ऐसा लगता कि यार ये इस बार वापस से मुल्क जाने का महीना नहीं आ रहा, क्या हो गया है भाई। वैसे मुल्क जाने का महीना तो आ रहा है, खास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि ये मई जून जुलाई की जो छुट्टी होती है, अगस्त की जो छुट्टी होती है, इसी में तो मौका मिलता है। इनकी वजह से हम बैचलर्स नहीं जा पाते, मतलब सॉरी मैं नहीं, मतलब मैं अभी भी अपने आप को कभी कभार ऐसे समझ लेता हूँ कि मैं बैचलर हूँ, सॉरी माई मिस्टेक। ये एक्चुअली हंसने की ही बात है, कभी कभार मैं अपने आप को बैचलर समझ लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अकेला ही हूँ, लेकिन सच्चाई से रूबरू हो जाता हूँ, घर जाता हूँ पता चलता है कि मेरे फेवरेट जगह पे कोई और बैठा हुआ है, गुस्सा आता है। तो वही है कि भाई फैमिली की वजह से जो बैचलर्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा टिकट महंगी हो जाती है, पूरी फैमिली को लगता है कि बस ये जून जुलाई का महीना है चले जाए, और है भी यार, रीज़न भी है, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टी है वो इसी दौरान होती है, जो लंबी छुट्टी होती है, वरना फिर ये भी है कि यार 30-35 हज़ार रुपया खर्चा करके घर जाओ और 7 या 8 दिन के लिए जाओ, अगर यू नो जैसे आज अभी ईद और बकरीद जो चल रही है, अगर हम इस 10 दिन में जाएं और फिर चले आएं, अपना शहर होता तो अलग बात थी कि एक तरफ गए एक तरफ आ गए भाई साहब, 10 दिन का मज़ा लेकर, 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, 3 दिन अपनी और छुट्टी लगा दी, टोटल 6 दिन हो गए, फिर सैटरडे संडे पड़ गया, ले भाई 8-9 दिन खींच के आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं हो पाती है, बस यही एक नुकसान जो है वो हो जाता है। तो इंसान ऐसे ही सोचता है कि जब कितना पैसा खर्च हो रहा है मालिक, तो क्यों ना एक महीना गुजार लें। तो फैमिलीज़ जो है वो इसी तरह से प्लान करती हैं, क्या ही कर सकते हैं यार। खैर, इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, वीकेंड का दिन है, मजे करेंगे मस्ती करेंगे, और अमिता जो है वो आज आखिरी दिन लाइव हमारे साथ जुड़ेंगी बुक फेयर से, जो कि 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर है जो चल रहा है इस वक्त DECC में, यानी कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। फिलहाल 5:05 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम करेंगे बात अमिता से डायरेक्ट लाइव। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है, तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताजा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाप्त कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: 107 पे हो गया है टाइम ड्राइव थ्रू का, 5:17 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और कोई है लाइव हमारे साथ। जी हेलो, क्या है हाल चाल अमिता?
1: हेलो हेलो हेलो फजील भाई, हाल चाल बड़े मजे के हैं। आज 8th डे है 35th दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर का, विच इज लाइक रियली हाइप्ड अप। और क्योंकि अभी इस टाइम पे आई हूँ तो मुझे थोड़ी सी भीड़ कम लग रही है, बट आई एम वेरी सर्टेन क्योंकि वीकेंड है तो अब धीरे धीरे जो कहते हैं ना भीड़ बढ़ते जाएगी।
0: हाँ। प्लस ये तूफान से पहले की शांति है अभी बढ़ेगी।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जैसा कि हम सब जानते हैं, काफी खबरों में भी था कि हिज हाइनेस द एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी आज आए थे और उन्होंने यू नो दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हौसला अफजाई की। सो देयर इज दिस लॉट ऑफ थिंग्स, पर वो जो वाइब है ना वो फील तो हो रही है। एंड इनफैक्ट फजील अभी मुझे लेटेस्ट में पता चला है, बट आई स्टिल हैव टू गो एंड चेक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वहां पर वॉइसेस ऑफ द फ्यूचर नाम की एक बुक लॉन्च हुई है।
0: अरे वाह।
1: दैट्स बेस्ड ऑन यंग कतरी ऑथर्स जिन्होंने एआई और ट्रेडिशन को मिलाकर ना अपनी कहानियां बताई हुई हैं।
0: बहुत उम्दा।
1: सो आई स्टिल हैव नो आइडिया अबाउट, आई विल गेट एन आइडिया और जैसे इसके बारे में डिटेल में मुझे पता चलेगा आई विल बी अपडेटिंग।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ मैं क्या ही बताऊं, मतलब मुझे ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि न जाने कितनी किताबें मैं खरीदूं और कितनी किताबें घर लेके जाऊं। लाइक हर दिन कुछ ना कुछ मेरे बैग में रहता ही है।
0: ओके, तो एंट्री जैसे सवाल ये कि एंट्री होते ही आज कुछ नया दिखा है, कुछ अनोखा अभी तक?
1: यार आज मुझे सिर्फ एक वाइब फील हुई है, ठीक है। मुझे बच्चे थोड़े से ज्यादा दिखे हैं बिकॉज मे बी वीकेंड, तो यू नो हाँ, तो बच्चों की मतलब शिरकत कुछ ज्यादा है और उनके छोटे छोटे हाथों में वो बैग्स है जिसमें न जाने क्या क्या बुक्स लेके जा रहे हैं। सो आई कैन फील दैट बिकॉज वाइब तो है। जैसे मैं आई तो मैंने देखा इधर से कुछ लोग उधर से कुछ लोग, एंड अभी ना चिल्ड्रन कलेक्शन बड़ा हाइप्ड अप है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि अभी भी इस बुक फेयर की जो हीरो है दैट इज द गेस्ट ऑफ ऑनर, दिस इज कतर बुक, जो कि एनसाइक्लोपीडिया है कतर के ऊपर एंड हैज 6 वॉल्यूम। सो वो चीज ना अभी भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एंड व्हेनेवर आप उस बूथ से, एक्चुअली बूथ नहीं, इट्स अ स्मॉल स्टेज, अगर आप उस स्टेज के पास से गुजरोगे तो आपको कोई ना कोई वहां पे दिखेगा ही, जो कि अपनी फैमिली के साथ होगा या दोस्तों के साथ होगा या कुछ ऑफिशियल्स होंगे चेकिंग दी एनसाइक्लोपीडिया। मतलब वो जो पूरा स्टेज है ना वो खाली मुझे एक बार भी नहीं दिखा।
0: अच्छा।
1: कि यू नो कम हो गई हो भीड़, नो
0: लगातार वहां पर भीड़ जो है वो आपको दिख रही है।
1: Absolutely. So, अभी तो जस्ट मेरी एंट्री हुई है एंड यही सब मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। मैंने कहा चलो आज थोड़ा जाके अब आगे देखा जाए कि क्या क्या है। मेरे जस्ट पीछे आर्ट एग्जीबिशन है बाय जवाहर अब्दुल अजीज अल सैयद और यहाँ मैं एक्चुअली नहीं गई हूँ।
0: अच्छा।
1: तो आई विल बी गोइंग एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डाओ। सो लेट मी गो एंड चेक एंड फिर जब हम दोबारा मिलेंगे कनेक्ट करेंगे तो हम इस पर फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या खास है इस एग्जीबिशन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मजे करो और देखती रहो, समझती रहो कि क्या कुछ हो रहा है और अपडेट देती रहो। हमारे जो लिसनर हैं वो सुनने को बेताब हैं, उनके भी सवाल होते हैं, फिर हम वो सवाल आपसे भी करेंगे और वो रैंडम सवाल होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने वो सवाल आपको दे दिया और फिर आप सर्च कर रहे हैं उसके बाद हमें जवाब दे रहे हैं, वो रैंडम सवाल होगा और यू नो उसका फिर आपको जवाब उसी वक्त बताना पड़ेगा। बाकी जो दिख जाए वो ठीक है, वरना वो सवाल

0: अपने साथ रखिए, बाद में जब हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे तब भी आप हमें बता सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: इंशाल्लाह
0: ओके। तो दोस्तों 5:21 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, क्या बात है, देख रहे हैं तैयारी पूरी कर रही है। और आपको भी अगर इंटरनेशनल बुक फेयर में जाना है तो जा सकते हैं, और अभी सबसे सही टाइम है क्योंकि अभी हो रहे हैं 5:30 तकरीबन, और सही जो तरीका है वो यही है कि 5:30 बजे चले जाएँ, वरना शाम को 7-7:30 बजे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, फिर अफरा तफरी में सही से आप ना किताबें ले नहीं पाते हैं। किताबों का सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि आप एक किताब खोलते हैं, बीच से एक लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका दिल करता है उसको खरीदने का। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ ये किताब ऊपर से अच्छी लग रही है ना, उसकी जो ऊपर का जो बुक है या ऊपर की जो लिखावट है उस चीज़ पर दिल नहीं आता है। अपने लोग वैसे हैं कि किताब खोला, अंदर की एक लाइन अच्छी लगी, कुछ पढ़ा, एक दो पन्ने पढ़े, तो वैसे में आप 7:30 या 8 बजे पहुँचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं वेदर और साथ ही साथ इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले इवेंट्स देख लेते हैं कहाँ कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि आज है वीकेंड 21 तारीख, यानी कि आज से लेकर 30 मई तक फ्लफी फंतासिया शो हो रहा है मॉल ऑफ कतर ओएसएस स्टेज, और यहाँ पर जाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक्रोबेटिक्स से लेकर डांस और मैजिक सब कुछ एक छत के नीचे ओएसएस स्टेज मॉल ऑफ कतर। पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बटुआ लेकर ना जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपने अपने मोबाइल में कार्ड सेव करके रखा है और आप अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं तो थोड़ा तो लगेगा भाई। देखो फिर वो होता है ना कि अरे यहाँ पर आए, भूख लग रही है, फिर उसके बाद भूख लगते लगते एक टहलते टहलते अरे ये देखो कितना अच्छा परफ्यूम लग रहा है, कितने अच्छे कपड़े लग रहे, फिर ऐसे में आपका 300-500 का तो चपत लग जाती। देखो आप कितना भी सोच कर जाओ, तो देखो मैंने इससे पहले आप लोगों को आइडिया बता दिया है, और वो ये है कि अरे मोबाइल ख़राब है, चार्ज नहीं है, है ना, और कार्ड घिस गया, एटीएम में डाला और वो कार्ड घिस गया, नंबर ख़राब हो गया एटीएम में जो लिखा होता है, ये सब बहाने हैं। देखो अब ये बहाने आप इस्तेमाल कर लें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा एक और बेहतरीन इवेंट है म्यूज़िक और लाइव शोज़ का, जो कि 23 मई को है, यानी कि परसों, और ये होगा ओपेरा हाउस कटारा कल्चरल विलेज में। ये क्लासिक कॉन्सर्ट है, ज़बरदस्त परफॉर्मर रहेंगे यहाँ पर, और इन जगहों पे जाना सबसे जो बेस्ट होता है वो ये कि कहीं कहीं फ्री होता है, लेकिन ये वाला जो म्यूज़िक और लाइव शोज़ है ये फ्री नहीं है, इसके प्राइसेस अलग अलग हैं, लेकिन ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा कि कौन से सीट के क्या प्राइसिंग है, जितना पीछे उतना सस्ता है ना। 2022 में अपन लोगों ने यही किया था क्योंकि बहुत सारे टिकट खरीदने थे। उसके अलावा अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो विजिट कतर की वेबसाइट पर जाइए, आपको मजीद जो जानकारी है वो मिल जाएगी। और फिर अब हम बात कर लेते हैं सूक वाकिफ। सूक वाकिफ में खाने के साथ साथ अगर मीना नादर का लाइव शो मिल जाए तो मज़ा आ जाए। 23 मई को यानी कि परसों के दिन अब्दुल अजीज़ नासिर के थिएटर, अब्दुल अजीज़ नासिर थिएटर सूक वाकिफ में ज़बरदस्त ये मीना नादर का लाइव शो होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगेन विजिट कतर की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। एंड देन अबाउट दी तोरबा मार्केट ऑन द ब्रिज, ये कैसे हम भूल सकते हैं, द पर्ल आइलैंड कनत क्वार्टर में हो रहा है ये लाजवाब इवेंट। 16 मई से शुरू हो चुका है, 31 मई तक ये खास इवेंट जारी रहेगा, ये लाजवाब इवेंट जारी रहेगा। पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, फ्री फ्री ये चीजें हैं भाई, मैं तो कहता हूं ले लो। अब बात कर लेते हैं जल्दी से वेदर के बारे में। 34 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है, ह्यूमिडिटी एट 34%, हवा तो तेज नहीं, हालांकि कल हवा तेज थी बट अभी आज यार शीशा नहीं खोला मैंने ऐसा होता है ना कि एक तो वो आला है कि भाई घर के पास में कैसी हवाएं चल रही, एक है खुले में कैसी हवाएं चल रही हैं, तो हम जहां रहते हैं वहां पर ऐसा कोई मेरे को पेड़ हिलते हुए नहीं दिखे इतनी तेज के वो मैं आपको बताऊं कि अरे आज तो बहुत तेज़ हवा है, ऐसा मुझे दिखा नहीं। बाकी कल तो तेज़ हवा थी। हाँ टेम्परेचर के बारे में, दोपहर में ही अच्छा खासा टेम्परेचर हो जाता है और शाम के वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है, डिपेंडिंग के हवा कम चल रही है या ज़्यादा चल रही है। अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो अभी रात में ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है, 26-27 पर भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि अगर हम कल के बारे में बात करें, कल मौसम अच्छा था रात का, लेकिन दिन में ये जा रहा है तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस। आज मेरे टीवी भी दिखा रहा था 40 डिग्री सेल्सियस, मैं कह रहे भाई साहब क्या हो रहा है, ये अभी मई चल रहा है, जून जुलाई बाकी है, 10 डिग्री तो लेकर आता है भाई जून जुलाई, 50 तक जाएगा इस बार मे बी। तो ये सारी इवेंट्स और हमने वेदर के अपडेट के बारे में बात कर लिया, अब जरा हम आज के सवाल की तरफ आते हैं। आज का सवाल क्या है, FM 107 पे आज के सवाल के लिए तैयार हो जाइए।
2: यू

0: 107 पे वाइब टू, और इस यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी नहीं समझ में आएंगी, हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें वो समझ में नहीं आएंगी कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। जैसे कि एक मेरे साथ दो दिन पहले या तीन दिन पहले आई गेस ये चीज हुई थी, मुझे एक जगह ढूंढनी थी तो मैं लोकेशन पे पहुंच गया, और लोकेशन पे पहुंचने के बाद क्योंकि म्यूजिक चल रहा था तो वो लोकेशन पे उन्होंने मतलब स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर 31 ये सब बता दिया था। अब जब मैं बिल्डिंग नंबर 31 को सर्च करना था तो मुझे आंखों से देखना था ना, लेकिन म्यूजिक चल रहा था कार का, तो पता नहीं क्यों मैंने म्यूजिक धीमा कर दिया, उसके बाद आंखों से 31 ढूंढ रहा हूं बिल्डिंग नंबर 31। और ये लिटरली क्यों होता है ये हमारे साथ कि लोग कार के म्यूजिक का जो वॉल्यूम है वो कम कर देते हैं वाइल सर्चिंग फॉर एन एड्रेस। ये आपके साथ भी होता है? होता है तो क्यों होता है? ये कहां सी चीज, मतलब आपको जब आंखों से बिल्डिंग का नंबर या घर का नंबर ढूंढना है, कोई एड्रेस ढूंढना है, आप किसी घर के बाहर लगी प्लेट को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको म्यूजिक क्यों कम करना? कान से तो हम सुन ही रहे हैं, आंख से तो हम देख रहे हैं ना, तो ये क्यों होता है? मेरे साथ ये हुआ था और कई बार होता है। मेरे दोस्त अगर बोल रहे तो रुक जाओ यार, जगह ढूंढ रहे हैं, और कई बार तो म्यूजिक चल रहा होता है, रुक जाओ भाई म्यूजिक, अरे म्यूजिक क्यों बंद करा, अरे भाई रुक जाओ यार, अपने को देखना है, अरे देखना है, लेकिन कान का इस्तेमाल कर रहे थे ना अगर म्यूजिक सुन रहे तो। ये बड़ी एक अजीब अटपटी सिचुएशन है, इसीलिए मैंने कहा कि यूनिवर्स को कभी कभी समझ पाना, यूनिवर्स में हो रही चीजों को समझ पाना कई बार बहुत कठिन है। एड्रेस ढूंढते हुए म्यूजिक को स्लो करने का क्या मतलब है, आप बताओ। 666-22107 आप भी ये करते हैं हाँ या ना? एड्रेस ढूंढते हुए आप भी म्यूजिक या गाना या किसी को चुप कराते हैं हाँ या ना? बताइए 666-22107 पे, 666-22107। बाकी कॉल ना करें मेरे भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपका अगर आपको कॉल करनी है तो दूसरा नंबर है, वो है 443-443-77। ये वाला जो है 666-22107 ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, ठीक है। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और सवाल तो अपन कर चुके हैं। यूसुफ भाई का सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, हैप्पी थर्सडे इवनिंग। आपको भी नसीम कह रहे हैं मॉल ऑफ कतर में, क्या भाई आपने बस इतना लिखा मॉल ऑफ कतर में। फिर ये एक और मैसेज है भाई का, मोहम्मद कहते हैं क्योंकि दिमाग एक साथ दो जगह काम नहीं करता, हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ही तो नहीं है ये फोकस की प्रॉब्लम है क्या मतलब किस सोसाइटी में ये क्या हो रहा है, मतलब कहां से ये बातें आ गई हमें समझ नहीं आ रहा। और जब कभी भी कहीं पर भी जाओ शोर होता है तो एड्रेस नहीं समझ में आता है। क्या आंख और कान का कोई जुड़ाव, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है जो हमें बता सके कि ये क्यों होता है, कि हमें जब देखना होता है तो हमें म्यूजिक स्लो क्यों करना पड़ता है, ठीक है? कोई अगर है तो बताओ। वैसे ये बात भी सही है क्योंकि दिमाग एक साथ दो जगह काम नहीं करता, लेकिन हम मल्टीटास्क का गुणगान भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्क कर लेते हैं, अपने आप को कहते हैं अरे मैं मल्टीटास्क कर लेता हूं भाई साहब, मैं किचन के काम के साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर लेता हूं, अपने कमरे में किचन में दाल पक रही होती है मैं फिर अपने कमरे को साफ भी कर लेता हूं और सारे काम मैं कर लेता हूं। मोहम्मद साहब का वैसे ये कहना है कि एक साथ दो जगह काम नहीं कर पाता हमारा दिमाग, बट आपको क्या लगता है क्या रीजन है? कोई डॉक्टर है तो प्लीज जरूर बताओ। दिमाग को एक जगह पे रखना, ये जाहिर साहब ने कहा है, इसकी ये वजह है दिमाग को एक जगह पे रखना। अच्छा ये भी हो रहा है कि म्यूजिक प्ले हो रहा है उसमें भी मजा ले रहे हैं लेकिन एड्रेस भी ढूंढना है, म्यूजिक बंद करने का दिल नहीं है लेकिन आग काम नहीं कर पा रही क्या चकल्लस है यार ये भी लाइफ की अलग अलग टेंशन है हर इंसान की। ओके लेकिन जाहिर साहब मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ, मोहम्मद भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इंसान शायद एक जगह फोकस करने के लिए उसको ये सेंसर्स हैं ना हमारे आँख और कान, ये सेंसर्स हैं, तो अगर कान में कोई बात चल रही होगी तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे आँखों से, हो सकता है हमारा दो, ये भी लेकिन एक तरह से गलत है, मतलब ये कि सेंसर क्या दो जगह काम नहीं कर सकते अलग अलग? अगर जैसे हम खाना खा रहे हैं तो बात भी तो कर रहे होते हैं, तो दिमाग तो चल रहा है, दिमाग भी तो सेंसर है हमारा, दिमाग चल रहा है, किसी से बात कर रहे हैं वो बात समझ रहे हैं और खाना चबा भी रहे हैं, दोनों सेंसर काम कर रहे हैं। आंख और कान का कुछ रिलेशन है, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है कि नहीं है, कोई डॉक्टर सुन रहा है तो प्लीज इस पे जरा फोकस डालें कि ये क्यों होता है। और ये सिर्फ उनके साथ ही होगा जो कार चलाते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, और उनके साथ नहीं जो पीछे बैठे होते हैं। पीछे बैठने वाले का क्या है भाई, वो कहाँ दो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा हमारा ना मर्दों का एक काम नहीं होता भाई ड्राइविंग करते हुए, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। एक एक्सेलरेटर पे पैर है, ब्रेक के लिए तैयार है, एक हाथ स्टीयरिंग पे है, एक हाथ गियर पे है, उसके अलावा फिर हम इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक हाथ से स्टीयरिंग वाले में जिससे पकड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा ये भी फोकस है कि सामने कौन आ रहा है, पीछे भी हमें देखना है, दोनों कान में यानी कि साइड मिरर पे भी गौर करके रखना है, बगल वाला कैसे गाड़ी चला रहा है ये भी देखना, और आगे जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे चल रहा है वो कट के मेरी लाइन में तो नहीं आ जाएगा, इस पर भी फोकस। एक काम है, कितना मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन आंख और कान को एक साथ काम में लाने के लिए जब भी हमें मौका मिलता है एड्रेस ढूंढने के लिए, तब इंसान की गिग्गी निकल जाती यहीं पर। सोचे इतना सारा टास्क करे ले रहे हैं, आंख और कान का ही मसला है। आगे बढ़ते हैं। नसीम साहब ने कहा है कि ध्यान ना भटके, नसीम साहब कह रहे हैं कि ध्यान ना भटके, ये रीजन हो सकता है। ओके, आई एग्री, ध्यान ना भटके, लेकिन ऐसी तो कई चीजें होती हैं जिसमें ध्यान भटक जाता है हमारा, जैसे कि अगर मतलब भटक सकता है, ऐसी कई चीजें होती हैं जैसे कि हम अगर खाना खा रहे हैं, या फिर हम अगर बच्चे को देख रहे हैं और फिर हम किसी से बात भी कर रहे हैं। जैसे कल ही मेरे साथ एक सिचुएशन हुई जहां पर एक बच्चा जो है वो शैतानी कर रहा था, मैं उसको देख भी रहा था कि वो शैतानी में उसको चोट ना लग जाए, लेकिन हम बात भी कर रहे थे, तो ये दो सेंसर्स तो अपने काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ आंख और कान का हिसाब है जो गलत है, बाकी डॉक्टर साहब अगर सुन रहे तो कोई भी डॉक्टर होगा चलेगा। फिर ये मैसेज है किसका, आई एम वेटिंग, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये वेटिंग वाला कुछ और है मैसेज। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई का नाम है अबू तमीम। ओके, फिर ये मैसेज है खादिम साहब का, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई फजील, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। मल्टी टास्क को लेकर का, मल्टी टास्क हो जाते हैं इसलिए, मुझे लगता है बॉडी वाले जो काम है, जिसमें आपके सिर्फ बुद्धि और बॉडी का काम है, जिसमें आंखों का और कान का काम नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो मल्टीटास्क हो जाते हैं। तो बुद्धि और फिजिकल टास्क, इसमें हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, यही कह रहे हैं, यही कहने की कोशिश होगी मेरे ख्याल में। सैयद मनोवर इनका नाम है। ओके, मैं इस बात पे मोहर लगा सकता हूँ, है ना, ये वाली बात तो मुझे भी लगती है कि आप बुद्धि जिसमें लगाना है, थोड़ा बहुत काम आपको करना है और फिर फिजिकल काम आप कर सकते हैं, बट एड्रेस ढूंढते हुए आपको कार का वॉल्यूम, लोगों के शोर को कम करना पड़ता है, ये चीज़ है। बाकी कोई अगर डॉक्टर सुनकर बता दे कि भाई ये क्यों हो रहा है असली अच्छे लॉजिक के साथ, बाकी हम फोकस करते हैं ये वो अलान फलान, ये तो बात सही है, ठीक है, लेकिन बाकी सिचुएशन में हम काम कर ले रहे हैं, आंखों और कान का दोनों काम कर ले रहे हैं, दो अलग अलग, लेकिन सिर्फ कार की सिचुएशन में वहां पर हमें सिर्फ फोकस करना पड़ता है, आई डोंट नो व्हाई। वेल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जो नए लोग हैं उनके लिए एक बार सवाल जो है वो रिपीट कर देते हैं। सवाल क्या है आज का, सवाल ये है कि लोग अपने कार का म्यूजिक वॉल्यूम क्यों कम कर देते हैं वाइल सर्चिंग फॉर एन एड्रेस, एड्रेस को सर्च करते हुए लोग अपने कार की म्यूजिक का वॉल्यूम कम क्यों कर देते हैं जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी के घर को ढूंढने के लिए, नंबर प्लेट को या किसी प्लेट को पढ़ने के लिए जब हम फोकस लगाते हैं, तो हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है, रीजन क्या है, आपको क्या लगता है बताइए 666-22107 पे, 666-22107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हैप्पी वीकेंड, मैं हर बार हैप्पी वीकेंड बोल दूंगा याद आएगा तो, क्योंकि क्या पता आप चले जाएं और हम फिर हैप्पी वीकेंड ना बोल पाए और फिर हैप्पी ना गुजरा, तो एक छोटा सा ब्रेक। FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: घर में खाना अगर बच्चों

0: वेल टू पिच परफेक्ट शो
1: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
0: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
1: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
0: ऑन पिच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
0: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। हर इंसान के पीछे कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर Every Monday, 10 a.m. onwards, only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye.

107 पे वाइब ड्रू 5:41 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और सवाल पे आते हैं। सवाल आज का बड़ा सिंपल सा था कि ऐसा क्यों होता है। सिंपल तो नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। इसमें हमें जवाब के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी भाई। आप सोचिए कि एक इंसान जो सारे काम कर ले रहा, मल्टीटास्क कर ले रहा,

करने के लिए या फिर कार में बैठे किसी पर्ची में कुछ पढ़ने के लिए जब जरूरत पड़ती है तो उसकी आंख और उसकी कान काम करना ही बंद कर देता है। एड्रेस पढ़ने के लिए हम पता नहीं क्यों वॉल्यूम धीमा कर देते हैं किसी चीज को पढ़ रहे हो। तो घर में भी तो ये होता है कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हो और कोई शोर कर रहा हो, आपका ऐसा दिमाग एकदम उलझ जाता है कि अरे चीखो नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूं। तो ये होता है फोकस। मेरे ख्याल से एक तो रीजन ये हो सकता है फोकस, और उसके अलावा जो जरूरी और सही बता पाएगा वो डॉक्टर। वैसे आप भी ऐसा करते हैं, मुझे लग रहा था कि मैं ही करता हूं क्योंकि परसों ये मेरे साथ हुआ है भाई। और दोस्त वगैरह जब बैठे हों तो वो कहते हैं ये क्या है, तुमको म्यूजिक कम करने की जरूरत क्या है, तुमको बाहर सर्च करना है। हाँ ये बात सही है कि फोकस करना है, लेकिन कान कान का इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हो, अपने आँख का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक वजह है और मुझे लगा कि आज ये सवाल जरूर होना चाहिए, ये सवाल तो डाल देना ही चाहिए। आप बताएं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6622107। क्या आप भी किसी एड्रेस को ढूंढते हुए ये करते हैं कि आप अपने कार में जो वॉल्यूम है म्यूजिक का उसे स्लो कर देते हैं, या लोग अगर बात कर रहे हैं उनसे चुप होने को कहते हैं, या बच्चा अगर शोर कर रहा है तो क्या आप उन्हें चुप होने को कहते हैं? वेल, ये मैसेज है किस भाई का, नाम कहाँ चला गया। ओके, अबू तमीम कहते हैं सर जी मस्ट स्लो डाउन म्यूजिक और रेडियो बिकॉज इफ यू कांट फाइंडिंग एड्रेस मे बी समवन कॉल यू फ्रॉम आउटसाइड वेयर यू आर गोइंग, योर एड्रेस इज हियर, स्टॉप योर कार। हाँ ये भी हो सकता है। बाकी लिखा है सर योर लो डाउन म्यूजिक फॉर सर्चिंग एड्रेस, बट आई हर्ड वन पर्सन इन कार ही सेड लो द म्यूजिक बिकॉज कार विल यूज मोर पेट्रोल। ऐसा भी होता है क्या? अच्छा हमारे तरफ तो ये वाला चलता है ना कि अरे वो एसी मत चलाओ, एसी चलाओगे तो कार का पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मुझे पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ जितना रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि मेरी कार सर्दी में भी उतना ही पेट्रोल चूस रही है और गर्मी में भी एसी चला के उतना ही जा रहा है, तो मुझे नहीं फर्क लगता ऐसा। और मैंने कहीं पर देखा भी था, कोई कार के एक्सपर्ट थे वो खुद भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है, लेकिन इतना कम होता है कि आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लीटर में 10 किलोमीटर चला सकते हैं तो वो शायद 9.5 चलेगी एसी, अगर 9.5 भी नहीं 10.25 किलोमीटर जो है वो आपकी गाड़ी चल जाएगी जब आप एसी चला कर रखेंगे, बगैर एसी के 10 किलोमीटर। तो मैंने कहा हाँ यार ये भी इतना फ़र्क नहीं, हालांकि मैंने फिर भी एक तरह से और ज़्यादा ही बता दिया है कि पेट्रोल खाती होगी, बट मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आई डोंट नो यार, क्योंकि हमारे उधर तो हो रही है ऐसा। अभी कैब वगैरह बुक करो ना तो इसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है यार, मारम पिट्टी हो रही, कुट्टम कुट्टी हो ही चली जा रही है। ओ ड्राइवर कूट रहा है कस्टमर को, कस्टमर जो है बाहर निकल के उल्टा सीधा बोल रहा है, किसी को अद्धा पत्थर मिले जा रहा है, वो गाड़ी पे मारे दे रहा है, भाई ये सब चल रहा है। तो कभी वो जो कैब वाले हैं वो कैंसिल करे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब अगर आपने जो वाली बुक करी है वो मिनी है, मिनी में एसी नहीं आती है। फिर वो कस्टमर को बात भी करा दे रहा, कस्टमर केयर पे हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया कस्टमर ने। हाँ मैं यही सब देख रहा हूँ भाई। और तो मैं क्या लगता है रील में मैं क्या करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा। तो आपस में पूरी बात तो बताई नहीं मैंने तुमको, तो आपस में लड़े जा रहे हैं, बहस करे चले जा रहे हैं, फिर वो कस्टमर के पास टाइम बहुत है तो वो कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल कर दे रहा है, और जिससे कैब जिस एप्लीकेशन से कैब बुक करी, भैया ये क्या है मामला, ये देखो एसी नहीं चला रहे हैं, तो वो कह रहा नहीं नहीं साहब आपने अगर बुक करी है तो एसी इनको चलाना पड़ेगा, हमारी बात कराइए। फिर वो बात कर रहे हैं, फिर वो एसी चला भी रहे हैं और फिर चिड़चिड़ा रहे हैं और गुस्से में फिर कैब कैंसिल भी कर दे रहा ड्राइवर खुद ही से। अबू तमीम क्या बात छेड़ दी भाई आपने। ओके वैसे ये वाली बात जो है वो सही है कि कई बार ऐसा भी है कि आप किसी जगह पे पहुंचे एड्रेस के लिए, हो सकता है वो बंदा बाहर जो है आपको हाथ हिला रहा हो, कुछ बोलने के लिए कह रहा हो, आपने म्यूजिक जो है वो ऑन रखा है, वो चिल्ला रहा है कि अरे फजील इधर इधर आना, इधर इधर दाएं दाएं, अरे बाएं कहां जा, दाएं, चिल्लाए चले जा रहे, लेकिन फजील जो है वो पार्टी चलेगी गाना सुन रहे। तो ऐसे में फिर इसी जगह पर मुक्केबाजी भी हो जाती है, कुट्टम कुटाई भी हो जाती है। तो मित्रों बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें कि गाड़ी की आवाज मतलब कार की आवाज जो वॉल्यूम में है म्यूजिक में है उसकी आवाज कम होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज है भाई,

0: और सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक भाई ने कहा कॉल मी ओ आसिफ। आसिफ साहब बैलेंस नहीं था क्या? कॉल कर लियो, ठीक है मैं फ्री होंगे भाई कहीं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े भाई, बैलेंस खत्म हो गया भाई।
0: बैलेंस खत्म
1: कसम से, अभी जीरो जीरो दिखा रहा है। मैं बोला कंफ्यूज हो गया। हाँ। बोला ये क्या यार, 100 रियाल महीने का भरता हूँ फिर कैसा खत्म हो गया।
0: मैं सुबह से लेकर शाम तक सारे
1: पता है कि एफएम रेडियो में तू बहुत बात करता है।
0: हाँ सुबह से लेकर शाम तक एक ही नंबर पे कॉल। मुझे लग रहा है किसी दिन सिक्योरिटी वाला तुम्हें कॉल करके, भैया एक ही नंबर पे कहाँ कॉल कर रहते हो तुम लैंडलाइन पे भाई।
1: मैं भी बोला कि इतना बैलेंस आज तक कभी कतर में मेरा बैलेंस नहीं खत्म हुआ।
0: हाँ।
1: अभी 2 महीने से मेरा बैलेंस बहुत जल्दी खत्म हो रहा, तो मैंने चेक किया कॉल लिस्ट, तो मालूम पड़ा एफएम रेडियो पे तू बहुत कॉल करता है खाली पुकड़ का।
0: तो वो वही बोलेंगे तुम्हें कि भाई ऐसा है अब सिक्योरिटी लेवल है, एक ही जगह इतना कॉल करके क्या बात कर रहा है ये आदमी।
1: हाँ मेरे को लगता है अभी बोलेंगे लोग भाई ये ज्यादा पका रहा है, इसको चलवाओ अभी क्या मालिक का नाम,
0: क्या इस आदमी का बैलेंस खत्म करो वरना ये रुकता नहीं है।
1: तो क्या भाई खत्म क्या करो, कल देखा था मैं साफ बैलेंस आज खत्म हो गया। मुझे लगता है ये जरूर किसी ने कांड किया मेरे साथ में कुछ ना कुछ।
0: और सुनाइए आसिफ भाई सब ठीक ठाक बढ़िया?
1: बिल्कुल भाई बढ़िया एकदम एक नंबर।
0: ये बताइए आप जब एड्रेस ढूंढ रहे थे तो आपने क्यों कम कर लिया म्यूजिक वॉल्यूम, क्यों कम कर लिया?
1: बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मेरी गाड़ी में वॉल्यूम कम नहीं होता भाई।
0: अच्छा एड्रेस ढूंढते हुए आप नहीं कम करते?
1: बिल्कुल नहीं भाई।
0: ओ, तो यानी कि ये बीमारी है फिर अगर जो कम कर रहे तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों?
1: नहीं नहीं अभी कैसा एक तरफ लोकेशन ऑन है मोबाइल में, मोबाइल में लोकेशन ऑन है ना, आंखों में तो लोकेशन ऑन नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं वो वाली बात नहीं हो रही है, जो आपके मैप में लगा है कि मैप के लोकेशन पे पहुंच गए फिर वहां रुक गए वो वाला नहीं, रुकने के बाद जो घरों का एड्रेस होता है
1: वो तो पहली फुर्सत में बंद भाई, पहली फुर्सत में बंद।
0: अरे आप ऐसी जगह पे आ गए ना जहाँ पर इंटरनेट भी मिल रहा है आपको, कई कई जगह होता है ना जहाँ पर पनवाड़ी से पूछते हैं अरे भैया वो शर्मा जी का घर कहाँ पड़ेगा, तो वो वाला जो हिसाब है वो अलग है कि भैया दाएं से बाएं ले जाओ, बाएं से दाएं चले जाओ फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो उस वाली सिचुएशन में आपको वॉल्यूम जो है ना म्यूजिक की कम करनी पड़ती है।
1: नहीं भाई मैं नहीं करता हूँ।
0: बड़े आदमी होंगे भाई आप, की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे
1: भाई। बाकी ये तो मेरे ख्याल से तो मेरा मुद्दा नहीं था, ये तो मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं,
0: कभी ऐसा नहीं।
1: मैं टाइम पास करने के लिए आ गया हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए आ गया मैं,
0: हाजिरी लगाने के लिए। ओके भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू मेरा भाई। ओके तो ये थे आसिफ भाई, और आसिफ भाई ये कहना पड़ रहा है आसिफ भाई को कि कॉल कर लो, अरे यार ऐसा क्या हो गया। चलो तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो हम कॉल करेंगे अमिता को कि क्या कुछ चल रहा है, अमिता कहाँ मजे चल रहे हैं, ठीक है बात करेंगे उनसे भी एफ एम 107 पे कि माहौल क्या है बुक फेयर का। सुनते रहे एफ एम 107, एक छोटा सा ब्रेक और अभी सर्वर भाई की आवाज में सुनिए ये MOI अवेयरनेस।
2: दोस्तों रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ऐ अल्लाह, हमारी कमजोरियां और ऐब छुपा दे। अल्लाहुम्मा स्तर औरातिना। सामिन किराम, ये ऐब जाहिरी भी होते हैं, बातिनी भी, गलतियां, लग्जिशें, कमजोरियां। या अल्लाह, हम सबको तेरे पर्दे की जरूरत है। वआमिर रवआतिना, हमारे खौफ दूर कर दे, हमें अमन दे। वैसे कितने खौफ इंसान को घेरते हैं ना, मुस्तकबिल का खौफ है, बीमारी का खौफ, रिज़्क का खौफ, औलाद का खौफ। ना हम अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं, आमिर रवआतिना, हमारे खौफ दूर कर दे, हमें अमन दे। वहफ़ज़ मिन बैन अयदीना व मिन खल्फिना, आगे से भी हिफाजत फरमा, पीछे से भी, हर तरफ से हिफाजत। आगे और पीछे यानी जाहिर खतरात से जो हमें सामने दिखते हैं, इसी तरह कहते हैं ना, पीठ पीछे बहुत तरह की हरकतें लोग करते हैं, तो वो पोशीदा खतरों से भी हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, उसकी हिफाजत तलब कर रहे हैं, मालूम ना मालूम तमाम तर चीजों से। वान अयमानिना वान शमाइलिना, दाएं से भी और बाएं से भी, चूंकि अल्लाह की हिफाजत हर सिमत से हम तलब कर रहे हैं और ये बंदे की मुकम्मल सुपुर्दगी है। इसी तरह नऊज़ु बिअज़मतिका नुग़तालु मिन तहतिना, तेरी अजमत की पनाह चाहते हैं कि अचानक हलाकत में ना पड़ जाएं। नीचे से मक्तूल होना, इसका मतलब है कि अचानक हलाकत में पड़ जाना, यानी गैर मुतवक्के मुसीबत, जमीनी आफात, अचानक तबाही। अल्लाह हमें महफूज रखे। आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह, अपने ज़िक्र, शुक्र और तेरी इबादत को सही तरीके से अदा करने में हमारी मदद फरमा। क्योंकि जिक्र भी अल्लाह की तौफीक से ही नसीब होता है ना, शुक्र भी, नमाज भी, इबादत भी। इसीलिए दुआ भी हम इस तरह मांगे कि तमाम तर तौफीक तो अल्लाह तेरी ही तरफ से है। उर्ज़ुक़ना हुस्नल खातिमा, हमें हुस्न खातिमा, अच्छा खातिमा नसीब फरमा। क्योंकि हम आखिरी लम्हे को पूरी जिंदगी का नतीजा कह सकते हैं, इस वजह से आखिरी लम्हे के लिए बंदा गिड़गड़ा कर ये दुआ करे, अल्लाह ईमान पर मौत दे, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वल जन्नत बगैर हिसाब वला साबिकत अज़ाब, क़यामत के दिन हमें ऐसी जन्नत दे जहां बगैर हिसाब और बगैर अज़ाब दाखिला हो। ये मोमिन की बड़ी आरज़ू है कि अल्लाह आसान हिसाब दे, बल्कि बगैर हिसाब जन्नत नसीब फरमाए और जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमा। इसी तरह से बुलंद दर्जात ही नहीं बल्कि बुलंद मकाम, ताकि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत भी नसीब हो। बस हमने कराम, इस दुआ में हमने अल्लाह से मुकम्मल हिफाजत तलब की, साथ साथ हमारी दुआ में ये बात भी आ गई कि भाई इबादत भी तौफीक से होती है। मजीद हमने हुस्न खातिमा भी मांगा, इसी तरह जन्नत के आला दर्जात भी मांगे। इन्हीं पैगामात के साथ प्रोग्राम आज की दुआ के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तरह अशरफ़ुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: टाइम टाइम चेक FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:05 सुंदर FM 107 दिल से देसी।

आपके साथ भी होता है कि जब आप कहीं यू नो एड्रेस ढूंढते हैं किसी जगह पे जाके, तो आपको कार का म्यूजिक जो है वो वॉल्यूम कम करना पड़ता है उसका, या फिर ये कोई डिफेक्ट है कि मैं कर रहा हूँ और मेरे साथ दो चार लोगों ने हामी भर लिया, वो भी कोई डिफेक्टिव पीसेस तो नहीं है हमारे अंदर क्योंकि यू नेवर नो कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, एक दो भाई ने कहा कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा, तो मुझे और डर लग गया कहीं ऐसा तो नहीं कोई डिफेक्ट निकल आया हो कि भैया ये पीस तो सही नहीं है, अम्मा भी कह दे वापिस कर लूं तो आप बताइए। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये मैसेज है तबस्सुम का, कहती है अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन बाद आपका शो सुनने का मौका मिल रहा है। अरे आज बहुत दिन बाद वीकेंड पे निकली हैं आप, इसका मतलब मैं ही वरना मैं तो रोज़ आ रहा हूँ शाम को 5 से 7, आप इस वक्त निकल नहीं रही थी, बस ये बात है। बस इतना जानना चाह रही थी कि काकी की क्या हाल चाल है। पता नहीं उनका गला वगैरह किसी ने पकड़ लिया था शायद, वो कब आ रही हैं गाँव से वापस, लंबे वक्त के लिए गई हैं। कुछ लोग गायब होते हैं फिर उनका पता नहीं चलता कहाँ गए, फिर बाद में पता चलता है अरे वो बीमार थी, हैं घुटनों में टखनों में जो है वो जोड़ों में दर्द है, लिगामेंट ये हो गया था वो हो गया था, बाद में खबरें आती हैं तुम आईसीयू तक पहुंच गई थी, बताया नहीं तुमने इनका वही मामला, मेरे को लग रहा आई डोंट नो बाकी इस्तकबाल आपका। और ये मैसेज है पठान साहब का, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई कैसे हो आप, मैं बहुत अच्छा हूँ आप कैसे हैं आप सुनाइए। फिर ये मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, भाई ये बीमारी नहीं है ये नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है कि वॉल्यूम कम करना है, ऊपर से ये सिस्टम डालकर भेजा गया था कि देखो जब भी तुम एड्रेस ढूंढना तो कान का इस्तेमाल अगर करोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, कान के इस्तेमाल से दिखना कैसे बंद हो जाता है यार ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर एक और मैसेज है सलाम का वालेकुम, अच्छा वो पिछला वाला नाम तो देख लूँ फिर बाद में कहते भाई मेरा नाम नहीं लिया, शेख साहब, ओहो शेख साहब बहुत शुक्रिया। फिर ये सलाम का है वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई मेरे साथ हर बार यही होता है रेडियो धीमा करना पड़ता है, हाँ ये अच्छी बात धीमा मुझे लगा ये ना लिख दे बंद करना पड़ता है, धीमा सही है बंद नहीं होना चाहिए। वैसे कई बार दोस्तों का भी मुंह बंद कराना पड़ता है कि अरे रुक जाओ चीख के बताना पड़ता है। ये एक और है, इनका नाम है जावेद ने कहा है, अरे वाह वाह इतनी नॉलेज कहाँ से, अच्छा इन्होंने लिखी इतनी, भाई ये मेरे साथ हुआ था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सवाल कर लें, जावेद भाई लिखते हैं अरे इतनी नॉलेज कैसे आ गई, ये नॉलेज नहीं है ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ना वो मेरी बचपन से तो नहीं थी अब तगड़ी हो गई है, काम ऐसा करो कि तगड़ी हो जाए, काम कर करके सीख लिया है तो ये सिचुएशन जो है वो चाहो ना चाहो पैदा हो जाती है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए एक बार सवाल रिपीट कर देता है, सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं, किसी ने एड्रेस बोला है कि बिल्डिंग नंबर ये स्ट्रीट नंबर ये, उस बोर्ड को पढ़ने से पहले लोकेशन पर पहुँचने के बाद बोर्ड को पढ़ने से पहले हम या आम तौर पर 90% लोग ये क्यों करते हैं कि उनको वॉल्यूम म्यूजिक का कम करना पड़ता है, क्या ये आप भी करते हैं हाँ या ना, ये आप बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। मुझे डर था कि ये डिफेक्ट मेरे अंदर तो नहीं है मैंने कहा कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर समझेगा ही नहीं कि ये वाली बीमारी तो आज तक कोई लेकर नहीं आया, जितने भी पेशेंट आए सबने कहा है कि डॉक्टर साहब वो जो है बीमारी हो गई है छींक बहुत आ रही है, अच्छा तुमको साइनस हो गया है, डॉक्टर साहब बुखार है अच्छा कोई बात नहीं वो सीज़न बदल रहा है, तो डॉक्टर बताता है आपको कि अरे वो पैर में बहुत दर्द हो रहा है वो चेक करता लिगामेंट टूटा ठीक है, अब डॉक्टर के पास ये वाली बीमारी लेकर जाओ कि डॉक्टर साहब जब भी मैं एड्रेस ढूंढता हूँ तो मुझे वॉल्यूम धीमा करना पड़ता है अब पता चला डॉक्टर ये सुनकर गुस्से में एक खींच के लगा दे जो सुनाई दे रहा वो भी ना सुनाई देगा तो डॉक्टर भी गुस्से में यार कैसी बीमारी लेकर आ रहे हो ये तो तुम्हारे हेल्थ कार्ड में कवर भी नहीं इंश्योरेंस भी नहीं है इसका तुम्हारा तो मैंने सोची कि यही कर लेता हूँ कि यहाँ लोगों से पूछ लेता हूँ, मैं मेरी बुद्धि थी कि मैं कहा भाई यहाँ पर पूछ लें ये मेरे पास माइक है माइक के जरिए पता लगा सकते हैं कि ये डिफेक्ट मेरे अंदर है कि बाकियों के अंदर भी है, अगर बाकियों के अंदर है तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा ना, बस ये सिस्टम था गुड इवनिंग भाई आई डू मैं देखा ये चलो अच्छी बात है जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये वो करते हैं उतनी ठंडक मुझे मिल रही है डॉक्टर से

0: अफा पड़ता अच्छा थोड़ी लगता है। राशिद साहब बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तबस्सुम ने कहा है शाम को ट्यूशन रहता है इसलिए नहीं सुन पाती थी, आज से वेकेशन मोड ऑन है। ओ क्या बात है, ट्यूशन आप पढ़ाती थी या आप पढ़ना चाहती थी, मतलब ये भी फर्क करता है ना। तो ये अगर इतनी बता दी बात तो ये भी बता ही दीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे आपके सवाल जो है, सॉरी सवाल नहीं, हमारे सवाल के आपके जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, अजान का वक्त, दिल से देसी
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: क्या बात है, ये गाना अरिजीत सिंह तुलसी कुमार की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे लगता है कि 99.99% लोगों का ये फेवरेट होगा, उनका फेवरेट नहीं होगा जिनको बात बात पे एड्रेस ढूंढना पड़ता होगा। तो ये कुछ दूर चले ही थे कि घर के सामने पहुंच गए और एड्रेस ढूंढना पड़ा, तो उनको पसंद ही नहीं आया क्योंकि गाना सुन नहीं पाए थे। खैर, अभी एक मैसेज आ गया, उसके बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि ये बीमारी नहीं है कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं एड्रेस ढूंढने के लिए तो आपको म्यूज़िक, कार का जो म्यूज़िक है उसे धीमा करना पड़ता है, इसलिए मुझे अब जाके सुकून मिला है। तबस्सुम का कहना है हम लोग भी यही करते हैं कि कोई म्यूज़िक अगर चल रहा हो, रेडियो चल रहा हो, तो उसे धीमा कर देते हैं जब पता पूछना हो या फिर आप कहीं एड्रेस ढूंढ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फतिल भाई। थैंक यू। मैं वही सोचूं, डॉक्टर को मैं बताऊं भी तो क्या बताऊं कि डॉक्टर एक डिफेक्ट है क्या, म्यूजिक धीमा कर देता हूं, वो मेरे कान का म्यूजिक तेज कर देंगे सटा। तो 6:29 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब वक्त है कि अपन जो है वो एक बार कॉल कर लें अमिता को कि क्या कुछ चल रहा है, और फिर हम बात करेंगे व्हाट इफ। व्हाट इफ में आज हम बात करेंगे कि अगर इंसान जो है पानी के अंदर जिंदगी बिताता तो कैसा होता, ये भी एक अलग सिनेरियो होता। नहीं, पानी के अंदर अगर हमें रहना पड़ता तो क्या होता, और हो सकता है कि पानी के अंदर हमें रहना पड़े जिस तेजी से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। देख रहा है कहां से कहां मुद्दा जा रहा है। जब अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी तो कई ऐसे देश है जो कोस्ट लाइन के हैं, मुंबई, लंदन, ऐसे ऐसे शहर जो कोस्ट लाइन के करीब में है वो डूब जाएंगे और कई मीटर पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही, हो सकता है कि ये सब शुरू भी होना, जल्दी शुरू होना हो जाए कि लोगों को जो है पानी के अंदर रहना सिखाया जाए, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बनाना, पानी के अंदर जीना कैसे है, और खेती कैसे करनी है। खेती ज़्यादा हो गया लेकिन हो सकता है, यू नेवर नो। ऐसी आपको पता था आज से 100 साल पहले लोगों को क्या मालूम था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज़ होगी, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है और पनवाड़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हैं एप्लीकेशन के थ्रू हम पहुँचे चले जा रहे हैं। क्या पता था इंटरनेट आएगा, क्या पता था कि एक कोई चीज़ सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, ये सब नहीं पता था, तो हो गया, यू नेवर नो। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एकदम चंद सेकंड वाला है, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मैंने तो कॉल करी थी, क्या माहौल है बुक फेयर का वो बताने का काम है अमिता का। और अमिता ने इन दिनों, इन पांचों दिनों बहुत ही तरीके से आपको बुक फेयर की एक एक छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी डिटेल दी है कि इंग्लिश की किताबें आपको अगर ख़रीदनी है तो कहाँ मिलेगी, क्रिएटिव किताबें ख़रीदनी तो कहाँ जानना है। लेबनान वाले से भी हमने कल बात करी है, उसके अलावा आज भी उन्होंने सब कुछ बताया है। तो डिटेल में अमिता ने हमें सब कुछ बताया है, और जब भी अगर आपकी मुलाकात हो अमिता से तो एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, चलना आसान नहीं होता है। फिलहाल जुड़ गई हैं और दूसरी कॉल पर उठा लिया उन्होंने। जी हेलो अमिता, क्या हाल चाल है, क्या माहौल है, बताइए जरा।
1: अरे बहुत ही मजे के हाल चाल है। एक्चुअली अभी हम यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, इसलिए आपसे एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अलग अलग कहते हैं ना रीजन के, कल्चर्स के, कंट्रीज के लोग बाग हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत शेयर कर रहे थे। यहाँ मैं बूथ में आई हूँ, है तो पूरा अरबिक में लिखा, लेकिन इट सीम्स लाइक एक कोने में कुछ है, ये बच्चों के लिए बूथ है, वेयर इट इज रिटन कि आप यहाँ पर क्रिएट करें, रजिस्टर करें और लॉन्च करें।
0: अच्छा,
1: तो इट सीम्स लाइक कि कुछ क्राफ्ट की चीजें हैं बच्चों को दी जा रही हैं, एंड मतलब उनको पूरा जोड़ के कुछ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और वो क्रिएट करने के बाद आई थिंक दे आर गिफ्टिंग देम फॉर फ्री। तो यहाँ पर ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक चीज देखी है, बड़ी शानदार है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं चिल्ड्रन जोन गई थी तो वहां पर मुझे छोटे छोटे एकदम 9-10 साल के बच्चे राइटर एज एन ऑथर मिले थे, जो अपनी छोटी छोटी बुक्स लेकर आए थे। एंड यू नो फजील, सबसे प्यारी चीज की पेरेंट्स से पूछा कि ये बुक आपने लिखी है, हालांकि अंग्रेजी में पूछा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं लिखी नहीं, हमने बनाई है,
0: किताब बनाई है,
1: ड्राइंग किताब बनाई है, एज इन कि हर पन्ने में जो है ना वो उन्होंने खुद ड्रॉ किए हैं, एंड फिर उसको अच्छे से यू नो पिक्चर वगैरह खींच के उसको एकदम प्रिंट किया गया है। तो वो बच्चे ऐसी ड्रॉइंग के साथ उनकी बुक्स है। तो वही मैं चीजें देख रही हूँ कि इस बुक फेयर में मतलब किताबों से जब हम बात करते हैं, जब भी हम किताबों का जिक्र होता है तो हमें पता होता है कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई क्या है, कॉलेज है, स्कूल है उसके लिए, या जो लोग शौकीन है उनके लिए, पर यहाँ जब आप आते हो ना तो दे आर नॉट निग्लेक्टिंग किड्स एट ऑल, लाइक सिर्फ उनकी अकेडमिक बुक्स नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि जैसे हमारे टाइम में अगर वोकेशनल एजुकेशन होती तो हमारी जिंदगी बहुत डिफरेंट होती। तो ये वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत ऐसे छोटे छोटे बोध से हो रही है, जहाँ पर उनके इंटरेस्ट को ना बड़े प्यार से आगे बढ़ाया जा रहा है। सो आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड, एंड मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने घर के सारे बच्चों को ना बोलने वाली हूँ कि भाई इस वीकेंड आ जाओ शांति से थोड़ा एंजॉय करो। यस
0: बिल्कुल, और एंजॉय करना भी चाहिए। बुक फेयर आज और कल के बाद परसों और रहेगा, फिर ये बुक फेयर रुखसती ले लेगा। तो रुखसती से पहले आपका अपना फ़र्ज बनता है दोस्तों, जब रुखसती हो रही हो उससे पहले आपको गिफ्ट देना है, और आप अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये खुद को गिफ्ट देना है कि आप बुक फेयर में जाएं। ये 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर है जो कि DECC में हो रहा है, दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, कुछ देर बाद हम फिर, थोड़ी सी देर बाद हम एक बार जुड़ेंगे, और फिर कंक्लूड करिएगा आज, क्योंकि इसके बाद तो ये हमें मौका मिलेगा नहीं कि हम यू नो इसके बारे में तफसील से बता पाएं बुक फेयर के बारे में।
1: एग्जैक्टली
0: अगर समंदर के अंदर हमें रहना पड़ता, अंडर वाटर अगर हमें रहना पड़ता, तो क्या हमारी जिंदगी आसान होती, क्या नॉर्मल होता, कुछ हमारे भी गलफड़े बन जाते भाई। इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल से देसी

अच्छे कॉम्पोजिशन के साथ ये गाना आपने सुना, जेजबी और हार्डकोर की आवाज में। हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। 6:38 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब वक्त है कि हम व्हाट इफ में बात कर लें कि क्या होता अगर हमें इंसानों को अंडर वाटर जीना पड़ता तो। ये मुमकिन भी है लेकिन आने वाले वक्त में काफ़ी लंबा वक्त है, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, और हमारा काम है कि हम ऐसी फ्लाइट बुक करें जिसमें 30% 40% 50% कम कार्बन एमिशन हो। ठीक है, डन हो गया। सबसे पहले जो चीज़ है वो सिटीज जो है वो समंदर के अंदर बनती, ह्यूमंस वाटर अंडर वाटर ग्लास सिटीज और डोम्स में रहते, क्योंकि आम तौर पे अगर देखें हम इंसानों के गलफड़े तो है नहीं कि पानी चूस के हम जो है ऑक्सीजन उसके अंदर से निकाल लेंगे, तो ये मुमकिन ना हो पाता। ऐसे में हमें ग्लासेस वाले घर बनाने पड़ते, तो वो वाली कहावत सही हो जाती कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते, ये वाली कहावत सही हो जाती। तो शीशे के घर जो है हमारे होते हैं, हम पत्थर मार भी ना पड़ते, पानी के अंदर कहाँ से पत्थर पड़ते। खैर, तो शीशे के जो ग्लास हैं उनके अंदर रहना पड़ता, या कोई ऐसी जगह होती जो वाटरप्रूफ होती जिसके अंदर हम सांस ले पाते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। रोड्स की जगह अंडर वाटर टनल्स और सबमरीन्स जो हैं वो यूज़ होते। ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाती। अंडर वाटर लाइफ कम्प्लीटली ऑक्सीजन सिस्टम पर डिपेंड करती। अगर ऑक्सीजन सप्लाई फेल हो जाए तो पूरा जो लोगों का घर है या सिटी है, शहर या कंट्री, डेंजर में आ सकती थी। ये भी एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए कई मुल्क जो हैं वो फाइट कर रहे होते अगर समंदर के अंदर सब कुछ चल रहा होता। यही बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट जरूर करती, क्योंकि पानी के अंदर रहना इंसानों के बस की तो बात है नहीं, लेकिन अगर हम पानी के अंदर रहना शुरू कर दें। एक जगह मैंने वीडियो में भी देखा था, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जितना ज़्यादा वक्त पानी के अंदर रहेंगे आपकी कैपेबिलिटी मजबूत होती जाती है, आप बेहतर बनते जाते हैं। जैसे कतर में एक ज़माने में पर्ल ढूंढने के लिए कैप्टन और जो डाइवर्स होते थे वो बहुत अंदर तक जाते थे और महीनों महीनों तक समंदर में रहते थे। तेज़ तूफान है ना, पानी का सामना, खारे पानी में रहना, डाइविंग करना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उनकी ज़्यादा इज्जत होती थी जो बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर डाइव मार सकते थे। तो उनके जो स्किन थी उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलने लगा था जैसे जैसे वो बहुत देर तक पानी के अंदर रहते थे। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ऐसा है जो 30 सेकंड के लिए पानी के अंदर रहता है, अगर उसे बार बार डाइविंग कराई जाए तो वो 30 सेकंड से 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट भी होने लग गया था। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप ये करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है, आपके अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो कैपेबल होने लग जाते हैं धीरे धीरे जब आप डाइव करते हैं। तो ये क्वालिटी जो कतर के लोग थे जब डाइविंग करते थे पर्ल के लिए, तो ये क्वालिटी आने लग गई थी। लेकिन उनकी स्किन में थोड़े थोड़े चेंजेस भी आने लग गए, तो ये बहुत बहुत छोटे से वक्त के लिए है ना, कई ड्राई स्किन हो जाए या फिर स्किन थोड़ी सी कटने लगती थी है ना, तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो शुरू होने लग गई थी। तो चेंजेस जो हैं वो ज़रूर आते, लेकिन बहुत लंबा वक्त लगता है इसमें। इसमें कम से कम 20 से 30 जनरेशन भी लग सकती हैं अगर हम पानी के अंदर रहना शुरू कर दे तो। वैसे शुरू करना ही क्यों है, या अगर हमें इंसान को पानी के अंदर रहना पड़े मजबूरी में तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर वो फेल हो जाते ऐसे में सिटी जो है वो डेंजर में आ जाती है, और सारी जो खुदा ना खास्ता अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती तो सारी लाशें जो है वो ऊपर आ जाती। ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट जरूर करती, टाइम के साथ ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसानों की जो बॉडी है वो अंडर वाटर सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हो सकती थी, जैसे स्ट्रॉन्गर लंग्स या प्रेशर रेजिस्टेंट बॉडीज। जितने अंदर आप पानी के जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर। ये ऐसा है जैसे आपके ऊपर 10 किलो का 20 किलो का धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कोई डंबल रख दिया जाए, आप दब के जो है आपकी हड्डियां वगैरह टूटने लग जाएंगी। जैसे ही आप गहरे पानी में जाते हैं, जितना ज़्यादा गहरे पानी में जाएंगे आपके कान से खून निकलना, आँखों पे दबाव पड़ना, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, इस तरह की सिचुएशन

0: थी जब आप गहराई में रहते, लेकिन हम इंसान तो अकल वाले ना, तो हम ऊपर ऊपर की तरफ रहते थोड़ा। सी क्रिएचर्स डेली लाइफ का पार्ट हमारे लिए बन जाते। वेल्स, डॉल्फिन्स, शार्क ह्यूमंस के आसपास रेगुलरली दिखते। कुछ एनिमल्स ह्यूमंस के हेल्पर्स या कुछ जो है वो खतरनाक भी बन सकते थे, जैसे कि शार्क। शार्क आपको देख के ही, अगर आप ऐसा होता है सब सीन के आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको टाइम पे बाहर निकलना होगा, आपको देखना होगा घर से या वो शीशे वाले घर से बाहर निकलते हुए कि शार्क आसपास है कि नहीं, एंटीना लगा हुआ है। और अगर आसपास होती और आपको सामने देख ली, शार्क कहेगी सलाम अलैकुम हबीबी, आई वॉन्ट बर्गर, वन बर्गर, विल यू बी माई बर्गर, आई एम लुकिंग फॉर जूसी वन, है ना, अरबी वाले में कहती सलाम अलैकुम। उसके अलावा सनलाइट जो इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, सनलाइट बहुत कम मिलती, डीप अंडर वाटर डार्कनेस ज़्यादा होती है, इसलिए ह्यूमंस आर्टिफिशियल लाइट्स और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते। अगर ये टेक्नोलॉजी हमने पानी में डूबने से पहले या पानी में जाने से पहले बना ली तो फूड सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट होता, हम फिर वेज तो खाना बिल्कुल नहीं खा रहे होते। ये जो नॉन वेज वाले लोग हैं वो तो खुश हो जाते, लेकिन जो वेज वाले खाने हैं, वेज वाले जो है वो हो जाता कि अरे यार वेज खाना पड़ेगा, कुछ तो वो वाले भी हो गए थे ना, मैं आई एम अ वीगन, अरे फिर वहाँ जाके मजबूरी में वीगन हो जाते, सिर्फ दूध वाली चीज़ ना कर पाते। लेकिन बाकी जो है आपको नॉनवेज ही खाना पड़ेगा या खाना पड़ता। तो फिशिंग, सी प्लांट्स या अंडर वाटर फार्मिंग में फूड सोर्स जो है वो बनते, ओशंस ह्यूमंस के फार्म्स बन जाते। पता नहीं ये मुमकिन होता कि नहीं कि हम अंडर वाटर फार्मिंग भी शायद कर पाते या नहीं। डेंजरस सी लाइफ कॉन्स्टेंट थ्रेट होती, स्टॉर्म्स के साथ साथ जायंट सी प्रेडेटर्स यानी कि जो हमला करने वाले जानवर हैं वो भी होते, और अंडर वाटर प्रेशर भी डेली डेंजरस होता। उसके अलावा ट्रेवल का सिस्टम टोटली चेंज हो जाता, कार और प्लेन्स की जगह सबमरीन्स और अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉमन होते। लेकिन एक सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या होता, वो ये कि यहाँ पर ना आप म्यूजिक कितना भी प्ले कर लें, म्यूजिक चलता ही नहीं खैर, और आपको एड्रेस ढूंढने का झंझट भी ना होता। क्योंकि फिर अंदर जब रहते तो सब एक ही शहर के अंदर रह रहे होते हैं, सबका पता होता कौन से मोहल्ले में कौन कहाँ रह रहा है। अर्थ का पॉल्यूशन यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसका पॉल्यूशन और सीरियस इश्यूज जो है ये भी चीज़ें बन रही होती। अगर ह्यूमंस अंडर वाटर रहते तो ओशन पॉल्यूशन डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता, प्लास्टिक और वेस्ट ह्यूज प्रॉब्लम बन जाते, ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन प्लास्टिक फैक्ट्री कहाँ होती प्लास्टिक के लिए, सर्वाइवल इशू होता मुझे लगता है। ह्यूमन नेचर के और क्लोज हो जाते है ना, वो पानी को, समंदर को, जानवरों को और ज़्यादा समझ रहे होते हैं, इंसान ना और क्लोजली समझ रहे होते हैं। अंडर वाटर लिविंग की वजह से ह्यूमंस इंसान ओशंस और मरीन लाइफ को ज़्यादा अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट करने लगते। बट ये होना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसके बारे में मैंने बात करी, बट ये सिचुएशन कभी होगी नहीं, कितना भी पानी पिघल जाए अपन पहाड़ों भी नहीं जाकर बस जाएंगे यार। पानी नहीं, कितना भी बर्फ जो है वो पिघल जाए अपन पानी के अंदर तो नहीं रह पाएंगे। उससे अच्छा ये है कि भैया ऐसा है इंडोनेशिया दे दो, मैं वो वाला जहर ले लूंगा जिसको खाने के बाद नींद आए फिर उसके बाद इंसान उठे ना पानी के अंदर। तो फिलहाल 6:45 और अब वक्त है कि हम जरा बात कर लें अमिता से और देखते हैं कि क्या कुछ आखिरी उनके नज़र में पड़ा है अभी तक, और फिर हम कंक्लूड करते हैं। ये बुक फेयर 35वां बुक फेयर है जिसे अमिता कवर कर रही थी इस हफ्ते। जी अमिता, क्या हाल चाल है और क्या कुछ माहौल है?
1: हाय हाय हाय फजील, मैं अभी एक्चुअली मेरे साथ एक नेपाल से फैमिली है और जस्ट उनसे मेरी मुलाकात हुई चलते चलते, तो उन्होंने अभी जस्ट बुक फेयर एंटर किया है और उनका कहना है कि भाई हम जैसे ही आए हमको बहुत कुछ देखने को मिला एंड उनका बेटा है, देयर इज लाइक अ वेरी फेमस थिंग कैरेक्टर एटॉमिक, ठीक है, तो वो किताब ढूंढ रहे थे एंड देन ही गॉट द बुक। और अभी मेरे साथ बड़ी प्रीति सी बहुत ही प्यारी सी लड़की है, ठीक है, एंड माशाल्लाह एक्चुअली, और ये अपना नाम खुद ऑन एयर बताएंगी और आप इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है, ठीक है?
0: ओके ओके ओके।
2: हेलो, नमस्ते,
0: वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम अश्मिता है।
0: अश्मिता
2: जी,
0: ओके अश्मिता, तो सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी चीज आपके लिए अश्मिता के लिए क्या रही इस बुक फेयर में?
2: मुझे इस बुक फेयर में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मैं जैसे एंटर कर रही थी

0: मुझे मतलब एकदम बहुत फैबुलस लगा, बहुत अमेजिंग लगा ये जगह. और मैं एंटर करते ही मैंने अपना यू नो फेवरेट बुक्स वगैरह देखी, मोटिवेशनल सेक्शंस जो थी वहाँ पे, बहुत वाइड रेंज ऑफ बुक्स थी, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा.
1: बहुत उम्दा. वैसे आपको ना इस वक्त काफी लोग सुन रहे हैं, तो अगर आप एक कोई जगह उनको इस बुक फेयर में रिकमेंड करना चाहें कि इस जगह जरूर आए जब भी बुक फेयर में आए, तो वो कौन सी जगह होगी?
0: यहाँ पे एक अच्छा सा क्रिएटिव तरीके में यहाँ की सूक मार्केट को और भी फायदे मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है. तो आई थिंक ये सबसे अमेजिंग पार्ट होगा इस बुक फेयर का, और यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट.
1: ओके, थैंक यू. अच्छा, एक और आखिरी सवाल, और वो ये कि अगर कोई बुक रिकमेंड करनी हो तो आप रिकमेंड करेंगी? अभी अभी तक कोई बुक देखी आपने?
0: हाँ, मैंने देखी है बहुत सारी.
1: तो कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे लोगों को आप?
0: मैं बहुत दिनों से एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, ये सारी बुक बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, यहाँ पे मुझे फाइनली मिल गया.
1: हाँ, ये तो बहुत फेमस बुक है. अच्छा, आपको कोई स्पेशल ऑथर भी पसंद है, कोई स्पेसिफिक आपको, या राइटर बहुत आपको पसंद हो?
0: Specific author, I think I really like Harry Potter's authors and some books like that.
1: ओके, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपने जो रिकमेंड किया है, उम्मीद है कि लोग जब जाएंगे तो उसे ज़रूर खरीदेंगे या फिर उसे ज़रूर पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू.
1: ओके, सो तो दोस्तों इनकी रिकमेंडेशन पर जरूर जाइएगा. और वैसे एक जो किताब का नाम इन्होंने लिया ना, रिच डैड पुअर डैड, ये बहुत फेमस बुक है. तो अमिता, तुमने ये बुक पढ़ी है, इसके बारे में सुना है, रिच डैड पुअर डैड?
0: ये एक्चुअली इसके बारे में सुना मैंने अपने भाई से था.
1: अच्छा.
0: एंड इसके कुछ वीडियोस वगैरह थे तो वो मैंने देखे थे, बट बुक मेरे भाई ने पढ़ी है ऑनेस्टली. एंड अभी मुझे अस्मिता मिली जिन्होंने कहा कि यू नो आई लाइक दिस बुक, तो मुझे एकदम से रिलेट कर गया कि वाओ, मतलब ये तो मेरे घर की किताब बाहर आ गई है. एंड आई जस्ट वांट टू से फजील की यू नो अगर हम बात करते रहे तो शायद बातें कम पड़ जाए, बिकॉज दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर एकदम कहते हैं ना शब्दों की नगरी है, यूं कहें शब्दों का समुंदर है. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स एंड लाइक 2 मिलियन सिटी ज्यादा, लाइक अप्रॉक्स एक्चुअली नॉट ज्यादा, 2 मिलियन तक अगर बुक्स हो सोचे जरा DECC में, तो क्या कमाल है.
1: एंड
0: तो मैं बस ये कहूंगी कि अभी जाते जाते कि भाई हमारे सारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं, जो अभी तक बुक फेयर में नहीं आ पाए हैं, वो जरूर आए. एंड ये तो वादा है मेरा कि आप मतलब बोर नहीं होंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है.
1: तो बिल्कुल ये मौका है दोस्तों, बिल्कुल मिस ना करिएगा, इस जगह जाइए, एंजॉय करिए बुक फेयर जो कि DECC में जारी है. 23 यानी कि परसों आखिरी दिन होगा, जब मौका मिले बस एक नज़र इस जगह मार के आ जाइए आप, मुझे पूरा यकीन है एक किताब तो लेकर आएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतने दिन लगातार जुड़ने के लिए. अमिता, तुमने एक एक छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वहाँ पर कवर करी है, इतने दिन बताया है, लोगों को सारी जानकारी मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया. और काफ़ी लोगों ने तुमको सराहा भी है, और मैं लगातार कह रहा हूँ अगर आप अमिता से मिले तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि वो 5 से 7 लगातार वहाँ पर, हम तो फिर भी यहाँ बैठे हैं, वो लगातार चल रही है, घूम रही है, टहल टहल के आपको एक एक चीज़ जो है वो बता रही है.
0: थैंक यू सो मच फजील, एंड इट्स रियली काइंड ऑफ यू और हमारे सारे लिसनर्स. बट यही है कि जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए, और जो ये दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर है इसका ऑर्गेनाइज होना और भी सक्सेसफुल हो, यही बस हमारी दुआ है. और इसी के साथ मैं कहूंगी कि अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मैं भी अब अपनी फेवरेट बुक्स खरीदने जा रही
1: हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू अमिता, थैंक यू. दोस्तों, मौका मिले तो खींच दो गाड़ी भाई, और पार्किंग वगैरह सब है वहां पर. 6:51 हमारे स्टूडियो की घड़ी में. अब मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, कुछ मैसेज पढ़ लेते हैं. खुर्रम शहजाद का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई. वालेकुम अस्सलाम. अगर पानी के अंदर रहना पड़ता तो पानी पूरी कहां से मिलती है रे? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है. पानी पूरी फिर ना मिलती, कुछ और तरीका ढूंढा जाता भाई, नमक पानी तो मिल जाता नहीं. नहीं, ये नमक पानी का झंझट तो क्लियर हो जाता. उसके अलावा एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, काकी के पेट पे क्यों लात मार रहे हो? नहीं भाई, अरे ये सब, अरे भाई भाई भाई भाई, आप लोग काकी के बिना कतर सुनसान लग रहा है. अरे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कौन भाई है ये? नाम लिखिए काकी, ओरिजिनल आईडी से आओ. ये गलत बात है काकी, हैं, दूसरे आईडी से, दूसरे नंबर से मैसेज कर रही हो तुम हैं। फिर ये मैसेज है, सलाम फजील भाई, वालेकुम सलाम, डोंट वरी, वी विल बिल्ड वाटर फ्लोटिंग सिटीज एंड इंट्रोड्यूस इंडोर फार्मिंग। हाँ, तो मतलब ये देखो, इंडोर फार्मिंग का तो मुझे पता है कि हाँ शायद हो सकती है, लेकिन इतनी तो ज़्यादा नहीं आ गई अभी कैपेबिलिटी, थोड़ी थोड़ी तो आ गई है, बाकी सबके अंदर नहीं। जैसे क्या है कि अगर मुझे भी किसी मैदान में छोड़ दो, मट्टी वाले मैदान में, तो वहाँ पर मैं उगा तो लूँगा, लेकिन पानी के अंदर छोड़ दोगे तो मेरा तो इंतकाल और फिर हिसाब किताब यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। बाकी तौफीक भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम तौफीक भाई, वखरा से। तो 6:53, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। जिनका मैसेज अगर छूट गया तो माजरत, फिलहाल वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, अलविदा कहने का, और ये अलविदा वो वाला नहीं है, मतलब अभी तो 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि जून से नए शोज FM 107 पे सुनने को मिलेंगे। मैं उस शो में आऊँगा जो आपके लिए बना है पूरी तरह से। क्यों? अच्छा, मैं ये भी बता दूँ, देखो हर इंसान को खाना अलग पसंद है, किसी को स्नैक्स में बर्गर पसंद है, किसी को ये होता है शवरमा पसंद है। अब जैसे ड्रिंक में किसी को ठंडा ड्रिंक पसंद है गर्मी में, किसी को चाय, वो बगैर चाय के रह नहीं पाता। ऐसे ही गानों का है, किसी को 90s के गाने बहुत पसंद है, किसी को नए ज़माने के गाने पसंद है, और किसी को अगर अच्छा कॉम्पोजिशन हो, अलका याग्निक हो चलेगा, है हनी सिंह हो चलेगा, अच्छी कॉम्पोजिशन हो, अच्छे लिरिक्स हो, गाना प्ले कर दो, मज़ा आना चाहिए, ट्रेंडिंग वाला है, हाँ चलेगा। कुछ लोगों को वो भी पसंद है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके अपने मर्जी के गाने हमारे FM 107 पे होने चाहिए। इसीलिए FM 107 शाम को 4 से 5, पूरा प्रोमो ही बना दिया मैंने तो शाम को 4 से 5 आप सुन सकते हैं द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आप अपने मर्जी के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके अपने मर्जी के गाने FM 107 पे चलेंगे, जो भी आपका दिल का है। उसके अलावा ट्रिविया, और फिर एक पहचान कौन गेम भी हम एक खेला करते थे, तो लास्ट के कुछ मिनट में वो भी होगा कि कहीं से भी रैंडम एक वर्स हम प्ले करेंगे, आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा गाना था। ये सारी चीजें होंगी जून से, लेकिन अभी तो 3 दिन बाकी है ना। फिलहाल सुखविंदर सिंह की आवाज में आपको ये बेहतरीन सा गाना सुना रहा हूं, नाम है ठोक द किल्ली, और मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी संडे शाम 5 बजे। गाड़ी निकालो भाई, चलो आशिक चला जाए। हैं क्या कह रहे हो, एड्रेस कौन सा एड्रेस, आवाज नहीं आ रही, आवाज धीमी करनी पड़ेगी ना। मैं एड्रेस ढूंढता हूँ, इसको कोई एड्रेस चाहिए आशिक को। FM 107 दिल से देसी।

0: मजबूत करते हुए तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेगा। मुआहदे के तहत अंदाज़ा लगाया गया है कि तवील मुद्दत में 2040 की पेशगोइयों के मुकाबले में बरतानवी मईशत में सालाना 3.7 अरब पाउंड का इजाफा होगा, जबकि हकीकी उजरतों में 1.9 अरब पाउंड तक का इजाफा मतवक्के है, जिससे कारोबारी तबके और मेहनत कशों दोनों को फ़ायदा होगा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक ये मुआहदा बरतानिया को खलीज तआवुन कौंसिल के साथ तजारती मुआहदा करने वाला पहला G7 मुल्क बनाता है, जो खित्ते के साथ इक्तसादी शराकत दारी को मजीद मजबूत करेगा, तवील मुद्दत में रोज़गार को सहारा देगा और मुल्की मईशत को मजबूती में किरदार अदा करेगा। हुकूमत ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुआहदा बरतानिया और खलीजी शराकत दारों के खुले तजारती निज़ाम, बाहमी खुशहाली और पायदार इक्तसादी तरक्की के अज़म की अक्कासी करता है। इस्लामी तआवुन तंजीम OIC की जनरल सेक्रेटरीट ने मीडिया रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश और शदीद मजम्मत का इजहार किया है, जिनमें दावा किया गया है कि नाम निहाद सोमाली लैंड मकबूजा शहर अल कुद्स में अपना नाम निहाद सफारतखाना खोलने का इरादा रखता है। तंजीम ने इस इकदाम को बैनुल अक्वामी बरादरी की ख्वाहिश के खिलाफ एक खुला चैलेंज और अक्वामे मुत्तहदा के चार्टर और मुतलका करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। सामीन खबरों के इस मरहले में एक मरतबा फिर समाप्त की जे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमू अमीर ने आज जम्हूरिया मलावी के सदर के नाम एक तहरीरी पैगाम भेजा है। साहिब सुमू अमीर ने दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 के दौरे के दौरान वहां मौजूद फिक्री तनु और इल्मी वसत पर खुशी का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर ने आज जम्हूरिया उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफा और उनके हमरा वफ़द से मुलाकात की। और रियासत कतर ने इसराइली हुकाम की जानिब से ज़ेर हिरासत ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कारकुनों के साथ इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर की जानिब से बदसलूकी किए जाने पर शदीद मुज़म्मत की है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावन असीला भंडार और न्यू स्टूडियो से इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप सुन रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल, एक ऐसा प्रोग्राम जो सेहतमंद कतर और सेहतमंद मुआशरे के लिए वक्फ है। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत ही छोटी सी आदत लगती है, लेकिन वो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो है हमारा ब्रेकफास्ट या सेहतमंद नाश्ता या हेल्दी जो नाश्ता है वो।

0: सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या आप नाश्ता करते हैं या सिर्फ चाय पर दिन शुरू कर देते हैं? क्या बच्चे स्कूल बगैर नाश्ते किए जाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और ये कि हम एक दूसरे से पूछते भी हैं और अपने दूसरे फैमिली फ्रेंड से आप पूछिए ज़रूर, और ये पूछना बेहद ज़रूरी है। अब ये है कि सेहतमंद नाश्ता क्यों ज़रूरी है? जैसे हम कहते हैं कि अच्छा सिर्फ चाय पी ली, या क्या आप ऐसी चीज़ जो कि हेल्दी नहीं है वो आप ले लेते हैं, मगर जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो क्यों ज़रूरी है? ब्रेकफास्ट को या नाश्ते को अक्सर दिन का सबसे अहम खाना कहा जाता है और उसकी बहुत ही एक रीजनेबल वजह भी है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो है रात भर का जो ब्रेक है उसको तोड़ देता है, और ये आपकी हमारी जो एनर्जी है या तवानाई की सतह है उसको बेहतर बनाता है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से लेकर चलता है। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो उसकी सप्लाई बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं या हमारे जो अलर्टनेस है उसको भी बूस्ट अप करता है। इस तरह बहुत से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए ग़िज़ाई अज्जा बेहद ज़रूरी हैं, वो भी हमें नाश्ते में ही मिलते हैं, यानी हमारे ब्रेकफास्ट में हमें मिलते हैं। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन HMC कतर और NHS UK की रोशनी में जानेंगे कि नाश्ता या ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है, कौन सा जो ब्रेकफास्ट है वो सेहतमंद है, और किस तरह से हम अगर गलत कुछ लेते हैं ब्रेकफास्ट में तो हमें नुकसानात जो हैं वो हो सकते हैं।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ। हेल्थ अप टू डेट।
0: ब्रेकफास्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जरूरी है उसे जानना। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ब्रेकफास्ट दिन की पहली ग़िज़ा है जो रात भर के फास्टिंग के बाद हमारे जिस्म को दोबारा तवानाई देती है, और अगर कोई इंसान ब्रेकफास्ट या नाश्ता ना करे तो फिर यह है कि उसका एनर्जी लेवल कम हो सकता है, उसकी जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है या जो तवज्जो है वो मुतासिर होती है कोई भी काम करने के लिए, और उसके बाद ज़्यादा खाने का रुझान बढ़ सकता है। यानी अगर आप ब्रेकफास्ट ठीक तरह से नहीं करते तो फिर आप जो दिन के बाकी हिस्से हैं उसमें ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये भी कहा गया है कि जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो हमारी जो कंसंट्रेशन है और एनर्जी जो है उसको बूस्ट अप करता है। इसी तरह बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट है वो तो बहुत ज़रूरी है, और ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, किस तरह का नाश्ता कर रहे हैं, और ये फिर अगर बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है टाइम नहीं है, या आप ये समझते हैं कि अच्छा स्कूल की जो वैन है या बस है या खुद छोड़ने जा रहे हैं तो उसमें बच्चे स्कूल लेट हो जाएंगे, मगर ये तमाम चीज़ें एक तरफ, मगर ये कि अगर बच्चे नाश्ता करके स्कूल नहीं जाते तो फिर उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो पढ़ने लिखने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसी तरह से वो बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, फिटीक जो है वो होती है, और इस तरह ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए फिर उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो मुतासिर हो सकती है। बहुत सारी तहकीकात जो की गई और उनमें से ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाती हैं रिसर्चेस, स्पेशली इस बात पर कि बच्चे जो हैं वो ब्रेकफास्ट स्कूल करके जाते हैं या नहीं, तो उसमें देखा यह गया कि वो बच्चे जो कि नाश्ता करके स्कूल आते हैं तो उनकी जो याददाश्त थी वो बेहतर थी दूसरे बच्चों से जो कि ब्रेकफास्ट किए बगैर स्कूल आ जाते हैं या अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उन बच्चों में भी ज़्यादा देखी गई जो कि ब्रेकफास्ट करके आते थे, इसी तरह से उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी देखा गया कि वो बेहतरीन था ऐसे बच्चों का जो कि ब्रेकफास्ट करके आते थे और उनमें जिस्मानी तवानाई जो है वो बेहतर देखी गई, एनर्जी लेवल जो है उनका बेहतर पाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक सेहतमंद हिस्सा और लाइफस्टाइल को बहुत अहम हिस्सा समझता है और नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 का भी एक बहुत ही अहम नुक्ता है। कतर में फास्ट फूड बहुत है, इसी तरह जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो बड़े शौक से पी जाती हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और आजकल जैसे कि गर्मी है तो आपको जो है प्यास ज़्यादा लगती है तो फिर हम पानी जो है वो ज़्यादा तो लेते हैं, मगर ये है कि पानी पानी ही की तरह लेना चाहिए। जो शुगरी ड्रिंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनसे ज़रा दूर ही रहा जाए। और फिर ये कि बहुत सारे जो अफराद हैं वो जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको नहीं करते या अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो रुझानात हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए जो हेल्दी ईटिंग अवेयरनेस है वो जो है वो बहुत ज़रूरी है और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की ये कोशिश है, इस पर वो जोर दे रहा है बहुत सी कंपेन्स के ज़रिए कि जो हेल्दी ईटिंग अवेयरनेस दी जाए पब्लिक को। स्कूल न्यूट्रिशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत से सेमिनार्स हैं, इसके अलावा कंपेन्स भी हैं और जो फैमिली लाइफस्टाइल है जो वो उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, उसमें फैमिली लाइफस्टाइल एजुकेशन है।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ। ब्रेक थ्रू स्पॉटलाइट्स,
0: इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी जो नई तहकीकात हो रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो नई नई रिसर्च चीज़ें हमें बता रही हैं कि जो सेहतमंद नाश्ता है या हेल्दी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अहम है। वो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज फ्राहम करता है और जब ग्लूकोज की मिकदार जो है वो बैलेंस होती है तो उससे फिर हमारी तवज्जो बेहतर होती चली जाती है, यानी जो कंसंट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती चली जाती है और इसी तरह से आपका मूड जो है वो भी बेहतर होता है। और अब यह है कि इसमें हमें ज़रूरी है ये देखना कि हम कौन सी जो हिस्सा है वो शामिल कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट में। उसमें जो होल ग्रेन्स हैं वो आप ले सकते हैं और ज़रूर लीजिए। इसके अलावा अंडे हैं, पोरिज या दलिया है, फल हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करते हैं तो फिर हमारी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर करने में मदद मिलती है। इसी तरह से एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिसमें आमतौर पर बहुत सारे अफराद ये ख्याल करते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी जो कैलोरीज हैं उन्हें कट डाउन करेंगे, मगर ये बहुत ही आम गलतफहमी है कि नाश्ता छोड़ने से या ब्रेकफास्ट जो है वो छोड़ने से हमारा जो वज़न है वो कम होगा। बहुत सारे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उन्हें बहुत ओबीस हैं, मोटापा है, तो उनका ख्याल ये होता है या वो ये करते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं करते और फिर जो नेक्स्ट जो भी टाइमिंग्स होते हैं पूरे दिन में उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं, ये भी तहकीक से साबित है। एक और तहकीक हमें बताती है कि जो ब्रेकफास्ट छोड़ने वाले अफराद हैं या ऐसी पब्लिक जो कि नाश्ता नहीं करती किसी भी रीज़न से, तो उसमें ये देखा गया कि वो ज़्यादा अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं। जाहिर है उन्हें भूख तो लगती है और अनहेल्दी स्नैक्स में फिर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा जो शुगर है वो भी उसमें ज़्यादा पाई जाती है, प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी तरह से फिर जो ब्लड शुगर लेवल है उसका भी ज़्यादा होने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा हो चला जाता है। HMC के मुताबिक जो माहरीन हैं वहाँ के वो कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही अनहेल्दी

0: इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ। सिंपल बट इम्पोर्टेंट टिप्स।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हेल्दी जो नाश्ता करना है उसमें फाइबर इंक्लूड हो, प्रोटीन हो और हेल्दी फैट्स हो, और इससे होता यह है कि आपका पूरा दिन जो है अपने आप को आप एक फुलनेस महसूस करते हैं कि भूख आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। और ये बहुत अहम है कि उसमें आपने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना है, जैसे कि अंडा है, रोटी है या फल हैं ये आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पोरिज है या दलिया जैसे है, दूध आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट वो बहुत अहम है, प्रोबायोटिक्स उसमें होती हैं, और नट्स आप अगर लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी जो है वो देते हैं। इसी तरह से चीज़ की हमने बात की, बड़ी डिटेल में बात की, मगर ये देखना आपको ये है कि आप क्या चीज़ ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, किस हद तक ले सकते हैं ये ज़रूरी है। इसी तरह से जो होल ग्रेन ब्रेड है या मल्टी ग्रेन ब्रेड है वो आप इस्तेमाल कीजिए। दूध या लस्सी आप अपने जो ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर लीजिए। अब ये भी बहुत अहम है कि किस तरह से हम अपनी जो चीज़ें हैं जो ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना है, और ये बहुत ही अहम टिप्स हैं नाश्ते के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ये देखना है कि क्या हम कुछ और उसमें ऐड कर सकते हैं या उसे निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें कुछ दूर रखना है वो ये है कि जो शुगरी सीरियल्स हैं, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह से जो बच्चे स्नैक्स लेते हैं, ख़ास तौर पर जो चिप्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, या जो ऐसे जूसेस जो कि कंटेनर्स में हैं या आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उन्हें आप अवॉइड कीजिए। और ये एक और चीज़ जो सिर्फ चाय लेते हैं या कॉफ़ी सिर्फ लेते हैं, उन्हें भी आप देखिए कि वो भी इस तरह से अपने ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ वो ना करें। इस तरह से हम जो जैसे हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी है, तो इसमें हम जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो उसमें भी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट बहुत अहम है हमारी सेहत के हवाले से। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा बिजी फैमिलीज हैं तो उन्हें करना ये है कि आप रात को ही प्लान कर लीजिए कि क्या क्या ब्रेकफास्ट में होगा, क्या कौन क्या क्या जो है वो खाना पसंद करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप जो बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट है उसकी तरफ आइए। और ये जो चारों चीज़ें हैं जैसे कि उसमें प्रोटीन है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, नट्स है, होल ग्रेन ब्रेड है या दूध है, इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते चले जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि कुछ ही अरसे के बाद आप एक जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड और हेल्दी होगा। बच्चों का लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो भी आप तैयार रखिए। और लंच और ब्रेकफास्ट की बात इसलिए की कि बच्चे जो लंच भी उन्हें हेल्दी देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ भी जैसे कैंटीन्स वगैरह से आप जो है बच्चों को इनक्रेज ना कीजिए कि वहाँ से वो कोई भी चीज़ जो है वो लें। इस तरह से क्विक हेल्दी फूड्स हैं वो आप कोशिश कीजिए कि वो आप अपने पास रखिए, जैसे कि नट्स हैं या जो योगर्ट है या कुछ इस तरह से आप हेल्दी नट्स हेल्दी चीज़ें जो हैं बच्चों को भी उस तरफ रागब कीजिए और ख़ुद भी आप ये कोशिश कीजिए कि अपने पास रखिए। तो लिसंस, जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, सिर्फ खाना नहीं है बल्कि हमारे पूरे दिन की बुनियाद है। इसलिए जो अच्छी सुबह है, गुड मॉर्निंग जैसे हम कहते हैं, तो उसे आप एक्सीलेंट बनाइए तो उससे बेहतर तवानाई हासिल कर सकेंगे, बेहतर सोच होगी, बेहतर जो है सेहत होगी। और ये तमाम चीज़ें, खासतौर पर जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इसमें हमारे साथ साथ होती है अगर हम जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको सेहतमंद बनाएंगे। तो लिसनर्स, ये था हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 के मुताबिक। आप सेहतमंद नाश्ता कीजिए, सेहतमंद रहिए और इसके साथ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने, टुगेदर वी थ्राइव, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Hello and welcome to the show called Together We Thrive, the show where we share real stories, real journeys and real inspiration from people who are making a difference in their lives and the lives of others. I'm your host, your dost, Nazia. And today we have a truly inspiring guest with us, someone who proves that with determination, positivity

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देश।

0: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
1: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
0: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام پرلز آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی طرف سے قبول کیجیے سلام و تحیات۔ سامعین کرام، قرآن حکیم میں متعدد غزوات کا تذکرہ موجود ہے۔ سیرت مطہرہ کے حوالے سے

0: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कदर और मैं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान लेकर आ गए हम आपके लिए एक और एपिसोड ऑफ पेरेंटिंग जर्नी। और आज हम जो बात करेंगे पेरेंटिंग जर्नी में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें हमने हमदर्दी और जो काइंडनेस है उसका जज्बा पैदा करना है। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज पूरी एपिसोड में अच्छी तरीके से इसको जानेंगे। एक तो वही रवैया जो हमारा है, वो बच्चों को शुरू से ही हम उनके साथ रहम करके उनको दूसरों पर रहम करना सिखाते हैं। ये आदत वैसे तो बचपन से ही डाली जाती है, लेकिन ये कि टीन्स में इसकी कुछ खास अहमियत होती है और वो क्यों होती है, ये आज के एपिसोड में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड बकायदा तौर पे। टीनेज जिंदगी का वो मरहला है जहां सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि सोच, जज्बात और शख्सियत भी तेजी से बदल रही होती है। इसी दौर में जो वैल्यूज बच्चों के अंदर

बिहेवियर भी है. कमेंट्स में सॉफ्टनेस, मैसेजेस में रिस्पेक्ट, ऑनलाइन मॉकिंग से बचना, सोशल मीडिया पर भी इंसानियत, ये सब मॉडर्न काइंडनेस का हिस्सा है. टीन्स को ये समझना जरूरी है कि काइंडनेस सिर्फ फेस टू फेस नहीं होती, डिजिटल दुनिया में भी होती है. और फिर काइंडनेस ग्रेटिट्यूड को भी बढ़ाती है. जो बच्चा दूसरों का ख्याल करता है वो अक्सर ज्यादा शुक्रगुजार भी होता है, और ग्रेटफुल और काइंड हार्ट्स अक्सर ज्यादा पीसफुल होते हैं. एक और खूबसूरत बात, काइंडनेस कंटीजियस होती है. एक मेहरबान रवैया दूसरों तक फैलता है. एक टीन अगर स्कूल में काइंडनेस शो करता है, दूसरे भी इंस्पायर हो सकते हैं. एक घर में अगर काइंडनेस कल्चर हो, वो पूरी फैमिली एनवायरनमेंट को बदल देता है. इसीलिए काइंडनेस को सिर्फ एक आदत नहीं समझना चाहिए कि कल्चर है, ये एनवायरनमेंट है, ये लेगेसी है, और पेरेंट्स इस लेगेसी के बिल्डर्स हैं. कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं, हम इतनी वैल्यूज सिखाते हैं लेकिन बच्चे शो नहीं करते. लेकिन वैल्यूज अक्सर फौरन से नजर नहीं आती हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब होती रहती हैं. आज आप जो काइंडनेस सिखा रहे हैं, कल वो शायद किसी दोस्त के साथ यूज करें, परसों अपनी फैमिली के साथ, और एक दिन वो इसी काइंडनेस के साथ अपने बच्चे की तरबियत करेंगे. यानी काइंडनेस जेनरेशंस तक चल सकती है, और यही पेरेंटिंग का खूबसूरत असर है. हम परफेक्ट टीन्स रेज नहीं कर रहे, हम कंपैशनेट इंसान रेज कर रहे हैं. और कंपैशनेट इंसान छोटी छोटी मेहरबानियों से बढ़ते हैं. हर काइंड वर्ड मैटर करता है, हर सॉफ्ट रिस्पॉन्स मैटर करता है, हर केयरिंग जेस्टर मैटर करता है. स्मॉल एक्ट्स रियली मैटर, क्योंकि आज की एक छोटी काइंडनेस कल किसी का जख्म भर सकती है. और आज जो टीन काइंडनेस सीख रहा है, कल वो इसी दुनिया को ज्यादा रहमत वाली जगह बना सकता है. यही काइंडनेस की असल अहमियत है. टीनेज वो उम्र है जहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है. जिस्म बदल रहा होता है, इमोशंस गहरे हो रहे होते हैं, सोच इंडिपेंडेंट बन रही होती है, और बच्चे धीरे धीरे बचपन से एडल्टहुड की तरफ सफर कर रहे होते हैं. इसलिए मरहला खूबसूरत भी होता है और चैलेंजिंग भी. कभी पेरेंट्स हैरान हो कि बच्चा बचपन में बहुत सॉफ्ट और अफेक्शनेट था, अब कभी रूड लगता है, कभी दूर दूर, कभी रिएक्ट सादा करता है. वो सोचते हैं कि ये इतना चेंज क्यों हो गया. लेकिन अक्सर ये रिबेलियन होना नहीं बल्कि डेवलपमेंट की वजह से होता है. टीन ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, खास तौर पर वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन से रिलेटेड है. इसलिए कभी कभी टीन को पता होता है कि क्या सही है, लेकिन उस वक्त इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उस पर अमल नहीं कर पाता. यही काइंडनेस चैलेंज हो सकती है. जब इमोशंस इंटेंस हो, पीयर प्रेशर हो, सेल्फ इमेज का कंसर्न हो, तब मेहरबानी का रवैया मेंटेन करना आसान नहीं लगता. और इसीलिए इस एज में काइंडनेस और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. टीनेजर्स के लिए एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं फिट इन करता हूँ या नहीं, मैं कूल लगता हूँ या ऑकवर्ड, ये सवालात अक्सर उनके जहन में होते हैं. कभी इसी एक्सेप्टेंस का प्रेशर में टीन्स दूसरों के साथ वैसा रवैया अडॉप्ट कर लेता है जो असल में उनकी नेचर नहीं होती. मिसाल के तौर पर किसी ग्रुप में फिट होने के लिए किसी का मजाक बनाना, बुलिंग में चुप रहना, किसी आउटसाइडर को इग्नोर करना, या किसी पर सार्कास्टिक कमेंट्स करना, ये अक्सर दिल की सख्ती नहीं होती
कभी इनसिक्योरिटी होती है।

0: इसीलिए पेरेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि हर रूड रिस्पॉन्स बदतमीजी नहीं, कभी इनर स्ट्रगल भी हो सकती है। टीन ईयर्स में इमोशंस बहुत इंटेंस महसूस होते हैं। दोस्ती का इशू हो तो बहुत गहरा लगता है, रिजेक्शन बहुत पेनफुल लगता है, कंपैरिजन बहुत हर्ट करता है। और जब कोई खुद इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो तो दूसरों के लिए जो है सॉफ्टनेस शो करना कभी कभी मुश्किल लगता है। इसीलिए काइंडनेस सिखाना सिर्फ अच्छा बनो कहने से नहीं होता, पहले उनकी इमोशनल दुनिया समझना पड़ती है। जब पेरेंट टीन के प्रेशर को समझते हैं तब वो बेटर गाइड कर पाते हैं। अक्सर टीन्स का रफ जो टोन है वो भी उनके अंदर के स्ट्रेस का सिग्नल होती है। कभी स्कूल प्रेशर, कभी आइडेंटिटी कंफ्यूजन, कभी सोशल एंजाइटी, कभी लोनलीनेस, और कभी सिर्फ ये एहसास कि कोई मुझे समझता ही नहीं। ऐसे में पेरेंटिंग का रोल सिर्फ करेक्शन का नहीं, कनेक्शन का होता है, क्योंकि कनेक्टेड टीन्स वैल्यूज ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। डिसकनेक्शन में लेक्चर्स असर करते हैं, कनेक्शन में मॉडलिंग असर करती है। टीनेज का एक और जो चैलेंज है वो है कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और इंटेंस कर दिया है। हर जगह फिल्टर्ड लाइव्स, परफेक्ट इमेजेस, पॉपुलैरिटी मैट्रिक्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन। ऐसे माहौल में काइंडनेस कभी पीछे रह जाती है और कंपटीशन आगे जा जाता है। लेकिन पेरेंट्स यहाँ एक काउंटर कल्चर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कंपैरिजन के बजाय कंपैशन हो, परफॉर्मेंस के बजाय करेक्टर हो, पॉपुलैरिटी के बजाय प्रिंसिपल हो। ये बहुत पावरफुल तरबियत है। कभी टीन्स का सरकाज़म या फिर ब्लंडनेस भी मैच्योरिटी की कमी होती है, बदनीयती नहीं। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बात किसी को कैसे हर्ट कर गई। यहाँ पनिश करने से पहले टीच करना इम्पोर्टेंट है। पूछिए, अगर कोई तुमसे ऐसे बात करता तो तुम कैसे फील करते? इस मोमेंट में काइंडनेस क्या होती है ये समझना है। ऐसे सवाल एम्पैथी जगाती है और एम्पैथी काइंडनेस की बुनियाद है।
1: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: एक और प्रेशर है पीयर प्रेशर। कभी टीन इंडिविजुअली काइंड होता है लेकिन ग्रुप में रवैया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बिलोंगिंग की नीड बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए पेरेंट्स को ये सिखाना होता है कि काइंडनेस करेज भी होती है। कभी क्राउड या अगेंस्ट खड़े रहना भी काइंडनेस है। बोलिंग के खिलाफ बोलना काइंडनेस है। अकेले बैठे बच्चे को इंक्लूड करना काइंडनेस है। फ्रेंड की गलत बात में साथ ना देना भी काइंडनेस है। ये मोरल करेज है और इसी एज में ये बिल्ड होता है। टीनेजर्स कभी अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए कभी उनकी फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर में निकलती है। जब पेरेंट सिर्फ बिहेवियर दिखता है और स्ट्रगल नहीं देखता तो मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन जब पेरेंट्स समझता है कि टीन एज एक इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड है तो अप्रोच बदल जाती है। फिर सवाल ये नहीं होता कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, बल्कि मैं इस स्टेज में उसकी रहनुमाई कैसे कर सकता हूँ। ये पेरेंटिंग शिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइंडनेस इस एज में चैलेंज इसलिए भी लगती है क्योंकि टीन्स फेयरनेस को स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। अगर उन्हें कुछ अनफेयर लगे वो रिएक्ट करते हैं। कभी इसी रिएक्शन में टोन हार्श हो जाती है। यहाँ उनकी सेंस ऑफ जस्टिस को काइंडनेस के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। उनको बताएं, सच बोलना और

टैक्टफुल रहना दोनों साथ चल सकता है। डिसएग्री करना और रूड ना होना मुमकिन है। स्ट्रॉन्ग होना और काइंड होना अपोजिट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और शायद सबसे अहम बात। टीन ईयर्स में काइंडनेस परफेक्ट बिहेवियर का नाम नहीं, प्रोग्रेस का नाम है। कभी वो फेल करेंगे, कभी रूड रिस्पॉन्ड करेंगे, कभी सेल्फिश होंगे, कभी इनसेंसिटिव भी, लेकिन इसी प्रोसेस में सीखेंगे। करैक्टर मिस्टेक्स के बगैर मैच्योर नहीं होता, इसीलिए पेरेंट्स का काम परफेक्शन डिमांड नहीं, डायरेक्शन देना है, रहनुमाई देना है, मॉडलिंग करना है। एक और मिसकंसेप्शन ये होता है कि टीन्स वैल्यूज सुनना नहीं चाहते। हकीकत ये है कि वो हिपोक्रेसी रिजेक्ट करते हैं, वैल्यूज को नहीं। अगर पेरेंट्स काइंडनेस प्रीच करें और घर में हार्शनेस हो, टीन डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो काइंडनेस लिफ्ट फॉर्म में देखें तो वह एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे फॉरन ना दिखाएं। ये याद रखिए, टीन्स अक्सर सुनते कम और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आपका रवैया उनकी ट्रेनिंग है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना उनकी ट्रेनिंग है, आपका डोमेस्टिक वर्कर के साथ जो टोन है वो उनकी ट्रेनिंग है, आपका रोड पर रिएक्शन भी उनकी ट्रेनिंग है। यानी काइंडनेस उनको फॉर्मली भी सिखाई जाती है और साइलेंटली भी, और साइलेंट टीचिंग अक्सर ज्यादा पावरफुल होती है। टीन ईयर्स चैलेंजिंग है लेकिन इसीलिए फर्टाइल भी है। इसी एज में डीप वैल्यूज प्लांट होती हैं, इसी एज में मोरल करेज डेवलप होती है, इसी एज में कंपैशन आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है। इसलिए अगर कभी काइंडनेस मुश्किल लग रही हो तो डिस्करेज ना हो, ये फेलियर नहीं, ये फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन वक्त लेती है। आज जो आप एम्पथी सिखा सकते हैं, कल वो किसी दोस्त का सहारा बन सकता है। आज जब आप इंक्लूजन सिखाते हैं, कल वो किसी जगह पे किसी इंसान को खड़ा कर सकता है। आज जो आप मेहरबानी सिखाते हैं, कल वो उसकी लीडरशिप का कोर बन सकता है। इसीलिए टीनेज को सिर्फ डिफिकल्ट फेज ना समझें, इसे करैक्टर बिल्डिंग का गोल्डन फेज समझें और काइंडनेस को इसी फेज का सेंट्रल लेसन बनाएं। पेरेंटिंग में एक बहुत गहरी और सिंपल सी हकीकत है, बच्चे ज्यादा वो नहीं सीखते जो हम उनको कहते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम खुद करते हैं। इसे हम मॉडलिंग कहते हैं, यानी मिसाल बनकर सिखाना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीन्स काइंड, रिस्पेक्टफुल और एम्पथी रखते हों, तो सबसे पहले हमें अपने रवैये को देखना होगा, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट उनकी सबसे पहली क्लासरूम होती है। टीनेजर हर रोज अपने पेरेंट को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या नहीं। वो देखता है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब कोई गलती करता है तो हम कैसे बात करते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा टोन कैसा होता है, और जब हम किसी स्ट्रेंजर या सर्विस वर्कर से मिलते हैं तो हमारा रवैया कैसा होता है। ये सब उनके लिए साइलेंट लेसन्स होते हैं। अगर हम अपने घर में हार्श टोन यूज करते हैं तो बच्चे भी समझ लेते हैं कि स्ट्रेस में लाउड या रूड होना नॉर्मल है। लेकिन अगर हम कामली रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो वो सीखते हैं कि डिसएग्रीमेंट भी डिग्निटी के साथ हैंडल हो सकती है। काइंडनेस सबसे पहले लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होती है। तुम कभी ठीक नहीं करते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमने तो फिर गलती कर दी, ऐसी बातें टीन के सेल्फ वर्थ को हर्ट करती हैं। लेकिन अगर हम कहना सीख लें, चलो इसको दोबारा ट्राई करते हैं, गलती हो गई लेकिन हम सीख सकते हैं,

मुझे तुम्हारी कोशिश नजर आ रही है। तो ये सिर्फ कनेक्शन नहीं होती, ये काइंडनेस होती है। मॉडलिंग काइंडनेस का एक और पहलू इमोशनल रेगुलेशन है। टीनेजर देखता है कि जब पेरेंट गुस्से में होता है तो क्या करता है, क्या वो सिर्फ चिल्लाता है, क्या वो दूर हो जाता है, या फिर थोड़ा रुककर सांस लेकर सुकून से बात करता है। ये छोटी छोटी चीजें टीन के अंदर इमोशनल ब्लूप्रिंट बना देती हैं। अगर घर में डिसएग्रीमेंट्स हमेशा फाइट्स में बदल जाएं, तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एग्रेशन है। लेकिन अगर घर में डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्ट के साथ हैंडल हो, तो बच्चे सीखते हैं कि लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं और फिर भी काइंड रह सकते हैं। काइंडनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं होती, हर इंसान के लिए होती है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स या इवन स्ट्रेंजर्स के बारे में। टीन ये सब एब्जॉर्ब करता है। अगर हम रोज किसी की बुराई करते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि जजमेंटल होना नॉर्मल है। लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में फेयर और बैलेंस्ड बात करते हैं, तो वो सीखते हैं कि हर इंसान के पास एक स्टोरी होती है। मॉडलिंग काइंडनेस का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पथी इन एक्शन। सिर्फ कहना कि दूसरों का ख्याल रखो काफी नहीं होता, बच्चे देखना चाहते हैं कि हम खुद कैसे ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली मेंबर थका हुआ हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं, अगर कोई उदास हो तो हम उससे पूछते हैं, अगर कोई मिस्टेक करता है तो हम उसको शेम नहीं करते। ये सब एक्शंस टीन के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स बन जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है घर का टोन। घर सिर्फ रूल से नहीं चलता, टोन से चलता है। अगर घर में ज्यादा वक्त टेंशन, क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट्स का माहौल है, तो बच्चे इमोशनली डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में वार्मथ, एप्रिसिएशन और सॉफ्टनेस हो, तो बच्चे नेचुरली ओपन और काइंड बन जाते हैं। काइंडनेस को मॉडल करने का मतलब ये भी है कि हम अपनी गलती मान सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल लेसन है। अगर पेरेंट कह सके, मैं गुस्से में हूँ, ज्यादा बोल गया, मुझे अफसोस है, तो टीन सीखता है कि गलती को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। लेकिन अगर पेरेंट कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, तो बच्चे भी डिफेंसिवनेस सीखते हैं। काइंडनेस का एक और हिडन एस्पेक्ट है ह्यूमिलिटी। जो इंसान हम्बल होता है, वो दूसरों को नीचा नहीं समझता। और जब हम अपने घर में ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, तो बच्चे भी ग्राउंडेड रहते हैं। मॉडलिंग का मतलब सिर्फ अच्छे मोमेंट्स नहीं होते, ये स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब घर में प्रेशर होता है, जब थकन होती है, उस वक्त हमारा रवैया सबसे ज्यादा पावरफुल लेसन होता है। टीन उस वक्त देखता है, अब मेरे पेरेंट का रियल करैक्टर क्या है। अगर उस वक्त भी सबर, सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट हो, तो वो लेसन लाइफ टाइम याद रहता है। और अगर उस वक्त हार्शनेस हो, तो वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाता है। इसीलिए मॉडलिंग काइंडनेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ कन्वीनियंट मोमेंट्स में नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टीन्स हिपोक्रेसी बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। अगर हम बाहर लोगों से पोलाइट हैं, लेकिन घर में रूड हैं, तो वो कन्फ्यूज होते हैं और अक्सर वो वैल्यूज रिजेक्ट कर देते हैं, इंसान नहीं। इसलिए ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। काइंडनेस को एक्ट नहीं, आइडेंटिटी बनाना होता है। जब बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स हर सिचुएशन में रिस्पेक्टफुल हैं, चाहे घर हो, स्कूल हो या पब्लिक प्लेस,

0: तो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बिहेवियर नहीं, ये लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल सबसे पावरफुल टीचर होती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि मॉडलिंग परफेक्शन का नाम नहीं। बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, वो रियल पेरेंट्स चाहते हैं जो सीख रहे हों, जो गलती करते हों लेकिन इम्प्रूव भी करते हों। यही रियल काइंडनेस है। और जब टीन्स ये देखता है कि काइंडनेस सिर्फ कहने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है, तो वो धीरे धीरे इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। इसीलिए याद रखें, आप जो दिन भर करते हैं वो आपके बच्चे भी कल बन जाते हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि ये वो पहला स्कूल होता है जहाँ बच्चे जिंदगी के सबसे बुनियादी सबक सीखते हैं। यहीं से उनकी सोच बनती है, यहीं से उनका रवैया डेवलप होता है, और यहीं से वो दुनिया को देखना सीखते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीन्स काइंड और एम्पैथेटिक हो, तो सबसे पहले हमें अपने घर का एनवायरनमेंट देखना होगा। घर को काइंडनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के मतलब यह है कि यहाँ रोज छोटी छोटी सिचुएशंस में मेहरबानी की प्रैक्टिस हो। ये कोई फॉर्मल लेसन नहीं होता, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा होता है। सबसे पहले सिबलिंग्स के दरमियान रवैये को देखा जाता है। अक्सर घरों में बहन भाई के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, टॉयज, स्पेस, अटेंशन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हर लड़ाई में सिर्फ कौन सही है डिसाइड किया जाए, तो बच्चे कंपटीशन सीखते हैं। लेकिन अगर फोकस इस बात पर हो कि कैसे हम एक दूसरे के साथ काइंडली रह सकते हैं, तो ये उनको कोऑपरेशन सिखाता है। मिसाल के तौर पे, तुम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो, कैसे तुम अपनी बहन के साथ शेयर कर सकते हो। ये छोटी छोटी गाइडेंस घर को कॉन्फ्लिक्ट जोन से लर्निंग जोन बना देती है। घर में काइंडनेस का एक और पहलू डेली हैबिट्स होती हैं, जैसे कि शुक्रिया कहना, माफी मांगना, एक दूसरे की बात सुनना, बुजुर्गों का अदब करना, छोटी हेल्प ऑफर करना, ये सब चीजें अगर रूटीन बन जाएं, तो बच्चे नेचुरली इन वैल्यूज के साथ ग्रो करते हैं। अगर घर में प्लीज, थैंक यू और सॉरी सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स ना हो, बल्कि रियल यूज में हो, तो बच्चे समझते हैं कि रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप का हिस्सा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर का इमोशनल टोन है। अगर घर में ज्यादातर वक्त टेंशन, क्रिटिसिज्म या शाउटिंग होती हो, तो बच्चे इमोशनली डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में कामनेस, सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग हो, तो बच्चे इमोशनली सेफ फील करते हैं। और जब कोई इंसान सेफ फील करता है, तो नेचुरली ज्यादा काइंड होता है। घर को काइंडनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का मतलब ये भी है कि पेरेंट्स इंटेंशनली अप्रिसिएशन का कल्चर डेवलप करें। बच्चे जब कोई अच्छा काम करे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसको नोटिस करना जरूरी है। तुमने अपने भाई की हेल्प की, मुझे अच्छा लगा, तुमने अपना काम टाइम पर किया, थैंक यू, तुमने पेशेंस सिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। ये अप्रिसिएशन उनको रीइंफोर्स करता है कि काइंडनेस वैल्यू रखती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रेज ओवर द टॉप ना हो, सिंपल, रियल और स्पेसिफिक एप्रिसिएशन ज्यादा इफेक्टिव होती है।
1: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: घर में काइंडनेस सीखने का एक और तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जब बच्चे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं,

डॉक्टर से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखा था। जैसे कि किसी नीडी फैमिली के लिए राशन कलेक्ट करना, किसी क्लीनिंग या एनवायरमेंटल एक्टिविटी में हिस्सा लेना, किसी चैरिटी ड्राइव में सपोर्ट करना, किसी एल्डरली पर्सन की हेल्प करना, ये एक्सपीरियंसेस टीन्स के पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कर देते हैं और वो अपनी दुनिया से निकलकर दूसरों की दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। सर्विस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड है। जब टीन देखता है कि कुछ लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो नेचुरली अपनी चीज़ों की वैल्यू समझने लगता है। ये ग्रैटिट्यूड उसके बिहेवियर को हम्बल और काइंड बनाती है। सर्विस टीन को एंटाइटलमेंट से दूर ले जाती है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन सर्विस सिखाती है कि मैं भी कुछ दे सकता हूँ। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत पावरफुल होता है। पेरेंट्स को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। सर्विस को कभी पनिशमेंट या फिर बर्डन नहीं बनाना चाहिए। अगर टीन को लगे कि वो ये फोर्स्ड काम है तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, लेकिन अगर उसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाया जाए तो वो नेचुरली इन्वॉल्व होता है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि किसी की मदद हो सके। ये छोटी सी चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। जब टीन पर्पस समझ लेता है तो वो विलिंगली पार्टिसिपेट करता है। सर्विस का एक और पहलू है इमोशनल कनेक्शन। जब टीन किसी को हेल्प करता है और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखता है तो उसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये सेटिस्फेक्शन उसे दोबारा काइंडनेस की तरफ ले जाती है। यानी सर्विस एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करती है। हेल्प करना, पॉजिटिव फील करना, फिर दोबारा हेल्प करने का जज्बा पैदा होना। टीनेजर्स के लिए बहुत हेल्दी साइकिल है क्योंकि इससे उनका सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव होता है। वो समझते हैं कि वो किसी का काम कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, और ये फीलिंग उनको कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड बनाती है। सर्विस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव चेंज है। अक्सर टीन्स अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझते हैं, एग्जाम्स, फ्रेंड्स, सोशल इश्यूज, लेकिन जब वो दूसरों की स्ट्रगल्स देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है। वो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उनकी नहीं, सबकी स्ट्रगल का मिक्स है, और ये अंडरस्टैंडिंग उनको ज़्यादा मैच्योर बनाती है। पेरेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो सर्विस को रूटीन का हिस्सा बनाए, सिर्फ ओकेजनल एक्टिविटी ना रखें, जैसे हर मंथ किसी की छोटी छोटी कम्युनिटी हेल्प, घर में रेगुलर शेयरिंग हैबिट्स, स्कूल या नेबरहुड में ओकेजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। कंसिस्टेंसी इस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर्विस का एक और पावरफुल लेसन ह्यूमिलिटी है। जब टीम किसी की मदद करता है तो वो अपनी इम्पोर्टेंस को बैलेंस में रखता है। वो समझता है कि हर इंसान वैल्यूएबल है। ये ह्यूमिलिटी उसे एरोगेंस से दूर रखती है। कभी कभी टीन्स सिर्फ रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं, ग्रेड्स, ट्रॉफीज, रिकॉग्निशन, लेकिन सर्विस उनको याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है और यही लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। सर्विस का एक और एस्पेक्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट। जो टीन दूसरों की मदद करते हैं वो नेचुरली लीडर बन जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं बल्कि केयर करना होता है। एक केयरिंग लीडर ही रियल लीडर होता है। ये समझना ज़रूरी है कि सर्विस सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं बल्कि अपने अंदर इंसानियत डेवलप करना है। जब टीम सर्विस करता है तो वो सिर्फ बाहर से किसी की हेल्प नहीं करता बल्कि अपने अंदर एक बेटर वर्जन बिल्ड करता है, और यही काइंडनेस का सबसे ब्यूटीफुल लेवल है। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं और साथ ही अपनी शख्सियत को भी

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है. उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है. ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं. डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है. सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते. ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है. यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं. ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे. तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं. ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 presents Your Health Matter with RJ

0: कभी किसी फोटो में खुद को देखकर ये लगा मैं इतना झुका हुआ क्यों लग रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद बैक ने क्वाइटली कंप्लेन किया हो कि भाई अब उड़ जाओ, अपना पोस्चर ठीक कर लो। एग्जैक्टली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोस्चर और स्पाइन हेल्थ की। पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम तब सोचते हैं जब दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हमारा इग्नोरेंस मोड ऑन रहता है। पर स्पाइन हमारी बॉडी का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे बिल्डिंग क्लिप पिलर्स होते हैं वैसे ही बॉडी के लिए स्पाइन होती है। और जब पोस्चर गलत होता है तो प्रेशर स्पाइन के गलत पार्ट्स पर पड़ता है। फोन देखते वक्त नेक झुकी होती है, लैपटॉप पे काम करते वक्त शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, और खड़े होते वक्त वेट एक ही पैर पर पड़ता है। ये सब स्मॉल हैबिट्स जो है इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं देता, इससे नेक पेन, हेडेक, शोल्डर स्टिफनेस और कभी कभी फटीग भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है पोस्चर सिर्फ बॉडी को ही नहीं कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं ना तो हम सांस बेटर ले पाते हैं, चेस्ट ओपन होती है और बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। गुड पोस्चर का मतलब मिलिट्री स्टाइल स्टिफनेस नहीं होता, गुड पोस्चर का मतलब होता है बॉडी को नेचुरल अलाइनमेंट में रखना, ईयर शोल्डर के ऊपर, शोल्डर हिप्स के ऊपर, और इतना याद रखना काफी होता है। और पोस्चर सुधारना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली अवेयरनेस है। हर दिन थोड़ी देर में खुद से पूछो मैं कैसे बैठा हूँ, क्या मैं स्ट्रेट बैठा हूँ। अगर आपको लगता है आप राउंडेड होके बैठे तो सीधे अपनी कमर कर लीजिए। स्मॉल रिमाइंडर्स बहुत हेल्प करते हैं। फोन में अलार्म सेट कर दीजिए कि हर 15 मिनट में वो आपको रिमाइंडर दे कि कैसे बैठे हो। स्टिकी नोट लगा लीजिए हर जगह, ये आप देखते रहेंगे और ये चीज आपकी बॉडी को सिग्नल देते रहेगी। वेल, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पोस्चर के बेस्ट फ्रेंड्स है, स्पेशली कोर और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, तो स्पाइन को नेचुरली सपोर्ट मिलता है। और हाँ, पोस्चर का कनेक्शन स्लीप से भी होता है। गलत स्लीपिंग पोस्चर दिन भर के पेन को थोड़ा और बढ़ा सकता है। स्पाइन को रिस्पेक्ट देना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो आज थोड़ा केयर, कल कम पेन। और ये एक सिंपल सा रिमाइंडर याद रखिए कि थोड़ा सीधा हो जाइए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, नेक को फ्री कीजिए, क्योंकि जब स्पाइन हेल्दी होती है तो बॉडी ज्यादा स्मूथली मूव करती है, एनर्जी बेटर रहती है और दिन थोड़ा ज्यादा लाइट लगता है। इसलिए याद रखिए पोस्चर सिर्फ अपीयरेंस नहीं, हेल्थ का फाउंडेशन है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस। मोबाइल में देखते देखते आपको एकदम से आपके शहर में हो रहे मेगा इवेंट का एक पोस्टर दिखाई देता है और लिखा है बाय टिकट्स ऑनलाइन। क्लिक करते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जब इवेंट में जाते हैं तो वो टिकट वैलिड ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम है वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट कतर में अनाउंस होता है, वैसे ही कई सारी फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं जो दावा करती हैं कि वो उस इवेंट की टिकट्स बेच रही हैं। रियल वेबसाइट की ये बिल्कुल रेप्लिका होती है। बहुत ज्यादा गौर से देख के ही फर्क महसूस कर पाएंगे, नॉर्मल नजर भी नहीं आएगा। आप अपनी टिकट्स वहां से परचेस कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां शेयर कर देते हैं। एंड जब आप इवेंट में पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये टिकट्स तो यहाँ वैलिड ही नहीं है, आपके साथ टिकट स्कैम हो चुका है। किसी भी बड़े इवेंट की टिकट बुक करने से पहले आप ये सोच लें कि आप सही वेबसाइट पे आए हैं। आप ऑथेंटिक वेबसाइट में जाके ही टिकट को परचेस करें, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पे ना जाएं जो उस वेबसाइट की रेप्लिका हो। जरा गौर फरमाइएगा, टिकट लेने से पहले मेक श्योर करें कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं टिकट को परचेस करने के लिए, वरना आप टिकट तो खरीद लेंगे लेकिन जिसके टिकट आपने खरीदे हैं वो इवेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे और पैसे भी गवा बैठे।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। बड़ा ही कमाल का सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो आज भी हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो है हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी सेविंग्स फंड। कितना कमाल का टॉपिक है, अगर इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है मैं घंटों बता सकती हूँ। ज्ञान बांटना बड़ा आसान लगता है लेकिन हाँ उस पे अमल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह से हमें इमरजेंसी सेविंग्स फंड जो है उन्हें बिल्ड करना है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो भाई इमरजेंसी सेविंग्स फंड ऐसा कोई फंड हम जो है ना अपनी लाइफ में क्रिएट करते ही नहीं है, ना बिल्ड करते हैं ना यकीन करते हैं, अल्लाह ना करे किसी को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो। बट ये वर्ड अपने आप में ना इतना भारी भरकम है, द मोमेंट यू लिसन इमरजेंसी अरे लगता है क्या हॉस्पिटल कोई गया है, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और शायद कोई भी नहीं चाहता इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से हम तैयार रखें खुद को, लेकिन हाँ जिंदगी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, कभी अचानक नौकरी का मसला आएगा, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है, या फिर घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो निगलेक्ट ही ना किया जाए। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इमरजेंसी सेविंग्स फंड। देखिए इमरजेंसी सेविंग्स फंड वो पैसे होते हैं जो हम सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए साइड पर रखते हैं। पहले तो ये सवाल उठेगा कि क्या आप ऐसा कोई पैसा साइड पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो आज से अभी से इस आदत को अपना लीजिए। ये फंड जो है वो आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे तो कम करते ही करता है और हमें बड़े फैसले बड़ी घबराहट से भी बचा लेता है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इमरजेंसी सेविंग्स फंड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। पहले तो इसे समझते हैं कि है क्या। तो इमरजेंसी सेविंग फंड्स जो है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को इनकम रुक जाए, अल्लाह ना करे कोई अचानक ऐसा खर्चा बढ़ा आ जाए जो आपको पुश करे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए या हो सकता है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो ऐसे में अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो ये फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत से लोग इसलिए टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। थोड़ा सा पैसा भी अगर इमरजेंसी के लिए अलग रख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। ये फंड सिर्फ पैसे नहीं है, मैं कहती हूँ ये पीस ऑफ माइंड है। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए इमरजेंसी फंड बनाने का जो कदम है वो आपका पहला माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस फंड को ना बनाइए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है आपकी नियत और आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये सोच लेना कि कल से सेविंग शुरू करनी है काफी नहीं होगा दोस्तों। आपको क्लियर डिसीजन लेना होता है कि ये अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन सेविंग मैं जरूर करूंगा या करूंगी। इसके बाद आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाइए। आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में रेंट, खाना, बिल, ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजों पर कितना खर्चा होता है। जनरली सजेशन ये होते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम भी सेव नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत लेकिन होनी तो चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो छोटी सेविंग को सेविंग ही नहीं मानते। बहुत से लोग सेविंग इसलिए शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है इतनी छोटी सी रकम का क्या होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग का मतलब कंसिस्टेंसी है, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी नहीं। आप 50 रियाल से 100 रियाल से भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही

0: सैलरी आए, पहले इमरजेंसी फंड के लिए उसे अलग कर दें बिना कुछ खर्च किए। अगर पॉसिबल हो तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग बैंक अकाउंट ही खोल लीजिए, जहां आसानी से पैसे आप डालें और आप उसको टच भी ना करें। इससे इसे होगा ये कि टेम्पटेशन आपकी कम हो जाएगी और शायद सेविंग डिसिप्लिन डेवलप होगा। इमरजेंसी फंड को सेफ जगह रखना भी जरूरी है। इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पैसा सेफ हो, जरूरत पर फौरन आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक, क्रिप्टो या कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना ठीक नहीं होता। सिंपल सेविंग्स अकाउंट या फिर इजली एक्सेसिबल ऑप्शन बेहतर रहते हैं। हर कुछ महीने में अपने इमरजेंसी फंड्स को रिव्यू करें। रेगुलर रिव्यू डिसिप्लिन लेकर आता है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखते हैं कि जी ये बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ते घटते रहते हैं, और मैं घटना क्यों कहती हूँ, बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी हो सकता है कभी दिक्कत आए, 50 रियाल भी सेव करना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपने लिख रखा है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस गिल्ट का शिकार होंगे, और जैसे जहां आपको मौका मिलेगा आप वो 50 रियाल खड़ाक से बचा लोगे और फिर आप उसको इमरजेंसी फंड में डाल ही दें। ये आदत बड़ी कमाल की है और इससे आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ वाकई इमरजेंसी के लिए ही यूज ना किया जाए, इसको लाइफस्टाइल के लिए यूज ना किया जाए, ये फंड ही आपके लिए बना रहे। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो इंसान के लिए जरूरी भी है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता है। इसकी शुरुआत आज से कीजिए। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107 FM 107

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए फलाह अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।